व्यक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन।

दोस्तों ये बात याद रखिएगा, भगवान हमसे जो भी लेता है उसे हमेशा कई गुना करके वापस करता है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: संत कबीरदास हथकरघे पर कपड़ा बुनते रहते थे। उनके पास रोज ही कई जिज्ञासु आते थे, जिन्हें तर्कपूर्ण प्रमाण देकर वो कल्याण का मार्ग बताते थे। अपने पास आने वालों को वो दुर्व्यसनों से, नशे से सदैव दूर रहने की प्रेरणा भी देते थे। एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु काशी पहुंचे। वो कबीर के दर्शनों के लिए भी गए। उनमें से कुछ चिलम सुलगाकर तंबाकू पीने लगे। कबीर ने साधु से पूछा, तंबाकू के नशीले धुएं में तुम्हें क्या फायदा मिलता है, बताना तो। उसने कहा, कुछ क्षणों के लिए मस्ती में खो जाता हूं। कबीर ने कहा, इस विषैले पदार्थ के कारण तुम अपने शरीर को जला रहे हो। यदि वास्तव में सच्ची मस्ती का अनुभव करना है तो ऊपर वाले का नाम का नशा चढ़ाकर देखो। तंबाकू का विष मन, मस्तिष्क और शरीर को विकृत कर देता है, जबकि ऊपर वाले का नाम, उसका नशा ही कुछ और है। कबीर के शब्दों ने जादू का काम किया और वो साधु फिर कभी ना नशा करने का संकल्प ले बैठा। एक बार एक व्यक्ति ने कबीर से पूछा, सांसारिक प्रपंच में फंसकर भगवान को कैसे याद करें? कबीर ने कहा, जैसे पत्नी पोहर में रहते हुए भी पति के ध्यान में लीन रहती है, उसी तरह मनुष्य सांसारिक कार्यों में जुटे हुए भी भगवान का चिंतन में लगा रह सकता है।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं। पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था

जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन है। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें। बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बाल आश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे हजारों बाल श्रमिकों को
अमर की तलाश है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: आइए दोस्तों, आपको बताते हैं आजाद भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर के बारे में, जिनका नाम है अन्ना राजम जॉर्ज। वो भी लाजवाब जमाना था, देश आजाद हो गया था। तब तोला भर सोने की अंगूठी के लिए करीब 100 रुपए लग जाते थे और आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए 140 रुपए का शुल्क चुकाना पड़ता था। 20 की हो चुकी ये मलयाली युवती क्लर्क की नौकरी करती थी और तनख्वाह इतनी नहीं थी कि परीक्षा का फार्म भर सके। वो सोचती थी कि स्नातक करने के बावजूद क्या वो सिर्फ क्लर्क बनकर रह जाएगी? नए आजाद हुए देश में सबसे बड़ी नौकरी के लिए प्रयास में भला क्या हर्ज है? एक बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठकर देखें, ना कुछ होगा तो तजुर्बा तो होगा। आगे बढ़ने का इरादा पक्का था तो कदम कदम पर चुनौतियों से टकराना भी तय था। एक दोस्त की मम्मी ने फार्म भरने के पैसे दे दिए। युवती ने पहली ही बार में कामयाबी हासिल कर ली। साक्षात्कार का मौका आया तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने का उन्होंने इरादा जताया। साक्षात्कार लेने बैठे आयोग के प्रमुख ने हतोत्साहित किया, युवती हो भारतीय प्रशासनिक सेवा में मुश्किल होगी, विदेश सेवा या केंद्रीय सेवाओं में से कुछ चुन लो। पर वो अड़ गई, प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। आयोग के सभी सदस्य अचंभित थे कि बुरे से बुरे हालात देखने पड़ते हैं, कड़े से कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, किसी लड़की से ये सब हो सकेगा? भला हो महान संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने देश में कानून बना दिया था कि रोजगार में लड़का लड़की के बीच भेद नहीं किया जाएगा। लड़की अड़ गई, तभी वो देश की पहली आईएएस ऑफिसर बनी और पहुंच गई अपने कैडर प्रदेश तमिलनाडु। वहां मिल गए दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री सी रामगोपालाचारी। आईएएस रूप में युवती को देखकर चौंक गए, ये कैसे, सब कलेक्टर कलेक्टर बनेगी फिर फील्ड ड्यूटी में जाएगी? उन्होंने समझाया कि सचिवालय में कोई काम संभाल लो, जिला जाने की नौबत भी नहीं आएगी। पर यहां भी वो युवती अड़ग रही, नहीं मुझे आप किसी जिले में ही भेजिए, कृपया भेदभाव नहीं कीजिए। खैर रामगोपालाचारी ने भी उन्हें अपने ही जिले होसूर में सब कलेक्टर तैनात कर दिया। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि एक महिला सब कलेक्टर कैसे। उन दिनों कलेक्टर को अक्सर लाठीचार्ज या गोली चलाने का फैसला लेना पड़ता था, पता नहीं एक महिला ऐसे फैसले कैसे लेगी। ऐसे में खुद को साबित करना जरूरी था और मौके की तलाश थी। मौका जल्दी ही सामने आ गया। एक सुबह बंगले के बाहर शोर मच गया, बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। सब कलेक्टर साहिबा जल्दी जल्दी नहाकर निकली। 6 हाथियों के एक समूह ने गांव पर हमला बोल दिया था, भगाए नहीं भाग रहे थे वो। ग्रामीणों को जब कुछ न सूझा तो मदद के लिए सब कलेक्टर के यहां पहुंच गए, पर सामने एक महिला को देखकर बड़े निराश हुए। ये कैसे फैसला लेगी, कैसे समाधान करेगी? पल भर के लिए सब कलेक्टर भी स्तब्ध रह गईं, पर कुछ ही पल में उनके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसे मौकों पर जानवरों को मार गिराने का आदेश उन दिनों बहुत आम हुआ करता था। अचानक दिमाग में सूझा कि अगर शोर किया जाए तो हाथी भाग सकते हैं। आदेश दिया कि जिसे जो मिले जोर जोर से बजाओ। सब लोग मिलकर शोर करने लगे। ग्रामीणों ने टीन बर्तन लेकर शोर करना शुरू कर दिया, वो भी ग्रामीणों के साथ शामिल हो गईं। हाथियों के दल का मुखिया शोर सुनकर दूर चल पड़ा। लोग खुश हुए तो जोश और बढ़ गया। फिर क्या था, वे हाथियों को जंगल तक छोड़कर आए। हाथियों की जान भी बच गई और ग्रामीणों की समस्या का समाधान भी हो गया। तब तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस खबर के साथ खुशी की लहर दौड़ गई कि एक कलेक्टर आई हैं, अन्ना राजम जॉर्ज। सबने माना कि महिलाएं भी कलेक्टर के रूप में कारगर हो सकती हैं। महिलाओं की राह में रोड़े बिछाने वाले तमाम पुरुषवादी अफसरों को भी एहसास हो गया कि आईएएस के रूप में महिलाओं की पदस्थापना गलत नहीं होगी। अन्ना को चेन्नई से नई दिल्ली तक प्रशासनिक सेवा में खूब मौके मिले और उन्होंने कभी निराश नहीं किया। अब हर साल दसियों युवतों के चयन आईएएस के लिए होते हैं और अन्ना राजम जॉर्ज की याद अचानक ही आ जाती है। भूलना नहीं चाहिए कि अपने देश में एक समय वो भी था जब अन्ना राजम जॉर्ज की सेवा शर्तों में ये शामिल था कि अगर वो विवाह कर लेंगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसी नौबत नहीं आई अन्ना ने जल्द ही खुद को काबिल साबित कर दिया और अविवाहित रहने की शर्त हमेशा के लिए इतिहास हो गई।
1: दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: परम विरक्त संत राम सुखदास जी कहा करते थे कि जो व्यक्ति मान अपमान की भावना को छोड़कर भगवान की शरण में चला जाता है उसे कोई अभाव हो ही नहीं सकता। एक साधक ने स्वामी जी से प्रश्न कर लिया, मैं रोजी रोटी जुटाने के लिए इतना व्यस्त रहता हूं कि भक्ति उपासना कर ही नहीं पाता, मेरा कल्याण कैसे होगा? स्वामी जी ने कहा, आप चार संकल्प ले लीजिए। पहला, किसी का जीना दुखाइए। दूसरा, यथासंभव असहाय और रोगियों की सेवा कर दीजिए। तीसरा, सत्य बोलिए। और चौथा, सवेरे शैया त्यागने से पहले और रात में सोने के समय भगवान को याद कर लीजिए। कपट चालाक और छल से दूर रहिए। कपट चालाकी और छल से दूर रहिए, भगवान खुद ही मिल जाएंगे। कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, वास्तव में भगवान ने सबको अपना मान रखा है, लेकिन हम अपनी असीमित इच्छाओं के लालच में चलकर झूठ कपट वगैरह की शरण लेते हैं और ये कहने लगते हैं कि बिना झूठ कपट के सफलता ही नहीं मिलेगी। अब ये भ्रम ही हमारा पतन का कारण है। छल कपटी और दुराचारी को भगवान कदापि सहन नहीं करते, जबकि निर्मल हृदय वाले सदाचारी भक्त भगवान की कृपा के लिए हमेशा ही प्रस्तुत रहते हैं।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: अजमेर में स्वामी दयानंद जी का निर्वाण अर्ध शताब्दी समारोह चल रहा था। देश भर के आर्य सन्यासी और विद्वान समारोह में थे। महान शिक्षा सेवी महात्मा हंसराज जी भी लाहौर से समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। स्वामी सर्वदानंद जी ने कुटिया में कुछ आर्य समाजी संतों को बुलाया और उनसे कहा, स्वामी जी, हम सभी की इच्छा है कि महात्मा हंसराज जी जैसी दिव्य विभूति से संन्यास ग्रहण करने की प्रार्थना की जाए। इससे आर्य समाज को बहुत बल मिलेगा। स्वामी सर्वदानंद जी ने उनसे कहा, जिन महात्मा हंसराज जी ने अपना पूरा जीवन आर्य समाज के प्रचार और जगह जगह विद्यालयों की स्थापना करने के लिए समर्पित कर दिया है, क्या उन्हें आप गेरुआ वस्त्र न पहनने के कारण सन्यासी नहीं मानते? कुछ देर रुककर स्वामी जी ने कहा, केवल कपड़े रंग लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। जिसका मन परोपकार और सेवा के कार्यों में लगा हो वो तो खुद ही सन्यासी हो जाता है। कपड़े रंगने के बाद भी अपना जीवन सेवा और धर्म प्रचार में नहीं लगाता, उसे साधु कैसे कहा जा सकता है? सन्यासी की वास्तविक व्याख्या सुनकर सभी गदगद हो गए।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, आज एक और बात बताऊंगी, सवाल नहीं पूछूंगी, एक हिस्ट्री का खूबसूरत किस्सा। आपने अपनी लाइफ की सबसे अच्छी किताब कहाँ खरीदी थी, याद है आपको? बुक स्टोर से ली थी, ऑनलाइन ली थी, या किसी दोस्त ने यूं ही गिफ्ट की थी? जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि दुनिया की सबसे मशहूर पब्लिशिंग कंपनीज में से एक की शुरुआत किसी बड़े ऑफिस में नहीं, बल्कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर हुई थी, तो क्या सोचेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल, एक प्लेटफॉर्म, एक आदमी और एक उसकी छोटी सी फ्रस्ट्रेशन, और वही फ्रस्ट्रेशन बदल गई लाखों लोगों की पढ़ने की आदत में। चलिए शुरू करते हैं आज की बातें इधर की उधर की में, और सुनते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। साल था 1934, इंग्लैंड का एक शहर एक्सेटर, एक पब्लिशर थे एलन लेन। एक वीकेंड वो मशहूर मिस्ट्री राइटर अगाथा क्रिस्टी के घर से उन्हें मिलकर लौट रहे थे। अब ट्रेन आने में थोड़ा वक्त था, उन्होंने सोचा चलो कोई अच्छी सी किताब ले लेता हूँ, सफर कट जाएगा। जी हाँ, पहले ऐसे ही होता था, दोस गोल्डन डेज। एनीवे, लेकिन जब वो स्टेशन के बुक स्टॉल पर गए तो क्या मिला आप जानते हैं? सस्ती मैगजीन्स, हल्के फुल्के पल्प नॉवेल्स, लेकिन कोई ऐसी किताब नहीं जिसे पढ़कर लगे कि सफर यादगार हो गया। ना कोई सीरियस लिटरेचर, ना कोई अच्छे नॉवलिस्ट, ना कोई ऐसी किताब जो दिमाग को भी खुराक दे। और सोचिए, ये प्रॉब्लम किसी आम मुसाफिर को नहीं, एक पब्लिशर को हो रही थी। एलन लेन ने किताब वापस रखी और ट्रेन का इंतजार करते हुए बस एक बात सोचते रहे, अच्छी किताबें सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही क्यों होती हैं? उस जमाने में हार्ड बाउंड बुक्स बहुत महंगी हुआ करती थी, आज भी होती हैं। आम आदमी के लिए किताब खरीदना मान लीजिए एक लग्जरी ही थी। फैक्ट्री में काम करने वाला, ऑफिस क्लर्क, स्टूडेंट या ट्रेन से रोज सफर करने वाला आदमी, उनके लिए एक अच्छी किताब खरीदना आसान नहीं था। तब एलन लेन के दिमाग में एक आइडिया आया, एक सिंपल सा आइडिया, लेकिन हर बड़ी क्रांति की तरह ये भी सिंपल ही था। उन्होंने सोचा, अगर अच्छी किताब की कीमत सिर्फ 2 पैकेट सिगरेट जितनी हो तो? सोचिए, लिटरेचर हर किसी की जेब में आ सकता था, किताब सिर्फ लाइब्रेरी की शेल्फ पर नहीं, कोट की पॉकेट में आ सकती थी। अब जब एलन लेन ये आइडिया लेकर अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स के पास गए, तो जवाब बहुत एक्सपेक्टेड था, किसी भी नई आइडिया को यही मिलता है, इम्पॉसिबल, कोई नहीं खरीदेगा, नुकसान हो जाएगा, अच्छी लिटरेचर सस्ती बेची ही नहीं जा सकती, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन एलन लेन ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए और 30th जुलाई 1935 को सिर्फ 10 पेपरबैक बुक्स के साथ एक नई पब्लिशिंग कंपनी शुरू कर दी,
सोचिए, किताबों के कवर बहुत सिंपल रखें, ऑरेंज फिक्शन के लिए, ग्रीन क्राइम स्टोरीज के लिए, ब्लू बायोग्राफीज के लिए, सीधा साफ बिना किसी चमक धमक के। अब एक और प्रॉब्लम आई, कंपनी का नाम क्या रखें? मीटिंग में किसी ने कहा, किसी जानवर का नाम रखते हैं। सबने सोचा शेर, बाज, हाथी, लेकिन एलन लेन को कुछ अलग चाहिए था। एक कॉलीग को लंदन जू भेजा गया, इमेजिन, और वहां से जो जानवर चुना गया वो ना जंगल का राजा था ना सबसे ताकतवर, वो था पेंगुइन। जी हाँ, सीधा प्यारा याद रहने वाला एक पेंगुइन। और दोस्तों, इसी तरह जन्म हुआ पेंगुइन बुक्स का। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल था किताबें बिकेंगी कैसे। तब इंग्लैंड की एक बड़ी रिटेल चेन वूलवर्थ्स ने एक साथ 63,000 बुक्स का ऑर्डर दे दिया। बस

किताब नहीं बेची, उन्होंने पढ़ने को आम आदमी तक पहुंचाया, नॉलेज को इलीट क्लब से निकाल कर हर हाथ तक ला दिया। और दोस्तों, इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है आप जानते हैं? कभी कभी दुनिया बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन नहीं चाहिए, एक सवाल चाहिए, ये चीज ऐसी क्यों है, और बस उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। हम सब रोज कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन मोड में ही रहते हैं, ट्रैफिक है, सिस्टम खराब है, ऑफिस नहीं जाना, ऑफिस में ये इश्यूज हैं, मोबाइल नेटवर्क चला गया, लाइनें बहुत लंबी हैं, ये नहीं वो नहीं, उफ तौबा। लेकिन बहुत कम लोग उस कंप्लेंट को आइडिया में बदल देते हैं। एलन लेन ने बदला, और इसीलिए आज उनका नाम पब्लिशिंग की हिस्ट्री में हमेशा गोल्डन वर्ड से लिखा गया। चलिए, आज जाने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछती हूं। अगर आपको दुनिया की किसी एक प्रॉब्लम का सलूशन निकालना हो, प्रॉब्लम नहीं सलूशन, तो वो क्या प्रॉब्लम होगी? हो सकता है आपका जवाब कल किसी बड़ी कहानी की शुरुआत बन जाए। इसी उम्मीद के साथ, इसी ख्वाहिश के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, आपकी तनुषा, आपकी आरजे होस्ट, आपके तरानों की हमसफर। आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, जहां हर रोज एक छोटी सी बात जिंदगी की बड़ी सीख बन जाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और मुस्कुराते तो जरूर रहिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार किसी शहर में किसी से मिलने जा रहा था मैं। आधे रास्ते में मुझे टैक्सी में याद आया कि चश्मा तो होटल में ही छूट गया और जिसे मिलने जा रहा था उसके पति की डायरी भी वहीं छूट गई। अब सड़क का नाम तो याद आ गया लेकिन मकान का नंबर याद नहीं आ रहा था। बस मैंने ड्राइवर से कहा कि एक टेलीफोन बूथ के पास रोक दे, टैक्सी रुकवाई, शायद टेलीफोन डायरेक्टरी में मकान का नंबर मिल जाए, ऐसा सोचा। अब चश्मा ना होने की वजह से मुझे डायरेक्टरी आंखों से दूर काफी फासले पर पकड़नी पड़ रही थी। अचानक से किसी ने कांच के दरवाजे पर खटखट की तो देखा कि टैक्सी ड्राइवर साहब खड़े हैं, बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रहे थे। आंखें मिलते ही उन्होंने पूछा, सर कुछ मदद करूं? लगता है आपकी बाहें कुछ छोटी पड़ रही हैं।

0: क्या हम जिंदगी को आउटसोर्स कर रहे हैं?
1: जी हाँ, क्या हम जिंदगी को भी आउटसोर्स कर रहे हैं?
0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। आज की कहानी की शुरुआत भी एक छोटे से सवाल से करते हैं। आपने आज सुबह अपना फोन कितनी बार देखा? सच बताना, नो चीटिंग।
1: एक और सवाल, आज सुबह आसमान कितनी बार देखा?
0: चक्कर में पड़ गए ना। जवाब शायद थोड़ा मुश्किल हो, थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल हो।
1: तो बहुत इजी सवाल तो नहीं था। खैर दोस्तों, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज सिर्फ एक क्लिक दूर है। सब्जी चाहिए 10 मिनट में, खाना चाहिए डोरबेल बजेगी और आ जाएगा, चाहे भीगते हुए ही आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कपड़े, अरे घर पर आएंगे। दवाइयां, बिल्कुल डोरस्टेप पे। केक, बर्थडे केक, बिल्कुल आपके बर्थडे पर्सन के सामने हाजिर है। और लगता है अब तो धीरे धीरे हम खुद भी सिर्फ घर पर ही होके रह गए हैं। दोस्तों, सुविधा बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या हम सिर्फ काम आउटसोर्स कर रहे हैं या हमारी पूरी जिंदगी? एक दिन सुबह मैंने एक छोटा सा बच्चा देखा। स्कूल की गाड़ी में पीछे की सीट पर वो सो रहा था, बड़े आराम से। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, साथ में मेड बैठी थी। हो सकता है मम्मी पापा ऑफिस के लिए निकल गए हों, कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है दोनों बहुत व्यस्त हों, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मुझे एक बात सोचने पर मजबूर कर गई, आखिरी बार हमने किसी बच्चे का हाथ पकड़कर स्कूल कब छोड़ा था? स्कूल छोड़ना सिर्फ एक काम नहीं होता था पेरेंट्स के लिए, वो एक रास्ते का समय होता था। रास्ते में उस बच्चे से पूछना, होमवर्क कंप्लीट है ना, या आज टेस्ट है ना, डरना मत, अच्छे से करके आना, या फिर एक छोटा सा जोक सुना देना और उसकी हंसी देख लेना। ये सब यादें होती थी, मोमेंट्स होते थे, और इन्हीं मोमेंट्स में सीख छुपी होती थी जीवन की। यादें कभी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते। वैसे ही एक और बात, आजकल कॉलोनी में सुबह सुबह एक अंकल दिखते हैं, 7-8 कुत्ते एक साथ घुमा रहे होते हैं। पहले मुझे लगा वाह बड़े डॉग लवर हैं, फिर पता चला ये सब अलग अलग घरों के डॉग्स हैं, उन्हें घुमाने का काम दिया गया है। और फिर एक और सवाल मेरे दिमाग में आने लगा, कुत्ता घुमाना सिर्फ उनकी एक्सरसाइज है या हमारी भी? कभी किसी पेट ओनर से जाके पूछे, डॉग वॉक पर सिर्फ डॉग खुश नहीं होता, इंसान भी हल्का हो जाता है, थोड़ी हवा खा लेता है, थोड़ी धूप खा लेता है, दो लोगों से नमस्ते कर लेता है, और दिन की शुरुआत कितनी अच्छी हो जाती है, कितनी फ्रेश। अब एक छोटा सा मजाक, आजकल हम इतने बिजी हैं कि फिटनेस बोलता है सर थोड़ा चल भी लीजिए, मैं भी बोर हो गया हूं। और फोन का स्टेप काउंटर रोज शिकायत करता होगा, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं भाई, मेरी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज ले मी ऑफ। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, जी हाँ खुद, चाहे वो किसी भी तबके के हों, किसी भी स्तर के हों। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, अपने घर की सफाई खुद करते हैं, डॉग्स को खुद घुमाते हैं। इसीलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं होते, शायद हमसे कुछ ज्यादा ही होते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनके लिए ये काम नहीं है, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा है। वो आत्मनिर्भर हैं, सच में आत्मनिर्भर हैं। हमारे यहाँ कभी कभी सफलता का मतलब ये बन जाता है कि मुझे कुछ भी खुद नहीं करना पड़े, मतलब मैं बड़ा आदमी बन गया। लेकिन सोचिए, अगर इंसान कभी बाजार ही ना जाए, कभी सब्जी अपने हाथ से ही ना खरीदे, कभी अपने हाथ से एक कप चाय ना बनाए, कभी लाइन में खड़ा ही ना हो, तो वो जिंदगी के कितने रंग देख पाएगा। सब्जी खरीदने में भी तो मजा है, दो बातें हो जाती हैं, टमाटर वाले से मोल भाव हो जाता है, धनिया फ्री मिलेगा या नहीं इस पे बातचीत हो जाती है, और घर आकर ये प्राउडली बोलना, देखो आज सस्ता ले आया। वैसे सच बताइए, धनिया फ्री मिलने की खुशी होती है या नहीं? शायद सैलरी क्रेडिट होने से थोड़ी कम होती होगी, बट होती जरूर है। एक और बात, मम्मी के हाथ की चाय का टेस्ट किसी ऐप पर अवेलेबल नहीं है, नहीं हो सकता, कभी नहीं। पापा के साथ बाजार जाना किसी वेबसाइट पर ऑर्डर नहीं हो सकता। बच्चों के साथ स्कूल तक चलना किसी डिलीवरी पार्टनर से नहीं करवाया जा सकता। कुछ चीजें सिर्फ खुद करने की होती हैं, खुद महसूस करने की होती हैं, और वही उनकी एक्चुअल खूबसूरती होती है। टेक्नोलॉजी हमें सुविधा दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सुविधा हमें अपनों से दूर कर दे, हमें हैंडीकैप बना दे, हमें इतना निर्भर बना दे कि हमारे पास खुद कुछ करने का मौका ही ना बचे, तो फिर थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। जिंदगी सिर्फ बड़े बड़े पलों से नहीं बनती, छोटी छोटी आदतों से बनती है, एक्सपीरियंसेस से बनती है। सबके साथ चाय पीना, रात को खाना बनाना, सुबह कॉलोनी में थोड़ा चल लेना, बच्चे की बात ध्यान से सुनना, डॉग्स के साथ पार्क में बैठ जाना, ये सब काम नहीं, यही तो असली जिंदगी के पल हैं। तो आज का सवाल आपसे सिर्फ इतना है, आपने आखिरी बार कौन सा ऐसा छोटा काम किया था जो सिर्फ खुद किया, और खुद सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसमें खुशी थी, ना कि कोई मजबूरी। इस बारे में सोचेगा जरूर, क्योंकि सुविधा जरूरी है, लेकिन सुविधा के बदले अगर हम एक याद खो देना तो सौदा थोड़ा महंगा पड़ सकता है। सोच के देखिए। मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ, तब तक थोड़ा कम ऑर्डर करिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पत्नी ने पूछा, क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? पति ने बोला, अरे पगली, अगर कुछ याद करना इतना आसान होता मेरे लिए तो 10वीं में टॉप ना कर जाता मैं।

नमस्कार दोस्तों, आज की बात शुरू करते हैं एक और छोटे से सवाल से। आप बताइए, अगर आपको पहले से पता हो कि आज किसी अपने से आपकी आखिरी मुलाकात है, तो क्या आप उस मुलाकात में मोबाइल देखते रहेंगे या फिर उस पल को दिल से जिएंगे? सोचिए। हम अक्सर कहते हैं ना, कल मिल लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में बात कर लेंगे यार, नेक्स्ट वीकेंड चलते हैं यार। लेकिन जिंदगी की डिक्शनरी में एक वर्ड है जो गारंटी से कभी नहीं मिलता, और आप जानते हैं वो क्या है? वो है कल। तभी कहते हैं ना, कल हो ना हो। जी हाँ, ये सच है, कल हो ना हो। जापान की कई खूबसूरत फिलोसफीज में से एक और खूबसूरत फिलोसफी है इचिगो इची। इसका मतलब है वन टाइम वन मीटिंग वंस इन अ लाइफ टाइम, यानी हर मुलाकात हर लम्हा सिर्फ एक ही बार होता है, वो बिल्कुल उसी तरह दोबारा नहीं आता, कभी नहीं। अब आप कहेंगे, अरे हम तो रोज ऑफिस जाते हैं, रोज वही लोग मिलते हैं, रोज वही रास्ते से जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोग शायद वही होते हैं, लेकिन वो दिन, वो घड़ी, वो लम्हा, वो कभी वही नहीं होता। दोस्तों, आज जो चाय आप दोस्त के साथ पी रहे हैं, कल शायद वो दोस्त किसी और शहर में हो। आज जो बच्चा स्कूल जाते वक्त आपसे हग करता है, कुछ साल बाद वही बच्चा बोलेगा, पापा मैं खुद चला जाऊंगा, आप रहने दो। और फिर आप सोचेंगे कि काश काश थोड़ी देर और उसके साथ चल लेता। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास वक्त कम है, वक्त है। प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं वक्त बहुत है, जो बिल्कुल गलत है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आज घर जाकर जब मम्मी या पापा कुछ बोल रहे हो, तो बस 2 मिनट के लिए मोबाइल साइड में रख दीजिएगा, सिर्फ उनकी आंखों में देखकर बात कीजिएगा, उनकी बात सुनिएगा। हो सकता है उन 2 मिनट में जो सुकून मिले, वो पूरी जिंदगी भर स्क्रोलिंग करके भी ना मिले। दोस्तों, वैसे भी फोन की बैटरी लो हो जाए तो हम तुरंत चार्जर लगा देते हैं, ढूंढते हैं, भागते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर रिश्तों की बैटरी अगर डाउन हो जाए तो हम कहते हैं, देखेंगे यार, कल मनाते हैं, मान जाएगा, टाइम देते हैं, वक्त देते हैं। एक और सवाल, कब आखिरी बार बारिश को सिर्फ देखा था आपने? फोटो खींचने के लिए नहीं, स्टेटस लगाने के लिए नहीं, कोई सॉन्ग ढूंढ के उसके ऊपर गाने के लिए नहीं, बस उस बारिश को महसूस करने के लिए। कब आखिरी बार चाय पीते हुए उसकी खुशबू पर ध्यान दिया था? उफ, वो खुशबू। कब आखिरी बार किसी दोस्त की बात बीच में काटे बिना बस सुनी थी, बस सुनी? हम प्रेजेंट में कम, नोटिफिकेशंस में ज्यादा जी रहे हैं, हम पास हो रहे हैं, जी नहीं रहे, बस गुजर रहे हैं। आजकल डिनर टेबल पर 4 लोग होते हैं और 5वां मेहमान होता है मोबाइल फोन। सब साथ बैठे होते हैं, लेकिन सब अपनी ही दुनिया में लगे होते हैं। इचिगो इची कहता है, जिस इंसान के साथ हो उसी के साथ रहो ना, थोड़ी देर तो बिताओ उसके साथ। सिर्फ बॉडी से नहीं, माइंड भी वही होना चाहिए। एक और मजेदार बात बताती हूं, हम जानते सब हैं, लेकिन मैं बस याद दिला रही हूं। वेकेशन पे जब हम जाते हैं तो 100 फोटोज तो कम से कम ले लेते हैं, फिर घर आकर याद ही नहीं रहता कि उस जगह की हवा कैसी थी, वहां की खुशबू कैसी थी, टेक्सचर कैसा था, लोग कैसे मुस्कुराते थे।
बस याद ये रहता है कि फोटो में कौन सा फिल्टर लगाया था और कौन से फिल्टर में सबसे अच्छी फोटो आई थी, तो उसको सेव कर दे नेक्स्ट टाइम के लिए। ऐसा करते हैं या नहीं, खुद से जरूर पूछेगा। कभी कभी लगता है कि हम यादें कम बना रहे हैं और प्रूफ ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम गए थे, हमारा स्टैम्प है, ये देखो यहाँ की फोटो, वहां की फोटो, इधर की फोटो, उधर की फोटो। दोस्तों, जिंदगी अटेंडेंस शीट नहीं है, एक एक्सपीरियंस है भाई, एक अनुभव है। और एक्सपीरियंस प्रेजेंट में मिलता है। एक छोटी सी आदत बना लीजिए मेरे कहने से, जब भी किसी अपने से मिले आज के बाद, तो दिल में बस एक बार सोचिएगा, ये पल, यस यही वाला, ये दोबारा बिल्कुल नहीं आएगा और ऐसा तो बिल्कुल नहीं आएगा। बस आपका पूरा बिहेवियर ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। आप धीरे बोलेंगे, ज्यादा सुनेंगे, कम जज करेंगे और थोड़ा ज्यादा अप्रिसिएट करेंगे। इसी फिलॉसफी की शुरुआत जापान की ट्रेडिशनल टी सेरेमनी से हुई थी, जहां हर मेहमान और हर चाय की बैठक को एक अनोखा, दोबारा कभी ना दोहराए जाने वाला एक अनुभव माना जाता था। जाते जाते आज का होमवर्क भी देके जा रही हूं, करिएगा जरूर, कल चेक करूंगी। मजाक कर रही हूं, बस खुद के लिए कीजिए, होमवर्क के जैसे नहीं। आज किसी इंसान के साथ 10 मिनट बैठेगा, बिना फोन के, बिना टीवी के, बिना सोशल मीडिया के, बिना किसी स्क्रीन के, सिर्फ एक ही स्क्रीन हो बीच में, आप और आपका वो इंसान और उसकी आंखें शायद, सिर्फ बात कीजिए, मुस्कुराइए और उस इंसान को देखिए। हो सकता है सालों बाद आपको उस कॉन्वर्जेशन के एग्जैक्ट वर्ड्स याद ना रहे, लेकिन उस पल की जो फीलिंग है वो जरूर याद रहेगी। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बड़े बड़े मोमेंट्स में नहीं, उन छोटे छोटे लम्हों में छुपे होते हैं, जिन्हें हम अक्सर बाद में बाद में बाद में कहते कहते खो जाते हैं। तो अगली बार जब किसी अपने के साथ चाय पीने बैठे, या दोस्त के साथ हंस रहे हो, या माँ आपको बस यूं ही आवाज दे दे, एक बार दिल से जरूर कहना, इची गो इची, ये पल सिर्फ एक बार आएगा, सिर्फ एक बार मिला है, और शायद इसीलिए ये इतना खूबसूरत है। मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ वक्त बिताइए और मुझसे फिर मिलिए कल की बातें इधर की उधर की में। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पत्नी ने बोला, अच्छा तुम मुझे ऐसी दो बातें बताओ जिनमें से एक को सुनकर तो मैं बहुत खुश हो जाऊं और दूसरे को सुनकर नाराज हो जाऊं। पति बोला, देखो पहली बात तुम मेरी जिंदगी हो और दूसरी बात लानत है ऐसी जिंदगी पर।

दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है संगीत की दुनिया का सतरंगी रंग। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है एक ऐसे शख्स जिनकी जिंदगी संगीत, साधना और संकल्प तीनों का बेहतरीन संगम है। हम बात कर रहे हैं श्री कंदर्प कुमार ठाकुर, जिन्हें हम प्यार से के ठाकुर के नाम से भी जानते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 38 वर्षों की सफल सेवा के बाद रिटायरमेंट, और उसके बाद में उन्होंने अपने दिल की पुकार सुनी और उस पुकार का नाम था संगीत। बचपन से ही मुकेश जी की गायकी के दीवाने, ठाकुर साहब ने संगीत को सिर्फ सुना नहीं, उसे जिया है। रिटायरमेंट के बाद आपने स्वर साधना फाउंडेशन की स्थापना की, 12 शानदार स्टेज शो किए। कोविड के दौरान फेसबुक लाइव प्रोग्राम से लोग तक संगीत की रोशनी पहुंचाई, और सबसे खास बात, पिछले 40 वर्षों से अपनी पत्नी, संगीत प्रेमी एवं गुरु श्रीमती रजनी ठाकुर के साथ एक सुंदर, मन से मन को छूने वाली संगीत यात्रा तय की। तो आइए स्वागत करते हैं के ठाकुर जी का और उनकी जीवन संगनी रजनी जी का, और जानते हैं उनका ये अद्भुत सफर, संगीत से जुड़ी उनकी भावनाएं और उनका वह जुनून जिसने कई गायकों को तराश कर एक नया रास्ता दिया। ठाकुर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आलोक जी, आज इस कार्यक्रम में मैं सभी संगीत प्रेमी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं।
0: तो ठाकुर साहब, शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। ये बताइए, आपका बचपन कैसा रहा, किन परिस्थितियों और माहौल में आपकी संगीत यात्रा के ये शुरुआती बीज पड़े, उसके बारे में कुछ साझा कीजिए।
1: जी, मेरा बचपन बूंदी में शुरुआत में बीता। बचपन साधारण था, संस्कारों से भरा हुआ था। उसी समय रेडियो एक अहम हिस्सा था, वहीं से मेरी संगीत यात्रा की नींव पड़ी। मुकेश जी के गीत सुनकर सब काम छोड़कर मैं उसे सुनता था, और शायद वहीं से संगीत को मेरे भीतर घर बना लिया है। एक और

0: अच्छे सब तबला वादक थे और दादाजी अच्छे हारमोनियम प्लेयर थे। और घर में अक्सर कभी कभी संगीत की बैठकें होती थी जहां भजन और शास्त्रीय संगीत गाया जाता था। तो वही स्वर सुनकर मुझे संगीत का शौक लगा और मुझे अच्छा लगने लगा।
1: अरे वाह, इसका मतलब परिवार में ही आपके संगीत का शौक था सभी लोगों को, और आपने बताया आपके पिताजी दादाजी सब, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपको तो
0: जी
1: एक
0: जी
1: परिवेश ही ऐसा मिला कि जहां आप संगीत ही संगीत था, बहुत बढ़िया। तो ये
0: जी
1: बताइए, बचपन में ही आपको गाने का शौक कैसे लगा? क्या घर में या परिवार में भी संगीत का, आपने अभी बताया माहौल था, तो क्या जो आपकी सिस्टर्स थी या जो मदर थी, फादर, ये सब सब लोग गाने का शौक रखते हैं क्या?
0: नहीं, मेरे मेरी सिर्फ बड़ी सिस्टर जो शास्त्रीय संगीत सीखती थी वो उसमें गाती थी, और परिवार में कोई गाने वाला नहीं था। मेरा शौक शुरू में जब रेडियो में हम सुनते थे, रेडियो भी ही एक माध्यम था संगीत सुनने का, और
1: जी
0: रेडियो में जब गीत गाए जाते थे, बिना का गीत माला उस समय बड़ी फेमस थी, और
1: जी
0: उस समय मुकेश जी के गाने जब आते थे तो मैं बड़े ध्यान से सुनता था, और उसी से मुझे लगा कि मुझे भी गाने में आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा शौक लग गया संगीत सीखने का, और मैंने सीखा भी अब बाद में।
1: चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में 38 वर्षों तक सेवा दी, तो क्या बैंक
0: जी
1: की सांस्कृतिक या संगीत गतिविधियों से भी आप जुड़े रहे हैं? क्योंकि तो बैंकों के अंदर भी ये कल्चर प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते हैं।
0: जी जी मैंने 1982 में बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्वाइन किया था मुंबई में, और बैंक के हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में, बैंक में इंटर जोनल इंटर रीजनल कॉम्पिटिशन होते थे म्यूजिक के, उसमें हमेशा से मैंने भाग लिया। सभी लोग जानते थे मेरा गायन के बारे में, तो मुझे अक्सर गाने का मौका मिलता था, और इसी तरह से मेरा संगीत से रिश्ता जुड़ा रहा। जहां बैंकिंग ने मुझे अनुशासन सिखाया और संगीत ने मुझे जीवित रहना, दोनों का संतुलन ही मेरी ताकत बना।
1: वाह, क्या बात कह दी है। संगीत ने आपको जीवन दिया, बैंकिंग ने अनुशासन दिखाया, क्या मजा आ गया आपकी ये बात सुनकर। तो ये
0: जी
1: बताइए,
0: जी
1: बैंकिंग की व्यस्तता के बावजूद आपने संगीत का संबंध बनाए कैसा रहा? क्योंकि बैंक के अंदर तो मुझे पता है कि किस तरह की जिंदगी होती है, कितने ज्यादा लोग बाग बिजी रहते हैं, और डेडलाइंस भी होती है, टारगेट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी
0: जी
1: आप
0: जी
1: कैसे प्रैक्टिस करते थे, क्या करते थे?
0: बैंक में 6 दिन तो वर्किंग होता था, लेकिन एक संडे मिलता था, या कभी कभी कुछ बीच में हॉलीडेज आते थे। तो चूंकि मुझे शुरू से गाने का शौक था, तो मैं नियमित रूप से हर संडे को 1.5 से 2 घंटे रियाज करता था, और ये मेरा रियाज अभी तक भी जारी है। तो उस तरह से मैंने अपने गले को, अपने संगीत को मेंटेन किया और जारी रखा।
1: अद्भुत है, बहुत बहुत आप बधाई और उसके पात्र हैं, क्योंकि बैंक की लाइफ के बावजूद आप संडे को समय निकाल लेते थे, लेकिन लोग तो बैठ के उस टाइम भी बैंक ही काम करते हैं संडे के दिन। बहुत अद्भुत है, बहुत
0: जी
1: अद्भुत। चलिए कोई बात, तो इसी
0: जी
1: आपकी संगीत प्रेम और संगीत साधना के नाम पे हम रुक जाते हैं और एक गाने का आनंद लेते हैं।
0: जी जी

0: तो ठाकुर साहब अब आते हैं, आगे चलते हैं हम आपके संगीत की तरफ। आपको
1: जी
0: कब लगा कि संगीत ही आपकी असली कॉलिंग है, या कौन सा मोड़ था जब आपने तय कर लिया कि रिटायरमेंट के बाद संगीत को ही पूरा समय देंगे?
1: जैसा कि मैंने बताया कि शुरू से मुझे गाने का शौक था और सुनने का शौक था। बैंक बैंक से जब मैं रिटायर हुआ, क्योंकि बैंक के में जॉब करते समय तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था, बैंक से रिटायरमेंट के बाद में मुझे लगा कि अब मुझे वही करना चाहिए जो मेरी पसंद है और मेरी आत्मा चाहती है, और संगीत ही मेरी आत्मा थी। तब महसूस हुआ कि संगीत सिर्फ शौक नहीं, ये मेरी कॉलिंग है, और रिटायरमेंट के बाद से ही मैं फुल टाइम इस संगीत के क्षेत्र में लग गया, और ये हमारा प्रयास और ये हमारी यात्रा अभी तक जारी है।
0: बहुत सुंदर। तो आपके आदर्श मुकेश जी रहे हैं, उनकी
1: जी
0: गायकी के कौन से पहलू आपको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं या आकर्षित करते हैं, जिससे आप मुतासिर हैं?
1: मुकेश जी की आवाज में एक दर्द झलकता था, बनावट नहीं थी उनकी आवाज में, वे गाते ही नहीं थे बल्कि महसूस कराते थे, और यही बात मेरे दिल को छू गई।
0: बहुत सुंदर। तो फिर अब इस दर्द और भावनाओं से पूरे मुकेश जी की गायकी के बारे में आपने इतनी बात कर ली है,

0: तो हमसे अब रहा नहीं जा रहा, हम तो आपसे अब ये फरमाइश करने वाले हैं कि
1: जी
0: आप
1: जी
0: कोई मुकेश जी का पसंदीदा गाना गाना चाहे तो हम बहुत स्वागत करते हैं उसका, भले ही मुखड़ा गा दें, कुछ लाइनें गा
1: बिल्कुल
0: दें, जैसे
1: बिल्कुल
0: आप जैसे जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वो कर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक उनका बहुत मधुर गीत सुनाता हूँ।
0: जी जी
1: ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है उसी

0: वही हो जाए मेरा, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। अरे
1: बहुत सुंदर ठाकुर साहब, मजा आ गया। मुकेश जी की दर्द भरी आवाज को आपने जीवंत कर दिया, बहुत
0: जी
1: बढ़िया। और ये तो आप बिल्कुल मतलब एक ऐसे तरीके से गा रहे हैं जिसमें ना आपके साथ संगीत है ना कुछ है, लेकिन फिर भी आपने बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए चलिए, बहुत बहुत हमारी तरफ से इसके लिए बधाई। और
0: जी
1: अब हम
0: थैंक
1: आगे चलते हैं ठाकुर
0: जी
1: साहब, अब आते हैं आपके जो पैशन है स्वर साधना फाउंडेशन की तरफ।
0: जी जी
1: स्वर साधना फाउंडेशन की स्थापना का विचार कैसे आया, शुरुआत में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कुछ इसके बारे में बताइए।
0: जी रिटायरमेंट 2016 में मेरा रिटायरमेंट हुआ था, और
1: जी
0: उससे एक दो साल पहले से ही मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था किसी दूसरे ग्रुप में, और उस समय हम काफी प्रोग्राम स्टेज के देखने जाते थे इस दृष्टि से कि हम इसमें कुछ अच्छा ले सकते हैं, कुछ सीखें। उस
1: ओके
0: समय मुझे मुझे कुछ प्रोग्राम्स में जाने के बाद लगा कि वहाँ पे कुछ कमियां हैं, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं कुछ अच्छे गायकों और गायिकाओं को लेकर एक ऐसा ग्रुप बनाऊं जो निरंतर रियाज करके अपनी प्रतिभा को निखार सकें और संगीत, अच्छा संगीत लोगों को दे सकें। तो यही ध्यान में रखते हुए मैंने एक अच्छे सिंगर्स को साथ में लेके एक स्वर साधना फाउंडेशन ग्रुप बनाया। हम हमारे घर पे हर रविवार को रियाज करते हैं सभी मिलके जो भी आते हैं उसमें, और करीब 3 से 4 घंटे हम गाने का रियाज करते हैं हर संडे को। तो इस तरह से हमारे ग्रुप के सभी लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, और अब उनमें कॉन्फिडेंस आ गया कि वो अच्छा गा सकते हैं। शुरू में कोई चुनौतियां कुछ नहीं थी, बस चुनौती यही थी कि हम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं और हम अपना अच्छा कैसे दे सकते हैं ताकि हम दर्शकों का मनोरंजन अच्छे से कर सके और वो हमारे गाने को पसंद करें।
1: हाँ, नहीं, चुनौतियां तो आती होंगी क्योंकि हर अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, कलाकार होते हैं, दूसरे ग्रुपों से भी जुड़े रहते हैं, उनको सबको साथ लाना और इतने बड़े ग्रुप को बांधे रखना, ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती होती है।
0: जी, चुनौती होती है। प्रोग्राम जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके पहले कुछ चुनौतियां होती है कि उसमें आपको थीम सेलेक्ट करना, आपको सॉन्ग सेलेक्ट करना, फिर किस सॉन्ग को किसके ऊपर ज्यादा अच्छा सूट करेगा, फिर उनको उसी तरह से कॉम्बिनेशन बिठाना मेल फीमेल का, तो ये सब प्रक्रिया चलती है। और जब हम एक्चुअल स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो उस दिन भी काफी अटेंशन देना पड़ता है कि दर्शकों को सुविधा हो, दर्शकों को अच्छा लगे। तो इस तरह से ये हर प्रोग्राम एक चुनौती है।
1: सही बात है। तो अब आप ये बताइए कि जैसे आपके ग्रुप में ज्यादातर कराओके का ही इस्तेमाल करते हैं या आपके यहाँ लाइव ऑर्केस्ट्रा भी की भी व्यवस्था होती है, कैसे करते हैं ये दोनों आप?
0: ये अभी तक हमने जो प्रोग्राम किया उसमें हमने कराओके का भी इस्तेमाल किया है और लाइव बैंड का भी इस्तेमाल किया है।
1: जी
0: तो शुरुआत में जो गाना शुरुआत करते हैं वो कराओके से हम शुरुआत करते हैं, और धीरे धीरे स्विच ओवर करते हैं हम लाइव पे, क्योंकि बड़े प्रोग्राम में तो जब लाइव बैंड के साथ में परफॉर्मेंस होती है तो उसका कोई जवाब नहीं, वो सब माहौल ही अलग बन जाता है।
1: तो लाइव ऑर्केस्ट्रा ढूंढने का, मैं वैसे ही ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूँ, लाइव ऑर्केस्ट्रा का अरेंजमेंट कैसे करते हैं? आपके कोई परमानेंट म्यूजिशियंस हैं या कोई आप हायर करते हैं या क्या करते हैं, कैसे कैसे होता है ये सब?
0: जी, जयपुर में कुछ अच्छे म्यूजिशियंस हैं जो जिनसे मैं संपर्क में हूँ, तो उनसे हम कांटेक्ट करते हैं, और 3-4 अलग अलग लाइव ऑर्केस्ट्रा वाले जो हैं उनसे हम उनसे हमारा संपर्क है, और वो ही अपने फिर संगीत में जो संगत करने वाले हैं उन सभी को एक साथ इकट्ठा करते हैं, और उनको हम अब वो अब हमारा परमानेंट हो गया 2-3 जिनको हम लाइव ऑर्केस्ट्रा के बुलाते हैं। उनसे हमारा सामंजस्य बैठ गया है तो वो इस तरह से हमारा काम अच्छा हो जाता है।
1: नहीं, ये बहुत बड़ी बात है सर। जयपुर में आजकल हर दूसरे दिन एक ना एक प्रोग्राम होता रहता है, और
0: जी
1: उसके अंदर अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है। फिर तो आप ये
0: जी
1: बताइए,
0: जी
1: इस ग्रुप में कौन कौन से गायक उभरे हैं जिन्हें आपने संगीत में तराशा और आगे बढ़ने में मदद की? ऐसे गायक बहुत सारे मिले होंगे आपको इस यात्रा के दौरान, जिन्हें आपने ग्रूम किया, आपके ग्रुप ने ग्रूम किया, उसके बारे में कोई बताइए।
0: जी हमारे स्वर संगत ग्रुप में जुड़ने के बाद कुछ गायक गायिकाएं ऐसे हैं जो ये महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ पर बैठ के हर रविवार को रियाज करने के बाद में उन्हें उनमें एक निखार आया गायन में, और उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आया पहले के मुकाबले, जब वो जब नहीं जुड़े थे, और अब जुड़ने के बाद उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, उनमें सुर ताल में परफेक्शन आया है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। जिसमें कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा, हमारे डॉक्टर संकल्प हैं, सुगंधा जी हैं, पूनम जैन हैं, संजय चंदनानी जी हैं, वंदना जी हैं, वंदना जैमिनी जी, ऐसे ये लोग अब महसूस करते हैं कि उनके गायकी में बहुत निखार आया हमारे साथ बैठ के रियाज करने में।
1: चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो इसी संगीत में जो निखार आया है और जो संगीत की आत्मा है, उसके लिए हम रुक के यहाँ एक गाने का आनंद लेते हैं।
0: जी

0: हाँ तो ठाकुर साहब, आप बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम कैसे आयोजित करते हैं? स्थान, टीम, प्लानिंग, रिहर्सल, ये सारा प्रोसेस कैसा होता है, कैसे रहता है, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी हमारी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं करीब 21,
0: जी
1: और उसमें से हम जब हम कोई प्रोग्राम तय करने की सोचते हैं कि हम प्रोग्राम करेंगे, तो हम हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स की एक मीटिंग करते हैं और उसमें सबकी राय लेके हम किस हॉल में कर सकते हैं, का क्या थीम रहेगी, किस तरह के गाने हम सेलेक्ट करेंगे और हम कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, इस बारे में करीब 3-4 बार डिस्कस करके फिर हम कंसेंसस लेके और उसको मूर्त रूप देते हैं।
0: अब जैसे मेरा अगला सवाल ये है, अब थोड़ा सा वैसा सवाल है कि इस समूह में शामिल होने के लिए कोई कोई फीस या कोई मेंबरशिप चार्जेस वगैरह भी आप है क्या आपके, अगर कोई शामिल होना चाहे तो?
1: जी हमने शुरू से रखा कि हम ग्रुप में शामिल होने के लिए फीस तो नहीं लेंगे, कोई फीस तो नहीं लेंगे, लेकिन जब जब भी प्रोग्राम होगा तो हमारे ग्रुप के जितने गायक हैं, जितने मेंबर्स हैं, वो सभी इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बराबरी से। और
0: बराबर।
1: दूसरा, अगर कोई गायक या गायिका हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमने उसका एक तरीका बना रखा है कि हमारे घर पे जब संडे को रियाज होता है, प्रैक्टिस होती है, तो उसमें उस उन गायक या गायिकाओं को हम बुला लेते हैं कि आप आइए और उनका गायन फिर हम जितने भी मेंबर्स उस समय उपस्थित होते हैं वो सब सुनते हैं। वो सुनने के बाद में फिर वो राय बनाते हैं कि अभी इनको ग्रुप में शामिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हमारा बेसिक मूल मंत्र ये है ग्रुप में शामिल करने के लिए कि सुर और ताल अच्छा हो, हमारे ग्रुप से लगातार जुड़े रहें, परमानेंट जुड़े रहें और ग्रुप की गतिविधियों में भाग लेते रहें और ग्रुप की अच्छाई के लिए अपने सुझाव देते रहें।
0: खैर, रिसोर्सेज के बारे में तो आपने बता ही दिया किस तरह से मोबिलाइज करते हैं आप, मेंबर से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बताइए कि लेकिन सुर ताल अच्छा हो ये तो ठीक है,
1: जी
0: लेकिन कोई एक बेस होगा, जैसे मान लो अगर आपके ग्रुप में कोई शामिल हो तो धीरे धीरे उसका सुर ताल बेहतर भी होता रहेगा। अगर थोड़ा बहुत शुरू में कमजोर है तो आपके
1: हाँ
0: साथ वो शामिल होगा तो ये जो फाइन थिन लाइन है
1: हाँ
0: बिल्कुल बेस्ट बेटर या गुड के बीच में, इसको कैसे डिसाइड करते हैं? कोई एक्सपर्ट को बुलाते हैं कि भाई इसको हम लें कि नहीं लें, क्या करते हैं?
1: हाँ नहीं, हम ऐसा करते हैं। अब जैसे आपने कहा ना, जो गुड क्वालिटी होता है एवरेज, हम वहां से शुरुआत करते हैं जो जिनके सुर ताल बेसिक ठीक है, बेसिक
0: बेसिक ठीक है। हाँ
1: बेसिक ठीक है, जिनको थोड़ी सी समझ है, फिर
0: हाँ समझ
1: उसको उनको उनको हम जब हम साथ में बैठ के गाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, तो कमियां बताते हैं और उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है। और हमारे घर में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल हमारा पारिवारिक माहौल है, तो हमारे एक तरह
0: जी
1: से ग्रुप में ही है, हमारा एक परिवार परिवार ही है। लोग जिस अच्छा जरूरी नहीं कि हम ही बताएं, हमको भी कोई बता सकता है, कोई कमी हो तो हम भी किसी को बता सकते हैं। ग्रुप में एक दूसरे को सब लोग बताते हैं कि इस चीज में ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है या इसमें ये कमी है, उसको सुधारा जा सकता है।
0: और सबसे मेरे ख्याल में जहां तक मैं सोचता हूँ कि सिंसियरिटी ग्रुप के प्रति जो लॉयल्टी है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता होगा कि
1: बिल्कुल,
0: आप कितने
1: वो
0: सिंसियर हैं। सर
1: बिल्कुल बेसिक यही मैंने कहा कि व्यक्ति ऐसा ऐसे को जोड़ना होता है कि जो हमारे ग्रुप में लंबे समय तक रह सके, पारिवारिक माहौल में एडजस्ट हो सके, और लॉयल्टी सिंसियरिटी ग्रुप की ग्रुप के लिए हमेशा वो अच्छी भावना रहे और उनके बारे में
0: सही
1: सोचता
0: बात।
1: रहे।
0: हाँ, कोई अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार समझे तो फिर ऐसे आदमी की बजाय तो एक एवरेज आदमी है जो बाद में धीरे धीरे ग्रूम ग्रूम होके आगे बढ़ता रहे, वो ज्यादा
1: बिल्कुल,
0: बेटर
1: एवरेज को लेके हम उसको बेटर बना सकते हैं।
0: बेहतर बना सकते। सही बात। तो चलिए, ये जो आपने टेक्निकल तरीके से हमें समझाया, इसी के लिए हम रुक जाते हैं और एक गाना सुन लेते हैं।

0: ठाकुर साहब, आपने 2006 में अपने बेटियों के साथ बंबई में गुजराती भजन रिकॉर्ड किया, ये अनुभव
1: जी
0: कैसा रहा और कैसे आपने डिसाइड किया कि गुजराती भजन अब रिकॉर्ड?
1: 2006 में जब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मुंबई में पोस्टिंग था मेरा,
0: जी
1: उस समय हमारे साथ में हमारे इंटर जोनल टूर्नामेंट में एक दत्ता टीटे करके मराठी थे, वो कंपोज भी करते थे म्यूजिक।
0: ओके ओके
1: तो उन्होंने उस समय कुछ रिकॉर्डिंग्स करना शुरू किया था। तो एक दिन उनका फोन आया मेरे पास में कि आप लोग तो गुजराती हैं, तो मुझे आप लोगों से ना एक गुजराती भजन गवाना है, रिकॉर्ड करना है। और मैंने कहा कब करना है, तो बोला कि कल ही करना है। मैंने कल करना है कि क्या करना है, क्या क्या भजन है उसके, क्या लय है, क्या ताल है, क्या सुर है, क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं कल कल आपको बता दूंगा, आप आइए। ठीक है भाई, मैं, मेरी बेटियां, मेरी वाइफ, हम पहुंचे खार खार वेस्ट में, स्टेशन के पास में एक स्टूडियो
0: जी
1: है, वहां पहुंचे सुबह 10 बजे। वो वहां पे काफी लोग थे, तो वो दत्ता जी मिले। हमने पूछा भाई हमको क्या गाना है, थोड़ा बताइए तो सही। तो उन्होंने हमको एक पर्चा पकड़ा दिया जिसमें दो अंतर लिखे हुए थे भजन के, और एक से
0: अच्छा।
1: उन्होंने हारमोनियम लिया, हम तीनों को बिठाया, बोला कि मैं थोड़ा गा के बताता हूँ उसको। तो उन्होंने एक बार उसमें हारमोनियम पर गा के बता दिया कि ये इस तरह से इसका संगीत है, और फिर उठ के चल दिए कि मैं तैयारी करता हूँ रिकॉर्डिंग की। अब हमने आपस में देखने लगे, फिर हमने ट्राई किया उसको, एटलीस्ट 15-20 मिनट हम तीनों ने मिलके उसको वहां बजाया, हारमोनियम बजाया और उस पर किया तैयार, करीब करीब तैयार कर लिया। तो ये बहुत ही मतलब ऐसा अनुभव था, मेरी तो पहला ही मौका था जब वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग का। हालांकि मेरी बेटियां तो पहले पहले स्टूडियो में गा चुकी थी, राजस्थानी संगीत में। तो वो अनुभव बहुत ही अद्भुत रहा और बहुत मजा आया। जब गा के हम, उन्होंने कहा मैं सुनाता हूँ, देखो आपने कैसा गाया है। तो गाना जो रिकॉर्डिंग सुनी तो हमको विश्वास नहीं हो गया, हमने इतना कम टाइम में 1 घंटे में रिकॉर्डिंग हो गई, इतना अच्छा गा लिया।
0: सही बात। अच्छा ये भी बड़े मजेदार बात। अब ये हालांकि ये थोड़ा द ऑफ द ट्रैक हो जाएगा, 2006 में आप भी मुंबई में थे और मैं भी
1: जी
0: मुंबई में था, मुझे अभी देखते देखते ध्यान आया कि मैं भी उस टाइम मुंबई में था।
1: जी
0: चलिए।
1: जी हम खारघर में नवी मुंबई रहते थे।
0: अच्छा नवी मुंबई में रहते थे।
1: जी जी
0: चलो
1: जी
0: चलो, मैं अंधेरी ईस्ट में रहता था। खैर चलिए, बाद में बात करेंगे। तो
1: जी जी
0: आपकी पत्नी श्रीमती रजनी ठाकुर खुद एमए इन म्यूजिक हैं, आपकी
1: जी जी
0: संगीत यात्रा में उनका क्या योगदान है और कैसा समर्थन रहता है उनके साथ, कुछ बताइए इसके बारे में।
1: जी मेरी पत्नी सिर्फ जीवन साथी नहीं है, मेरी गुरु भी है, और
0: ओहो
1: उनकी संगीत की समझ और मार्गदर्शन ने मुझे हमेशा सही दिशा दी है। वे मेरी आलोचक भी हैं और बहुत उनका सहारा भी है। तो क्लासिकल की जो जो थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे मिली है शादी के बाद में, वो मेरी पत्नी से ही मिली है और मेरी दोनों बेटियों से मिली है, वो भी दोनों म्यूजिक में एमए है। तो हम लोग साथ में बैठ के रियाज करते थे क्लासिकल का।
0: अच्छा।
1: जी
0: आपने बेटियों के बारे में बताया, बेटियां कहाँ हैं आजकल आपके?
1: मेरी बेटियों की पढ़ाई तो जयपुर से हुई है दोनों ने। बड़ी बड़ी बेटी कृति है और उसने राजस्थान यूनिवर्सिटी से संगीत में एमए किया है वोकल
2: राजस्थान
1: में। छोटी बेटी श्रुति है, उन्होंने भी एम कॉम करने के बाद में राजस्थान संगीत संस्थान से निपुण की वो म्यूजिक वोकल म्यूजिक में कोर्स किया है, वो दैट इज इक्वलेंट टू एमए म्यूजिक। और दोनों ही वीणा कैसेट से जुड़ी रही हैं करीब करीब 7-8 साल से, उनके राजस्थानी गाने गाए हैं और कैसेट्स में भी गाए हैं। और बड़ी बेटी इंदौर में रहती है कृति, और छोटी बेटी अभी दिल्ली में है।
0: तो ये तो आपका पूरा परिवार ही संगीत परिवार हो गया एक तरह से, तो ऐसा लग रहा है। तो अब देखिए, आप की जोड़ी दोनों संगीत यात्रा में भी साथ रहे, जीवन में भी आप दोनों और रजनी जी साथ हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इस इंटरव्यू में भी क्यों ना रजनी जी को भी साथ ले ले हम लोग,
1: जी जरूर
0: मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि
1: जी
0: ये तो आपने मुझे बता ही दिया कि आप दोनों का मोबाइल भी एक ही है, तो
1: जी
0: मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ और
1: जी
0: आप रजनी जी को दे दीजिए, फिर उनसे हम
1: जी
0: बातें करते हैं। हाँ नमस्कार रजनी जी,
1: नमस्कार
0: मैं आलोक कुमार हूँ और आपका इस इंटरव्यू में, इस हमारी बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में
1: नमस्कार
0: हमने, आप वैसे भी बहुत बात कर ली है और अब आप जुड़ गई हैं हमारे से, तो बहुत बहुत एक बार स्वागत आपका।
1: जी, धन्यवाद बहुत बहुत।
0: अच्छा रज्जी जी, अब ये बताइए, मैं तो आपसे दो चार वैसे इनफॉर्मल सवाल पूछ रहा
1: जी,
0: हूँ। आपकी शादी के बारे में, बूंदी के बारे में तो ठाकुर साहब ने बहुत कुछ बता दिया, अभी बताइए जब आपकी शादी हुई तो क्या संगीत का भी इसमें कोई योगदान था, कोई एक फैक्टर था संगीत, ये वो बताइए आप तो हमें।
1: मेरे ख्याल से ये फैक्टर भी रहा ही है, क्योंकि इनको म्यूजिक का शौक था, तो जब ये आते थे तो हमारी बातें कम और हमारे घर का माहौल भी म्यूजिक वाला ही था, तो हमारी बैठ के खाली म्यूजिक पे सारे भाई बहन और ये और पापा या हमारे ससुर साहब, ये सारे बैठ के बस गाते थे, तो वो ही हमारी भाषाएं होती थी आपस में एक दूसरे को समझने
0: नहीं, आई कैन इमेजिन, मतलब वो जो सब बैठ के परिवार में जो संगीत हुआ करता था किसी जमाने में, वो जब माहौल बन जाता है वो तो बहुत ही अद्भुत होता है।
1: हाँ,
0: और
1: क्योंकि
0: आप
1: उस समय ये तो होता
0: जी
1: नहीं था कि आपको अकेला छोड़ दिया आप बातें कर रहे हैं। तो एक म्यूजिक का एक ऐसा था कि सबके साथ भी बैठ गए और आपस में एक दूसरे की आंखों आंखों में हृदय से सब बातें ऐसे हो जाती
0: नहीं, बिल्कुल सही बात है। और
1: थी।
0: देखिए जैसे हम लोग कहते हैं ना, लड़के लड़की में वेवलेंथ मिलनी चाहिए, तो
1: जी जी
0: संगीत
1: जी
0: की
1: जी
0: वेवलेंथ अगर मिल गई तो सारी चीजें मिल गई फिर तो।
1: जी जी जी
0: नहीं,
1: जी
0: बिल्कुल बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और मुझे तो ये
1: जी
0: बात भी बहुत अद्भुत लगती है रजनी जी, कि आप आजकल दुनिया में आदमी हर चीज शेयर कर लेता है, केवल अपना मोबाइल शेयर नहीं करता, और आप दोनों पति पत्नी में एक ही मोबाइल है, ये तो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है आज की दुनिया में तो। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त
1: वो
0: आदमी
1: ऐसा है कि हमारे मिलने वाले चाहने वाले सब सेम हैं, तो फिर मुझे लगता है कि जब हमारी एक ही से उससे हो जाता है काम, क्योंकि अभी आपसे मुलाकात है तो दोनों की आपसे है, तो कहीं
0: है।
1: मतलब पर्सनल ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे कोई फ्रेंड्स अलग हो या इनके मिलने वाले अलग हो, जनरली हम साथ साथ ही शुरू से ऐसा 82 के बाद से ऐसा ही रहा है कि साथ ही साथ, तो कभी ऐसी जरूरत नहीं हुई कि हमें अलग अलग फोन की आवश्यकता हो, और अगर मुझे दिलाया भी गया है ना तो वो फ्रिज पे रहता था, तो सबसे डांट और पड़ती थी क्योंकि वो ध्यान नहीं रहता था उसका तो क्या आप बंद करके रखते हो, बंद, मैंने कहा वो मुझे ध्यान नहीं रहता है कब चार्ज करना है कब नहीं करना, तो वह एक ही फोन से फिर ऐसे चलता चला गया और आज भी चल रहा है वो।
0: अद्भुत है, अद्भुत है। तो अब मैं थोड़ा सा एक व्यक्तिगत सवाल पूछ लूं, मैंने सोचा तो नहीं था पूछूंगा, लेकिन अब पूछ लेता हूं, आप आ गई हैं लाइन पे। तो आप, लगता तो वैसे नहीं है कि आपके संगीत प्रेम की वजह से आप दोनों में कोई रूठा रूठी होती हो, ये होता हो, कभी झगड़ा ही हो, झगड़ा होता हो, लेकिन अगर होती है तो ठाकुर साहब आपको कौन सा गाना गाकर मनाते हैं, कुछ ये बताइए हमें तो आप।
1: ऐसा वैसे कभी हुआ तो है नहीं पर बाई चांस हो तो कभी एक आध बार तो ना, तुम रोती रहो मैं मनाता रहूं,
0: वाह
1: होता है
0: वाह,
1: जब
0: ये
1: पर्सनल क्वेश्चन पूछा तो
0: गाना
1: एकदम
0: चाहिए। चलिए चलिए, तो आप रजनी जी, आप तो खुद भी बहुत अच्छी गायिका हैं, तो आप
1: जी
0: अगर कंफर्टेबल हो तो
1: जी
0: हमें एक मुखड़ा कुछ लाइन अगर सुना सके तो बहुत अच्छा रहेगा, आपने
1: अच्छा
0: सुना दीजिए।
1: अच्छा मैं अपनी बादीला कैसेट से सुनाऊं या अपने स्वेच्छा से
0: नहीं,
1: वैसे?
0: ये तो आपके
1: जी
0: ऊपर छोड़ते हैं, हम तो कुछ नहीं
1: जी
0: बता सकते, आप जो फिल्म का गाना सुनाना
1: जी
0: चाहें, कोई पुराना नया कोई भी, जो भी चाहे।
1: जी तो मैं एक आपकी तरफ से मांड सुनाती हूँ जो मुझे बहुत प्यारी है। केसरिया माला मा

सावण आवण कह गया ने कर गया कोला।

रजनी जी, बहुत अद्भुत, बहुत बहुत सुंदर। आपने तो हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए, संगीत के रंग बिखेर दिए, और क्या कहें, आपके आने से बिल्कुल जीवंत हो गए हम, और आपके गायन से तो बिल्कुल हमको हम किसी और ही लेवल पे पहुंच

0: अरे
1: बहुत बढ़िया
0: धन्यवाद, आप
1: बड़े।
0: धन्यवाद, और आपका विशेष धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया।
1: बहुत अच्छा लगा रजनीश जी से बात करके, और ये जान के कि आप मोबाइल भी एक ही शेयर करते, इससे तो बड़ी बात ही क्या हो सकती है। खैर, तो अब एक दिलचस्प सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। रफी और किशोर जी की गायकी को लेकर बहुत चलता रहता है, तो इनमें से कौन बेहतर है, कौन आपको अच्छा लगता है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है इसके बारे में?
0: जी, दोनों ही महान गायक हैं और अपने क्षेत्र के शिखर पर रहे हैं। जहां रफी साहब की गायकी में बहुमुखी प्रतिभा थी, उनकी आवाज में लचीलापन, कोमलता, स्पष्टता और ये खासियत थी कि हर अभिनेता की आवाज से मेल खाते हुए वो गायन करते थे। जहां तक किशोर साहब का सवाल है, किशोर कुमार जी का, उन्होंने कहीं संगीत सीखा नहीं था, क्लासिकल उनकी नैसर्गिक प्रतिभा थी। उनके उनकी गायकी में सहजता, शब्दों में पंच, मस्ती वाले गाने गाते थे और चंचल प्रकृति के गाने गाते थे। वो एक हरफन वाला व्यक्ति थे जो सभी तरह के काम कर लेते थे, एक्टिंग भी कर लेते थे, गाते भी थे, सभी कर लेते थे। और उनकी विशेषता थी उनकी यूडलिंग। तो ये इस तरह से दोनों अपने अपने क्षेत्र के महान गायक रहे सर।
1: सही बात है, डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल है कि कौन अच्छा था कौन नहीं था, सभी अपने अपने उसमें ऊपर थे। तो आप ये बताइए, ये जो दौर था मोहम्मद रफी, किशोर, मन्ना डे, हेमंत कुमार एंड ऑल दैट, इनके बीच में मुकेश जी आज तक क्यों हमारे दिल पे राज करते हैं, और क्यों हमारे आज भी, मैं भी व्यक्तिगत रूप से भी जब भी मुकेश के गाने सुनता हूँ तो बस ठहर सा जाता हूँ, एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई चीज दिल के बिल्कुल करीब आ गई है, ऐसा क्यों होता है?
0: उनकी आवाज में एक सच्चाई थी, वो भावनाओं को ओढ़ कर नहीं जीते थे, उनकी आवाज सीधे दिल तक पहुंचती थी और यही उन्हें कालजयी बनाता है। और जो दर्द लेके जिस तरह के वो सुर लगाते हैं, वो मतलब दिल को छू जाता है, मतलब मन को छू जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो यही लगता है मेरे, यही कारण है कि वो इतने बड़े बड़े महान गायकों के बीच में उन्होंने अपना स्थान बना के रखा और लोगों के दिलों तक पहुंचे।
1: सही बात है। तो चलिए, यहाँ फिर इतनी अच्छी बातों के साथ में एक गाने के लिए हम रुक जाते हैं, एक गाना सुन लेते हैं।

0: डॉक्टर साहब, आज जो शहर में कई नए म्यूजिक ग्रुप उभर रहे हैं, ऐसे माहौल में स्वर साधना फाउंडेशन का भविष्य आपको कैसे दिखाई देता है?
1: जी, मुझे लगता है कि स्वर साधना फाउंडेशन का भविष्य उज्जवल है। ग्रुप का हर सदस्य मन से जुड़ा है, हमारा पारिवारिक माहौल है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम निरंतर प्रैक्टिस करते हैं और उसी को हम आधार मानते हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी करने के लिए, एक लंबे समय तक लोगों से जुड़े रहने के लिए, हमारे गाने को, हमारी प्रस्तुतियों को लोग पसंद करें, हमें अब निरंतर प्रयास करते रहना है, और हम करते रहेंगे और हम कर रहे हैं कि हम लोगों के दिलों को जीत सकें और हम उनकी प्रशंसा पा सकें। तो सारे ग्रुप के हमारे सदस्य इसी लगन से लगे हुए हैं, और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि हम आपके प्रोग्राम का इंतजार करते हैं, आप कब करोगे। तो ये हमारे लिए, मुझे लगता है कि एक तरह का कॉम्प्लीमेंट है कि हो इतने सारे ग्रुपों के बीच में भी हमको सुनने के लिए आते हैं।
0: चलिए ठाकुर साहब, तो बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके स्वर साधना फाउंडेशन के भविष्य के कार्यक्रमों के लिए। हम चाहते हैं कि आप और आगे चलते रहें और अच्छे अच्छे कलाकार इस समाज को, इस शहर को देते रहें, ये हमारी शुभकामना है। तो चलते चलते अब हम आखिरी पाए बकौल अमीन सयानी बिना का गीतमाला, हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं। तो आज चोटी का कोई गाना आप सुनाना चाहें तो सुना दीजिए, कुछ लाइनें गुनगुना चाहें तो गुनगुना दीजिए, और उसी से इस प्रोग्राम का वो करेंगे।
1: जी, अभी कुछ दिनों पहले ही धर्मेंद्र जी का निधन हुआ है, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो रफी साहब का गाया हुआ उन्हीं की फिल्म का एक गीत है, उसको मैं कुछ लाइनें गुनगुनाता हूँ। कोई शाम का

0: किस किस जतन से निकाला था इस दिल से दूर, वो चल कर कयामत की चाल आ गया, वो चल कर कयामत की चाल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि भी दे दी हमारी तरफ से, हमारे स्टूडियो की तरफ से, हमारे सब हमारी टीम की तरफ से भी। आपने एक तरह से हमारे दिल की बात कह दी कि हुई
0: जी
1: शाम
0: जी
1: उनका ख्याल आ गया। धर्मेंद्र
0: जी
1: जी ने तो इतनी अद्भुत पिक्चरें हमारे को दी हैं, इतना अच्छी विरासत दी है हम लोगों को कि
0: जी
1: मतलब एक तो वो आम आम आदमी की जो छवि थी उसको उन्होंने कैसा उजागर किया है पर्दे
0: जी
1: पर।
0: जी
1: बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छा गाना गा दिया। इनफैक्ट रफी जी और धर्मेंद्र जी दोनों को ही अपनी तरफ से एक तरह से ट्रिब्यूट आपने पे कर दिया।
0: जी
1: चलिए
0: जी
1: बहुत
0: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, आज की दिल को छू देने वाली बातचीत में हमने जाना कि असली संगीत वही है जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे, और के ठाकुर जी की जीवन यात्रा इसका सबसे सुंदर प्रमाण है। बैंक की व्यस्त नौकरी से लेकर रिटायरमेंट के बाद संगीत को समर्पित जीवन, स्वर साधना फाउंडेशन की स्थापना, नए गायकों को मंच देना, बड़े ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित करना और पत्नी रजनी जी के साथ 40 वर्षों का साथ, ये कहानी सिर्फ संगीत की नहीं बल्कि समर्पण, साधना और सकारात्मकता की कहानी है। ठाकुर साहब, कार्यक्रम में आने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। रजनी जी, आपका हमारे से जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद और आभार, और श्रोताओं का भी शुक्रिया जो इस मधुर सफर में हमारे साथ जुड़े रहे। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी, नए सफर और नए मेहमान के साथ।
0: आप सभी का भी धन्यवाद।
1: तब तक संगीत सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ठाकुर जोड़ी के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर नमस्कार, धन्यवाद।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।
2: छोटी सी हमारी कायनात बन गई।
4: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
5: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
4: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
7: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रंजीला और आप सुन रहे हैं जाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अकबर और बीरबल की कहानी। सुनते रहिए रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

0: हमने अक्सर दरबार में आपको बीरबल की तरफदारी करते देखा है।
1: हम आपको कितनी बार समझा चुके हैं कि हमारे सभी वजीरों में बीरबल सबसे होशियार हैं।
0: मानसिंह भी होशियार हैं, पर आप हमेशा उन्हें नजरअंदाज करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो हमारे भाई हैं।
1: एक बादशाह को अपने सबसे अक्लमंद वजीर पर निर्भर रहना पड़ता है, और हमारे दरबार में ऐसे वजीर हैं बीरबल। मानसिंह बेशक आपके भाई हैं, पर ज्यादातर बीरबल की ही राय सही होती है।
0: ये आप कैसे कह सकते हैं कि मानसिंह बीरबल जितने होशियार नहीं हैं? हम जानते हैं कि एक मौका मिलने पर मानसिंह बीरबल से ज्यादा नहीं तो बीरबल की तरह अपनी होशियारी दिखा सकते हैं। उन्हें एक मौका तो दीजिए।
1: ठीक है, हमारे पास एक तरकीब है। हम उन दोनों को एक दौरे पर भेजेंगे, और हमें यकीन है कि बीरबल की वजह से ही दोनों कामयाब लौटेंगे। इससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि बीरबल के बारे में हमारी राय सही है। हम बीरबल और मानसिंह को कल सुबह ही ईरान के लिए रवाना होने को कहेंगे।
0: ईरान? पर क्यों?
1: उनके वापस लौटने पर हम आपको बताएंगे। बीरबल, मानसिंह, हम चाहते हैं कि आप दोनों ईरान जाएं, शाह ईरान के लिए हमारा ये पैगाम लेकर। हम उनके लिए कुछ तोहफे भी भेजना चाहते हैं, इसलिए हमने अपने सबसे भरोसेमंद वजीरों को भेजने का फैसला किया है।
2: शुक्रिया जहांपनाह। हुजूर, इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम आपका मान जरूर रखेंगे।
3: हमें कब निकलना होगा हुजूर?
1: हम चाहते हैं कि आप आज ही रवाना हो जाएं, शाह ईरान के साथ कुछ दिन बिताकर उनका जवाब लेकर लौटें।
2: जैसी आपकी मर्जी जहांपनाह। आदाब हुजूर। हुजूर, मैं हूं मानसिंह और ये है बीरबल। हम बादशाह अकबर के राजदूत हैं।
4: हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरबार में हमारे अजीज दोस्त बादशाह सलामत अकबर के वजीर मौजूद हैं। हम जानते हैं मानसिंह जी कि आप बादशाह अकबर के रिश्तेदार हैं। राजा बीरबल के किस्से तो हमारे दरबार में भी मशहूर हैं।
2: शुक्रिया जहांपनाह। हुजूर, हम शहंशाह अकबर की ओर से आपके लिए पैगाम लाए हैं।

0: मुझे यकीन नहीं होता, ये नहीं हो सकता। मैं मरना नहीं चाहता। हमारा गुनाह क्या है? और तुम, हमें कल फांसी लगने वाली है और तुम्हें कोई फिक्र भी नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जब सजा सुनाई जा रही थी तुमने एक शब्द भी नहीं कहा।
1: शांत रहिए मानसिंह जी, यकीन मानिए हमें कुछ नहीं होगा।
0: कुछ नहीं होगा? क्या मतलब कुछ नहीं होगा? क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, हमें कल फांसी लगने वाली है, हम कल मरने वाले हैं।
1: मानसिंह जी धीरज रखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम इस मुसीबत से जरूर निकलेंगे और वो भी जिंदा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि बादशाह सलामत ने ऐसा क्यों किया।
0: तुम्हारा दिमाग खराब है। बादशाह ने ऐसा किस लिए किया तुम्हें इस बात की चिंता है, जबकि हमें मुसीबत से निकलने के तरीके सोचने चाहिए।
1: मेरा यकीन कीजिए, हम कल सुबह तक आजाद हो जाएंगे, पर जैसा मैं कहूँ आपको वैसा ही करना होगा। सुनिए,

0: मुझे फांसी दीजिए हुजूर।
1: नहीं हुजूर, पहले मुझे फांसी दीजिए।
0: नहीं नहीं हुजूर, पहले मैंने दरख्वास्त दी थी, मुझे पहले लटकाइए।
1: नहीं, मैं शहनशाह का रिश्तेदार हूँ, पहले फांसी मुझे दी जाए।
0: आप जहाँ पनाह के साले साहब हैं तो क्या हुआ, मैं उनका सबसे भरोसेमंद वजीर हूँ, पहले मुझे फांसी लगाई जाए।
2: आप दोनों पागल तो नहीं हो गए क्या? आपको डर नहीं लगता? आप मरने के लिए इतने बेताब क्यों हैं?
0: डरना किस लिए हुजूर, ऐसे इनाम के लिए तो हम खुशी से मरने को तैयार हैं।
2: इनाम? कैसा इनाम
0: हुजूर? हमारे दरबार के राज पुरोहित ने ऐलान किया था कि आज यहाँ पर पहले जिसको फांसी दी जाएगी वो अगले जन्म में शाह बनेगा, और जिसको बाद में मिलेगी वो प्रधानमंत्री।
2: ये कैसे हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता।
1: ये सच है हुजूर, हमारे राज पुरोहित कभी गलत नहीं साबित हुए। पहले मुझे फांसी पे लटका दीजिए हुजूर।
0: हुजूर, मेरे ख्याल से हमें एक बार फिर सोच लेना चाहिए, इनकी बातें तो सच लगती हैं।
2: हाँ, पर अब हम क्या कर सकते हैं? उन्हें बिना नाराज किए हम उनका कहा कैसे टाल सकते हैं?
0: आप इन दोनों के साथ उन्हें पैगाम भेज सकते हैं कि बिना इन दोनों का जुर्म जाने आप इन्हें फांसी पर नहीं लटका सकते। इस तरह आप इसका जिम्मा वापस शहंशाह पर ही डाल दें।
2: तुम सही फरमा रहे हो, हमें ऐसा ही करना होगा। आप दोनों आजाद हैं, हमें कुछ गलतफहमी हो गई थी। आप दोनों हमारा पैगाम लेकर झांपना के पास लौट जाएं।
1: जैसी आपकी मर्जी हुजूर। आदाब जहांपना,
3: आपका स्वागत है। कैसी रही आपकी यात्रा?
0: अच्छी रही हुजूर, शुक्रिया।
3: अच्छा अच्छा बीरबल, हमने अपनी हार मानी, बताइए आपने उस मुसीबत का सामना कैसे किया?
1: जी हुजूर, हमें बताइए कि हमें उस मुसीबत में क्यों डाला गया, हमारी गलती क्या थी?
3: कोई गलती नहीं थी, हम आपका इम्तिहान ले रहे थे, मगर हम ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आप वापस कैसे लौटे।
1: हुजूर, बीरबल की होशियारी की वजह से ही आज हम जिंदा हैं।

0: हम माफी चाहते हैं आप दोनों को इस मुसीबत में डालने के लिए, पर यकीन कीजिए हमने सिपाही के साथ एक दूसरा पैगाम भी भेजा था। वो पैगाम शाह ईरान को दिया जाता आपको फांसी से बचाने के लिए। बीरबल, आपने फिर साबित कर दिया कि आपको कोई मात नहीं दे सकता। आप किसी भी मुसीबत का होशियारी से सामना कर सकते हैं। शाबाश बीरबल, शाबाश।
1: शाबाश बीरबल।

0: दोस्तों अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज, आरजे रंजीला के साथ।
1: ला

0: हुजूर, ईरान का एक सौदागर है जिसे कोई शिकायत है और आपसे मिलना चाहता है।
1: ठीक है मान सिंह जी, उसे इजाजत है।
2: शमशेर सिंह, दरबार में पेश हो।
3: आदाब हुजूर।
1: खुशामदीद, सुना है आप ईरान से हमारे यहाँ आए हैं। आपको यहाँ कैसा लग रहा है? उम्मीद है आपको यहाँ अच्छा लग रहा होगा।
4: माफ कीजिएगा हुजूर, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन अच्छा लगना तो दूर की बात है, मैं तो यहाँ आकर बर्बाद हो गया हूँ।
1: बर्बाद? कैसे और क्यों? कहिए क्या समस्या है?
4: हुजूर, मैं ईरान से व्यापार के लिए कुछ सामान लाया था जिनकी कीमत 500 सोने की अशर्फियाँ थी, कुछ शानदार ऊन के कपड़े और कुछ बेहतरीन कारीगरी के नमूने।
1: तो समस्या क्या है? क्या आपको अपने सामान की सही कीमत नहीं मिल रही? वैसे हिंदुस्तानी सौदागर मोल भाव करने में माहिर होते हैं।
4: नहीं हुजूर, समस्या ये नहीं है। मैं ईरान से जब यहाँ आ रहा था, तब सफर के दौरान मैं एक हिंदुस्तानी व्यापारी से मिला। उसने मुझे अपना सामान उसके गधों पर लादने की इजाजत दे दी, क्योंकि वो अपना सारा सामान बेच कर लौट रहा था।
1: ठीक है, फिर?
4: हुजूर, जब हम आगरा पहुंचे तो उसने मेरा सामान वापस करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि सामान उसका है। अब मैं अपना बस बाकी बचा कुचा थोड़ा बहुत जो सामान है उसे बेच कर ही वापस घर लौट सकूंगा। अगर मेरा सामान ना मिला हुजूर, तो मैं अब कभी भी व्यापार नहीं कर पाऊंगा।
1: अगर आप हमसे सच कह रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई। पर घबराइए मत, हम इस मामले को जरूर सुलझाएंगे। बताइए कौन है वो व्यापारी, आप जानते हैं वो कहाँ रहता है?
4: जी हुजूर, उसका नाम दिलावर है और मैं उसका पता जानता हूँ।
1: सिपाहियों, फौरन इस पते पर जाओ और उस दिलावर को हमारे सामने पेश करो।
2: आदाब हुजूर।
1: बताओ क्या तुम इस आदमी को जानते हो?
2: जी हुजूर, मैं इसे जानता हूँ, ये शमशेर सिंह है ईरान से।
1: ओ, तो तुम इसे जानते हो, बताओ तुमने इसके साथ बेईमानी क्यों की?
2: माफ कीजिएगा हुजूर, पर ये सच नहीं है, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। वो सामान मेरा अपना था, जब मैं ईरान से लौट रहा था तब ये मेरे पास आया और मेरे साथ हिंदुस्तान आने की गुजारिश की, क्योंकि ये हिंदुस्तान देखना चाहता था और इसे रास्ता मालूम नहीं था। मैं वैसे भी ईरान से सामान खरीद कर लौट रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं।
4: नहीं नहीं हुजूर, ये झूठ है, इसके पास कोई सामान नहीं था। मुझे इसने कहा कि ये अपना सारा पैसा जुए में हार गया है और मुझे अपने गधे कम किराए में देने लगा, ये कहते हुए कि मेरी बचत हो जाएगी और इसे भी लौटने के लिए पैसे मिल जाएंगे।
2: नहीं, ये सरासर झूठ है हुजूर, मैंने सिर्फ इसे अपने साथ सफर में लिया था, सामान मेरा अपना है। जब हम आगरा पहुँचे तो ये मुझे धमकाने लगा कि अगर मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो ये मेरे खिलाफ दरबार में झूठी शिकायत करेगा।
1: बहुत हो चुका, बस करो। शमशेर सिंह, अगर वो सारा सामान आपका है तो आप अपने सामान को पहचान पाएंगे, ठीक है? और अगर दिलावर सच बोल रहा है तो आप अपने सामान को नहीं पहचान पाएंगे।
4: जी हाँ हुजूर।
2: नहीं हुजूर।
1: क्या मतलब, तुम इन्हें अपने सामान की पहचान क्यों नहीं करने देते?
2: हुजूर, सफर के दौरान इसने मेरे सामान में काफी दिलचस्पी दिखाई और मैंने इसे अपना सारा सामान दिखाया था, तब तो ये आसानी से पहचान सकता है मेरे सामान को।
4: नहीं हुजूर, ये उल्टी बात कर रहा है, इसने मेरे सामान में दिलचस्पी दिखाई और मैंने इसे अपना सामान दिखा दिया।
2: हुजूर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, आप मेरे नौकर से भी पूछ लीजिए जो मेरे साथ था, वो आपके सामने झूठ नहीं बोलेगा।
4: नहीं नहीं हुजूर, इसका नौकर भी झूठ बोलेगा, इसने उसे भी अपनी साजिश में शामिल किया होगा। हुजूर, मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर मैं सच कह रहा हूँ, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं।
1: बीरबल, मेरे ख्याल से अब तुम ही इस समस्या को सुलझा सकते हो और असली मुजरिम की पहचान कर सकते हो।
5: जी हुजूर, मुझे यकीन है मैं असली मुजरिम को जरूर पहचान सकता हूँ।
1: तो फिर देर किस बात की है, ये मामला जल्द से जल्द सुलझाओ।
5: जी हुजूर, मुझे थोड़ा समय चाहिए, एक या दो दिनों में मुजरिम आपके सामने होगा, मुझे पूरा यकीन है।
1: ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें कुछ वक्त चाहिए तो फिर हम इंतजार करेंगे। तब तक के लिए शमशेर सिंह आप हमारे मेहमान रहेंगे, मगर ध्यान रहे अगर आप मुजरिम साबित हुए तो आपको हमारे यहाँ लंबे समय तक मेहमान बनकर रहना पड़ेगा कैद खाने में।
4: मैं समझ सकता हूँ हुजूर।
1: और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है दिलावर, तुम ये शहर छोड़कर कहीं मत जाना जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता।
2: जैसे आपकी मर्जी हुजूर, मुझे किसी चीज का डर नहीं, मैंने सिर्फ सच ही कहा है।
1: बीरबल, हमें उम्मीद है कि तुम इन दोनों में से मुजरिम कौन है ये साबित कर दिखाओगे।
5: जी हाँ, शुक्रिया जहाँपना, मुझे यकीन है कि एक या दो दिनों में मामला सुलझ जाएगा।

0: कहाँ है बीरबल? वो अब तक दरबार में नहीं पहुँचा।
1: आदाब हुजूर।
0: बीरबल, कहाँ थे तुम? और शमशेर सिंह के मसले का क्या हल निकला? क्या तुमने मुजरिम को पहचान लिया?
2: जी हुजूर, मुझे सच्चाई मालूम हो गई है और ये साबित भी कर सकता हूँ।
0: ओह, बहुत खूब, शाबाश। तो बताओ, फौरन बताओ, कौन झूठा है?
2: जी जापना, दिलावर झूठा है और बेईमान भी, और शमशेर सिंह सच बोल रहा है।
0: दिलावर? हम तो समझे थे कि वो सच बोल रहा था। आखिरकार वो आगरे का व्यापारी है और उसकी अपनी दुकान है, तो वो क्यों बेईमानी करेगा? तुम्हें पूरा यकीन है? आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला?
2: हुजूर, कल शाम की बात है, मैं और मानसिंह जी दिलावर के दुकान पर गए। उसके नौकर को दुकान छोड़ जाते हुए देख हमने एक ढाबे तक उसका पीछा किया।
3: आइए, कहिए क्या खाएंगे आप? काफी लंबा सफर करके आए हैं। आगरा पहली बार आए हैं क्या आप?
2: जी, मैं जयपुर का एक व्यापारी हूँ। दरअसल हम यहाँ कुछ ईरानी कारीगरी का सामान खरीदने आए हैं, वापस जयपुर ले जाकर बेचने के लिए। क्या आप बता सकते हैं हमें ये कहाँ मिल सकता है?
4: माफ कीजिएगा हुजूर, मैंने दरअसल आप लोगों को ईरानी सामान के बारे में कुछ पूछते हुए सुना।
2: जी बिल्कुल, क्या आप हमें ऐसी कोई जगह के बारे में बता सकते हैं?
4: मेरा नाम सुखी राम है जनाब, मैं एक बहुत अच्छे व्यापारी के साथ काम करता हूँ, उनका नाम दिलावर है। वो हाल ही में ईरान से काफी शानदार सामान लेकर लौटे हैं।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या आप हमें वो सामान अभी दिखा सकते हैं?
4: हाँ जरूर जनाब, मेरे साथ चलिए। जनाब, आप थोड़ी देर यहीं रुके, अगर वो ज्यादा व्यस्त नहीं है तो मैं आपको उनसे जल्द से जल्द मिलवाता हूँ।
2: जरूर जरूर, जरा जल्दी कीजिएगा।
4: जनाब, मैं अभी अभी एक व्यापारी से मिला ढाबे पे, जो ईरानी सामान खरीदना चाहता है।
3: ओह शाबाश, बहुत खूब, कहाँ है वो?
4: वो बाहर इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अंदर बुलाऊं?
3: जरूर, जल्दी आइए आइए।
2: पता चला है कि आप ईरानी सामान बेचते हैं?
3: जी जरूर, इत्तेफाक से मैं हाल ही में ईरान से खरीदी करके लौटा हूँ।
2: क्या आप हमें वो सामान दिखा सकते हैं?
3: बिल्कुल, सारा सामान लेकर आओ।
2: अच्छा, तो आप इन चीजों का क्या दाम लगाएंगे?
3: आप सारा सामान खरीद लेंगे? तब मैं सारे सामान का दाम 1000 सोने की मोहरे लगाऊंगा।
2: हम दोनों को ये नहीं लगता कि ये सामान बहुत ही बेहतरीन किस्म का है, इससे भी बढ़िया सामान देखा है। हम सिर्फ इसकी आधी कीमत दे सकते हैं, सिर्फ 500 सोने की मोहरे।
3: आधी कीमत? बेहतरीन किस्म का नहीं है?
2: दरअसल मेरे दोस्त को इन चीजों में कुछ खराबी नजर आ रही है, अब हम इसके लिए सिर्फ 300 सोने की मोहरे ही देंगे। अब फैसला आपके हाथ में है।
3: ठीक है, 300 मोहरे ही सही।
2: ठीक है, सौदा पक्का, हम कल सवेरे पैसों के साथ आएंगे और ये सारा सामान ले जाएंगे।
0: हम समझे नहीं बीरबल, तो इससे दिलावर झूठा कैसे साबित हुआ?
2: हुजूर, कोई सौदागर इतनी जल्दी अपने सामान की खामियां कैसे कबूल करेगा, या फिर कम कीमत लेने को इतनी जल्दी क्यों तैयार होगा? मैं तभी समझ गया कि ये सामान दिलावर का नहीं है और इसीलिए वो कोई भी कीमत लेने को तैयार था।
0: तुम ठीक कह रहे हो।
2: जब मुझे यकीन हो गया कि दिलावर झूठ बोल रहा है, हमने इसके नौकर को झूठ बोलने की सजा से डराकर उससे सच्चाई उगलवाई, और अब वो दिलावर के खिलाफ गवाही देने को तैयार है।
0: शमशेर सिंह और दिलावर को दरबार में पेश किया जाए। तुम्हें एक शरीफ आदमी को जिसने तुम्हारी मदद की उसे धोखा देते हुए शर्मानी चाहिए। हम तुम्हें साल भर कैद की सजा देते हैं और शमशेर सिंह को बुरी तरह परेशान करने के लिए बतौर जुर्माना तुम्हें उन्हें 500 सोने की मोहरें अदा करनी पड़ेगी। सिपाहियों, दूर ले जाओ शख्स को हमारी नजरों से।
4: शुक्रिया हुजूर।
0: शुक्रिया अदा करो बीरबल का, जिसने दिलावर की बेईमानी अपने लाजवाब अंदाज में साबित की।
5: दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे रंजीला के साथ।

0: जी कौन है आप और आपको क्या चाहिए?
1: मैं गंगू, मैं राजा बीरबल से मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे इंसाफ चाहता हूँ।
0: लेकिन राजा बीरबल आराम कर रहे हैं, उन्हें आप लोग कल दरबार में जाकर क्यों नहीं मिलते?
1: नहीं नहीं, हमें अभी उनसे मिलने दीजिए। ये आदमी एक चोर और झूठा है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें आज ये मामला सुलझाने दीजिए।
0: ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ अगर वो आपसे अभी मिल सकते हैं। आप यहीं ठहरिए।
2: हुजूर,
0: बाहर दो आदमी आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, वो आपसे इंसाफ चाहते हैं। मैंने उनसे कल दरबार में मिलने को कहा, पर वो अभी ही मिलना चाहते हैं।
2: ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ।
0: अंदर आइए, राजा बीरबल आपसे अभी मिलेंगे।
3: आदाब हुजूर।
2: हाँ जी, क्या समस्या है? जरा ठहरिएगा, कौन हो सकता है ये?

0: आदाब हुजूर, आपने मुझे बुलवा दिया होता अगर कुछ काम था तो।
1: नहीं, मैं सिर्फ बागीचे में सैर कर रहा था, सोचा क्यों ना तुमसे मिलता चलूं।
2: आदाब हुजूर।
1: ये कौन है बीरबल?
0: मैं खुद भी जानना चाहता था हुजूर, इन्हें इंसाफ चाहिए, लेकिन मैंने बाद में आने को कहूंगा।
1: नहीं नहीं, मैं तुम्हें इंसाफ करते देखना चाहता हूँ, शुरू करो।
0: हाँ तो आप कहिए, कहिए आप दोनों कौन है और समस्या क्या है?
2: जहाँ पना, हुजूर मैं गंगू तेली हूँ, मैं तेल बेचता हूँ। मैं शहर के काफी व्यापारियों को और दुकानों में तेल बेचता हूँ। आज मेरा कारोबार अच्छा हुआ और इसकी दुकान से गुजर रहा था, ये लच्छूराम कसाई है, इसने मुझे अंदर बुलाया।
3: ए तेल वाले, इधर आओ, मुझे थोड़ा तेल दो।
2: जी जनाब, कितना तेल चाहिए आपको?
3: सोचने दो, मुझे एक माप दे दो।
2: जनाब ये लीजिए, 2 रुपए हुए जनाब।
3: 2 रुपए? ये तो ज्यादा है, तुम तो बेईमानी कर रहे हो।
2: जनाब तेल महंगा हो गया है, मुझे व्यापारी को भी देना पड़ता है और कमाई इसमें कम है। मैं आपको ठग नहीं रहा, आप किसी से भी पूछ लें।
3: खैर सभी यही कहते हैं, तुम हमें ठग रहे हो। खैर ये लो पैसे, एक चांदी का सिक्का है, अब मुझे छुट्टे दे दो। तुम थक गए होगे सारा दिन ये बोझा उठाकर, क्यों ना अंदर हाथ धोकर मेरे साथ थोड़ी लस्सी पी लो, फिर काम पर चले जाना, क्या ख्याल है?
2: अरे क्या कर रहे हैं आप, ये मेरे पैसे हैं।
3: झूठे, ये मेरे पैसे हैं, तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो।
2: तुम्हारी ऐसी हिम्मत, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर हमने झगड़ा शुरू कर दिया, इसलिए हम यहाँ आए हैं, अब आप ही मेरे पैसे वापस दिलवा सकते हैं।
0: तुम्हें क्या कहना है इस बारे में?
3: जनाब ये आदमी एक झूठा और चोर है, दरअसल बात कुछ ऐसी थी।
2: जनाब जनाब, क्या आपको तेल चाहिए?
3: नहीं शुक्रिया, मुझे जरूरत नहीं है।
2: जनाब आज मेरी बोनी तक नहीं हुई, एक नाप ले लीजिए मुझसे, एक नाप।
3: देखो मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास 1 महीने का काफी तेल है।
2: जनाब मैं आपको छूट दूंगा, जनाब जनाब एक नाप ले लीजिए।
3: ठीक है मुझे एक माप दे दो।
2: शुक्रिया जनाब, 2 रुपए हुए इसके।
3: ठीक है, ये लो पैसे।
2: जनाब क्या मैं हाथ मुंह धो सकता हूँ? सारा दिन ये थैला लटका के मैं थक गया हूँ, सिर्फ हाथ मुंह धोकर थोड़ा चुस्त होना चाहता हूँ।
3: ठीक है पर जल्दी करो, हाथ मुंह वहां धो लो। ए, ये क्या कर रहे हो? रुको, चोर कहीं का, मेरे पैसे वापस करो।
2: नहीं ये मेरे पैसे हैं, ये मेरा थैला है।
3: तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मेरे पास भीख मांगने आए, मैंने मदद की, तूने ये क्या किया, मेरे पैसे चुराए?
2: तुम मुझे लूटना चाहते हो, ये मेरे पैसे हैं और मैं तुम्हें नहीं दूंगा।
3: लोग जमा हो गए और सलाह दी कि आपके पास आए हुजूर, अब आप ही मेरी मदद करें हुजूर।
2: नहीं जनाब ये मेरे पैसे हैं, ये आदमी झूठ बोल रहा है।
1: ओ बीरबल, अब तुम ये समस्या कैसे सुलझाओगे? कोई गवाह भी नहीं है, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, अब तुम इसका इंसाफ कैसे करोगे?
0: हुजूर इस समस्या का हल है, और माफ कीजिएगा हुजूर पर आप गलत थे, एक गवाह है इस बात का।
2: हुजूर आपकी गलत फहमी है, जब उसने पैसे लेना चाहे तब वहाँ कोई नहीं था।
0: नहीं तुम गलत हो, एक गवाह मौजूद था, वो पैसों का थैला, वो ही गवाह है।
1: बीरबल तुम ठीक तो हो? भला पैसों का एक थैला गवाह? एक थैला सच्ची बात कैसे कह सकता है?
0: हुजूर बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मुझे यकीन है ये थैला जरूर बोलेगा।
1: कमाल है, ये तो काफी दिलचस्प होगा, जल्दी करो।
0: एक बर्तन में पानी लेकर आओ। अब ये पैसों का थैला मुझे दो। हुजूर सच्चाई सामने है।
3: तेली सच बोल रहा था, ये पैसों का थैला उसी का है।
1: तुम ये कैसे कह सकते हो बीरबल, तुम्हें यकीन है?
3: मुझे पूरा यकीन है हुजूर, मैं साबित कर सकता हूँ।
1: तो साबित करो।
3: हुजूर, अगर आप देखें तो पानी के ऊपर तेल की एक परत है, ये तेल की परत इन सिक्कों में से आई, और ये तेल सिर्फ तेली के हाथों से ही आ सकती है। जब वो थैले में सिक्के डालता था और निकालता था, सिक्कों पे तेल लगने का और कोई कारण हो ही नहीं सकता।
1: शाबाश शाबाश, हमें खुश कर दिया तुमने, बड़े होशियार हो तुम, बहुत खूब।
2: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
3: मुझे माफ कीजिए हुजूर, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं लालची हो गया था।
1: नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। तुम्हें इस आदमी को वो पूरी रकम लौटानी होगी जो तुमने चुराने की कोशिश की, और इस जुर्म के लिए 1 महीने की कैद।
2: शुक्रिया जहांपना।
1: बीरबल, तुम्हारा कोई भी जवाब नहीं। शाबाश बीरबल, शाबाश।
3: शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।
4: इस साल ठंड बहुत ज्यादा है।
5: जी हाँ जहाँ अपना, आजकल लोग घर से बाहर निकलने से झिझकते हैं।
4: हाँ, पर लोगों को काम करना तो पड़ेगा ही, चाहे ठंड हो या ना हो।
5: वो तो है, पर जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो ज्यादातर लोग घर पर ही रहना पसंद करते हैं।
4: ओह, ये पानी तो जैसे बर्फ बन गया हो। आप ठीक कह रहे हैं लाला जी, इतनी ठंड में कौन बाहर निकलेगा।
6: माफी चाहता हूँ हुजूर, मुझे ऐसा नहीं लगता।
4: बीरबल, आपको हर वक्त हमारे खिलाफ जाना जरूरी नहीं है।
6: माफी चाहता हूँ जहाँपना, मैं आपकी बात नहीं काटना चाहता। मैं तो सिर्फ आपको बताना चाहता था कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मुश्किलों में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
4: आप कहना चाहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं?
6: जी हाँ हुजूर, मैं यही कहना चाह रहा था।
4: मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कोई भी इंसान पैसा कमाने के लिए एक हद से पार नहीं जा सकता।
5: आप सही फरमा रहे हैं हुजूर, मैं भी ऐसा ही समझता हूँ।
6: जहाँपना, आपके राज्य में ऐसे भी लोग हैं जो हालात की वजह से थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।
4: क्यों ना तुम अपनी इस बात को साबित कर दिखाओ। क्या तुम ऐसे आदमी को ला सकते हो जो सारी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रह सके? हम उस आदमी को इनाम में 10 सोने की अशर्फियां देंगे।
6: जी हाँ हुजूर, इतनी कम रकम के लिए भी कोई न कोई इस काम को करने के लिए तैयार हो ही जाएगा।
5: मैं इस बात को यकीन करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकता। पहली बात तो कोई भी इंसान ये पता चलने के बाद कि पानी कितना ठंडा है, इसको स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर कोई मूर्ख स्वीकार कर भी ले तो सुबह तक बच नहीं पाएगा।
6: जहाँपना, मुझे पूरा यकीन है कि मैं ऐसे आदमी को आज ही ढूंढ सकता हूँ।
4: ठीक है, आप इस बात को साबित कीजिए और ऐसा आदमी ढूंढिए। इस बात का फैसला आज ही हो जाए। मुझे यकीन है कि इस बार आप गलत साबित हो जाएंगे।
6: हुजूर आला, मैं आज ही ऐसा आदमी ढूंढकर शाम को दरबार में पेश कर दूंगा। जहाँपना, अपनी चुनौती स्वीकार करने वाला मुझे मिल गया है, इजाजत हो तो उसे बुलाया जाए।
4: उसे बुलाएं? बीरबल, हम जरूर मिलना चाहेंगे उससे।
7: गंगाराम हाजिर हो।
8: आदाब जहाँपना।
4: क्या बीरबल ने समझा दिया है कि तुम्हें क्या करना है?
9: जी हाँ हुजूर, मुझे सारी रात आपके बगीचे वाले तालाब में खड़े रहना होगा।
4: क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम तालाब में खड़े रहकर अपनी जान गंवा सकते हो, या तुम्हें वहाँ की ठंड का अंदाजा नहीं?
9: जहाँपना, मैं जानता हूँ कि तालाब का पानी कितना ठंडा होगा।
4: हमें लगता है कि 10 अशर्फियों के बदले ये करना बहुत बड़ी मूर्खता है। बीरबल, इस पर नजर रखने के लिए 2 सैनिक तैनात रहेंगे। यह आदमी आज रात हमारा मेहमान है, इसकी अच्छी तरह खातिर की जाए। क्या पता आज की रात इसकी आखिरी रात हो। तो हम आप दोनों से सुबह मिलेंगे। तो बताइए बीरबल, क्या हाल है आपके आदमी के?
6: वो बाहर ही रुका है, क्यों ना उसी से पूछ ले।
7: गंगाराम हाजिर हो।
9: आदाब जहाँपना।
4: तो कहो, कैसी रही रात?
9: हुजूर, आसानी से तो नहीं, पर ऊपर वाले की दया से किसी तरह कट गई।
4: तुम कहना चाहते हो कि तुमने सारी रात तालाब में गुजारी? मुझे यकीन नहीं आता।
9: ये सच है जापाना, ये सिपाही मेरे गवाह है।
4: सच बताओ, क्या इस आदमी ने सारी रात तालाब में गुजारी?
10: जी हाँ जापाना, सुबह होने पर ही ये पानी से बाहर निकला। हम दोनों ने कड़ी नजर रखी।
4: हमें इस बात का यकीन नहीं हो रहा है। कैसे किया तुमने ये सारी रात? क्या किया वक्त बिताने के लिए?
9: हुजूर, शुरू में तो बहुत मुश्किल था, ठंड के मारे मैं अकड़ गया था। फिर तालाब के किनारे एक दीव को देखने लगा और सारी रात उसे देखते और भगवान का नाम लेकर गुजार दी।
4: हाँ, अच्छा तो ये राज है। तुम्हें उस दिए से गर्मी मिल रही होगी, इसलिए तुम इतनी देर उस ठंडे पानी में रह सके। हम जानते थे, वरना ऐसा कर पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होता।
9: पर जापना,
4: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे धोखा करने की? फिर भी हम तुम्हें सजा नहीं देंगे, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल था। परिणाम के बारे में तुम भूल ही जाओ।
9: पर जापना,
4: बस बहुत हो चुका, हम और कुछ सुनना नहीं चाहते। सिपाहियों, इस आदमी को दरबार से बाहर ले जाओ। बीरबल, इस बार आपको अपनी हार माननी ही पड़ेगी। आप गलत साबित हुए।
6: आपके खिलाफ जाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ।
4: कोई बात नहीं बीरबल, सभी कभी ना कभी गलती करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे ख्याल से आज हम ईरान के शाह के लिए तोहफे का फैसला करने वाले थे। क्या आपके पास कोई सुझाव है?
6: माफी चाहता हूँ हुजूर, पर कुछ घरेलू परेशानी की वजह से मैं अभी घर जाने की इजाजत चाहता हूँ। मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा।
4: जरूर बीरबल, आप जा सकते हैं, पर जल्द ही लौट आइएगा। बीरबल कहाँ है? क्या वो लौटे नहीं?
6: नहीं हुजूर, अभी तक नहीं लौटे। क्या उन्हें बुलाने के लिए किसी को भेजा जाए?
4: हाँ, एक सिपाही को भेजिए और उन्हें जल्द दरबार पहुंचने को कहिए। तब तक आप बाकी कार्यवाही कर सकते हैं।
6: जापना, इस साल देश भर से आए लगान की रकम कुछ इस तरह थी।
10: आदाब जापना, बीरबल ने कहा है कि वो खाना खा रहे हैं और खाना खाकर दरबार में हाजिर हो जाएंगे।
4: आज बीरबल को हो क्या गया है? इतनी देर से तो वो कभी खाना नहीं खाते। हमारे ख्याल से अब तक उनका खाना हो गया होगा। तुम एक और घोड़ा लेकर उनके घर जाओ और उनसे कहो कि जितनी जल्दी हो सके दरबार पहुंचे। तुम अकेले क्यों आए? बीरबल कहाँ है? क्या हमने तुमसे कहा नहीं था कि उन्हें साथ लेकर आना?
10: हुजूर, मैं उनके घर गया था आपका संदेशा लेकर, पर बीरबल भोजन तैयार कर रहे थे और उन्होंने आपको कहने के लिए कहा है कि वो जैसे ही हो जाएगा वे दरबार में हाजिर हो जाएंगे।
4: हमारे ख्याल से हमें खुद जाकर देखना पड़ेगा कि बीरबल क्या कर रहे हैं। हम इसी वक्त उनके घर जाएंगे।
9: आदाब जापना।
6: जहांपना, अगर मेरी वजह से आपको किसी भी तरह की तकलीफ हुई हो तो माफी चाहता हूँ।
4: क्या हो रहा है बीरबल? सिपाही ने कहा कि आप खाना खा रहे हैं, और ये सब माजरा क्या है?
6: हुजूर, वो जो ऊपर हांडी टंगी हुई है उसमें मेरा भोजन है। मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। अफसोस, अब तक बनी नहीं है।
4: बीरबल, आप ठीक तो हैं? आग से इतनी ऊंचाई पर हांडी टांगने से खिचड़ी कैसे पकेगी?
6: हुजूर, मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। क्यों नहीं पकेगी? हांडी सीधे आग के ऊपर टंगी है।
4: बीरबल, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? खाने को जब तक गर्मी ना मिले वो पकेगा कैसे? और अगर आप हांडी को आग से इतना ऊपर रखेंगे तो गर्मी कैसे पहुंचेगी?
6: जहां पना, मैंने सोचा कि अगर गंगाराम को दूर लगे एक दिए से गर्मी मिल सकती है तो आग से थोड़ा ऊपर टांगने पर खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती?
4: अच्छा अच्छा, हम आपकी बात समझ गए। ठीक है, आप जीते। अपने आदमी के साथ आप जल्दी दरबार में हाजिर हों, उसे उसका इनाम मिल जाएगा।
11: शुक्रिया हुजूर।
4: और ये आपके लिए बीरबल, एक शहंशाह को उसकी गलती का एहसास कराने में बड़ी हिम्मत चाहिए, और ये दिखाने के लिए आपने जो रास्ता चुना वो भी बड़ा दिलचस्प था। शाबाश।
12: राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह।
6: शुक्रिया हुजूर।

दोस्तों, आपने अभी सुना अकबर और बीरबल की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मेरी दुनिया में। तब तक आपकी दोस्त आरजे रंजिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे अकबर और बीरबल की कहानी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेडियो टांडिया भील 90.8 FM खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों के लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक साझा करते आया है। किसान साथियों, हमेशा रेडियो टांडिया भील 90.8 FM की यही कोशिश रही है कि हमारे किसान भाइयों तक वह उन्नत कृषि की नई पद्धतियों को, नई तकनीकों को आप तक पहुंचाए, जिससे हमारा जो किसान है वो अपनी आजीविका को सशक्त बनाए, साथ ही हमारी कृषि में हो रहे बदलावों को समझ पाए और अपनी कृषि में नई कृषि को कर सके। साथ ही अगर हम देखें, हमारा जो झाबुआ का किसान है वो अभी मुख्यतः खाद्य फसलों की ही फसल करता आ रहा है। तो किसान साथियों, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें जरूरत है कि हम यहाँ पर फलों की, फूलों की और भी अन्य प्रकार की जो खेती है उसको भी किया जा सकता है और यह संभव है। और यहाँ पर इसके लिए हमें जो किसान जो इनकी खेती करना नहीं जानते हैं, उसके लिए केविकी जो संस्था है हमारे झाबुआ जिले में उपस्थित है। तो केविकी के मदद से भी हमारा जो किसान है वो प्रशिक्षण ले सकता है और प्रशिक्षण के साथ हमारा जो केविकी का जितने भी अधिकारी है वो हमें मदद करेंगे हमारी फसलों को देखने में, हमारी फसलों का निरीक्षण करने में और समय समय पर फसलों में हो रहे बदलावों को, फसलों में हो रहे कीटों और जो बीमारियां हमारी फसलों में आती है उसके निदान के लिए भी हमेशा हमारे लिए तत्पर रहेंगे। तो किसान साथियों, यहां पर हमें अपना रुख करने की जरूरत है अलग अलग कृषि के ऊपर। तो किसान साथियों, आप में से जो भी किसान साथी अगर भिन्न भिन्न कृषि करना चाहता है तो केविकी में जाकर अपनी जो अपनी पसंद की कृषि को लेकर वहां जाकर चर्चा में शामिल हो सकता है और जो भी वहां से मदद मिलती है उसके के द्वारा हम हमारे कृषि में एक नवीनता ला सकते हैं कि बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि अभी तक जब हम जहां तक अभी हम जानते हैं कि हमारा जो झाबुआ का किसान है वो मुख्यतः दलहन और खाद्य फसलों में मक्का, गेहूं, कपास, सोयाबीन इन्हीं फसलों में ही अभी रह गया है। इसके अलावा बहुत ही कम फसलें हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमारे लिए अच्छा मौका है, हम यहाँ पर फलों की खेती कर सकते हैं, फूलों की खेती कर सकते हैं और भी अन्य प्रकार की खेती की जा सकती है और वो भी कम से कम लागत में। तो कैसे हो पाएगा ये संभव, जानेंगे हम रेडियो टांडिया भील के खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से। तो किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानेंगे आज भी कुछ नई कृषि के बारे में, कुछ और नई उन्नत कृषि को लेकर आज के इस दिन में हम चर्चा करेंगे और मिलेंगे कुछ और नए एक्सपर्ट से। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांडिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: पालन ग्रामीण समाज का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में भी गांव और खेतों में खुशहाली सबसे ऊपर है और ये खुशहाली तब आएगी जब हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे, किसान और पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोगों यानी FMD और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पशु नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की है। साथ ही देश में दुग्ध क्षेत्र के विस्तार के लिए भी स्टार्टअप ब्रांड की शुरुआत की है। तो क्या कुछ कहा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम को लेकर, आइए देखते हैं।
1: पशुधन को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार बनने के बाद 100 दिन में जो बड़े फैसले लिए गए उनमें से एक पशुओं के टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। इस अभियान को विस्तार देते हुए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। साथियों, हमारे पशु बार बार बीमार न हो उनके इलाज पर किसानों को बेवजह खर्च न करना पड़े, पशुपालक को खर्च न करना पड़े, इसी सोच के साथ आज 13,000 करोड़ रुपए के एक बड़े अभियान की शुरुआत की गई है। FMD यानी फूट एंड माउथ डिसीज, उससे मुक्ति। पूरा भारत इस बीमारी से पशुओं को मुक्त करें, इसका एक व्यापक अभियान हम आरंभ कर रहे हैं। FMD यानी फुट टू माउथ डिसीज, यानी हमारे उत्तर प्रदेश के गांवों में कुछ इलाकों में उसके लिए शब्द प्रयोग रहता है मुंहपका। ये मुंहपका जो बीमारी है उसके उपाय, बीमारी से मुक्ति का ही अभियान है। 51 करोड़ गाय भैंस भेड़ बकरी और सुअरों को साल में 2 बार टीके लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, जिन पशुओं का टीकाकरण हो जाएगा उनको पशु आधार यानी यूनिक आईडी देकर कानों में टैग लगाया जाएगा। पशुओं को बाकायदा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किया जाएगा। भाई और बहनों, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। हमारा पशुधन स्वस्थ रहे, पोषित रहे और पशुओं की नई और उत्तम नस्लों का विकास हो। भाई और बहनों, भारत के डेयरी सेक्टर को विस्तार देने के लिए हमें इनोवेशन की जरूरत है, नई तकनीक की जरूरत है। ये इनोवेशन हमारे ग्रामीण समाज से भी आए, इसलिए आज स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज, मैं खास करके नौजवानों को कहता हूं, बैंगलोर हैदराबाद में स्टार्टअप की जाल पर काम करने वाले देश के होनहार नौजवानों को विशेष रूप से कहता हूं, IIT में पढ़ने वाले होनहार छात्रों को विशेष रूप से कहता हूं, आइए स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज के अंदर जिसकी आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, आप उससे जुड़िए और आप, हमें समाधान खोजना है कि हरे चारे की उचित व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो, उन्हें भी पोषक आहार कैसे मिले, प्लास्टिक की थैलियों का सस्ता और सुलभ विकल्प क्या हो सकता है, ऐसे अनेक विषयों का हल देने वाले स्टार्टअप शुरू होने चाहिए, शुरू किए जा सकते हैं और भारत सरकार आज उस चैलेंज को आपके सामने लॉन्च कर रही है।
3: आइए चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट।
4: हमारे देश में काफी संख्या में लोग पशुपालन से जुड़े हैं। पशु ग्रामीण समाज का आधार है। गांव के लगभग हर घर में पशु पाले जाते हैं, जो उनके घर का ही एक हिस्सा होते हैं। और हो भी क्यों नहीं, इन्हीं पशुओं से मिलने वाले दूध आदि के जरिए पशुपालक को न सिर्फ आमदनी होती है, बल्कि गांव से बाहर शहरों की भी दूध घी आदि की जरूरत को वो पूरा करता है। लेकिन पशुपालन से लाभ तभी ले पाएंगे जब हमारे पशु एकदम स्वस्थ रहेंगे। पशुओं को स्वस्थ और दुधारू बनाए रखने के लिए पशुपालन से जुड़ी कुछ जरूरी बातों का ध्यान पशुपालकों को रखना चाहिए। पशुओं में मुख्य रूप से होने वाले रोग हैं खुरपका और मुंहपका। इस रोग में पशुओं के मुंह और खुर में छाले हो जाते हैं। ये छाले धीरे धीरे घाव में तब्दील हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पशु ना ही चरने के लिए बाहर जा सकता है और ना ही कुछ खा पाता है। दुधारू पशुओं में इस बीमारी से दूध देने की क्षमता भी कम हो जाती है। छोटे पशुओं में रोग जल्दी फैलते हैं। इसके प्रकोप से बछड़े जल्दी मर जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में पशुओं के खुरपका और मुंहपका रोग यानी FMD और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी NACDP की शुरुआत की है। पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में कुल 12,652 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन बीमारियों में कमी लाने के प्रयास के तहत देश में 60 करोड़ से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए देश के सभी 687 जिलों के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में एक राष्ट्रव्यापी कार्यशाला की भी शुरुआत की गई है।

0: हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 एक बहुत बड़ी स्कीम, दो तीन स्कीमों का उन्होंने घोषणा करी और उसका इनॉग्रेशन किया उस स्कीम्स का, जिनका सीधा फायदा हमारे पशुपालन व्यवसाय को और जो पशुपालक हैं हमारे देश के उनको बहुत ही मिलने वाला है। ये जो मुख्य थी कि जो हमारे पशु हैं, ये बात बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम है हमारा देश, और लेकिन अभी उनकी उत्पादकता कम है, तो उस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, पशु को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने जो मुख्य जो पशुओं की जो दो बीमारियां हैं, खुरपका मुंहपका और ब्रुसेलोसिस, ये जो दो बीमारियां हैं जिनकी वजह से उत्पादन घट जाता है, जिनकी वजह से पशु में बांझपन आ जाता है ब्रुसेलोसिस से, इसके अलावा एबॉर्शन हो जाता है, तो इन बीमारियों से हमारे देश के पशुओं को बचाने के लिए, साथ ही साथ इन दोनों बीमारियों का उन्मूलन करने के लिए कि ये बीमारियां वर्ष 2025 तक इनका पूरा तरह नियंत्रण हो जाए और वर्ष 2030 तक ये बीमारियां हमारे देश से, हमारे पशुओं से बिल्कुल खत्म हो जाएं, तो इसकी जो है शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 तारीख को करी। इसके लिए मुख्य रूप से 12,652 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, क्योंकि ये दोनों बीमारियों का जो नियंत्रण होता है वो हमारे देश में हम टीकाकरण के माध्यम से करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी घोषणा में उस दिन ये बताया कि प्रथम बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना बड़ा बजट रखा है और इनका जो टीकाकरण के माध्यम से इन बीमारियों का नियंत्रण करा जाएगा और इनका कंट्रोल होगा 2025 और 2030 में। तो ये जो दो स्कीम्स हैं जिसका फायदा हमारे देश के सभी प्रांतों के, ऐसा नहीं है कि खाली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है या भारत सरकार की है, तो ये भारत सरकार की जो स्कीम जो उन्होंने लॉन्च करी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इससे सभी हमारे पशुपालक, चाहे वो मध्य भारत के हों, चाहे दक्षिण भारत के हों या उत्तर पूर्व भारत के हों, और सभी पशुओं में विशेष रूप से गाय भैंस बकरी भेड़ सुअर, तो इन व्यवसाय में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि हमें जो है 2022 तक जो है किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, और आमदनी दुगनी करने में जैसा हमारे पशुपालक भाई जो प्रोग्राम को देख रहे हैं वो जानते हैं कि उसमें पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है, तो दुगनी आमदनी करने में पशुपालन का जो महत्व है उसको समझते हुए मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी स्कीम जो है पहली दफे भारत सरकार ने लॉन्च करी है
1: जी।
0: और इसका निश्चित रूप से लाभ हमारे देश के सभी पशुपालकों को मिलेगा।
1: बिल्कुल, वही बांबल जी आपका क्या कहना रहेगा इस बारे में, आप क्या कुछ मुख्य बातें इसमें जोड़ना चाहेंगे, क्या है ये स्कीम और किस तरीके से ये काम करेगी और कैसे जो हमारे पशुपालक हैं वो इससे लाभ ले पाएंगे, खासकर अगर हम बात करें यहाँ पर कि उनकी आय को दोगुना किस तरह से किया जा सकता है इस स्कीम के जरिए, अगर उस नजरिए से देखें तो।
2: जी हाँ, जैसे कि आपने अभी सुना है कि जो भारत सरकार ने जो स्कीम को लॉन्च किया गया है, ये एक स्कीम टोटल 13,343 करोड़ की है, जिसमें से 12,652 करोड़ जो है सिर्फ एफएमडी के लिए निर्मूलन के लिए दिया गया है, जिसमें अभी ये 5 साल में सरकार का जो उद्देश्य है वो एफएमडी को या मुंहपका या खुरपका रोग को कंट्रोल करना है, उसी के साथ साथ जो ब्रुसेलोसिस, जो जैसे पाठक साहब ने बताया है कि जिसमें बांझपन और गर्भपात होता है पशुओं का, तो उसके कंट्रोल के लिए भी ये स्कीम 5 साल के लिए चालू की गई है, जिसमें सरकार का उद्देश्य है कि 2025 तक इस बीमारी के ऊपर नियंत्रण किया जाए और उसके बाद उसके उन्मूलन का कार्यक्रम भी किया जाएगा। तो अब जिसमें आप अगर देखेंगे एक मुंहपका खुरपका जो बीमारी है
1: जी।
2: ये अभी साहब ने बताया, पाठक साहब ने बताया कि इससे जो दूध में कमी आ जाती है, गाय भैंस जो पशु है वो बीमार रहने लगते हैं, इनके प्रजनन क्षमता में भी कमी आती है, तो जिसका मतलब है कि पशुओं की जो उत्पादकता है वो कम होती है, तो इनमें अगर हम उसके निर्मल नियंत्रण तो पशुओं में उसकी उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों को फायदा होगा। इसमें अगर आप अभी देखें तो भारत सरकार ने ये 100% धनराशि, केंद्रीय धनराशि के साथ स्कीम का स्कीम को लॉन्च किया गया है, और जिसमें 51 करोड़ पशुओं को साल में 2 बार टीकाकरण किया जाएगा
1: जी।
2: और इस टीकाकरण से ये फायदा होगा कि जो पशुओं है अगर इनके साथ एक साथ सबका वैक्सीनेशन किया गया तो इनमें जो प्रतिशक्ति है वो आएगी और इस बीमारी से उनका नियंत्रण किया जाएगा, बीमारी से दूर रखा जाएगा। तो वैसे

0: ही ब्रुसेलोसिस में भी जो बछिया है, 4 से 8 महीने की जो बछिया है, उनमें ये अराउंड 36 मिलियन जो बछिया है उसमें भी लसीकरण किया जाएगा
1: जी।
0: वो 5 साल तक चालू रहेगा। तीसरे जो बीमारी पशुओं से दूर रहेगी उनके बीमारी से बच जाएंगे और जो किसान भाइयों की जो है उत्पादकता, पशुओं की उत्पादकता में फायदा होगा।
1: बिल्कुल उमेश सिंह जी, आपसे मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि जैसे हम बात कर रहे हैं खुरपका मुंहपका की, तो अभी जो हमारे पशु हैं, जो हमारे दुधारू पशु हैं, उनकी क्या स्थिति है खुरपका मुंहपका को लेकर? क्या बहुत तेजी से ये फैल रहा है या फिर अभी तक इस पर कुछ नियंत्रण पा लिया गया?
2: मैं सब किसान भाइयों को इसके विषय में जानकारी देना चाहता हूं। आप देखें, अगर जो भी FMD है, ब्रुसेलोसिस है, इससे काफ़ी भारी नुकसान होता है। अगर FMD हो जाए तो जानवरों में देखेंगे कि बुखार बहुत हो जाएगा और तुरंत ही उसका दुग्ध उत्पादन कम होने लगेगा और छोटे बच्चे हैं उनमें मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से इस बीमारी से काफ़ी नुकसान होता है और इरेडिकेट हो जाए, समाप्त हो जाए या रोक हो जाए पूरी तरह से कम से कम आमदनी में नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा किसान भाइयों को। तो इसके ऊपर ये जो परियोजना या जो लॉन्च किया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, ये बहुत ही उपयोगी होगा, फायदेमंद होगा और जो उद्देश्य है डबलिंग इनकम का उसमें भारी इजाफा होगा। तो इन पे रोकथाम करना और उसको समय से इसका टीकाकरण करना और समाप्त करना ये बहुत ही आवश्यक है हमारे देश के लिए, जिससे दुग्ध उत्पादन और आमदनी हमारे किसान भाइयों की बढ़ सके।
3: इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने ये योजना 100% जो है पोषित है, तो जो इसका टीकाकरण होगा किसानों को उसमें कोई पैसा नहीं देना है, उसमें उनको सिर्फ ये करना है कि जहां उनका पशु चिकित्सालय है वहां अपने पशु को ले जाना है और उसका टीकाकरण कराना है। तो ये हुआ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट लॉसेज में ये और हो जाता है कि जानवर हीट में नहीं आएगा या दूध घट गया तो इलाज भी कराना पड़ेगा, तो ये इनडायरेक्ट लॉसेज में, चारा नहीं खाएगा, तो इस तरह से जो है पूरा नुकसान होता है पशुपालकों
1: जी। दास जी, यहाँ पर आपकी भी मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे स्कीम के बारे में, आपको क्या लगता है एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कि कितनी कारगर हो सकती है ये स्कीम और कैसे फायदा?
4: ये पहले से स्कीम का नया नाम जो है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है इसको, बट पहले भी ये स्कीम चला था, बट क्या हुआ था कि पहले क्या होता था 60-40 का रेशियो में चलता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देती थी, 40% स्टेट से आता था। उसमें होता है कि ये जो टीकाकरण होता है, अगर एक भी टीका आप मिस कर जाओगे तो उसको पूरा इराडिकेशन नहीं हो सकता फिर इसका। तो इसमें क्या 100% सेंट्रली फंडेड है, तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे राज्यों क्या करते थे, अपना जो हिस्सा है वो दे नहीं पाते थे या लेट में देते थे, तो उसके वजह से टीकाकरण जो शेड्यूल था वो गड़बड़ हो जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा मैसिव बीमारी है, मतलब अगर FMD फ्री इंडिया हो जाता है तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हम लोग को देता है इन टर्म्स ऑफ मीट एक्सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो ये बहुत बड़ा चीज है क्योंकि जब तक डिजीज है आपका यील्ड में इंपैक्ट करता है और आपका जो ग्लोबल मार्केट और इवन डोमेस्टिक मार्केट इज ऑल्सो इम्पैक्टेड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द मीट और मिल्क।
1: बिल्कुल बिल्कुल। पाठक जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की लक्षण जो है वो उसमें दिखाई देते हैं, मुंह के अंदर आपने बताया छाले होते हैं, खुरों में किस तरीके के लक्षण होते हैं और क्या उपचार है, कितने समय में जो है वो इसका टीकाकरण करवाना चाहिए हमारे किसानों को?
3: देखिए, जब जैसे ही जो खुरपका मुंहपका का पहला लक्षण जो है हमारे पशुपालक देखेंगे कि अगर आपका गाय और भैंस में मुख्य रूप से बीमारी है और जो भेड़ बकरी है उनके अंदर इतने ज्यादा लक्षण नहीं आते हैं, तो आप पहला देखोगे कि आपका जो पशु है वो उसको बुखार हो जाएगा, सुस्त रह जाएगा और उसका दूध उत्पादन जो है वो घट जाएगा। तो जब वो सुस्त हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, तो आप देखोगे कि वो चारा कम खा रहा है या पानी नहीं पी रहा है। साथ ही साथ अगर उसके मुंह, जैसा मैंने बोला और इसके नाम में भी है कि इसके मुंह में छाले हो जाते हैं और उसके मुंह से जीभ आप देखोगे कि उसकी लार निकलती है, लार टपकती रहती है मुंह से, और खासकर जब हम मुंह का परीक्षण जब हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो मुंह खोल के उसको देखेगा तो लार टपकेगी, लगातार लार टपकती रहती है। साथ ही साथ उसके जब खुर देखेंगे, क्योंकि जो खुर वाले जानवर होते हैं बीमारी उन्हीं की है
1: जी,
3: तो जो खुर में देखोगे तो खुर के बीच में भी आप देखोगे कि उसमें छाले हो जाएंगे उसके अंदर छोटे छोटे, और तो उससे देख के किसान पता कर लेता है। साथ ही साथ जो दूध दे रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि तुरंत दुग्ध उत्पादन घट जाएगा, चारा खाना बंद कर देगा, बुखार हो जाएगा, तो ये इसके मुख्य लक्षण हैं। अब हम करें क्या, तुरंत अपने पशुपालक जो जहां आपका वेटनरी हॉस्पिटल है वहां जरूर जाए, जाएं, किसी वैसे बिना वेटरनरी डॉक्टर को न दिखाएं और अपना इलाज शुरू न करें। साथ ही साथ क्योंकि ये संक्रामक रोग है, गांव में अगर एक पशु को भी हो गया है तो जैसे
1: तो अभी
3: सब में फैल जाएगा। इसीलिए जैसे अभी संदीप जी भी कह रहे थे और इस स्कीम के अंदर ये बात है कि भारत सरकार ने इसको 100% फंडिंग इसलिए किया है कि ये जिस तरह से हमने पोलियो उन्मूलन का प्रोग्राम चलाया और आज हमारा देश पोलियो से वो है
1: मुक्त
3: है, तो वही सेम उस तरह की अप्रोच हमको जो है खुरपका मुंहपका के लिए। तो आप अपने पशु को, पशुपालकों को उसके देखें, उसको अलग कर दें। अगर आपके पास 6 पशु हैं, 6 में से एक पशु को ये लक्षण आ रहा है तो उनको अलग कर दीजिए और इसका इलाज भी साथ में कराएं, जो लोकल जो जो जो लीजन्स बन गए जो वो आ गए हैं। साथ ही साथ टीकाकरण बहुत जरूरी है, तो इसका जो टीका है वो साल में 2 बार लगता है। खुरपका मुंहपका का जो टीकाकरण का कार्य सरकार का है वो 2 बार लगाया जाता है, तो एक जैसे बरसात के दिनों में जो है ना, और आजकल ही ये जो इस समय की जो मौसम चल रहा है इस समय में खुरपका मुंहपका रोग बहुत होता है
1: जी।
3: तो एक चीज ध्यान जरूर देनी है कि हमारा एक भी गांव का एक भी पशु इसके बिना टीकाकरण से न बचे। यानी अगर आपके पास 50 पशु हैं, आपके पास 2 पशु हैं, आपके पास 1 पशु है, उसका टीकाकरण निश्चित रूप से कराएं।
1: जी बिल्कुल। बंबल जी, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे अभी हमने यहाँ पर खुरपका मुंहपका के संबंध में बहुत ही विस्तार से जो है पाठक जी से जानकारी यहाँ पर हमने प्राप्त की है, लेकिन इसके अंदर एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी, जैसे बच्चों में जब वो छोटे होते हैं तभी से जो है वो टीकाकरण शुरू करवा दिया जाता है, तो क्या इस तरीके की कोई भी टीकाकरण क्या पशुओं के अंदर भी लागू होता है कि अगर जब कटरा कटनी हो तो उसी दौरान अगर उनको वैक्सीनेशन दे दी जाए तो क्या पता ये बीमारी आगे फैले ही ना, क्या बताएंगे इसमें आप?
0: जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। ये जो बीमारी है जैसे मुंहपका खुरपका जो बीमारी है, ये छोटे बच्चों से बछड़ा जो 3 या 4 महीने की बच्चियाँ जो है वहाँ से हम दिया जाता है। और ये स्कीम की तो विशेषता ही ये है कि जैसे संदीप जी और पाठक जी ने बताया कि इसमें एक तो हम जो जानवर है पशुए है उनको इससे एक टैगिंग दिया जाएगा जो यूनिक आईडी जिसको पशु आधार बोलते हैं। जैसे बछड़े में अगर 4 महीने के इसमें हम वैक्सीनेशन करें तो इनको टैगिंग से चिन्हित किया जाएगा और वो जो है उनकी सब पूरी इंफॉर्मेशन जानवर की छोटे बचपन से वैक्सीनेशन डेट से लेके ये सब उसमें एक हमारा सॉफ्टवेयर है इनाफ पशु उत्पादकता सॉफ्टवेयर जो है उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसका फायदा होगा कि जब दूसरी बार आपको वैक्सीनेशन करना है तो ये पता चल जाएगा कि इसका कब 6 महीने बाद ड्यू है। उसी तरह से जो उनको जो पशुओं के जो लसीकरण टीकाकरण करने के बाद इनको एक वैक्सीनेशन कार्ड भी दिया जाएगा, एनिमल हेल्थ कार्ड जिसका नाम है, ये भी दिया जाएगा। ये पशुपालक अपने पास रखेंगे और इसमें उनकी सब पूरी जानवर की डिटेल रहेगी, तो उसे जो नेक्स्ट राउंड है, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन है ये कैंपेन मोड में किया जाएगा, जैसे 21 से 30 दिन के बीच में जो भी गांव है उसमें किया जाएगा, सो दैट सब पूरे जो एनिमल है एक साथ उनका टीकाकरण किया जाए और पशुओं को दूसरा टीकाकरण करने के लिए, इसलिए जो डेट जो है वो पशुपालकों के साथ वैक्सीनेशन कार्ड में भी दिया जाएगा।
5: किसान साथियों, अभी आपने पशु को लेकर बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, मुंहपका और खुरपका से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाटा फील्ड 90.8 के साथ।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं पशुओं से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: किसान भाइयों, ब्रुसेलोसिस बहुत ही गंभीर बीमारी है। आप देखेंगे अगर ब्रुसेलोसिस हो गया, चाहे वो कहीं भी बुल में ज्यादातर, तो वो बुल अगर पॉजिटिव है, गाय भी है, तो बुल को पॉजिटिव है तो किसी भी तरह से आप उसको आइसोलेट कर दें, उसको कभी भी ब्रीडिंग के लिए उपयोग में ना लाएं, ना उसका सीमेन यूज करें, क्योंकि जब भी अगर इस तरह से ब्रीडिंग हो गई तो उसकी भी जो भी बच्चा होगा कुछ ही दिनों में जो वो एबॉर्शन हो जाएगा। और इस तरह की ये ब्रुसेलोसिस बीमारी कॉन्टेजियस बीमारी है, इससे बचाव करने के लिए आप इमीडिएट उसको अलग कर दें, उसको अपने हर्ड में ना रखें, और ये लगातार इसका टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि टीकाकरण ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप ब्रुसेलोसिस से बच सकते हैं। एक बार पॉजिटिव हो गया तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा हर्ड नहीं है, उसमें से उसको अलग रखना भी बहुत एक मुश्किल टास्क होगा, समस्या होगी। इसलिए हर जानवर का टीकाकरण होना चाहिए। ब्रुसेलोसिस एक गंभीर बीमारी है, टीकाकरण ही एक अच्छा उपाय है, माध्यम है जिसके द्वारा आप इसका बचाव कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, और कार्यक्रम में चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं एक और खास रिपोर्ट।
3: हमारे देश में आधी से ज्यादा आबादी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि और पशुपालन पर आश्रित है। ऐसे में कृषि और पशुपालन में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने से न केवल ये क्षेत्र सशक्त बनेंगे बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। देश में स्किल इंडिया के साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं। डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए गांव के युवा अपने अपने आइडिया को लेकर आगे आए, इसके लिए सरकार की ओर से काफी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी देश में दुग्ध क्षेत्र के विस्तार के लिए नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को समय की जरूरत बताया। हमारे गांव से इस प्रकार की नई खोजें की जाएं, इसके लिए हाल ही में स्टार्टअप ब्रांड चैलेंज की शुरुआत भी की गई है। इसके जरिए युवाओं की अवधारणाओं को आगे ले जाने और उनके लिए समुचित निवेश जुटाने के लिए भी गंभीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर तो तैयार होंगे ही, साथ ही पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी। वहीं दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में भारत की पहचान भी बनी रहेगी।
2: तो अभी आपने देखी विशेष रिपोर्ट, और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। पाठक जी, अब मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि ब्रुसेलोसिस के क्या कोई लक्षण है जो जिसको दिखाई देने पर जो हमारे पशुपालक हैं वो जिससे पहचान कर सकें कि जो हमारा पशु है वो ब्रुसेलोसिस से ग्रसित है।
4: देखो, ब्रुसेलोसिस का जैसा अभी डॉक्टर उमेश ने बता रहे हैं कि विशेष रूप से इसके दो मुख्य लक्षण आते हैं कि एक तो अगर बार बार एबॉर्शन हो रहा है जो है पशु में, दूसरी बात यह है कि जो खासकर जो बुल है जिसको हम सीमन कलेक्शन के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो उस बुल के अंदर इनफर्टिलिटी आ गई है। और ये जो ब्रुसेलोसिस बीमारी है, सबसे बड़ी इसकी विविधता यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है। अगर एक बार ये बीमारी हो गई तो इसका कोई इलाज नहीं है। वो जो पशु है, चाहे वो मादा है चाहे वो नर है, वो संक्रमित रहेगा। और वो अगर संक्रमित है, अगर आपके पंचायत लेवल पे अगर कोई बुल है, सांड जैसे पहले लोग गांव में रखते हैं कि भाई एक सांड रखा और वो गांव में ब्रीडिंग के लिए प्रयोग करते थे, तो वो परमानेंट ही संक्रमित बना रहेगा। तो आप ये देखोगे कि इसका जब टेस्ट करेंगे तो जैसे ये निश्चित रूप से अब आवश्यक हो गया है कि आप जब भी जानवर चाहे मेले से खरीदें या आपने किसी साथी का से जानवर परचेज करते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस ये एक ऐसी बीमारी है जिसका भी कोई इलाज नहीं है, ऐसे ही ब्रुसेलोसिस का कोई इलाज नहीं है। और मुख्य रूप से जो मुख्य सिम्टम है इसके, या तो गर्भपात हो जाएगा या इनफर्टिलिटी हो जाएगी उसके अंदर, मेल के अंदर। तो इनका टेस्ट जरूर करा के रखें। ये जो बीमारी है ब्रुसेलोसिस बीमारी, सिर्फ आपके पशुओं की बीमारी नहीं है, इससे ये बीमारी हमारे पशुपालकों को भी हो सकती है। इनको हम जूनोटिक डिसीजेज बोलते हैं। तो ये जूनोटिक बीमारियां कौन सी हैं, जो पशुओं से मनुष्यों में हो जाती हैं, और इसका इलाज सिर्फ जो है टीकाकरण है। तो टीकाकरण के लिए भारत सरकार ने जो ये स्कीम करी है, इसका लाभ हमको उठाना है, हमारे पशुपालकों को उठाना है।
2: बिल्कुल बब्बल जी, यहाँ पर यही मैं जोड़ना पहले भी चाह रही थी, क्योंकि कई बार हम लोग भी गाँव में जाते हैं तो हमारे से कई जो पशुपालक है, जो किसान है, वो कहते हैं कि हमें तो इस योजना के बारे में कोई जानकारी जो है वो नहीं है, हम इस स्कीम का लाभ कैसे उठाएं, हमें तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हमारे किसान हैं, चाहे पशुपालक हैं, सरकार की जो जिस तरीके की ये स्कीम आ रही है जिनका ये लाभ ले सकते हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनको इन तक जानकारी पहुंचे? क्या किसी तरीके की गोष्ठियां की जा रही है, किसान मेले में किसी तरीके की कोई अनाउंसमेंट की जाती है, किस तरह से किसानों तक ये ज्यादा से ज्यादा जो जानकारियां हैं वो पहुंच पाए योजनाओं की?
5: ये जो योजना पशु रोग, राष्ट्रीय पशु रोग निदान का कार्यक्रम को जो मंजूरी दी गई है, ये इसमें 13,333 करोड़ की जो टोटल स्कीम है, इसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, जन जागृति प्रोग्राम के लिए खास विशेष रूप से महत्व दिया गया है। जैसे अभी ब्रुसेलोसिस की बात चल रही थी, इसमें भी एक जो हमारी स्कीम का जो विशेष भाग है वो है कि 4 से 8 महीने की बच्चियों को, जो फीमेल बोवाइंस है, मतलब गोवंशीय जो कैटल और बफेलो की जो फीमेल है बच्चियां है, उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। जैसे अगर ये 5 साल तक वैक्सीनेशन उनको किया जाए, मतलब हर साल एक ही टीका देना है हर बच्चियों को, तो ऐसे 5 साल अगर ये ऐसे कार्यक्रम रहा जाए तो टीकाकरण किया जाएगा, तो एक पूरा हर्ड इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं वो डेवलप होगी, और धीरे धीरे इस रोग से ये जो हमारे जानवर है इससे मुक्ति पाई जाएगी। और अवेयरनेस प्रोग्राम में अब हर गांव में, हर विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इसकी योजना की गई है। हर जगह पैम्पलेट हो, लीफलेट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन सभी के द्वारा इनको जो है जन जागृति की जाएगी।
2: बिल्कुल।
4: और इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब 11 तारीख को, 11 सितंबर को जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, तो उसी समय जितने भी हमारे देश में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आपने कहा ना जानकारी कैसे किसानों, तो कृषि विज्ञान केंद्रों में भी संगोष्ठी की जा रही है, और उनको कृषि विज्ञान केंद्र क्योंकि सीधे किसानों से जुड़े होते हैं, वहां पर हमारे पशुपालन से जुड़े हुए हमारे विशेषज्ञ होते हैं, तो सारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर इसके बारे में सूचना दी जा रही है, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रोग्राम करे जा रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो, लोग ज्यादा से ज्यादा क्योंकि ये नई बीमारी जुड़ी है ब्रुसेलोसिस, बीमारी नई नहीं है लेकिन ये परियोजना पहली दफे जुड़ी है। डॉक्टर बम्बल बता रहे हैं कि ब्रुसेलोसिस पहले हमारे नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम में नहीं थी, तो इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को भी जोड़ा गया है।
2: डॉक्टर दास जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे
6: में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये दोनों प्रोग्राम में ये पूरा जो टारगेट है कि पूरा 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर छूट जाए उसका दिक्कत हो सकता है। बट प्रॉब्लम मतलब चैलेंजेस जो फ्यूचर में देख रहा हूँ कि अभी जो आंकड़ा ये बता रहा है कि इसमें करीब 100 करोड़ डोजेस चाहिए, उसमें जो अवेलेबिलिटी है ओवर 50 करोड़ का है, तो उसका जो मेडिसिन है जो दिया जाएगा, उसका प्रोडक्शन फैसिलिटी, उसको टाइमली प्रोडक्शन, टाइमली सप्लाई, वो बड़ा की होगा। अब कम्युनिकेशन के बात करें, कम्युनिकेशन सबसे बड़ा की है, बट आफ्टर दैट कम्युनिकेशन लेने के बाद भी अगर अवेलेबिलिटी इंश्योर करना पड़ेगा लोकल लेवल पे कि ये टाइमली दिया जाए, क्योंकि अभी देख रहा हूँ कि कुछ कंपनीज ये दोनों जो डिजीज के लिए 2-3 कंपनी इसको मैन्युफैक्चर मेजरली करते हैं इंडिया में, तो उसको सप्लाई कैसे किया, उसका टाइमली सप्लाई, डिमांड, ये सब चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, एक भी वैक्सीनेशन छूट जाए तो पूरा जो जो जो डिजीज कंट्रोल मैकेनिज्म वो खत्म हो जाता है। और सबसे बढ़िया चीज मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि अगर 2025 तक तो ये डिजीज फ्री हो जाता है, FMD फ्री हो जाता है इंडिया, हमारे एनिमल एक्सपोर्ट, एनिमल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे मार्केट ऐसे है जो हमारा FMD बिकॉज ऑफ FMD एग्जिस्टेंस वो लेते नहीं हमारा प्रोडक्ट, तो वो बड़ा एक बूस्ट देगा एक्सपोर्ट पोटेंशियल एनिमल इसके लिए। तो ये मैं दोनों चीज बोलना चाहता
2: हूँ। बिल्कुल,
5: इससे ही मैं जरा उनसे थोड़ा सपोर्ट ये करना चाहूंगा कि जो संदीप जी बोल रहे थे कि अभी क्योंकि ये जो दोनों भी प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, ये जैसे इन्होंने पहले बताया कि पहले हमारी स्कीम थी, बट क्योंकि अब सब पूरे जानवर को, जैसे जो जो अफेक्ट, गाय, भैंस, भेड़ बकरी सुअर ये सबको मिला के 100% वैक्सीनेशन का जो टारगेट दिया गया है, तो ये इस प्रोग्राम की जो विशेषता है, तो इसलिए ये कैंपेन मोड में किया जाएगा और ये सरकार ने या जो राज्य सरकारें जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ये हमारे स्कीम में पूरी व्यवस्था की गई है कि वैक्सीन को कैसे रखा जाए, कोल्ड स्टोरेज कैसे कोल्ड चेन मेंटेन किया जाए और इसकी अवेलेबिलिटी जो है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो सफिशेंटली हो और ये प्रोडक्शन अभी सफिशिएंट है और इसीलिए ये जैसे हम 3.6 करोड़ ब्रुसेला का वैक्सीनेशन होना है तो ये वैक्सीन जो है अभी अवेलेबल है।
2: तो बिल्कुल यहाँ पर बंबल जी आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि फिर जो हमारे किसान हैं कई बार उनको ये भी दिक्कत आती है कि अच्छी नस्ल के जो पशु हैं वो कहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में क्या जानकारी देंगे, कौन कौन सी अच्छी नस्लें हैं दुधारू पशुओं की और कहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं, इवन यहाँ तक कि ये सीमन की भी जो बात है वो भी की जाती है कि अगर अच्छा वीर जो है वो मिल जाए तो उससे भी जो नस्ल है उसको जो है वो बढ़ावा मिलता है, अच्छी नस्ल भी प्राप्त होती है, तो ये तमाम जो सवाल हैं ये कई बार हमारे जो पशुपालक होंगे जहन में आते हैं, क्या जवाब देंगे इनका?
1: तो डेयरी व्यवसाय है ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, इससे अच्छी आमदनी किसान भाइयों को होती है। कई बार देखें आप कि कृषि से आपको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पशुपालन से होती है। जब पशुपालन के अंतर्गत आप एक अच्छे गुणवत्ता वाले नस्ल का चुनाव जरूर करें, गाय में है हमारी देसी नस्लें हैं जैसे साहिवाल है, गिर है, थारपारकर है, राठी है, रेड सिंधी है लेकिन संख्या बहुत कम है, तो इन जो नस्लें हैं इनको आप चयनित करें, ले आएं और अपने यहाँ पालें। इसके अलावा आप देखें कुछ एचएफ संकर गाय भी हैं, वो भी अच्छी हैं, अच्छा दुग्ध उत्पादन है
2: जी।
1: लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारी देसी नस्लें हैं उनको अपने यहाँ ले आएं, पालें। कई बार किसान भाई देखेंगे कि आप साहिवाल लेना चाहते हैं लेकिन साहिवाल आपको अच्छी नस्ल की उपलब्ध नहीं हो पाती, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसी कोई गाय है जिसमें आपको लगता है कि इसको ग्रेडिंग एक ऐसा सिस्टम है क्रोमोनाती जिसमें आप साहिवाल का सीमन लगाएं, तो जो आपकी एक देसी गाय है जब सीमन लगाएंगे तो जब बछिया आएगी वो 50% साहिवाल की हो जाएगी। इसी तरह से 3-4 जनरेशन जब लगातार साहिवाल का सीमन लगाएंगे तो एक आपको साहिवाल नस्ल की गाय पैदा हो जाएगी, तो इस तरह से भी आप बढ़ावा कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे जाएं, आप देखें जो हिसार के आसपास, सिरसा के आसपास राजस्थान से लगता हुआ बॉर्डर, वहां पे भी काफी मात्रा में इस समय साहिवाल गाय उपलब्ध है किसानों के पास, मैं गया भी था और देख के भी आया
2: जी।
1: आप देखें कि पुणे जैसा शहर और बारामती, मैं अभी अभी गया था वहां पे भी काफी इसी क्षेत्र से ले जाकर के लोग वहां पे साहिवाल पाल रहे हैं, तो साहिवाल सवाई माधोपुर जो राजस्थान का क्षेत्र है उधर भी जाएं तो वहां से भी आप चयनित करके साहिवाल ला सकते हैं। इसी तरह से गिर नस्ल है सौराष्ट्र गुजरात की, लेकिन अजमेर और उसके आसपास जो टोंग डिस्ट्रिक्ट है, अजमेर है, वहां पे भी बहुत संख्या में इस समय गिर उपलब्ध है। अच्छी नस्ल की अच्छी गाय जो है वो सौराष्ट्र गुजरात में उपलब्ध है, वहां से भी ले आकर के आप पाल सकते हैं। रही बात ये थारपारकर आप राजस्थान से, राठी भी राजस्थान से ला सकते हैं। किसान लाने के बाद देखें कि अगर उनकी गाय गर्मी में आती है तो उनको उच्च गुणवत्ता का सीमन उपलब्ध होना चाहिए। हमारे यहाँ अपने संस्थान में केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत हम इस समय 3 देसी नस्लों गिर, साहिवाल और कानकरेस, तीनों के नस्लों का जो बुल का सीमन हमारे पास उपलब्ध है अच्छे गुणवत्ता का है, क्योंकि हमारे पूरे देश में हम लोग परियोजना ICR के माध्यम से चला रहे हैं और वो बुल टेस्टिंग के ऊपर ही है। अच्छे अच्छे बुल को हम उसको बछिया के ऊपर ही उसको टेस्ट करके हम उस बुल को सेलेक्ट करते हैं, तो उनका सीमन है और बहुत ही अच्छा सीमन है, वहां से भी उपलब्ध हो सकता है
2: जी।
1: इसी के साथ उत्तर प्रदेश में बाबूगढ़, आप बाबूगढ़ जो है वहां पर वहां से भी ला सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का सीमन स्टेशन है। इसी तरह से उत्तराखंड में ऋषिकेश का सीमन, ऋषिकेश में है सीमन स्टेशन, वहां से भी ला सकते हैं। आप देखें आजकल किसान भाई सेक्स सीमन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और देने की आवश्यकता भी है, इन दोनों जगह मशीनें भी उपलब्ध हो गई हैं और यहाँ पर सेक्स सीमन के ऊपर भी कार्य चल रहा है, बहुत जल्दी ही आपको इन नस्लों के सेक्स सीमन भी उपलब्ध हो जाएंगे जिससे करीब करीब 90% आपको बछिया ही पैदा होगी और आप जिस तरह से समस्याओं से ग्रसित हैं वो समस्या नहीं हो, आप चाहते ही है बच्चियां हो तो आपको बच्चियां ही उपलब्ध होंगी।
2: बिल्कुल,
1: इस तरह से आप अच्छे नस्लों का चुनाव करें और सीमन ले करके आप आगे ब्रीडिंग करें।
0: किसान साथियों, इस विषय से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण बातों को हम जानेंगे सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंट्या भील 90.8 FM छाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન, આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांडा भील 90.8 FM के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आप लगातार पशुपालन को लेकर, पशुओं की जो मुंह पका और खुरपका की बीमारी को लेकर, साथ ही अच्छे नस्ल के पशुओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियों को आप सुन रहे थे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: पर आपके पास आना चाहूंगी, डेयरी स्टार्टअप की भी जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की थी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना जो है ये अच्छा कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि जो हमारे युवा हैं उनको इससे जोड़ना काफी जरूरी है। धीरे धीरे हमारे जो युवा हैं उनका रुझान भी अब कृषि और पशुपालन की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें आपका क्या विचार रहेगा?
2: बिल्कुल, हमारे युवाओं को, विशेष रूप से जो हमारे युवा डेयरी को अपना व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं, और जब मैं युवा की बात करता हूं तो उसमें दोनों ही हैं, पुरुष और महिलाएं, और डेयरी तो एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है, तो इनको प्रोत्साहित करने के लिए, इनको आगे बढ़ के आने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 11 तारीख को वहां ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम मथुरा में, तो उन्होंने स्टार्टअप की बात करी थी और उन्होंने ये कहा था कि एक उदाहरण दिया था कि जैसे पशुपालन के क्षेत्र में या डेयरी का जो व्यवसाय है, हमारे पास चारे की बड़ी भारी समस्या होती है। हम सब जानते हैं कि जो दुधारू पशु है, दुधारू पशु से पूरे वर्ष ज्यादा दूध मिले, लगातार दूध मिले, दूध कम न हो, तो आवश्यक है कि साल भर हर सीजन में उनको हरा चारा उपलब्ध हो, ये पहली आवश्यकता है। डॉक्टर उमेश जी जो कह रहे हैं वो तो है ही, फला है कि आपकी जो ब्रीड है बढ़िया होनी चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से प्योर ब्रीड हो, साथ ही साथ चारा, और तीसरा बीमारी, डिसीज कंट्रोल। तो चारे के बारे में उन्होंने एक उदाहरण दिया छोटा सा कि एक ऐसा एक है जहां युवा अपना नया जो है कोई कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि चारा उत्पादन को बूस्ट करना है, या जैसे उन्होंने पॉलीथीन यूज ऑफ पॉलीथीन का मिसयूज ऑफ पॉलीथीन इन हमारे जानवरों में, उन्होंने बल्कि एक दिन उन्होंने ऑपरेशन भी होता हुआ मथुरा वेटनरी कॉलेज में देखा कि इस तरह से पॉलीथीन जो है पशुओं के पेट में जाके उनको नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो स्टार्टअप का जो उनका नारा है, एक तरह से मैं तो कहूंगा कि उसने जो आह्वान किया है युवाओं को, और एक अच्छी बात यह है, आप देखोगे कि हमारे देश में बहुत सारे युवा जो IIT से डिग्री लेके, IIM से डिग्री लेके, वो डेयरी के व्यवसाय में आ गए हैं
1: जी।
2: क्योंकि डेयरी में इतनी ज्यादा संभावना है इसमें, और वैज्ञानिक, लेकिन आवश्यकता यह है कि वैज्ञानिक तरीके से डेयरी
1: वैज्ञानिक विधि से
2: करा जाए, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि, और इसका हमें फायदा उठाना चाहिए युवाओं को, हमारा जो प्रधानमंत्री जी की जो ये स्कीम है इसका फायदा पशुपालकों को उठाना चाहिए, और जो डेयरी में ज्यादा से ज्यादा युवा है इसका फायदा भी हमको उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल बंबल जी, आप इसके बारे में क्या बताएंगे और इस योजना के बारे में और क्या हमें जो है बता सकते हैं, क्या रहेंगे आपके विचार?
3: जैसे अभी हमने बात कर रहे थे, जो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 सितंबर को ये राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया था, जिसमें जहां 50% के नीचे जहां AI का कवरेज है, ऐसे 6 जिले जो है उनमें ये कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, जिसमें इन अच्छे नस्ल की जो जानवरों से, मतलब सांड से, इनका कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। उसे 600 जिलों में जो है 100 विलेजेस जो है, एक हर जिले में 100 विलेज का चयन किया गया है, और उसमें 200 जानवर को ये ऐसे कवर किया जाएगा। तो ये जो उनकी जो न्यूनतम जो स्टैंडर्ड है, जो सांड का जो वीर्य का यूज किया गया है, वो एकदम अच्छे नस्ल का है, 3000 के ऊपर ये है देसी गाय का। तो इसके वजह से जो है किसानों को, जो उनके जो गाय और भैंस को जो AI किया जाएगा, वो अच्छे नस्ल से होगा, और ये उत्पादकता, उसके जो बच्चे नस्ल तैयार होगी वो अच्छे उत्पादकता की तैयार होगी। इसी के साथ साथ जो अभी पाठक जी बोल रहे थे, स्टार्टअप चैलेंजेस को जो किया गया है, वो लॉन्च किया गया है, जिसमें कुछ चैलेंजेस जो डेयरी सेक्टर में, पशुपालन में है, वो चिन्हित किए गए हैं। जैसे दूध प्लास्टिक के जो बैग्स है उसका यूज, उसका अल्टरनेटिव क्या है, और कुछ ये जो मिल्क अडल्ट्रेशन है उसमें जो चैलेंजेस है उनके लिए स्टार्टअप चैलेंज, ग्रैंड चैलेंज किया, अनाउंस किया गया है। ये ट्रेसिबिलिटी है, देन नस्ल ब्रीड जो इम्प्रूवमेंट, और जो चारा का जो है पोषण पोषण आहार है, इसके ऊपर भी चैलेंज ग्रैंड चैलेंज को चिन्हित किया गया है। ई कॉमर्स है, यू जो वाणिज्य है, तो ये जो हमारे छह पॉइंट जो चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए गए उसके ऊपर काम किया जाएगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर उमेश, आपके भी विचार जानना चाहेंगे कि डेयरी व्यवसाय को लेकर आपका क्या कहना है, किस तरह से जो है वो हमारे किसानों की आय को दोगुना करने में मददगार साबित हो सकता है, और साथ ही साथ युवा जो है वो इससे किस तरीके से जुड़ सकते हैं।
2: किसान भाइयों, हमारे युवक, आप डेयरी व्यवसाय को बहुत आराम से अपना सकते हैं। इसके अंतर्गत आप देखें कि 10, 12, 15 जो भी गाय आप अगर चयनित करते हैं और व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमेशा ही फायदा होगा, नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। आप इसके लिए हमारे सरकार की तरफ से नबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर ऑफ एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट नबार्ड, वो इसके लिए सहायता करता है। हमारे जो युवा वर्ग है वो इनसे संपर्क स्थापित कर सकता है, उनसे आपको लोन भी प्राप्त होता है, और इस व्यवसाय के लिए आप जो है आगे बढ़कर के जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो आप स्वतः रोजगार अपना पैदा कर सकते हैं। आपको निसंदेह मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा फायदा है। अभी हमारे डॉक्टर पाठक साहब कह रहे थे कि कुछ इंजीनियर हैं, कुछ आईएम, मेरे पास कुछ लोग खुद आए, बोले कि सर हम डेयरी पालन व्यवसाय करना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं, आप अच्छे नस्लों का और अपनी जानकारी दें। मुझे बहुत खुशी हुई कि वो लोग भी इसमें आ रहे हैं, लेकिन उनको करना क्या है, तीन चार चीजों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी इस व्यवसाय में आए तो सबसे पहले ये देखें कि आप बाजार क्या है, क्योंकि जब भी मार्केट के आसपास आप व्यवसाय करेंगे तो आपका दूध का उत्पादन जो होगा उसका उचित मूल्य मिलना बहुत जरूरी है
1: जी।
2: अगर अच्छा मूल्य नहीं मिला आपको तो आपका व्यवसाय फायदेमंद नहीं रहेगा। इसी के साथ आप केवल यहीं पे दूध के लिए नहीं पाल रहे हैं, आप वर्मी कंपोस्ट है, गोबर वर्मी कंपोस्ट भी उपयोग में आएगा, आप इसी के साथ घी बनाए, मट्ठा आपका अतिरिक्त बिकेगा, 20-25 रुपए आजकल मट्ठा बिक जा रहा है। दूध की तो आप ये देखें कि 1000 छोड़ दीजिए, 2000-2500 में भी इस समय देसी घी मार्केट के अंदर बिक रहा है, अगर अच्छा घी है तो इस तरह से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, उन सब के ऊपर आपको विचार करना होगा। इसी के साथ आपको इस व्यवसाय में आना पड़ेगा, और आप क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, दूध

0: स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करें, आप उसमें भी देखेंगे एक दो रुपया आपको ज्यादा ही पैसा मिलेगा। तो मिल्किंग मशीन हो, अच्छा आपका सेटअप हो, उसी के अंदर वो दूध चिलिंग में चला जाए, चिलर्स में चला जाए, आप इस तरह से अगर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करते हैं, मार्केट के अंदर देते हैं, तो 60-70-80 रुपए में भी इस समय देसी गाय के दूध मार्केट में बिक रहे हैं, आपको बहुत फायदा होगा और डबल इनकम होने में निसंदेह कोई भी कमी नहीं रह जाएगी, डबल इनकम जरूर होगा।
1: बिल्कुल संदीप जी, आपसे भी एक टिप्पणी लेना चाहेंगे इसके बारे में, आपके क्या विचार हैं, डेयरी व्यवसाय किस तरह से जो है वो किसानों की आय को दोगुना करने में मददगार?
2: देखिए, डेयरी व्यवसाय ऐसा है कि उसमें इंस्टेंट इनकम मिलता है, अनलाइक अदर क्रॉप जैसे राइस व्हीट, उसको ग्रो करने के बाद फिर बेचने के बाद ही उनको मिलता है, एक इंस्टेंट देता है। और आपको आंकड़ा बता दूं कि मिल्क जो वैल्यू ऑफ मिल्क है सबसे ज्यादा, वो वैल्यू ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इज मोर देन राइस व्हीट का प्रोडक्शन जितना होता है। तो मिल्क एक बहुत इंस्टेंट देता है और बहुत बड़ा बाजार है अभी, क्योंकि अभी भी लार्ज चंक ऑफ मार्केट अनऑर्गेनिक सेक्टर के पास है, दूध वाला के पास है। तो सेफ मिल्क, पैक्ड मिल्क, फ्रेश मिल्क सप्लाई करने के लिए जो बहुत सारे स्कीम्स है, नाबार्ड भी स्कीम चला रहा है, नाबार्ड का स्कीम से, तो यंगर जनरेशन बहुत आ रहा है। आप देखोगे बहुत सारे स्टार्टअप फ्लेयरअप्स हो रहा है, एनसीआर दिल्ली में देखोगे बहुत सारे न्यू मिल्क स्टार्टअप्स आ चुका है, बट बाजार को देखना पड़ेगा एंड बाजार इज ग्रोइंग स्टेडिली। आप देखो ये बड़े बड़े कॉर्पोरेटिव देखिए, अमूल देखिए, उनका स्टेडिली दे आर ग्रोइंग बेसिकली। तो द बेस द एक्सपेंशन काफी तेज भी में हो रहा है, और मैं जैसे पहले ही कहा कि मिल्क इंस्टेंट इनकम देता है, तो मिल्क, डेयरी और वो एलाइड सेक्टर, वो जो हेल्प करेगा फार्मर्स इनकम को डबल करने में, मैं समझता हूँ।
3: जी हाँ किसान साथियों, अगर हम देखें तो पशुपालन में जो दूध उत्पादन का जो बाजार है वो काफी फलफूल रहा है, ये दिन प्रतिदिन ऊपर ही इसका जो ग्राफ है वो हमेशा बढ़ोतरी की ओर आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। तो किसान साथियों, आने वाले समय में भी हमें दूध का उत्पादन की करने की आवश्यकता है। तो किसान साथियों, जो भी किसान भाई जो दूध पालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को लेना चाहता है, साथ ही दूध पालन के इस व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहता है, वह इस व्यवसाय में आ सकता है, जैसे कि आज के इस कार्यक्रम में और हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद इसको बढ़ावा देते हुए कहा है कि हमारा जो पशु है, पशुधन को हमें संभाल के रखना चाहिए, इसकी हमें रखवाली करने की ज़रूरत है, साथ ही इसका हम बीमा करवा सकते हैं, इसका समय समय पर टीका लगवा सकते हैं, और जो पशुओं की पहले जो पशु को भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते थे उससे कहीं ना कहीं किसान भाई का काफ़ी नुकसान हो जाता था, लेकिन अभी पशुओं के टीके उपलब्ध हैं, पास में हमारे जो पशुओं के लिए चिकित्सा अवेलेबल है, तो किसान साथियों कहीं ना कहीं हमें काफ़ी फायदा होने वाला है। तो इसी के साथ किसान साथियों, यहां पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो चांटिया भील 90.8 FM के साथ छवा की आवाज़।
4: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
5: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
4: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है सेवा और अनुभूति का सफेद। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, भारत की असली पहचान उसके गांवों में बसती है, लेकिन जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो अक्सर योजनाएं, बजट और सरकारी कार्यक्रमों की चर्चा होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन का मिशन ही गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना होता है। लेकिन आज हमारे साथ ऐसे ही एक विशिष्ट व्यक्तित्व मौजूद हैं, एक सफल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिन्होंने एक सुरक्षित सरकारी नौकरी छोड़कर ग्रामीण भारत के विकास का कठिन लेकिन सार्थक मार्ग चुना। ल्यूपिन फाउंडेशन के साथ जुड़कर उन्होंने केवल 35 गांवों से शुरुआत की और देखते ही देखते ये अभियान 9 राज्यों, 23 जिलों और 5,400 से अधिक गांवों तक पहुंच गया। इनकी लीडरशिप में विकसित इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट मॉडल को देश भर में सराहा गया और अनेक संस्थाओं ने इसे अपनाने का प्रयास किया। आज सीताराम गुप्ता जी समृद्ध भारत अभियान के कन्वीनर हैं और विकास भारत 2047 के विजन को जमीनी स्तर पर साकार करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे एक इंजीनियर से डेवलपमेंट प्रोफेशनल बनने की प्रेरणा, ग्रामीण विकास का उनका सफल मॉडल, गांवों की बदलती तस्वीर और 2047 के भारत के लिए उनका सपना। तो आइए बिना किसी देर के हार्दिक स्वागत करते हैं श्री सीताराम जी गुप्ता का। गुप्ता जी, रेडियो एसएन के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बिल्कुल साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है, मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ में और जो भी श्रोतागण है उनके साथ में आज जुड़ पाया हूँ।
1: तो चलिए गुप्ता जी शुरुआत करते हैं, और शुरुआत ऐसा करते हैं कि उस कठिन निर्णय से कर लेते हैं जब आपने एक सिक्योर्ड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जॉब छोड़कर ल्यूपिन फाउंडेशन जैसे उस समय के एक नए संस्थान से जुड़ने का निर्णय लिए। कुछ बताइए उसके बारे में, कैसे आपने निर्णय लिया, इतना कठिन डिसीजन आपने कैसे लिए और क्या इंस्पिरेशन, कैसे इंस्पायर हुए आप इसके लिए, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे साथ साझा कीजिए।
2: सबसे पहले तो बात यह कि गवर्नमेंट में जो काम होते हैं उसमें आप 4 walls में काम करते हैं और आप और उसमें कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अधिकतर जो निर्णय होते हैं वो ये होते हैं, ये मत करिए आप, ये बच के चलिए आप। और मेरे मन में कुछ बड़ा करने की थी कोशिश साहब, और मैंने इसीलिए ये सोच रहा था कि भाई मुझे जिंदगी में कोई अल्टरनेटिव मिल सकता है क्या। और उसी वक्त लुपिन के चेयरमैन देशबंधु गुप्ता जी भरतपुर पधारे थे और उस वक्त कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता भी नहीं था। तो वो आए थे 87 में और फिर उन्होंने रात को मीटिंग ली थी फॉरेस्ट लॉज में, उसमें सभी थे, कलेक्टर थे, एसपी साहब थे, जिला प्रमुख विश्वेंद्र सिंह जी भी थे, सब थे। और उन्होंने कहा कि मैं एक ग्रामीण विकास का कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूं लेकिन मैं कंफ्यूज हूं कहां से शुरू करूं। तो वो सबसे पूछ रहे थे बारी बारी से, चूंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स थे तो मैं भी था वहां पर। तो मैंने कहा सर आप भरतपुर स्टार्ट करिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई क्यों करें भरतपुर से, आप बताइए कोई कारण तो बताइए। मैंने कहा साहब भरतपुर एक तो पिछड़ा हुआ जिला है और इसमें 23% जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल कास्ट की है और उसके अलावा आपका जो मेव एरिया है और डांग एरिया है और उसके अलावा भी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ये दिल्ली और राजस्थान की राजधानी जयपुर से बराबर 180 किलोमीटर की दूरी पे है और उनका इतना कहना था, बोलिए कि सुबह मुझसे नाश्ते पे मिलिए आप, और नाश्ते मिला तो उन्होंने कहा भाई नौकरी छोड़ दो आप इमीडिएटली और मुझे ज्वाइन कर लीजिए आप। लेकिन एक हिच होती है कि भाई हम नौकरी कैसे छोड़ सकते हैं इमीडिएटली, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी दो आपको। तो मैं सोचता रहा, फिर कलेक्टर साहब भी घर पे आए, संधु साहब थे, जीएस संधु, कि भाई आप नौकरी छोड़ दो। और तो फिर लेकिन मैं माना नहीं और एक दिन नटवर सिंह जी का मैं काफी क्लोज रहा हूँ जो फॉरेन मिनिस्टर थे
1: जी जी,
2: तो वो हमारे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और तो उन्होंने मुझे बुलाया और अपने जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में वहां गया, उन्होंने कहा आप मेरे कहने से इस्तीफा दे दो और मेरे एरिया का सवाल है ये और नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो मैंने कहा साहब, मैंने अपना बहाना लगाने के लिए कहा साहब मैं तो कुछ जानता भी नहीं रूरल डेवलपमेंट, मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और बात सही भी थी वैसे। तो बोले आप चिंता मत करिए, आप नौकरी छोड़िए और मैं अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको वर्ल्ड बैंक में लगाऊंगा, आप विश्वास रखिए मेरे ऊपर। मैंने उसी वक्त फैक्स में वो इस्तीफा दिया और उन्होंने फैक्स पे उनको देशबंधु गुप्ता साहब को भेज दिया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ और फिर मैं लुपिन में प्रोग्राम में आ गया। ये मेरी पूरी कहानी है जी।
1: बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और डेयरिंग भी है, क्योंकि आपने बड़े बड़े नाम ले दिए, नटवर सिंह जी का नाम ले दिया जो राजस्थान के बहुत ही बड़े लीडर रहे हैं, जीएस संधु का नाम और देशबंधु गुप्ता जी। पर अच्छा ये बाइट में वैसे ही पूछ रहा हूँ, देशबंधु गुप्ता जी जयपुर भरतपुर किस तरह से आ गए, क्या ऐसा क्या हुआ था, किस तरह से भरतपुर आ गए थे?
2: ये जयपुर आए थे, शिवशरण माथुर साहब सीएम हुआ करते थे उस वक्त
1: जी जी जी,
2: और उन्होंने उनके उस वक्त तो बड़े खातिरदारी होती थी, तो उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर लगाया कि ये जहां भी जाएं चलिए। तो वो जयपुर से आए, दौसा आए, फिर अलवर गए और अलवर के बाद भरतपुर आए उन्होंने। तो ये सब जगह मीटिंग कर रहे थे तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था मैं कहां से शुरू करूं, तो फिर ये भरतपुर आ गए और भरतपुर में इत्तेफाक से मुझसे मुलाकात हो गई उनकी उस वक्त। तो ये काम उन्होंने कहा कि फिर तो यहीं से शुरू करते हैं हम,
1: मतलब ही वॉज लुकिंग फॉर सम सूटेबल जगह कि जहां से ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये शुरू कर पाए रूरल डेवलपमेंट।
2: हाँ, वो ये दोनों चीज देख रहे थे कि जगह कौन सी अच्छी होगी जो वास्तव में मुझे सब सेवा करनी चाहिए देश की। और फिर उनके दिमाग में शायद मुझसे बात करने के बाद में शायद भाई इस प्रोग्राम को कौन लीड कर सकता है,
1: कौन लीड कर सकता है वो।
2: हाँ,
1: ये भी देखिए इत्तेफाकी बात है, आपको डेस्टिनी ले जा रही थी वहां, उनको यहाँ लाई और आपको उनसे मिला दिया।
2: जी जी जी, बिल्कुल सही बात है।
1: तो जब आपने ग्रामीण क्षेत्रों में काम शुरू किया तो आपको क्या, जैसे भरतपुर का क्षेत्र तो काफी वैसे भी बैकवर्ड माना जाता है, तो आपको क्या चैलेंजेस आए, आपको लगा ये सफर इतना लंबा और इतना व्यापक हो जाएगा, क्या शुरुआत कैसे की, फिर कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ब्रीफ में।
2: हाँ, सबसे पहले तो मैंने कहा कि रूरल डेवलपमेंट शुरू कैसे करें, क्यों मैं जानता नहीं था, सच बात तो ये है, क्यों मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, MNIT से जयपुर से पास किया था मैंने, और मैंने कहा भाई कैसे शुरू करें इसको। तो फिर मैं दो तीन रात वास्तव में वो दो तीन क्या नाम दो तीन यात्राएं की मैंने हिंदुस्तान की, सब जगह देखा, तो मैं ऑल टाइम कंफ्यूज ही होता चला गया और फिर मैं वापस आ गया, मैं कैसे स्टार्ट करें इस प्रोग्राम को। और एक दिन रात को सोते सोते समय मुझे एक ताकत सी आई कि भाई तुम घबरा क्यों रहे हो, कि जब देश को आजाद हुआ था, जब कुछ भी नहीं था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश चला दिया, तो क्या तुम पे छोटा सा ग्रामीण विकास कार्यक्रम नहीं चलेगा। तो वहां से मुझे ऊर्जा मिली और उस बात से मुझे कुछ ऊर्जा का आभास हुआ। और उसके बाद में मैंने देखा कि हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है कि आपको कोई डिफिकल्टी है तो साइट पे चले जाइए, कमरे से बाहर निकलिए आप, तो हमने कहा चलो एक गांव चलते हैं आज। तो एक गांव को जो स्टाफ था उसको लेकर के मैं गांव में गया। एक गांव है नोनेरा, वो बड़ा महत्वपूर्ण गांव है। वहां से 1 किलोमीटर हरियाणा है और 4 किलोमीटर करीब यूपी है वहां से।
1: ओके।
2: उस हाँ वो लोकेशन थी। तो मैंने कहा कि भाई मैं ग्रामीण विकास शुरू करना चाहता हूँ, तो बोले कि ऐसा है कि 15 किलोमीटर की सड़क बना दो आप और कामा से लेकर नोनेरा तक की, और नहीं बन सकती है तो आप अपने प्रोग्राम को अपने साथ ही लेके वापिस चले जाइए। तो 15 किलोमीटर की सड़क बनाना मेरे लिए, और कैसे लूपिन में फंडिंग होती है मैं जानता नहीं था एक्चुअली उस वक्त तक। तो मैं बड़ा उदास मन से मेरी जीप में बैठ करके और बाहर मुंह निकाल करके बहुत उदास था, वापिस जा रहा था।

0: ओके,
1: और 11 किलोमीटर की हमको जरूरत नहीं है, तो हम कोसी से कनेक्ट हो जाएंगे।
0: ओके,
1: तो मैंने कहा यार ये पैसा कैसे आएगा, पैसे का मैं इंजाम भी बता देता हूँ आपको। जिस सरपंच से आप मिलके आए हो उस सरपंच के पिताजी मरने वाले हैं, तो ये मृत्युभोज करते हैं और उसको ये कह दो मृत्युभोज की जगह ये पैसा उसमें लगा दे सड़क में। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं कैसे कहूंगा तेरे पिताजी मरने वाले हैं, लाखन सिंह सरपंच उसका नाम था। तो मैं फिर वापस गया, फिर मैंने सोचा कि क्या कहूंगा मैं। मैंने कहा भाई तेरे बताया नहीं लाखन सिंह ने तुम्हारे पिताजी इतने बीमार हैं, तो उसके मुंह से भगवान की दया से ये निकला, भगवान इनको जल्दी उठा ले साहब, बहुत दुख पा रहे मेरे पिताजी। तो मैंने कहा भाई क्या करोगे बहन साहब, 22 गांवों का भोजन कराऊंगा, पाल कराऊंगा, मैं जाट आदमी हूँ, अब जानते हो हमारे यहाँ तो बहुत तगड़ी भोजन। तो मैंने कहा कि भाई अगर तू पाल नहीं कराए और कलेक्टर साहब से मैं बात करके और एक सड़क हम बना देते हैं यूपी में, तेरे पिताजी के नाम पर रख देता हूँ मैं, वो परमानेंट आपका हो जाएगा। तो वो बड़ा कन्विंस लगा कि थोड़ा परमानेंट की बात होती है, क्योंकि गांव में तो एक बड़ी तकलीफ होती है कि आप खाना भी खिलाओ कहेंगे नमक कम है, रायते में ये हो गया और वो हो गया। तो उसने कहा मैं सोच के बताता हूँ सर, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ घर में। तो वो अंदर घर जाके कहता है साहब मुझे मंजूर है और ये 75,000 रुपए डाटिए आप।
0: ओके,
1: हाँ वो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं खुशी होकर के और मैंने कहा पैसे अभी रख लो और मैं बताऊंगा मुझे कब लेना, ये पक्की रही बात उनका सब मेरी पक्की रही। मैं जिला कलेक्टर के पास गया, मैंने कहा साहब इस तरह से बात है और तो 75,000 रुपए मुझे मिल गए, वो सड़क की कह रहे लेकिन कैसे बनेगी ये। तो उन्होंने कहा कि हम कामा के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में चलते हैं, वहां बैठेंगे, मैं इंस्पेक्शन भी कर लेता हूँ। तो उनका बुला लो उनको, तो उन्होंने उसने उठा के 75,000 रुपए दे दिए। तो उन्होंने उठा करके और कहा बैंक मैनेजर को बुलाया कि भाई ये 75,000 रुपए जमा करिए। तो उनका सब मैं किस नाम से करूंगा, लुपिन गांव विकास पंचायत नाम रख दीजिए इसका, कलेक्टर साहब खुद ही बोले।
0: अच्छा,
1: हाँ हाँ। फिर उन्होंने सब क्या किया कि उसने मना कर दिया कि साहब मैं मैंडेट नहीं करूंगा, इसका मेरे पास मैंडेट नहीं है और ये कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लुपिन गांव विकास पंचायत।
0: ठीक है, बैंक वाले ऐसे बोलते हैं।
1: बैंक वाले बोले तो उसने कहा भाई हम पैसे दे रहे हैं और तुम किस तरह से ये काम बात कर रहे हो, थानेदार को बोला इसको इसको अंदर कर दो इसको। तो पसीना आ गया, उसने कहा ठीक है सर ऐसा करिए, ऐसे प्रस्ताव ले लीजिए, हम लुपिन गांव विकास पंचायत का गठन करते हैं और मैं 75,000 रुपए की जमा करके अभी दे देता हूँ आपको। तो उस वक्त वो मदन मोहन सिंगल एक और थे नेता, वो भी आ गए, तो वो बाद में एमएलए भी हुए, मंत्री भी हुए, उन्होंने कहा 11,000 रुपए मेरी तरफ से हो गए।
0: ओके ओके,
1: तो ये हो गया। तो फिर हम और कलेक्टर साहब दोनों एक ही गाड़ी में वापस पहुंचे और पहुंचने के बाद में बोले कलेक्टर साहब कि भई अब ये बताइए कि मैंने कहा साहब बनेगा कैसे, बनके मैं बताता हूँ, आप चिंता ही मत करो कि देखो 4 किलोमीटर की सड़क उस जमाने में 1.25 लाख रुपए पर किलोमीटर बनती थी। ये 89 की बात बताता हूँ शुरू की सर, और 2 लाख तो मैं दे दूंगा राजस्थान वाले और 2 लाख आपकी यूपी में, वो आप पैसे दे दीजिए 2.5 लाख। अरे मैंने कहा ये तो शायद काम होता दिखता है, तो बाकी के पैसे आप लुपिन से दे दो, मैं आपको 2.5 लाख दे दूंगा। उन्होंने मुझे पैसे हमारे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, मैंने कहा मुझे मत करिए, लुपिन गांव विकास पंचायत में कर दीजिए। बड़ा अच्छा उन्होंने कलेक्टर साहब ने किया, क्या किया कि एक सिग्नेटरी आप रहिए जिससे गड़बड़ी नहीं हो और एक गांव वाला रहेगा, तो दो रहेंगे और वो 4 किलोमीटर की फिर सड़क बन गई सर। और 4 किलोमीटर की सड़क बनने के बाद में आप देखिए कि क्या भगवान की लीला होती है। और किलोमीटर बनने के बाद मैंने कहा चलो सड़क कैसी है मैं देख के आता हूँ, गांव वाले कैसे खुश हैं उस सड़क से। तो मैं जाके जाता हूँ तो उस गांव में गरीबी भाग गई पूरी। मैंने कहा भाई गरीबी कहाँ चली गई, नहीं ये गांव तो गरीब था, इतने लोग आग डोलते थे, बच्चे लोग डोलते थे, बुजुर्ग ऐसे डोलते थे, काम नहीं मिल रहा है। मानी साहब ट्रॉलियों में भर भर के फरीदाबाद पहुंच गए यहाँ से।
0: ओके अच्छा,
1: हाँ। और उन्होंने को सबको सबको काम मिल गया और देखिए साहब कितने मकान बन गए 1 साल के अंदर अंदर, तो कुछों की नींव खड़ी हो गई। अरे मैंने कहा ये तो बड़ा जोरदार काम है।

0: फिर हमने कलेक्ट साहब और हमने डिसाइड किया कि भाई हम ऐसा काम शुरू करेंगे कि 1/3 हिस्सा गांव वालों का रहेगा, जिसमें चाहे वो लेबर दें, मटेरियल दें या कैश दें, और 1/3 हिस्सा लुपिन दीजिए और 1/3 कलेक्ट साहब आप दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं दे दूंगा, आप मेरे पास स्मॉल सेविंग का पैसा है, मैं आपको दे दूंगा। तो हमने 35 गांव थे तो लुपिन गांव विकास पंचायत का गठन कर दिया। और कर दिया तो हमने कहा कि भाई कॉमन समस्या का पता लगाइए गांव में क्या है। एक क्योंकि समस्याएं तो बहुत ज्यादा हैं, स्कूल की हालत खराब है, स्वास्थ्य की हालत खराब है, सड़कें नहीं हैं। हमने कहा एक पकड़ लेते हैं पहले, तो पीने की पानी समस्या सब में कॉमन निकली।
1: ठीक है।
0: लेकिन हमने कहा कि भाई इसका एस्टिमेट बनाइए 35 गांवों का। तो 35 गांवों को जो एस्टिमेट आया वो करीब 12 लाख रुपए आया, वो सॉरी 36 लाख रुपए आया। और तो हमने कहा 12 लाख रुपए तो गांव वालों से कहा भाई तुम्हारे गांव में जो जितना भी पैसा खर्च होगा कोई स्कीम के तहत में, वो 1/3 हिस्सा आप इस तरह से दे दीजिए, मेन मटेरियल और कैश जो भी करो, और 1/3 हम दे देंगे, 1/3 कलेक्ट साहब दे देंगे, और खाते तुम्हारे में डाल देंगे हम पैसे। और कहीं नया कुआं बनाना है, कहीं कुएं की डीसिल्टिंग करनी है, कहीं पाइपलाइन बिछानी है, तो कई तरह के उपाय हमने किए। आप विश्वास नहीं करोगे, 36 लाख रुपए में पूरा पूरा काम हो गया।
1: वंडरफुल।
0: हाँ, और काम हो गया तो गांव वाले बड़े खुश कि भाई खुश ही हो कि पहले तो हमारी पसंद का काम हो गया, और दूसरा इस बात से खुश कि हमारे द्वारा काम हुआ। तो जो ओनरशिप की भावना होती है तो उनके जो गर्वोन्मुक्ति थी उनके चेहरे पर वो बड़ी गजब की थी उस वक्त।
1: आई नो।
0: तो फिर मैं सीधा एमएल मेहता साहब थे, पॉलिसी प्लानिंग सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में,
1: हाँ मीठालाल जी, हाँ
0: हाँ मीठालाल जी, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे काम है, मैंने कहा चलते हैं, चलो आपका काम देखते हैं। तो कलेक्ट साहब को भी लिया, उनको भी लिया, गाँव में गए तो बड़े खुश हुए, यार ये तो काम बड़ा गजब का है। कलेक्ट साहब बोले साहब मेरे 12 लाख में तो 5 लाख का काम भी नहीं होता, अगर मैं कर रहा था तो मुझे 36 लाख का काम मिल गया। गांव वाले जो खुश हैं कि हमारे द्वारा ही हमारा काम हो गया, मैं इसलिए खुश हूं कि 12 लाख का मुझे 36 लाख काम मिल गया, एक ग्रामीण विकास की दिशा तय हो गई आज। तो उन्होंने कहा आप मेरी गाड़ी में बैठो, एमएल मेहता साहब बोले मीठालाल जी, और उनका भैरव सिंह जी से मिलाता हूँ आपको।
1: अच्छा।
0: तो हाँ सीधे सीएम साहब के पास गए। हमने कहा साहब क्या किया मीठालाल जी, कि साहब ऐसे ऐसे बात है और इन्होंने सीताराम जी ने ऐसे ऐसे काम किया है। तो मीठालाल मेहता क्या मुझसे बड़ाई सुनने आया है क्या, ऐसे बोलते थे। है? मैं नहीं, नहीं ऐसा कर, सवेरे की स्कीम चालू कर, नाम तो सोच, और यही पार्टनरशिप की स्कीम पूरे राजस्थान में चालू कर दे, और लुपिन का पैसा सरकार दे दे, लुपिन तो है नहीं वहां पर। तो उन्होंने सवेरे ही, मैं वही रहा जयपुर में, अपना गांव अपना काम नाम की एक स्कीम शुरू कर दी वहां पर।
1: ओके।
0: हाँ कि भाई 33% पैसे गांव वाले देंगे, 33% लुपिन मतलब और बाकी का सरकार देगी आपके, और जहां लुपिन काम कर रही है वहां 33% लुपिन देगी। ठीक है ना। तो वो काम शुरू हो गया। आप ये देखिए साहब को, वो काम शुरू हुआ कि इतना पैसा हमारे पास, लेकिन पहले पैसा कैश जमा कराना पड़ेगा गांव वालों को, या काम करके बताना पड़ेगा भाई हमारा 1/3 का काम हो गया है, और उसका पैमाइश हो जाएगी, फिर 2/3 पैसा में से किस्तों में सरकार देगी। और उसमें ये मॉडल था कि शायद तो वो एनजीओ से कराए काम, वो हमको रिलीज होगा, उनको नहीं करेंगे, लेकिन या ग्राम पंचायत को करेंगे या लाइन डिपार्टमेंट को करेंगे, आपको जो भी है पीडब्ल्यूडी है जो भी है। तो आप फिर देखिए साहब कि वो इतना सक्सेस हो गया कि सरकार पे पैसे नहीं बने, और 50-50 करना पड़ा सरकार को।
1: अच्छा।
0: जी जी जी सर,
1: मजा आ गया सब। मैं तो आपको रोकना चाह रहा था, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग था कि एक तरह से आपने पूरा परिदृश्य खींच दिया। और श्रोताओं देखिए, हमारे रूरल डेवलपमेंट की जो हम इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, तो जब ये शुरुआत होती है तो कितनी समस्याएं आती हैं, किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है, किस तरह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से सरकारी मशीनरी उससे जुड़ती है, ये सब इन्होंने सीताराम जी ने एक खाका सा खींच दिया है आपके आपके सामने, क्योंकि भरतपुर जो एरिया है राजस्थान का वो थोड़ा सा रिलेटिवली बैकवर्ड भी है, लेकिन किस तरह से लोगों को साथ लिया और किस तरह से ये एक मृत्यु भोज से जो चीज शुरू हुई थी और किस तरह से वो आगे बढ़ गई, तो आप ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग और कितनी डिफिकल्टी आती है जब कोई भी काम करने का हम बीड़ा उठाते हैं। तो सीताराम जी बहुत बहुत मैं तो आपको साधुभाव जी कहूंगा कि इतना बढ़िया काम शुरू किया। तो हम यहाँ रुक के एक आपके इस विकास के काम पे एक गाना सुन लेते हैं, क्योंकि हमने काफी देर बात कर ली है, गाना सुनते हैं आपकी उस सड़क के नाम पे, सड़क की जो लाखन सिंह जी के नाम पे आपने बनाई थी है ना, तो मजा आ गया, तो एक गाना सुनते हैं फिर आप इस बातचीत को जारी रखते हैं।
0: ठीक है सर, ठीक है।

0: हाँ, तो वेलकम बैक सीताराम जी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ल्यूपिन के बारे में जरूर पूछना चाहता हूँ, फिर हम आगे बातचीत को जारी रखेंगे। ल्यूपिन रूरल डेवलपमेंट मॉडल की चर्चा देश में पूरे में होती है और ये मुझे याद है बहुत पुराना मॉडल है। तो कुछ एक सरल भाषा में बताइए कि ये मॉडल है क्या और इसे इतना ल्यूपिन मॉडल को खास क्या बनाता है जिससे इतने सारे गांव और इतने ज्यादा रूरल डेवलपमेंट का एक तरह से मॉडल ही बन गया है ये। इसके बारे में कुछ बताइए।
1: ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि एम क्या है, आपका गोल क्या है। तो गोल हमारा ये था कि सर्वांगीण विकास करें, और सर्वांगीण विकास में दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक होता है सोशल डेवलपमेंट।
0: जी
1: तो हमने कहा कि दोनों को हम साथ लेके काम करें, तो इसको एक मॉडल का नाम दिया। तो उसमें हमने सारे वर्टिकल्स लिए हमने कि भाई हम अगर इकोनॉमिक मॉडल लेंगे जिसमें आमदनी बढ़ाएंगे तो उसमें खेती है, पशुपालन है और नॉन फार्म सेक्टर है, स्किल्स है, इस पे काम करेंगे। और सोशल डेवलपमेंट में यह है कि भाई हम किस तरह से ह्यूमन कैपिटल को बिल्डअप करें, कि हेल्थ पे हम किस तरह से काम करें, न्यूट्रिशन पे किस तरह से काम करें और शिक्षा पे किस तरह से काम करें। तो इस मॉडल को हमने लेकर के काम शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये आती है कि इसकी एक्सेप्टेंस कैसे हो लोगों में, ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट कि लोगों में एक्सेप्टेंस हो और ओनरशिप हो दोनों चीजों।
0: बहुत
1: तो
0: सही
1: इसके
0: बात।
1: लिए दो काम करने की बहुत जरूरत है। शुरू शुरू में कोई भी काम शुरू करना चाहता है उनके लिए, मैं श्रोताओं के लिए बता देना चाहता हूं कि पहले तो नीड बेस्ड काम करिए कि गांव वाले कहते क्या हैं, वो करते चले जाइए। आप
0: ठीक।
1: जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आप अपना पैसा दे सकते हो और आप कोलाबरेट कर सकते हो, कन्वर्जेंस कर सकते हो, जिसको भी कहिए। और दूसरा होता है एरिया स्पेसिफिक, भाई ये इसी एरिया में होगा। जैसे भरतपुर में सिर्फ बी कीपिंग हो सकता है, लेकिन वो बी कीपिंग भरतपुर में हो सकता है लेकिन वो बाड़मेर में नहीं हो सकता है।
0: जी
1: तो ये एरिया स्पेसिफिक काम हो गया। तो इस तरह से हमने ये ग्रामीण, ये रूरल डेवलपमेंट का जो लूपिन का मॉडल है उस पर अपन ने काम शुरू किया और उसको फिर हम आगे बढ़ाते चले गए।
0: ओके। हाँ, मतलब इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट दोनों साथ साथ है।
1: साथ
0: अच्छा,
1: चलते हैं।
0: तो अब ये आपके 35 गांव से शुरू हुई यात्रा 9 राज्यों 5,400 गांव तक पहुंच चुकी है। तो ये राज्य तो मतलब अलग अलग टाइप के हो गए ना, तो ये सारा मॉडल क्या हर जगह रेप्लीकेबल हो जाता है, वहां भी यही मॉडल काम करता है, या एरिया टू एरिया के हिसाब से मॉडल बदलता रहता है आपका?
1: नहीं, जो बेसिक चीजें इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट वो तो एज इट इज रहेंगे ही रहेंगे, उसमें तो
0: जी
1: कोई है ही नहीं।
0: हाँ, सही बात
1: और जो नीड बेस्ड है वो तो एज इट इज रहेंगे ही, मतलब उनमें तो कोई बदलाव हो नहीं सकता है। लेकिन ये सवाल उठता है कि ये बढ़ा कैसे प्रोग्राम है। हाँ, एकदम नहीं, 35 गांव पे कोई 35 गांव पे रहता है, कोई एक गांव बना के ही उसमें खुश रहता है।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात
1: हाँ, तो मैंने देखा भाई इस कंट्री में प्रॉब्लम क्या है, पूरे कंट्री में
0: है।
1: इस कंट्री में प्रॉब्लम सबसे बड़ी है स्केल की है।
0: ओके।
1: हाँ, अगर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो वो 2 लाख गांवों में नहीं है। तो अगर आप स्केल पे काम नहीं करते हैं तो मैं नहीं मानता वो काम कोई खास फायदेमंद है, मतलब बहुत तो वो वहीं पे वहीं का फायदा हो सकता है, एक गांव का ही। तो क्योंकि जब स्केल होती है तो विजिबिलिटी आती है, और विजिबिलिटी आती है तो रेप्लिकेबिलिटी आती है, लोग वक्त देखते हैं इस काम को करें अपन। तो ये एक, मतलब एक सबसे बड़ा चीज रहा। तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि भाई अल्टीमेट ये होना चाहिए पूरे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट को हमको गोद लेना, फुल को लेना है, कंप्लीट, छोड़ना कोई नहीं है। तो ये काम फिर हमने इस बारे में सोचा। उसके बाद में फिर चेयरमैन साहब बोले भाई हम, चलो ठीक है, फैक्ट्री वगैरह की बात तो नहीं करते, लेकिन चूंकि हम महाराष्ट्र में, हम बॉम्बे में हैं तो कुछ महाराष्ट्र में काम शुरू करिए। तो फिर हमने महाराष्ट्र में शुरू कर दिया काम। और फिर जब वो भरतपुर का, जब उन्होंने प्रोग्राम देखा तो भरतपुर को, प्रोग्राम को देख करके फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि लूपिन के फंड बड़े लिमिटेड हैं, और ये बोर्ड में परेशानी करते हैं, हम कमाते हैं और तुम खर्च करते हो। तो
0: अच्छा
1: मुझसे
0: अच्छा
1: बोले हाँ, तो
0: अच्छा
1: तुम ऐसा करिए 200 करोड़ रुपए मेरे पर्सनल ले लो आप।
0: अच्छा
1: हाँ, और एक गरीब जिला पूरा महाराष्ट्र का बदल दीजिए। अब जो भरतपुर को तो आप कर ही रहे हो, वहां तो आपका सरकार के साथ में बहुत अच्छी चलती है, तो वो तो बहुत अच्छा काम है, ये कर दो। और मैंने कहा साहब 200 करोड़ की मुझे तो जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से काम करने का बहुत आदी हूँ साथ में, तो मैं तो 100 करोड़ से ज्यादा आपका पैसा लूंगा नहीं। और धूले डिस्ट्रिक्ट हमने चूज किया, तो रत्नाकर गायकवाड़ एक थे उस वक्त, ये MMRDA है बॉम्बे में,
0: हाँ मार्ड है ना, बिल्कुल
1: हाँ मार्ड, उसके कमिश्नर थे।
0: अच्छा,
1: वो उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, तो वो उनको बार बार कहते रहते थे साहब आप बड़ी, आप भरतपुर की बड़ाई करते हो तो मेरे यहाँ शुरू कराइए, मैं सब सहयोग दूंगा आपका।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने उनसे पूछा सर कितना समय है, तो बोले भाई मेरे पास 20 मिनट का समय है आपके लिए, तो हमारी बातें जैसे आपसे हो रही है ऐसे होती चली गई, हमारे दोनों के 3 घंटे निकल गए।
0: अच्छा अच्छा,
1: अब वो जिस IAS का नाम लें, सलाउद्दीन जी का लें, वो तो मेरा क्लास हो, मैं सभी बात करा देता हूँ, आप तो बहुत इसलिए कन्वर्जेंस कर पाते हो आप मुझसे, बोले बोले शुरू करते हैं। तो फिर हमने धूले में जाके शुरू कर दिया, और हमने कहा सर 10 साल में इसको गरीबी मुक्त कर देंगे, और यहाँ 52% आदिवासी रहते हैं, काफी गरीब लोग हैं, तो हम सब शुरू करते हैं। तो हमने वहां पे काम शुरू कर दिया, और रत्नाकर गायकवाड़ साहब वगैरह सब गए वहां पर, और हमने काम शुरू किया वहां पर, और काम शुरू करते करते इसी तरह से काम शुरू किया, तो वो पूरा भी हमने 8 साल में गरीब मुक्त करा दिया। और हमने 2 साल इसलिए छोड़े कि कहीं और रह जाएगा कोई काम, तो और उसमें हमने ये किया कि जितनी भी सोशल की ये थी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इम्पैक्ट स्टडी करती थी, KPMG, डेलॉयट, विलॉयट, जितनी भी थी ना, हमने कहा भाई सब आप स्टडी कर लो इसको आप।
0: अच्छा,
1: बिग फोर से। तो उन्होंने तीनों ने कहा साहब ये तो मॉडल बहुत सक्सेसफुल है, चेयरमैन साहब बड़े खुश हुए इस बात से लेकर के, तो ये उधर बढ़ गया। तो और उसको बढ़ने के बाद में फिर हम जो इनकी जहां भी फैक्ट्रियां हैं, तो जो उनके लड़के हैं वो उस वक्त MD बन चुके थे, नीलेश गुप्ता जो आज के प्रेजेंट में है।
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने कहा भाई मेरी फैक्ट्रियों के बाद शुरू कर दो आप, जब आप पिताजी कहने से था आपने भरतपुर और ये कर दिया, भाई मेरी फैक्ट्री का तो ध्यान रखो जहां से प्रॉफिट हम आपको देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। उन्होंने कहा आपकी क्या कंडीशन है? मेरी कंडीशन ये है कि 5 गांव तो आपके लूंगा फैक्ट्री के पास, क्योंकि मैं इसको CSR नहीं कहता आपके को, जो आप कहते हो हम ये वो कब CSR या हम रूरल डेवलपमेंट करेंगे, तो अपीजमेंट पॉलिसी है, तुम खुश रहो हम खुश रहे, फैक्ट्री हमारी चलती रहे, तुम कुछ दंगा मत करिए गांव में।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो वो बहुत अच्छे, मैंने बिल्कुल एक्सटेंशन ऑफ अपीजमेंट पॉलिसी है ये, और मुझको इतना परमिशन दे दो कि 60 किलोमीटर के रेडियस में मुझे जहां भी गरीबी मिलेगी और वहां पर फिर मैं अपना वही काम करूंगा जो हमारा ये मॉडल है होलिस्टिक डेवलपमेंट का। तो वो मॉडल का काम हमने शुरू किया, तो फिर हमारी पूरी रीच हो गई, जम्मू पहुंच गए हम, क्योंकि जम्मू में फैक्ट्री थी, नॉर्थ में पहुंच गए, नीचे विशाखापट्टनम आ गए, और जो बगल में ये है अपना गोवा है, बड़ौदा है, अंकलेश्वर है, और फिर उसके बाद में जो हार्ट ऑफ इंडिया है वहां पे भोपाल है, नागपुर है, इंदौर है। फिर हमने कहा कि भाई अब वो रह गया ईस्ट, रह गया भगवान दया से इनकी ईस्ट में फैक्ट्री खुल गई, तो मैं सिक्किम में ही पहुंच गया।
0: अच्छा,
1: तो मैं तो हमेशा ही टोज पे ही रहता था।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ, उसको काम करने के लिए मैंने चेयरमैन साहब से ये जरूर कहा कि मैं इनके साहब ऐसे काम नहीं होगा, क्योंकि आपके आदमी हैं वो डिफिकल्ट काम नहीं करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि कोई सीधा सीधा काम हो जाए, तो इनकी रिपोर्टिंग मुझे करिए आप CSR के मामले में। इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, किसी कॉर्पोरेट ने आज तक ये हिस्ट्री नहीं है सर।
0: सही बात,
1: प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वो वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपको रिपोर्ट करें। उन्होंने एक सिंगल ऑर्डर जारी कर दिया, तो अब्बू कहते थे सर आप ही बताओ सर हम क्या करेंगे, मैंने आप बैठे रहिए, और हर जगह मैंने लुपिन फाउंडेशन के दफ्तर खोल दिए, तो इस तरह मेरे 17 सेंटर हो गए करीब।
0: भाई भाई भाई गुप्ता जी, गजब का किस्सा सुना रहे हो आप तो। आई कैन इमेजिन ल्यूपिन फाउंडेशन और ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल कितनी बड़ी कंपनी है और उसको आपने किस तरह से मैनेज किया और किस तरह से कॉरपोरेट के लोगों को आपने मैनेज किया और किस तरह से इस मॉडल को इतने जम्मू से लेके और विशाखापट्टनम तक पहुंचा दिया। मतलब मुझे तो लगता है हम दो चार घंटे तक बातें करें तो ये बात खत्म नहीं होगी। बहुत मजा आ रहा है। तो लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा रुक के हम एक गाना सुनते हैं, फिर थोड़ी सी बातचीत आगे जारी रखते हैं।
1: ठीक है,
2: स्टार्ट करने वाला क्या?
3: हाँ।

0: आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।
1: तो गुप्ता जी, आपने ये इतनी अच्छी तरह से हमें बताया और शायद यही आपका एक मॉडल भी है, वन कॉर्पोरेट वन डिस्ट्रिक्ट, ये जो विचार आपने रखा है इसके पीछे जो बेसिक थ्योरी है वो क्या है, इससे हमारी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी के किस तरह से गति मिल सकती है, कुछ इसके बारे में बताइए। फिर हम डिस्ट्रिक्ट जीडीपी की भी बात करेंगे जो आपका कंसेप्ट है, इन दोनों के बारे में बताइए।
2: वन कॉर्पोरेट और वन डिस्ट्रिक्ट की बात तो ये थी कि जब हम एक डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कर सकते हैं और उसके बाद दूसरा कर सकते हैं धूले में, टोटली डेवलप कर सकते हैं और फिर दूसरी जगह भी हमने जो इतने भी थे तो उसमें एक एक ब्लॉक डेवलप किए, हमने उससे कम नहीं किया फैक्ट्री के पास भी।
1: अच्छा।
2: हाँ, ब्लॉक डेवलप किए। तो अब हमने सोचा कि भाई हम देखते देखते हमने ये कहा कि तो बड़ा प्रोफेशनल काम है, ये वैसा काम नहीं है, हल्का काम नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आती है इसमें और बहुत कुछ होता है। तो अब कॉर्पोरेट की क्या ताकत है, इसको चार पिलर पे बांधा मैंने पूरे प्रोग्राम को।
1: ओके।
2: कि हाँ, कि भाई कॉर्पोरेट की ताकत क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है पूरा का पूरा ही, और उसमें इनोवेशन की बहुत गुंजाइश होती है। सो क्या करोगे बताइए, टाटा आज भी आ गए, मिलिंदा गेट फाउंडेशन आ गई, एलएनटी भी आ गया और आईटीसी भी आ गई, मतलब सब चुनिंदा चुनिंदा 8-10 लोगों को बुलाया उन्होंने। तो किसी ने कहा हम डेटा का करेंगे, कोई कहता है हम पानी का करेंगे, कोई, मैंने कहा साहब देखो मैं तो करता हूँ सारे के सारे काम। क्या मतलब, मैंने कहा साहब मैं तो डिस्ट्रिक्ट गोद लूंगा, कौन सा लोगे आप, मैंने कहा मैं लूंगा धौलपुर।
1: ओके।
2: हाँ, मेरे बगल में ही है तो मैं कर लूंगा उसको। और उसके बाद बोले और कौन सा लोगे, मैंने मैं लूंगा नंदुरबार, जो सबसे गरीब जिला है महाराष्ट्र का, जो धुले के पास है। फिर बोले एक मेरी रिक्वेस्ट और मान जाओ, कि ये विदिशा जिला ऐसा है जो इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है, जिससे सुषमा स्वराज जी हैं और शिवराज सिंह चौहान भी हैं, तो इनको ले लो आप। तो हमने तीसरा जिला भी उनके कहने से और ये आदेश से ले लिया हमने और काम शुरू किया हमने नीति आयोग के साथ। और ईश्वर की यह दया रही कि धौलपुर जिला पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट आया।
1: अच्छा।
2: हाँ, सारे पैरामीटर्स में, तो पहले दो पैरामीटर में फर्स्ट आया, मतलब एक तो ओवरऑल डेवलपमेंट में तो आई आए, लेकिन हेल्थ में हम नंबर वन आए। कलेक्टर बहुत अच्छे थे, वो एंकर होता थे, बोले उसको कभी नाम नहीं लेते थे, ईडी सर, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ईडी साहब इस पैसे का क्या करूं मैं, मैंने कहा साहब कुछ मत करिए, सिर्फ एक हेल्थ में लगा दो आप। तो इस देश की परेशानी यह है कि ह्यूमन कैपिटल पे कभी काम ही नहीं हुआ है। तो बोले कि क्या करूं, मैंने कहा कुछ मत करिए कि आप बाड़ी को एक डिस्ट्रिक्ट सब हॉस्पिटल बना दो, नया कंसेप्ट आया मेरे दिमाग में। तो वहां के लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भीड़ नहीं करेंगे, तो वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। और इस तरह से एक पूरा पूरा ये हो गया। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपील ही कर दी वन कॉर्पोरेट वन डिस्ट्रिक्ट की, फिर कॉर्पोरेट साहब अपने आप भागे आ गए।
1: अच्छा।
2: तो वो सपना पूरा हुआ। तो अब आप देखिए 25,000-30,000 करोड़ इनका लोगों का होता है उस वक्त, और अब तो बहुत ज्यादा है, क्या प्रोजेक्शंस बहुत ज्यादा हैं। और अगर गवर्नमेंट की स्कीम के साथ मिलके काम करें, क्योंकि धूले में मैंने 85 करोड़ पे काम खत्म कर दिया था मेरा, 222 चेक डैम बनाए मैंने।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, दो और देवेंद्र फडणवीस साहब खुद गए और सुरेश प्रभु जी मिनिस्टर थे, दोनों ने उसका 222 चेक डैमों का उद्घाटन किया। हाँ, तो सरकार में पैसे तो होते ही हैं, तो इसलिए कॉर्पोरेट की काफी दम होती है इस चीज को करने की।
1: तो ये तो बहुत ही गजब, मतलब आप तो एक तरह से पूरी, और आपने जो हायर लेवल का जो कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेशन है और जो गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन, उसका भी खाका खेच दिया। वो कितना मुश्किल भी है और कितना आसान भी है, अगर होने लग जाए तो काम हो जाते हैं और नहीं होते तो कैसे दिक्कत।
2: बिल्कुल सही बात है,
1: बिल्कुल
2: नहीं, गवर्नमेंट में देखो, गवर्नमेंट में दिक्कत नहीं है, परेशानी सिर्फ गवर्नमेंट की है कि हम कोई भी काम शुरू करें चाहे हमारे पैसा हो, उनसे उद्घाटन करा दो कलेक्टर से, ब्लॉक लेवल का है, एसडीएम से करा दो, तो वो उनको एक प्राइड अटैच हो जाता है फिर, देन दे बिकम पार्टनर्स एक्चुअली, तो ये नहीं करते हैं कॉर्पोरेट्स।
1: तो हाँ, मैं एक ऑफ द कफ सवाल भी आपसे पूछना जा रहा था कि आपने इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, मिनिस्टर्स को, इनको सबको डील किया, तो ऐसी क्या खास बात है आपकी डीलिंग में? क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के लोगों का यह अनुभव होता है कि सरकारी मशीनरी से किसी भी तरह का काम, खासतौर से फाइनेंशियल, ये कराना बहुत मुश्किल काम होता है, और करप्शन के चार्जेस लगते हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं, वो सब अपनी जगह है। तो ये आप कैसे मैनेज करते हो? आपको ऐसी कौन सी तरकीब पता है या ट्रिक पता है कि आप इन लोगों को मैनेज कर लेते हो, सरकारी अधिकारियों को?
2: नहीं, बड़ा मजेदार किस्सा है ये। पहला तो मैं यही बता दूं कि डॉक्टर प्रज्ञाराम बिरला फाउंडेशन से, और एक मैं और एक शर्मा थी इससे टाटा से, हमको तीनों को योगांदर साहब जो रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी, तीनों को बुलाया कि भाई अच्छा। तुम लोगों को, क्योंकि भाई तीन तुम लीडिंग आदमी मानता हूं मैं इंडिया में आज रूरल डेवलपमेंट में।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो हम तीनों को बुलाया, तो उन्होंने उनसे पूछा क्या परेशानी। सब कलेक्टर बहुत परेशान करता है। प्रज्ञा राम ने कहा सब कलेक्टर साहब बहुत परेशान करते हैं। मुझसे पूछा भाई तुम्हारी क्या परेशानी है? मैंने कहा मेरी तो परेशानी है नहीं, आपने बुलाया मैं आ गया।
1: अच्छा।
2: आपको कलेक्टर तंग नहीं करता मेरे साहब? बिल्कुल नहीं करते, मेरे चैम्बर में आके चाय पीते हैं। क्या कह रहे हो, आपके एक एनजीओ में कलेक्टर आ जाता है मेरे साहब? आ जाते हैं, वो बात है। तो फिर उनका भाई देखिए मैं सारे कलेक्टरों को ठीक नहीं कर सकता यहाँ से, हैं? ये बहुत डिफिकल्ट काम जो बता रही हैं आप, लेकिन सीताराम जी के वहां जाकर के आप चले जाइए और काम सीख के आइए और देखिए कैसे काम करते हैं। तो चूंकि मैं गवर्नमेंट में रहा था उसका मुझे वाकई फायदा मिला, क्योंकि इससे मेरी एक्सेप्टेंस भी हो गई एरिया में। नहीं तो कहते हैं कौन है क्या है, तो मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो फिर हमने कहा कि भाई अब इस काम को कैसे किया जाए। तो बीडीओ को ये मालूम था कि इनके कलेक्टर साहब से बहुत अच्छे रिलेशन है, हैं? तो वो काम फटाफट करता था। कलेक्टर को ये मालूम था कि चीफ सेक्रेटरी साहब से बहुत अच्छे रिलेशन है इनके। वो अच्छा काम करते थे। और चीफ सेक्रेटरी साहब मुझे सीएम साहब के पास ले गए थे, तो मेरे उनसे बहुत डायरेक्ट रिलेशन हो गए। तो सीएस के थे इसके तो डायरेक्ट रिलेशन हो गए। हाँ, डायरेक्ट रिलेशन हो गए। तो फिर ये सारा काम इतना बढ़िया हो गया, तो ये काम मुझे इजी सेलिंग हो गई। हाँ,
1: मैं समझ गया सर। ये जो है आपकी नेटवर्किंग तो खैर गजब की है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो आपका ये जो एक से आगे बढ़ के आप, मीठालाल मेहता भी खुद भी बहुत बढ़िया आदमी थे,
2: बड़े तगड़े आदमी थे सर।
1: और थोड़े डेवलपमेंट ओरिएंटेड थे हमेशा,
2: डेवलपमेंट ओरिएंटेड। मैं तो ऐसा ब्यूरोक्रेट ही नहीं देखा, सच कह रहा हूं।
1: ऐसा ब्यूरोक्रेट कोई नहीं, उनका
2: मैंने देखा अभी तक, मेरी लाइफ में नहीं देखा सर।
1: बिल्कुल सही यार। तो गुप्ता जी, ये तो इतना समय की सीमा को हम बिल्कुल, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह से आगे बढ़े। मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अब एक हम गाना सुनने के लिए थोड़ी सी देर रुकते हैं, और फिर आपसे कहेंगे कि आप कुछ हमारे को ऐसा एसेंस बताइए कि जो हमारे हम साथ ले जा सके। तो एक मिनट गाना सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं।

0: हाँ वेलकम बैक गुप्ता जी। अब मैं तो आपसे, इतना आपका वृहद अनुभव है, इतने सारे लोगों से आपने डील किया है, तो आज की जो देश में स्थिति है, तब से और अब में तो बहुत फर्क आ गया है, तो देश के पॉलिसी मेकर्स को अगर आपको तीन सुझाव इतने अनुभव के बाद में देने हो कि भारत के ग्रामीण इलाके की तस्वीर हम कैसे बदल सकते हैं, तो क्या आप तीन सुझाव इस स्थिति में आप देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए हमें?
1: ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि सर, पहला काम अगर किसी को बड़ा करना, देखिए पहले तो स्केल की बात है ही, और सबसे बड़ी चीज ये कि लेट, मतलब पहली बात ये कि उस डिस्ट्रिक्ट का लेटेंट पोटेंशियल पहुंचानी है आप।
0: ओके,
1: कि भाई क्या है ऐसा जो छुपा हुआ पड़ा हुआ पोटेंशियल, उसको बाहर निकालिए आप। जैसे प्रतिभा को बाहर निकालते हैं आदमी को, ऐसे निकालिए आप। तो वो जैसे हमने भरतपुर में बी कीपिंग का काम शुरू किया है, तो वो बी की वो कह रहा हूँ, सरसों तो बहुत पहले हो रही थी ना, कोई दिक्कत
0: हो रही थी सरसों तो बहुत,
1: लेकिन सरसों को बियॉन्ड नहीं सोचा था हमने, कहा ये इनोवेशन की बात आ गई। और वो कैसे हुआ वो एक अलग इशू है, मैं उसको अभी चौंक समय नहीं है अपने पास, लेकिन आज वो करीब 5,000 टन से ऊपर शहद उत्पन्न होता है, 9,000 टन वहां से एक्सपोर्ट होता है, और 19,000 टन का वहां पे कलेक्शन है भरतपुर में। मैं कोई पंजाब के डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिमाचल के की नहीं कर रहा हूँ, मैं एरिड राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। एंड नाउ इट इज ए नंबर वन हनी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, इट इज नंबर वन हनी प्रोड्यूस हनी एक्सपोर्टर इन द कंट्री टूडे।
0: अच्छा।
1: और आप देखिए कि आज करीब 5,000 किसान जुड़ गए आज, और देखिए एक नया पैसा राजस्थान सरकार का नहीं लगा, एक पैसा केंद्र सरकार नहीं लगा। आप कहोगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, और ऐसा मॉडल आपको बहुत ही कम मिलेंगे देश में, मिले तो सिर्फ 54 करोड़ रुपए मैंने माइक्रो फाइनेंस लिया था, और वो किसानों ने मुझे ड्यूटीफुली विद इंटरेस्ट वापिस कर दिया। मैंने जो बैंक्स थी कोटक महिंद्रा और जितनी भी बैंकें थी उनको सबको SBI वो जितनी भी थी उनको सबको वापस कर दिया मैंने, और मॉडल आज चल रहा है।
0: अच्छा, तो एक तो आपका पॉइंट हो गया लेटेंट, कोई भी जो पोटेंशियल है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये मैं समझ में आ गया, क्योंकि ये बी कीपिंग उधर अपने वहां बहुत होता है, उदयपुर में ट्राइबल एरिया है, वहां शहद वगैरह।
1: हाँ, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है सर।
0: हाँ हाँ
1: वो, और दूसरा ये है कि आप सबसे बड़ा काम ये करिए कि भाई आप जो अपने देश में नहीं हुआ है, और आज हम देश में जो सफर कर रहे हैं ना सब, ह्यूमन कैपिटल का बिल्डअप नहीं हुआ है, आपका निवेश स्वास्थ्य और शिक्षा पे बहुत ज्यादा होना चाहिए।
0: सही बात है।
1: और इसके स्किल पे होना चाहिए। अब देखिए आपके सामने ही प्रॉब्लम आ रही है, मतलब दो प्रॉब्लम आपके मोबाइल में, एक मिनट लूंगा आपकी। पहली चीज तो ये आ रही है कि भाई AI का जमाना आ गया और हमारी ह्यूमन कैपिटल तैयार ही नहीं है आज, वी आर लेबर इंटेंसिव इवन टुडे। तो भाई आप कैसे फेस करोगे संसार को, और विकसित भारत का सपना देखते हैं अपन है? तो एक तो ह्यूमन कैपिटल को आपको बढ़ाना पड़ेगा, और हमारे यहाँ मैं कहता हूँ कि यार मैं सच कह रहा हूँ, मैं जो नौ स्टेट में घूमा हूँ, ब्रिलियंट पीपल हैं, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल हैं, नो डाउट अबाउट इट। तीसरी चीज
2: रोज और ये भी ले जाओ।
1: तीसरी जो काम करनी चाहिए, कभी सरकार में एक प्रयास ही नहीं किया। मैं बताता था सरकारों को कि भाई एक सरकार दूसरी सरकार की, चाहे बीजेपी रूल है, कि भाई उनकी यहाँ पर कोई सक्सेसफुल योजनाएं क्या है, है? तो लेकिन कोई स्टडी नहीं हुई आज तक कि भाई आज राजस्थान की तो अपना काम अपना काम है, है? और वहां के वो रायता बंधु है उसके, कर्नाटका की उसके, तेलंगाना की, आज कर्नाटक था पहले, और उड़ीसा की कोई और है, तो आप देखिए इनका कोई स्टडी आज तक हुई नहीं है।
0: स्टेट स्पेसिफिक कौन,
1: हाँ स्पेसिफिक मतलब आप नहीं हुई है, अगर ये स्पेसिफिक करके और आप एक देशव्यापी अगर एक मॉडल बना दें कि भाई ये मॉडल होगा, तो आप देखिए कि देश का कितना त्वरित गति से विकास होगा। अब आप देखिए कि उनको पता नहीं था रत्नाकर एक बार चीफ सेक्रेटरी हो गए, तो बोले साहब हमारे, मैंने कहा भाई नरेगा का पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहे हो, मैंने कहा हमारे यहाँ मजदूर नहीं, हम इसे गरीब थोड़ी हैं आप जैसे, मैंने कहा अच्छा मैंने कहा वहां चले जाइए महाराष्ट्र में, ढाई ढाई लाख रुपए दे रहे शिवराज सिंह चौहान कुएं खोदने के इरीगेशन के लिए। तो खैर वो सर्कुलर लाई, वो सर्कुलर दिखाया, फिर उन्होंने चालू किया। अब आप देखो तो सही ना, कोई पढ़ाई नहीं, वो स्कीम ही नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जो तीन चीजें भी अगर आप कर लोगे, और बाकी का चौथी चीज तो ये है कि भाई वो सब दिमाग का खेल है कि प्रॉब्लम को पोटेंशियल में कैसे बदलें। जो मैंने भरतपुर में किया है कि जहां पानी भरा रहता था वाटर बॉडीज बनाई और फिशरीज का प्रोग्राम कर दिया, और आज मेव एरिया काफी अच्छा हो गया है।
0: अच्छा, बहुत कमाल है साहब, मेव एरिया को आपने बैकवर्ड से उठा के खड़ा कर दिया है, बहुत बिल्कुल खड़ा कर दिया। लोग बाग भी बड़े वैसे होते हैं थोड़े से वहां के,
1: लेकिन बड़े इंटेलिजेंट है सब,
0: बड़े इंटेलिजेंट। अच्छा,
1: सुपर इंटेलिजेंट। आप देखिए ना साइबर क्राइम में, अब मैंने वहां से विड्रॉ कर लिया था, साइबर क्राइम करने लग गए।
0: तो गुप्ता जी, मैं तो क्या, मेरा तो मन करता है कि ये हमारा इंटरव्यू चलता ही रहे, लेकिन जिस तरह की समय सीमा हमारे रेडियो पर होती है, तो अभी हमने भी इतनी देर बात कर ली और मुझे लग रहा है कि हमारी सारी बातें अभी खत्म भी नहीं हुई हैं। तो एक छोटा सा ब्रीफ लास्ट में संदेश कुछ हमारे श्रोताओं को, जो बहुत ही रूरल डेवलपमेंट की में इन्वॉल्व तो होना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है किस तरह से हो, तो एक छोटा सा ब्रीफ में आप संदेश दे दीजिए, फिर हम इसको रैप अप करते हैं।
1: देखो, बड़ा संदेश है, और मैं, मेरे मन में ये थी भाई देखिए कि बगैर गांव का विकास हुए और इस देश का विकास तो नहीं हो सकता है। तो मेरी कोई मानता नहीं था, इवन अफ्ताब खान जी नहीं मानते थे कि नहीं यार सिटीज आर द इंजन्स ऑफ ग्रोथ। मैं इनकी सभी सिटीज बिटीज की क्यों बातें करते रहते हो, आपको दिल्ली का हाल क्या हो रहा है, वो मानते नहीं थे। क्योंकि फिर जब कोरोना आ गया, भगवान ने इतनी बढ़िया काम किया, कोरोना आ गया।
0: अच्छा
1: अब कोरोना आ गया तो आप देखिए कोरोना ने क्या किया कि पूरे जो शहरों में आदमी रहते थे हमारे गांव वाले, सब सड़कों पे आ गए। 7 करोड़ आदमी सड़कों पे था, कहाँ जा रहे हो भाई, गांव जा रहे हैं, हमारा तो वही है। तो आपको लेसन मिल गया ना कि अल्टीमेट हमारी जो शरण स्थल है वो तो गांव है, बचेंगे वहीं से। और एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट भी आप देखिए सब ज्यादा हो गई कोरोना में, लेकिन सब इंडस्ट्री मर गई। तो इसलिए क्या है कि ग्रामीण विकास करना चाहिए, कैरियर के रूप में इन लोगों को आना चाहिए, बच्चों को। और सीएसआर में वाकई मैन पावर की बहुत कमी है आज, अच्छी मैन पावर की बहुत कमी है आज। ये लोग अपना कैरियर अपना सकते हैं अपना।
0: ओके
1: जी सर जी,
0: चलिए। तो गुप्ता जी, आज की बातचीत केवल एक इंटरव्यू नहीं थी, बल्कि एक तो एक इंस्पिरेशनल जर्नी थी, जिसने हमें विश्वास दिलाया कि यदि सही सोच, जन भागीदारी और सतत प्रयास हो तो गांव की तस्वीर बदली जा सकती है।

0: सकती है।
1: जी जी सर जी।
0: विकास भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब भारत का गांव सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा। आपने इसी दिशा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, इसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। रेडियो एसएन परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार। आपने इतना समय दिया, इतनी सारी बातें की और एक पूरा एक तरह से हमारे सामने परिदृश्य खींच दिया, किस तरह से एक बिल्कुल ही बैकवर्ड से शुरू करके आपने इतनी एक ग्रोथ इंजन सा बना दिया है। तो मजा आ गया हमें तो आपसे बात करके। हम ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, निरंतर सक्रिय जीवन की कामना करते हैं, ताकि आपका अनुभव आने वाले पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत और श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आज का काम सफल हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा अगर वो ग्रामीण के विकास की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। कैरियर वही है, अल्टीमेट हमारी जर्नी वही है।
0: वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। यूथ के लिए आपका ये मैसेज है कि रूरल डेवलपमेंट से इन्वॉल्व हो, उसमें एंगेज हो। बहुत बढ़िया। तो नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। मैं आरजो एलो का आपसे अनुमति चाहता हूं, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए और जुड़िए। थैंक यू
2: दोस्तों। जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: गई।
1: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है संगीत की दुनिया का सतरंगी रंग। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है एक ऐसे शख्स जिनकी जिंदगी संगीत, साधना और संकल्प तीनों का बेहतरीन संगम है। हम बात कर रहे हैं श्री कंदर्प कुमार ठाकुर, जिन्हें हम प्यार से के ठाकुर के नाम से भी जानते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 38 वर्षों की सफल सेवा के बाद रिटायरमेंट, और उसके बाद में उन्होंने अपने दिल की पुकार सुनी और उस पुकार का नाम था संगीत। बचपन से ही मुकेश जी की गायकी के दीवाने ठाकुर साहब ने संगीत को सिर्फ सुना नहीं, उसे जिया है। रिटायरमेंट के बाद आपने स्वर साधना फाउंडेशन की स्थापना की, 12 शानदार स्टेज शो किए। कोविड के दौरान फेसबुक लाइव प्रोग्राम से लोग तक संगीत की रोशनी पहुंचाई, और सबसे खास बात, पिछले 40 वर्षों से अपनी पत्नी संगीत प्रेमी एवं गुरु श्रीमती रजनी ठाकुर के साथ एक सुंदर मन से मन को छूने वाली संगीत यात्रा तय की। तो आइए स्वागत करते हैं के ठाकुर जी का और उनकी जीवन संगनी रजनी जी का, और जानते हैं उनका ये अद्भुत सफर, संगीत से जुड़ी उनकी भावनाएं और उनका वह जुनून जिसने कई गायकों को तराश कर एक नया रास्ता दिया। ठाकुर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आलोक जी, आज इस कार्यक्रम में मैं सभी संगीत प्रेमी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं।
0: तो ठाकुर साहब, शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। ये बताइए, आपका बचपन कैसा रहा, किन परिस्थितियों और माहौल में आपकी संगीत यात्रा के ये शुरुआती बीज पड़े, उसके बारे में कुछ साझा कीजिए।
1: जी, मेरा बचपन बूंदी में शुरुआत में बीता। बचपन साधारण था, संस्कारों से भरा हुआ था। उसी समय रेडियो एक अहम हिस्सा था, वहीं से मेरी संगीत यात्रा की नींव पड़ी। मुकेश जी के गीत सुनकर सब काम छोड़कर मैं उसे सुनता था, और शायद वहीं से संगीत को मेरे भीतर घर बना लिया है। एक और बात थी, बूंदी में मेरी बड़ी बहन जो उस समय शास्त्रीय संगीत सीखती थी, तब मैं भी वहीं बैठा था और बैठकर सुनता था, तो वो स्वर मेरे कानों में पड़ते थे। मेरे पिता अच्छे तबला वादक थे और दादाजी अच्छे हारमोनियम प्लेयर थे, और घर में अक्सर कभी कभी संगीत की बैठकें होती थी जहां भजन और शास्त्रीय संगीत गाया जाता था। तो वही स्वर सुनकर मुझे संगीत का शौक लगा और मुझे अच्छा लगने लगा।
0: अरे वाह, इसका मतलब परिवार में ही आपके संगीत का शौक था सभी लोगों को, और आपने बताया आपके पिताजी दादाजी सब रहिए, तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपको तो परिवेश ही ऐसा मिला कि जहां आप संगीत ही संगीत था, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, बचपन में ही आपको गाने का शौक कैसे लगा? क्या घर में या परिवार में भी संगीत का, आपने अभी बताया माहौल था, तो क्या जो आपकी सिस्टर्स थी या जो मदर थी, फादर, ये सब लोग गाने का शौक रखते हैं क्या?
1: नहीं, मेरी सिर्फ बड़ी सिस्टर जो शास्त्रीय संगीत सीखती थी वो उसमें गाती थी, और परिवार में कोई गाने वाला नहीं था। मेरा शौक शुरू में जब रेडियो में हम सुनते थे, रेडियो भी ही एक माध्यम था संगीत सुनने का, और रेडियो में जब गीत गाए जाते थे, बिना का गीत वाला उसमें बड़ी फेमस थी, और उस समय मुकेश जी के गाने जब आते थे तो मैं बड़े ध्यान से सुनता था, और उसी से मुझे लगा कि मुझे भी गाने में आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा शौक लग गया संगीत सीखने का, और मैंने सीखा भी अब बाद में।
0: चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में 38 वर्षों तक सेवा दी, तो क्या बैंक की सांस्कृतिक या संगीत गतिविधियों से भी आप जुड़े रहे हैं? क्योंकि बैंकों के अंदर भी ये कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं।
1: जी, मैंने 1982 में बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्वाइन किया था मुंबई में, और बैंक के हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में, बैंक में इंटर जोनल इंटर रीजनल कॉम्पिटिशन होते थे म्यूजिक के, उसमें हमेशा से मैंने भाग लिया। सभी लोग जानते थे मेरा गायन के बारे में, तो मुझे अक्सर गाने का मौका मिलता था, और इसी तरह से मेरा संगीत से रिश्ता जुड़ा रहा, जहां बैंकिंग ने मुझे अनुशासन सिखाया और संगीत ने मुझे जीवित रहना, दोनों का संतुलन ही मेरी ताकत बना।
0: वाह क्या बात कह दिया, संगीत ने आपको जीवन दिया, बैंकिंग ने अनुशासन दिखाया, क्या मजा आ गया आपकी बात सुनकर। तो ये कहिए, बैंकिंग की व्यस्तता के बावजूद आपने संगीत का संबंध बनाए कैसा रहा? क्योंकि बैंक के अंदर तो मुझे पता है कि किस तरह की जिंदगी होती है, कितने ज्यादा लोग बाग बिजी रहते हैं और डेडलाइंस भी होती है, टारगेट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी आप कैसे प्रैक्टिस करते थे, क्या करते थे?
1: बैंक में 6 दिन तो वर्किंग होता था, लेकिन एक संडे मिलता था या कभी कभी कुछ बीच में हॉलीडेज आते थे। तो चूंकि मुझे शुरू से गाने का शौक था, तो मैं नियमित रूप से हर संडे को 1.5 से 2 घंटे रियाज करता था और ये मेरा रियाज अभी तक भी जारी है। तो उस तरह से मैंने अपने गले को, अपने संगीत को मेंटेन किया और जारी रखा।
0: अद्भुत है, बहुत बहुत आप बधाई और उसके पात्र हैं, क्योंकि बैंक की लाइफ के बावजूद आप संडे को समय निकाल लेते थे, लेकिन लोग तो बैठ के उस टाइम भी बैंक का ही काम करते हैं संडे के दिन। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत।
1: जी जी जी जी।
0: चलिए कोई बात, तो इसी आपकी संगीत प्रेम और संगीत साधना के नाम पे हम रुक जाते हैं और एक गाने का आनंद लेते हैं।
1: जी जी।

0: ठाकुर साहब, अब आते हैं, आगे चलते हैं हम आपके संगीत की तरफ। आपको
1: जी
0: कब लगा कि संगीत ही आपकी असली कॉलिंग है, या कौन सा मोड़ था जब आपने तय कर लिया कि रिटायरमेंट के बाद संगीत को ही पूरा समय देंगे?
1: जैसा कि मैंने बताया कि शुरू से मुझे गाने का शौक था और सुनने का शौक था। बैंक बैंक से जब मैं रिटायर हुआ, क्योंकि बैंक के में जॉब करते समय तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था, बैंक से रिटायरमेंट के बाद में मुझे लगा कि अब मुझे वही करना चाहिए जो मेरी पसंद है और मेरी आत्मा चाहती है, और संग

0: वे गाते नहीं थे बल्कि महसूस कराते थे, और यही बात मेरे दिल को छू गई।
1: बहुत सुंदर। तो फिर अब इस दर्द और भावनाओं से पूरे मुकेश जी की गायकी के बारे में आपने इतनी बात कर ली है, तो हमसे अब रहा नहीं जा रहा, हम तो आपसे अब ये फरमाइश करने वाले हैं कि
0: जी
1: आप
0: जी
1: कोई मुकेश जी का पसंदीदा गाना गाना चाहे तो हम बहुत स्वागत करते हैं उसका, भले ही मुखड़ा गा दें, कुछ लाइनें गा
0: बिल्कुल
1: दें, जैसे
0: बिल्कुल
1: आप जैसे जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वो कर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक उनका बहुत मधुर गीत सुनाता हूँ।
1: जी जी

0: है सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है।
1: बहुत सुंदर ठाकुर साहब, मजा आ गया। मुकेश जी की दर्द भरी आवाज को आपने जीवंत कर दिया, बहुत
0: जी
1: बढ़िया। और ये तो आप बिल्कुल मतलब एक ऐसे तरीके से गा रहे हैं जिसमें ना आपके साथ संगीत है ना कुछ है, लेकिन फिर भी आपने बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए चलिए, बहुत बहुत हमारी तरफ से इसके लिए बधाई। और
0: जी
1: अब हम
0: थैंक
1: आगे चलते हैं ठाकुर
0: जी
1: साहब, अब आते हैं आपके जो पैशन है स्वर साधना फाउंडेशन की तरफ।
0: जी जी
1: स्वर साधना फाउंडेशन की स्थापना का विचार कैसे आया, शुरुआत में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कुछ इसके बारे में बताइए।
0: जी रिटायरमेंट 2016 में मेरा रिटायरमेंट हुआ था, और
1: जी
0: उससे एक दो साल पहले से ही मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था किसी दूसरे ग्रुप में, और उस समय हम काफी प्रोग्राम स्टेज के देखने जाते थे इस दृष्टि से कि हम इसमें कुछ अच्छा ले सकते हैं, कुछ सीखें। उस
1: ओके
0: समय मुझे मुझे कुछ प्रोग्राम्स में जाने के बाद लगा कि वहां पे कुछ कमियां हैं, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं कुछ अच्छे गायकों और गायिकाओं को लेकर एक ऐसा ग्रुप बनाऊं जो निरंतर रियाज करके अपनी प्रतिभा को निखार सकें और संगीत, अच्छा संगीत लोगों को दे सकें। तो यही ध्यान में रखते हुए मैंने एक अच्छे सिंगर्स को साथ में लेके एक स्वर साधना फाउंडेशन ग्रुप बनाया। हम हमारे घर पे हर रविवार को रियाज करते हैं सभी मिलके जो भी आते हैं उसमें, और करीब 3 से 4 घंटे हम गाने का रियाज करते हैं हर संडे को। तो इस तरह से हमारे ग्रुप के सभी लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, और अब उनमें कॉन्फिडेंस आ गया कि वो अच्छा गा सकते हैं। शुरू में कोई चुनौतियां कुछ नहीं थी, बस चुनौती यही थी कि हम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं और हम अपना अच्छा कैसे दे सकते हैं ताकि हम दर्शकों का मनोरंजन अच्छे से कर सके और वो हमारे गाने को पसंद करें।
1: हाँ, नहीं, चुनौतियां तो आती होंगी क्योंकि हर अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, कलाकार होते हैं, दूसरे ग्रुपों से भी जुड़े रहते हैं, उनको सबको साथ लाना और इतने बड़े ग्रुप को बांधे रखना, ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती होती है।
0: जी, चुनौती होती है। प्रोग्राम जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके पहले कुछ चुनौतियां होती है कि उसमें आपको थीम सेलेक्ट करना, आपको सॉन्ग सेलेक्ट करना, फिर किस सॉन्ग को किसके ऊपर ज्यादा अच्छा सूट करेगा,

0: फिर उनको उसी तरह से कॉम्बिनेशन बिठाना मेल फीमेल का, तो ये सब प्रक्रियाएं चलती है। और जब हम एक्चुअल स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो उस दिन भी काफी अटेंशन देना पड़ता है कि दर्शकों को सुविधा हो, दर्शकों को अच्छा लगे। तो इस तरह से ये हर प्रोग्राम एक चुनौती है।
1: सही बात है। तो अब आप ये बताइए कि जैसे आपके ग्रुप में ज्यादातर कराओके का ही इस्तेमाल करते हैं या आपके यहाँ लाइव ऑर्केस्ट्रा भी की भी व्यवस्था होती है, कैसे करते हैं ये दोनों आप?
0: ये अभी तक हमने जो प्रोग्राम किया उसमें हमने कराओके का भी इस्तेमाल किया है और लाइव बैंड का भी इस्तेमाल किया है।
1: जी
0: तो शुरुआत में जो गाना शुरुआत करते हैं वो कराओके से हम शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे स्विच ओवर करते हैं हम लाइव पे, क्योंकि बड़े प्रोग्राम में तो जब लाइव बैंड के साथ में परफॉर्मेंस होती है तो उसका कोई जवाब नहीं, वो सब माहौल ही अलग बन जाता है।
1: तो लाइव ऑर्केस्ट्रा ढूंढने का मैं वैसे ही ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूँ, लाइव ऑर्केस्ट्रा का अरेंजमेंट कैसे करते हैं? आपके कोई परमानेंट म्यूजिशियंस हैं या कोई आप हायर करते हैं या क्या करते हैं, कैसे कैसे होता है ये सब?
0: जी, जयपुर में कुछ अच्छे म्यूजिशंस हैं जो जिनसे मैं संपर्क में हूँ, तो उनसे हम कांटेक्ट करते हैं और तीन चार अलग अलग लाइव ऑर्केस्ट्रा वाले जो हैं उनसे हम उनसे हमारा संपर्क है और वो ही अपने फिर संगीत में जो संगत करने वाले हैं उन सभी को एक साथ इकट्ठा करते हैं और उनको हम अब वो अब हमारा परमानेंट हो गया, दो तीन जिनको हम लाइव ऑर्केस्ट्रा के बुलाते हैं, उनसे हमारा सामंजस्य बैठ गया है तो वो इस तरह से हमारा काम अच्छा हो जाता
1: नहीं, ये बहुत बड़ी बात है साहब, जयपुर में आजकल हर दूसरे दिन एक ना एक प्रोग्राम होता रहता है और
0: जी। जी
1: उसके अंदर अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है। फिर तो आप ये बताइए,
0: जी
1: इस ग्रुप में कौन कौन से गायक उभरे हैं जिन्हें आपने संगीत में तराशा और आगे बढ़ने में मदद की? ऐसे गायक बहुत सारे मिले होंगे आपको इस यात्रा के दौरान जिन्हें आपने ग्रूम किया, आपके ग्रुप ने ग्रूम किया, उसके बारे में कुछ बताइए।
0: जी हमारे स्वर संगत ग्रुप में जुड़ने के बाद कुछ गायक गायिकाएं ऐसे हैं जो ये महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ पर बैठ के हर रविवार को रियाज करने के बाद में उन्हें उनमें एक निखार आया गायन में और उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आया पहले के मुकाबले, जब वो जब नहीं जुड़े थे और जुड़ने के बाद उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, उनमें सुर ताल में परफेक्शन आया है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, जिसमें कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा। हमारे डॉक्टर संकल्प हैं, सुगंधा जी हैं, पूनम जैन हैं, संजय चंदनानी जी हैं, वंदना जी हैं, वंदना जैमिनी जी, ऐसे ये लोग अब महसूस करते हैं कि उनके गायकी में बहुत निखार आया हम हमारे साथ बैठ के रियाज करने में।
1: चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो इसी संगीत में जो निखार आया है और जो संगीत की आत्मा है, उसके लिए हम रुक के यहाँ एक गाने का आनंद लेते हैं।
0: जी

0: हाँ तो ठाकुर साहब, आप बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम कैसे आयोजित करते हैं? स्थान, टीम, प्लानिंग, रिहर्सल, ये सारा प्रोसेस कैसा होता है, कैसे रहता है, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी हमारी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं करीब 21,
0: जी
1: और उसमें से हम जब हम कोई प्रोग्राम तय करने की सोचते हैं कि हम प्रोग्राम करेंगे, तो हम हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स की एक मीटिंग करते हैं और उसमें सबकी राय लेके हम किस हॉल में कर सकते हैं, क्या थीम रहेगी, किस तरह के गाने हम सेलेक्ट करेंगे और हम कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, इस बारे में करीब 3-4 बार डिस्कस करके फिर हम कंसेंसस लेके और उसको मूर्त रूप देते हैं।
0: तो अब जैसे मेरा अगला सवाल ये है, अब थोड़ा सा वैसा सवाल है कि इस समूह में शामिल होने के लिए कोई कोई फीस या कोई मेंबरशिप चार्जेस वगैरह भी आप है क्या आपके, अगर कोई शामिल होना चाहे?
1: जी हमने शुरू से रखा कि हम ग्रुप में शामिल होने के लिए फीस तो नहीं लेंगे, कोई फीस तो नहीं लेंगे, लेकिन जब जब भी प्रोग्राम होगा तो हमारे ग्रुप के जितने गायक हैं, जितने मेंबर्स हैं, वो सभी इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बराबरी से। और
0: बराबर।
1: दूसरा, अगर कोई गायक या गायिका हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो हमने उसका एक तरीका बना रखा है कि हमारे घर पे जब संडे को रियाज होता है, प्रैक्टिस होती है, तो उसमें उस उन गायक या गायिकाओं को हम बुला लेते हैं कि आप आइए और उनका गायन फिर हम जितने भी मेंबर्स उस समय उपस्थित होते हैं वो सब सुनते हैं। वो सुनने के बाद में फिर वो राय बनाते हैं कि अभी इनको ग्रुप में शामिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हमारा बेसिक मूल मंत्र ये है ग्रुप में शामिल करने के लिए कि सुर और ताल अच्छा हो, हमारे ग्रुप से लगातार जुड़े रहें, परमानेंट जुड़े रहें और ग्रुप की गतिविधियों में भाग लेते रहें और ग्रुप की अच्छाई के लिए अपने सुझाव देते रहें।
0: खैर, रिसोर्सेज के बारे में तो आपने बता ही दिया किस तरह से मोबिलाइज करते हैं आप, मेंबर से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बताइए कि लेकिन सुर ताल अच्छा हो ये तो ठीक है,
1: जी
0: लेकिन कोई एक बेस होगा, जैसे मान लो अगर आपके ग्रुप में कोई शामिल हो तो धीरे धीरे उसका सुर ताल बेहतर भी होता रहेगा, अगर थोड़ा बहुत शुरू में कमजोर है तो आपके
1: हाँ
0: साथ वो शामिल होगा, तो ये जो फाइन थिन लाइन है
1: हाँ
0: बिल्कुल बेस्ट बेटर या गुड के बीच में, इसको कैसे डिसाइड करते हैं? कोई एक्सपर्ट को बुलाते हैं कि भाई इसको हम लें कि नहीं लें, क्या करते हैं?
1: हाँ नहीं, हम ऐसा करते हैं, अब जैसे आपने कहा ना, जो गुड क्वालिटी होता है एवरेज, हम वहां से शुरुआत करते हैं, जो जिनके सुर ताल बेसिक ठीक है, बेसिक
0: बेसिक ठीक है। हाँ
1: बेसिक ठीक है, जिनको थोड़ी सी समझ है, फिर उसको उनको उनको हम जब हम साथ में बैठ के गाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, तो कमियां बताते हैं और उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है। और हमारे घर में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल हमारा पारिवारिक माहौल है, तो हमारे एक तरह
0: जी
1: से ग्रुप में ही है, हमारा एक परिवार ही है लोग, जिस अच्छा जरूरी नहीं कि हम ही बताएं, हमको भी कोई बता सकता है, कोई कमी हो तो हम भी किसी को बता सकते हैं, ग्रुप में एक दूसरे को सब लोग बताते हैं कि इस चीज में ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है या इसमें ये कमी है, उसको सुधारा जा सकता है।
0: और सबसे मेरे ख्याल में जहां तक मैं सोचता हूँ कि सिंसियरिटी ग्रुप के प्रति, जो लॉयल्टी है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता होगा कि
1: बिल्कुल,
0: आप कितने
1: वो
0: सिंसियर हैं। सर
1: बिल्कुल बेसिक, यही मैंने कहा कि व्यक्ति ऐसा ऐसे को जोड़ना होता है कि जो हमारे ग्रुप में लंबे समय तक रह सके, पारिवारिक
0: बिल्कुल
1: माहौल में एडजस्ट हो सके, और लॉयल्टी सिंसियरिटी ग्रुप के लिए हमेशा वो अच्छी भावना रहे और उनके बारे में
0: सही बात।
1: सोचता रहे।
0: हाँ, कोई अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार समझे तो फिर ऐसे आदमी की बजाय तो एक एवरेज आदमी है जो बाद में धीरे धीरे ग्रूम ग्रूम होके आगे बढ़ता रहे, वो ज्यादा
1: बिल्कुल,
0: बेटर
1: एवरेज को लेके हम उसको बेटर बना सकते हैं।
0: बना सकते। सही बात है। तो चलिए, ये जो आपने टेक्निकल तरीके से हमें समझाया, इसी के लिए हम रुक जाते हैं और एक गाना सुन लेते हैं।
1: जी

0: ठाकुर साहब, आपने
1: जी
0: 2006 में अपने बेटियों के साथ बंबई में गुजराती भजन रिकॉर्ड किया, ये
1: जी
0: अनुभव
1: जी
0: कैसा रहा और कैसे आपने डिसाइड किया कि गुजराती भजन अब रिकॉर्ड?
1: 2006 में जब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मुंबई में पोस्टिंग था मेरा,
0: जी
1: उस समय हमारे साथ में हमारे इंटर जोनल टूर्नामेंट में एक दत्ता टीटे करके मराठी थे, वो कंपोज भी करते थे म्यूजिक।
0: ओके ओके जी
1: तो उन्होंने उस समय कुछ रिकॉर्डिंग्स करना शुरू किया था। तो एक दिन उनका फोन आया मेरे पास में कि आप लोग तो गुजराती हैं, तो मुझे आप लोगों से ना एक गुजराती भजन गवाना है, रिकॉर्ड करना है। और मैंने कहा कब करना है, तो बोला कि कल ही कर रहे हैं। मैंने कल करना है कि क्या करना है, क्या क्या भजन है उसके, क्या लय है, क्या ताल है, क्या सुर है, क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं कल आपको बता दूंगा, आप आइए। ठीक है भाई, मैं, मेरी बेटियां, मेरी वाइफ, हम पहुंचे खार खार वेस्ट में, स्टेशन के पास में एक स्टूडियो है,
0: जी जी
1: वहां पहुंचे सुबह 10 बजे।

0: वो वहां पे काफी लोग थे, तो वो दत्ता जी मिले। हमने पूछा भाई हमको क्या गाना है, थोड़ा बताइए तो सही। तो उन्होंने हमको एक पर्चा पकड़ा दिया जिसमें दो अंतर लिखे हुए थे, भजन के और एक से।
1: अच्छा,
0: उन्होंने हारमोनियम लिया, हम तीनों को बिठाया, बोला कि मैं थोड़ा गा के बताता हूँ उसको। तो उन्होंने एक बार उसमें हारमोनियम पे गा के बता दिया कि ये इस तरह से इसका संगीत है, और फिर उठ के चल दिए कि मैं तैयारी करता हूँ रिकॉर्डिंग की। अब हमने आपस में देखने लगे, फिर हमने ट्राई किया उसको, एटलीस्ट 15-20 मिनट हम तीनों ने मिलके उसको वहां बजाया, हारमोनियम बजाया और उसपे किया तैयार, करीब करीब तैयार कर लिया। तो ये बहुत ही मतलब ऐसा अनुभव था, मेरी तो पहला ही मौका था जब वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग का। हालांकि मेरी बेटियां तो पहले पहले स्टूडियो में गा चुकी थी राजस्थानी संगीत में, तो वो अनुभव बहुत ही अद्भुत रहा और बहुत मजा आया। जब गा के हम उन्होंने कहा मैं सुनाता हूँ, देखो आपने कैसा गाया है। तो गाना जो रिकॉर्डिंग सुनी तो हमको विश्वास नहीं हो गया, हमने इतना कम टाइम में 1 घंटे में रिकॉर्डिंग हो गई, इतना अच्छा गा लिया।
1: सही बात। अच्छा, ये भी बड़े मजेदार बात। अभी ये, हालांकि ये थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक हो जाएगा, 2006 में आप भी मुंबई में थे और मैं भी
0: जी
1: मुंबई में था। मुझे अभी देखते देखते ध्यान आया कि मैं भी उस टाइम मुंबई में था।
0: जी
1: चलिए।
0: जी हम खारघर में नवी मुंबई रहते थे।
1: अच्छा, नवी मुंबई में रहते थे।
0: जी
1: चलो
0: जी जी
1: चलो, मैं अंधेरी ईस्ट में रहता था। खैर, चलिए बाद में बात करेंगे। तो
0: जी जी
1: आपकी पत्नी श्रीमती रजनी ठाकुर खुद MA इन म्यूजिक हैं। आपकी
0: जी जी
1: संगीत यात्रा में उनका क्या योगदान है और कैसा समर्थन रहता है उनके साथ, कुछ बताइए इसके बारे में।
0: जी मेरी पत्नी सिर्फ जीवन साथी नहीं है, मेरी गुरु भी है, और
1: ओहो,
0: उनकी संगीत
1: वाह,
0: की समझ और मार्गदर्शन ने मुझे हमेशा सही दिशा दी है। वे मेरी आलोचक भी हैं और बहुत उनका सहारा भी है। तो क्लासिकल की जो जो थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे मिली है शादी के बाद में, वो मेरी पत्नी से ही मिली है और मेरी दोनों बेटियों से मिली है, वो भी दोनों म्यूजिक में एमए है। तो हम लोग साथ में बैठ के रियाज करते थे क्लासिकल का।
1: अच्छा,
0: जी
1: आपने बेटियों के बारे में बताया, बेटियां कहाँ हैं आजकल आपके?
0: हाँ, मेरी बेटियों की पढ़ाई तो जयपुर से हुई है दोनों ने। बड़ी बड़ी बेटी कृति है और उसने राजस्थान यूनिवर्सिटी से संगीत में एमए किया है वोकल में। छोटी बेटी श्रुति है, उन्होंने भी एम कॉम करने के बाद में राजस्थान संगीत संस्थान से निपुण की वो म्यूजिक वोकल म्यूजिक में कोर्स किया है, वो दैट इज इक्वलेंट टू MA म्यूजिक। और दोनों ही वीणा कैसेट से जुड़ी रही हैं करीब करीब 7-8 साल से, उनके राजस्थानी गाने गाए हैं और कैसेट्स में भी गाए हैं। और
1: वाह,
0: बड़ी बेटी इंदौर में रहती है कृति, और छोटी बेटी अभी दिल्ली में है।
1: ओके। तो ये तो आपका पूरा परिवार ही संगीत परिवार हो गया एक तरह से, ये तो ऐसा परिवार। तो अब देखिए, आप की जोड़ी दोनों संगीत यात्रा में भी साथ रहे, जीवन में भी आप दोनों और रजनी जी साथ हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इस इंटरव्यू में भी क्यों ना रजनी जी को भी साथ ले ले हम लोग।
0: जी
1: तो
0: जरूर जरूर
1: मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि
0: जी
1: ये तो आपने मुझे बता ही दिया कि आप दोनों का मोबाइल भी एक ही है,
0: जी
1: तो मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूं और
0: जी
1: आप रजनी जी को दे दीजिए, फिर उनसे
0: जी
1: हम बातें करते हैं। हाँ नमस्कार रजनी जी,
0: नमस्कार।
1: मैं आलोक कुमार हूँ और आपका इस इंटरव्यू में, इस हमारी बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में
0: नमस्कार,
1: हमने, आप वैसे भी बहुत बात कर ली है और अब आप जुड़ गई हैं हमारे से, तो बहुत बहुत एक बार स्वागत आपका।
0: जी धन्यवाद बहुत बहुत।
1: अच्छा रज्जी जी, अब ये बताइए, मैं तो आपसे दो चार वैसे इनफॉर्मल सवाल पूछ रहा
0: जी,
1: हूँ। आपकी शादी के बारे में, बूंदी के बारे में तो ठाकुर साहब ने बहुत कुछ बता दिया, अब बताइए जब आपकी शादी हुई तो क्या संगीत का भी इसमें कोई योगदान था, कोई एक फैक्टर था संगीत, ये वो बताइए आपका हमें।
0: हाँ
2: मेरे ख्याल से ये फैक्टर भी रहा ही है, क्योंकि इनको म्यूजिक का शौक था, तो जब ये आते थे तो हमारी बातें कम और हमारे घर का माहौल भी म्यूजिक वाला ही था, तो हमारी बैठ के खाली म्यूजिक पे सारे भाई बहन और ये और पापा या हमारे ससुर साहब ये सारे बैठ के बस गाते थे, तो वो ही हमारी भाषाएं होती थी आपस में एक दूसरे को समझने की।
1: नहीं नहीं आई कैन इमेजिन, मतलब वो जो सब बैठ के परिवार में जो संगीत हुआ करता था किसी जमाने में, वो जब माहौल बन जाता है वो तो बहुत ही अद्भुत होता है।
2: क्योंकि उस समय ये तो होता नहीं था कि आपको अकेला छोड़ दिया आप बातें कर रहे हैं। तो एक म्यूजिक का एक ऐसा था कि सबके साथ भी बैठ गए और आपस में एक दूसरे की आंखों आंखों में हृदय से सब बातें ऐसे हो जाती थी।
1: बिल्कुल सही बात है। और देखिए जैसे हम लोग कहते हैं ना, लड़के लड़की में वेव लेंथ मिलनी चाहिए, तो वेव लेंथ अगर मिल गई तो सारी चीजें मिल गई फिर तो।
2: जी जी जी जी जी जी
1: बहुत मजा आ गया। और मुझे तो ये बात भी बहुत अद्भुत लगती है रजनी जी कि आप आजकल दुनिया में आदमी हर चीज शेयर कर लेता है, केवल अपना मोबाइल शेयर नहीं करता, और आप दोनों पति पत्नी में एक ही मोबाइल है, ये तो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है आज की दुनिया में। बहुत बढ़िया।
2: वो ऐसा है कि हमारे मिलने वाले चाहने वाले सब सेम हैं, तो फिर मुझे लगता है कि जब हमारी एक ही से उससे हो जाता है काम, क्योंकि अभी आपसे मुलाकात है तो दोनों की आपसे है, तो कहीं मतलब पर्सनल ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे कोई फ्रेंड्स अलग हो या इनके मिलने वाले अलग हो। जनरली हम साथ साथ ही शुरू से ऐसा 82 के बाद से ऐसा ही रहा है कि साथ ही साथ, तो कभी ऐसी जरूरत नहीं हुई कि हमें अलग अलग फोन की आवश्यकता हो। और अगर मुझे दिलाया भी गया है ना तो वो फ्रिज पे रहता था, तो सबसे डांट और पड़ती थी क्योंकि वो ध्यान नहीं रहता था उसका। कि आप बंद करके रखते हो बंद, मैंने कहा वो मुझे ध्यान नहीं रहता है कब चार्ज करना है कब नहीं करना, तो वह एक ही फोन से फिर ऐसे चलता चला गया और आज भी चल रहा है वो।
1: अद्भुत है, अद्भुत है। तो अब मैं थोड़ा सा एक व्यक्तिगत सवाल पूछ लूं, मैंने सोचा पूछूंगा लेकिन अब पूछ लेता हूँ, आप आ गई हैं लाइन पे तो।
2: जी।
1: तो आप लगता तो वैसे नहीं है कि आपके संगीत प्रेम की वजह से आप दोनों में कोई रूठा रूठी होती हो, ये होता हो, कभी झगड़ा ही हो झगड़ा होता हो, लेकिन अगर होती है तो ठाकुर साहब आपको कौन सा गाना गाकर मनाते हैं कुछ ये बताइए हमें तो। आप
2: ऐसा वैसे कभी हुआ तो है नहीं, पर बाय चांस हो तो कभी एक आध बार तो ना, तुम रोती रहो मैं मनाता रहूं, होता है। पर्सनल क्वेश्चन पूछा तो एकदम से हाँ।
1: चलिए चलिए, तो आप रजनी जी आप तो खुद भी बहुत अच्छी गायिका हैं, तो आप अगर कंफर्टेबल हो तो हमें एक मुखड़ा कुछ लाइन अगर सुना सके तो बहुत अच्छा रहेगा। आप
2: मैं अपनी बादीला कैसेट से सुनाऊं या अपने स्वेच्छा से? वैसे
1: ये तो आपके ऊपर छोड़ते हैं, हम तो कुछ नहीं बता सकते, आप जो फिल्म का गाना सुनाना चाहें, कोई पुराना नया कोई भी जो भी।
2: जी जी, तो मैं एक आपकी तरफ से मांड सुनाती हूँ जो मुझे बहुत प्यारी है।

0: रजनी जी, बहुत अद्भुत, बहुत बहुत सुंदर। आपने तो हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए, संगीत के रंग बिखेर दिए, और क्या कहें, आपके आने से बिल्कुल जीवंत हो गए हम, और आपके गायन से तो बिल्कुल हमको हम किसी और ही लेवल पे पहुंच गए।
1: अरे
0: बहुत बढ़िया,
1: धन्यवाद,
0: बहुत
1: आप
0: बढ़िया।
1: धन्यवाद, और आपका विशेष धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया।
0: बहुत अच्छा लगा रजनी जी से बात करके, और ये जान के कि आप मोबाइल भी एक ही शेयर करते हैं, इससे तो बड़ी बात ही क्या हो सकती है। खैर, तो अब एक दिलचस्प सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। रफी और किशोर जी की गायकी को लेकर बहुत चलता रहता है, तो इनमें से कौन बेहतर है, कौन आपको अच्छा लगता है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है इसके बारे में?
2: जी, दोनों ही महान गायक हैं और अपने क्षेत्र के शिखर पर रहे हैं। जहां रफी साहब की गायकी में बहुमुखी प्रतिभा थी, उनकी आवाज में लचीलापन, कोमलता, स्पष्टता और ये खासियत थी कि हर अभिनेता की आवाज से मेल खाते हुए वो गायन करते थे। जहां तक किशोर साहब का सवाल है, किशोर कुमार जी का, उन्होंने कहीं संगीत सीखा नहीं था क्लासिकल, उनकी नैसर्गिक प्रतिभा थी। उनके उनकी गायकी में सहजता, शब्दों में पंच, मस्ती वाले गाने गाते थे और चंचल प्रकृति के गाने गाते थे। वो एक हरफन वाला व्यक्ति थे जो सभी तरह के काम कर लेते थे, एक्टिंग भी कर लेते थे, गाते भी थे, सभी कर लेते थे। और उनकी विशेषता थी उनकी यूडलिंग। तो ये इस तरह से दोनों अपने अपने क्षेत्र के महान गायक रहे हैं सर।
0: सही बात है, डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल है कि कौन अच्छा था कौन नहीं था, सभी अपने अपने उसमें ऊपर थे। तो आप ये बताइए, ये जो दौर था मोहम्मद रफी, किशोर, मन्ना डे, हेमंत कुमार एंड ऑल दैट, इनके बीच में मुकेश जी आज तक क्यों हमारे दिल पे राज करते हैं, और क्यों हमारे आज भी, मैं भी व्यक्तिगत रूप से भी जब भी मुकेश के गाने सुनता हूं तो बस ठहर सा जाता हूं, एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई चीज दिल के बिल्कुल करीब आ गई है, ऐसा क्यों होता है?
2: उनकी आवाज में एक सच्चाई थी, वो भावनाओं को ओढ़ कर नहीं जीते थे, उनकी आवाज सीधे दिल तक पहुंचती थी और यही उन्हें कालजयी बनाता है। और जो दर्द लेके जिस तरह के वो सुर लगाते हैं, वो मतलब दिल को छू जाता है, मतलब मन को छू जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो यही लगता है, मतलब यही कारण है कि वो इतने बड़े बड़े महान गायकों के बीच में उन्होंने अपना स्थान बना के रखा और लोगों के दिलों तक पहुंचे।
0: सही बात है। तो चलिए, यहाँ फिर इतनी अच्छी बातों के साथ में एक गाने के लिए हम रुक जाते हैं, एक गाना सुन लेते हैं।

0: दोस्तों ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज से। सुनते रहिए 90.8 FM रेडियो टांटिया भील। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जमानी। दोस्तों लीजिए, फिर आ गया वो दिन, वही वार जिसका हम बेसब्री से करते थे इंतजार।
1: आप सभी को स्वच्छिका और सुजल का सादर नमस्कार।
0: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जमानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ, हर कोना, हर गांव, शहर में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
1: दोहराना है हमें ये संकल्प और ये व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सबका अधिकार।
0: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय इस बार। धोएंगे साबुन से हाथ खाने के पहले और शौच के बाद।
1: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे स्वच्छता की गुहार।
0: केवल मनोरंजन नहीं, उद्देश्य है हमारा।
1: बैठ जाए हर मस्तिष्क में ये संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
0: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही वास करते हैं सुविचार।
1: प्रण करें आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें पूरा देश।
0: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार।
1: दूषिका भी भाग जाएगी अगर होगी आपके आसपास ऐसी बयार।
0: यही है सुजल स्वच्छ गांव अभियान की पुकार। साथियों इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञ और स्थानीय लोगों की कहानियाँ सुनेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके ओपन डेफिकेशन फ्री भारत बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और व्यवहार में बदलाव लाने पर जोर दिया जाता है।
0: जल के अधिकार के साथ एक बात और, वो ये कि स्वच्छ भारत अभियान के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनवाने का कार्यक्रम किया था। और स्वच्छिका तुमको याद होगा कि कितने ही गांवों ने स्वयं को ODF घोषित किया। अब ये ना कह देना कि ODF गांव होता क्या है।
1: अरे ऐसा कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है ODF का पूरा नाम खुले में शौच मुक्त गाँव है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन समुदायों या क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते हैं बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के साथ साथ महिलाओं की निजता की रक्षा में भी मदद करती है। सही बताया ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब देश ODF से ODF प्लस मॉडल गांव की ओर बढ़ रहा है। एक ODF प्लस मॉडल गांव वो होता है जहां खुले में शौच की आदत पूरी तरह खत्म हो चुकी हो, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन हो गया हो, साफ सफाई का स्तर अच्छा हो, सार्वजनिक जगहों पर कचरा और पानी जमा ना हो।
1: इसमें यह सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो और कूड़ा कचरा और स्थिर पानी कहीं भी जमा न हो।
0: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी देखिए बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से और आप लोगों को ये देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूट ना जाए।
1: अच्छा यह लेकिन मुझे यह पता है कि अब तक 5.67 लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को ODF प्लस घोषित किया है जिसमें से 4.81 लाख से ज्यादा गांवों को ODF प्लस मॉडल के रूप में मान्यता दी गई है।
0: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास देखिए जारी हैं। हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, हर घर नल योजनाएं भी शामिल हो चुकी हैं और हमारी आपकी सहभागिता इस महाअभियान में बनाकर रखना भी देखिए बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो और उसमें सुनते रहिए ये कार्यक्रम
1: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी। जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुके हैं। चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।
2: नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन

0: और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों, सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना। ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या वेस्ट भी सही तरीके से निपटान किया जा सके। इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में आज हमारे 4,85,000 से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है। ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रखरखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे। हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। ना हम कचरा फैलाएंगे, ना दूसरों को फैलाने देंगे। हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।
1: हमारे विशेषज्ञ ने कितने अच्छे से ये सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई, याद रखना है आपको और ये आपके क्षेत्र में कार्यान्वित हो, इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
2: एक मजे की बात बताऊं सुजल, देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद मैं स्वच्छिका और तुम सुजल, साथ में दूषिका भी बहुत फेमस हो गए हैं।
1: अच्छा, अरे वाह, ये कैसे हो गया?
2: अलग अलग गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: अच्छा, कहाँ?
2: चलो तुमको रामपुर गांव की कहानी सुनाती हूँ। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वह सुनवाती हूँ। और वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दूषिका की हार, स्वच्छ भारत की जीत।
1: एक मिनट, रुको रुको, दूषिका या प्रदूषिका?
2: सही तो है सुजल, प्रदूषिका तो सिर्फ प्रदूषण फैलाएगी, ये दूषिका ही है जो प्रदूषण के साथ हर स्थान को दूषित करती रहती है। हम भी अब से इसको दूषिका ही कहें तो सही होगा।
1: कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी हो जाती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दे दी, जहाँ प्रदूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत, आइए सुनते हैं दूषिका की हार स्वच्छ भारत की जीत।
3: आ गई मैं दूषिका, गांव की नालियों से निकलकर शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। ठीक हुआ ना, फैला दी ना मैंने गंदगी, जहाँ लोग खुले में शौच करते हैं, जहाँ शौचालय बनते तो हैं, मगर उपयोग ना करने से खराब हो जाते हैं और टूट फूट जाते हैं, वहीं मैं रहती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, जो कहते हैं ना कल करेंगे साफ, उनको मैं जल्दी से ही बीमार कर देती हूँ। खुला शौच यानी मेरी जीत, टूटी टंकी पानी मेरा ठिकाना, बहुत ठीक हुआ। गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना। घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है, बिमला के बेटे का तो खुजली हो गई। ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक ठहरा।
4: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े, सरपंच जी कुछ कीजिए।
5: जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
3: हमारे घर में शौचालय तो है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है। बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द और उल्टी, ये सब मेरी ही सौगात ठहरी। तुम सब तो मुझसे रहम की पुकार करो।
1: एक दिन गांव की सीमा पर आ जाता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव से रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था, सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है। और राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा सा क्यों है, सब इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, और भैया ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ?
2: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो, सच कह रही हो बहन, बन तो ऐसे रहा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो।
1: मैं सब समझ गया चाची, मैं समझ गया, इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये गंदगी है ना।
3: मैं ही हूँ इस सब का कारण, मैं। बोलो क्या कर लोगे तुम, बोलो बोलो। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ दिनों में मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
1: अच्छा तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारा किया धराया है ना, अब समझ गया मैं। देखो मैं कुछ दिनों में ही तुम्हारा कैसे इलाज करता हूं, देखते रहो। सुजल गांव में नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है। देखो भाई, शौचालय ना सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, यह है बीमारी से लड़ने का हथियार। गांव वालों सुनिए, खुले में शौच से मिट्टी पानी हवा सब जहरीले हो जाते हैं। अगर तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो ना भाई, तो बन जाओ होशियार, तो शौचालय का सही उपयोग करो, और उसे साफ भी तो रखना आप ही का काम हुआ ना। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक हमें होना होगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होने लगे और शौचालय की सफाई शुरू करते हैं। और दूषिका बहुत बेचैन होती है। गांव की गली में छिपकर वो देखती है।
6: ये क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां कैसे ढक दी? क्या ये शौचालयों पर दरवाजा कब लग गया? दुर्गंध कहाँ गई? अरे मच्छर भी नहीं है। अरे अरे अरे ये सब गांव में क्या हो रहा है? अरे
1: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
2: गांववासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है। मैं वहीं रहती हूँ और मैं हूँ स्वच्छिका।
1: अब गांव में हर घर, गली मोहल्लों में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित चित्र, साबुन के साथ बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं, महिलाएं गा रही हैं।
3: शौचालय प्यारा लागे रे मारा, शौचालय लागे रे मारा, शौचालय लागे रे।

0: गेले, घर में हो साफ सफाई रोज, तो बीमारी रखो को दूर, मारो सच शौचालय जी, ओ मारो सच शौचालय जी। अरे नहीं, स्वच्छता की ये चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है, मेरा प्रदूषण का साया तो खत्म होता जा रहा है, और इस सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है। मम्मी कहाँ जाऊं, अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, शौचालय में ढक्कन लग गए, नाली साफ कर दी गई, अब खुले में तो कोई शौच जाता ही नहीं।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं, खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दूषिका थककर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदल डाला। अब तो मुझे जाना ही होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
0: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो, अगर सफाई की आदत छूटी तो वह लौट सकती है। इसीलिए बहनों, सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है, गंदा तो होना ही है, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
1: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका, गंदे शौचालय से ही प्रदूषण बढ़ता है, अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
0: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है, देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों, अब से सफाई को ही अपनाओ। औरतें ही तो करती हैं ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाए, अब नहीं बोलोगी। सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे घर में शौचालय है, लेकिन बदबू बहुत आती है, बच्चे तो पास भी नहीं जाते।
1: तो समझाइए उनको बहन, शौच के बाद पानी डालना सिखाइए उनको, शौचालय का महत्व बतलाइए उनको।
0: अच्छा, तुम्हारे घर में अब भी सफाई नहीं हुई क्या? चलो चलो, मैं आती हूँ तुम्हारे घर, यही तो है मेरी असली ताकत, चलो आती हूँ। सुनो सब लोग, शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है, हाथ साबुन से अच्छे से धोना होता।

0: तो ताजगी भी रहती है और इज्जत भी।
1: हाँ हम सब समझ गए दूषिका, हम समझ गए। अब तुमसे नहीं डरेंगे, शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे, अब तुम्हें भगा देंगे।
0: ये तुम सब क्या कर रहे हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं।
2: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा। हर गांव में शौचालय है और उसका रख रखाव भी। बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं और दूषिका वो तो हार चुकी। ये है असली सुजल स्वच्छ गांव की तस्वीर। कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी हो जाती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दे दी, जहां प्रदूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छता ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत, आइए सुनते हैं दूषिका की हार स्वच्छ भारत की जीत।
0: आ गई मैं दूषिका, गांव की नालियों से निकलकर, शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में, मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। ठीक हुआ ना, फैला दी ना मैंने गंदगी। जहाँ लोग खुले में शौच करते हैं, जहाँ शौचालय बनते तो हैं, मगर उपयोग ना करने से खराब हो जाते हैं और टूट फूट जाते हैं, वहीं मैं रहती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, जो कहते हैं ना कल करेंगे साफ, उनको मैं जल्दी से ही बीमार कर देती हूँ। खुला शौच यानी मेरी जीत, टूटी टंकी पानी मेरा ठिकाना, बहुत ठीक हुआ। गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना। घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है, बिमला के बेटे का तो खुजली हो गई। ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक ठहरा।
3: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े, सरपंच जी कुछ कीजिए।
4: जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
0: हमारे घर में शौचालय तो है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है। बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द और उल्टी, ये सब मेरी ही सौगात ठहरी। तुम सब तो मुझसे रहम की पुकार करो।
2: एक दिन गांव की सीमा पर आ जाता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव से रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था। सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है। और राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा सा क्यों है, सब इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, और भैया ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ?
0: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो, सच कह रही हो बहन, बन तो ऐसे रहा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो।
2: मैं सब समझ गया चाची, मैं समझ गया। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये गंदगी है ना?
0: मैं ही हूँ इस सब का कारण, मैं। बोलो क्या कर लोगे तुम, बोलो बोलो। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे।

0: कुछ दिनों में मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
1: अच्छा, तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? अब समझ गया मैं। देखो, मैं कुछ दिनों में ही तुम्हारा कैसे इलाज करता हूं, देखते रहो। सुजल गांव में नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है। देखो भाई, शौचालय ना सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये है बीमारी से लड़ने का हथियार। गांव वालों सुनिए, खुले में शौच से मिट्टी, पानी, हवा सब जहरीले हो जाते हैं। अगर तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो ना भाई, तो बन जाओ होशियार, तो शौचालय का सही उपयोग करो और उसे साफ भी तो रखना आप ही का काम हुआ ना। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक हमें होना होगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होने लगे और शौचालय की सफाई शुरू करते हैं, और दूषिका बहुत बेचैन होती है, गांव की गली में छिपकर वो देखती है।
0: ये क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां कैसे ढकती? क्या ये शौचालयों पर दरवाजा कब लग गया? दुर्गंध कहाँ गई? अरे मच्छर भी नहीं है! अरे अरे अरे, ये सब गांव में क्या हो रहा है? अरे
1: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
2: गांव वासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है। मैं वहीं रहती हूँ और मैं हूँ स्वच्छिका।
1: अब गांव में हर घर, गली मोहल्लों में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित चित्र, साबुन के साथ बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं, महिलाएं गा रही हैं।
3: शौचालय प्यारा।

0: लागेल घर में हो साफ सफाई रोज तो बीमारी रखो को दूर मारो सच शौचालय जी ओ मारो सच शौचालय जी। अरे नहीं स्वच्छता की ये चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है, मेरा प्रदूषण का साया तो खत्म होता जा रहा है और इस सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है। बम्बे कहाँ जाऊं अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, शौचालय में ढक्कन लग गए नाली साफ कर दी गई अब खुले में तो कोई शौच जाता ही नहीं।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं, खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दूषिका थककर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदल डाला। अब तो मुझे जाना ही होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
0: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो अगर सफाई की आदत छूटी तो वह लौट सकती है। इसीलिए बहनों सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है, गंदा तो होना ही है, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
1: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका। गंदे शौचालय से ही प्रदूषण बढ़ता है, अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
0: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है। देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों अब से सफाई को ही अपनाओ। औरतें ही तो करती है ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाए, अब नहीं बोलोगी। सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे घर में शौचालय है लेकिन बदबू बहुत आती है, बच्चे तो पास भी नहीं जाते।
1: तो समझाइए उनको बहन, शौच के बाद पानी डालना सिखाइए उनको, शौचालय का महत्व बतलाइए उनको।
0: अच्छा तुम्हारे घर में अब भी सफाई नहीं हुई क्या, चलो चलो मैं आती हूँ तुम्हारे घर, यही तो है मेरी असली ताकत, चलो आती हूँ। सुनो सब लोग, शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है। हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना। अरे तब क्या कहोगे सुजल, हर किसी के पास फिनाइल और डिटर्जेंट थोड़ा ही ना होता है।
1: फिनाइल ना हो तो देखिए नींबू, नमक, राख से भी मदद ले सकते हैं हम। सफाई का तरीका ढूंढा जा सकता है, बस इरादा होना चाहिए कि शौचालय साफ रहेगा।
0: अरे खुले में शौच से तो हवा चलती है, खेत में ताजगी रहती है, ये बंद कमरा कुटन और बीमारी। खुले में शौच से ताजगी नहीं बीमारी और शन फैलती है, शौचालय में हवा की निकासी हो तो ताजगी भी रहती है और इज्जत भी।
2: हाँ हम सब समझ गए दूषिका, हम समझ गए, अब तुमसे नहीं डरेंगे। शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे और तुम्हें भगा देंगे।
0: ये तुम सब क्या कर रहे हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं।
1: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा, हर गांव में शौचालय है और उसका रख रखाव भी, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं और दूषिका वो तो हार चुकी। ये है असली सुजल स्वच्छ गांव की तस्वीर। स्वच्छ भारत का सपना है, हर गली में स्वच्छता है, शौचालय की जिम्मेदारी, हर दिल की अब तैयारी। सुजल स्वच्छ गांव, सुजल स्वच्छ भारत।
0: मजा आ गया ना हमारे कैरेक्टर स्वच्छ का सुजल कुमार को लेकर रामपुर गांव में इस तरह का नाटक खेला जा रहा है। और हमको लगता है कि नाटक सुनकर देश के बाकी हिस्सों में भी जरूर अपने अपने गांव में जागरूकता लाने के लिए नाटक खेले जाने की इच्छा तो जरूर ही रही होगी। इस रेडियो कार्यक्रम के अलावा और लोग कम्युनिटी इंगेजमेंट के जरिए बता भी रहे होंगे। इस संदर्भ में चलो गांव में एक स्वच्छता चैंपियन से बातचीत सुन लेते हैं।
1: स्वच्छता चैंपियन, ये कौन होते हैं?
0: सुजल स्वच्छता चैंपियन वो व्यक्ति होते हैं जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने, जो लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताने में, शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग स्वच्छता को बढ़ावा देने और समुदाय में स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए काम करते हैं। वे लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं और उन्हें स्वच्छता के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। समुदाय में सक्रिय स्वच्छता चैंपियन समुदाय में सक्रिय रूप से काम करते हैं और स्वच्छता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का भी आयोजन करते हैं। ऐसे ही एक चैंपियन अब हमारे साथ हैं।
3: नमस्कार दोस्तों, रेडियो घंटे भील 90.8 FM झावा की आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम में गांव में स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार को बढ़ावा देने में एक स्वच्छाग्राही की भूमिका के विषय में बात करेंगे और इस विषय पर चर्चा के लिए ग्राम झारड़ावर से स्वच्छाग्राही के रूप में हमारे बीच थॉमस जी भूरिया उपस्थित हैं। रेडियो टंटिया भील की ओर से आज के इस खास कार्यक्रम में हम थॉमस जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी थॉमस जी, आपका बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: आज हम आपसे आपके अनुभवों को और आपके कार्यों में आने वाली चुनौतियों को समझने का प्रयास करेंगे। आपके अनुभव और सुझाव गांव को अधिक और स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जानते हैं कुछ खास बातें। तो थॉमस जी, आज के कार्यक्रम का मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कृपया बताएं कि आप एक स्वच्छाग्राही के रूप में गाँव में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी प्रमुख गतिविधियों करते हैं?
4: जी, मैं थॉमस भूरिया झाबुआ जिले से। मैं स्वच्छाग्रही के रूप में मेघनगर ब्लॉक में और पंचायत मेरी झारडबर है। मैं पिछले 5-6 सालों से स्वच्छाग्रही में काम करते हुए मैं आपको मेरे अनुभव ये बताता हूँ कि मैंने आज तक जो हमारी क्षेत्रों में जो काम किए, तो हम स्वच्छता के लिए सबसे पहले तो हमने खुले में शौच से मुक्त के लिए हमने नुक्कड़ नाटक करी, रैलियां करी, मॉर्निंग फॉलो करे, और उसके बाद हमने जब खुले में शौच से मुक्त के बाद हमने फिर लोगों को स्वच्छता आदत में लाने के लिए हमने संस्थाओं में गए, विद्यालयों में गए, पर्यटक वहाँ हमने ये बताया कि आपको हाथों की सफाई कैसे करना है इस प्रकार। हाँ, और स्वच्छता को शौचालय बनाओ और अपने जैसे कि सार्वजनिक स्थलों पे जो कचरे होते हैं उससे निपटने के लिए लोगों को मोटिवेट किया कि कचरा नहीं करना है, ये आदत में डालने के लिए हमने मीटिंगों के माध्यम से ये सारी चीजें हमने लोगों के बीच में जागरूकता लाई।
3: जी सर, लेकिन बहुत सुंदर प्रयास सर, और आपके प्रयासों से जागरूकता भी आई है, लोग स्वच्छता की ओर आगे बढ़े हैं। अगला सवाल ये था कि आपके अनुभव में गाँव के लोग स्वच्छता एवं शौचालय के उपयोग के प्रति कितने जागरूक हैं? जिस तरह से आपने जागरूक किया है तो लोगों में किस प्रकार की जागरूकता है और आप स्वच्छता के प्रति और शौचालय के प्रति कितने जागरूक हैं? इस संदर्भ में आपको समुदाय से किस प्रकार का सहयोग प्राप्त होता है?
4: जी, जब हमने फर्स्ट टाइम जो शुरुआत की थी हमने स्वच्छता अभियान की, स्वच्छता घर के उसमें जब काम किया था, तब हमें उसका मतलब ये देखा जाए तो कि गांव लेवल पे बहुत निचला लेवल था, इस स्तर बहुत नीचा था। लेकिन जैसे जैसे हमने मतलब पंचायतों में फलियों में जो मीटिंगें करी, खास करके हमने बारिश के मौसम में जाते हैं वहाँ पे खुले में शौच से जो बीमारियां होती उसके माध्यम से हमने लोगों को जो जागरूकता लाई, उसके माध्यम से हमें देखने को मिला कि आज मतलब जो स्वच्छता का स्तर जो बहुत गिरा हुआ था वो कहीं ना कहीं आज हम जाते हैं तो लोग शौचालयों में जाते हैं, खुले में सोच नहीं करते हैं और अपने आप में खुद में एक स्वच्छता लाने के लिए अपने आप को मतलब एक उन्होंने प्रण लिया है, तो आज हम देखते हैं संस्थाओं में जाते हैं तो लोग उसके प्रति बहुत अच्छे से जागरूक हुए हैं
3: जी। मतलब छोटे छोटे प्रयासों ने एक बड़ा जागरूकता का काम किया है
4: जी। जी जी,
3: बहुत सुंदर सर। तो क्या आपके गांव के सभी घरों में शौचालय उपलब्ध हैं, और यदि हैं तो उनका नियमित और समुचित उपयोग सुनिश्चित हो पा रहा है?
4: जहाँ तक मेरा हमने जो सर्वे किया है, हमारी पंचायत में जो भी शौचालय हैं अभी, वैसे सभी के यहाँ शौचालय हैं बन गए हैं अच्छे से, अभी भी शौचालय का वो उपयोग कर रहे हैं और नियमित रूप से उसका उपयोग कर रहे हैं।
3: यकीनन, बहुत सुंदर सर। मतलब शौचालय उपलब्ध है और उसका उपयोग भी हो रहा है?
4: हो रहा है
3: जी। अगला सवाल सर ये था कि जैसे गांव

0: से उसके हिसाब से हमने जैसे कि अपना गीला कचरा होता है, एक सूखा कचरा होता है, और संस्थाओं में जिस प्रकार से आजकल पंचायतों में भी अस्पतालों का लोगों को जो दवाइयाँ दी जाती है और ट्रीटमेंट किए जाते हैं उसके आधार पर जो वेस्टेज जाता है, तो ठोस प्रबंधन के लिए भी हमने जैसे कि अपन कह सकते कि गीला कचरा है, हमने गीला कचरा जो हम हरे कलर का डस्टबिन है वहाँ जो अपने जो रिसाइकल वाला कचरा है वो उसमें डालने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं हम। और इसके बाद जो ब्लैक डस्टबिन है उसके लिए हम जो अपना ई जो ई वेस्टेज आता है जो उसमें उसके ये अपने कंप्यूटर वगैरह ये डालने के लिए, इस प्रकार से लोगों को हमने मीटिंगों के माध्यम से किया है। और खास करके गांव लेवल है तो वहाँ पे इतना बड़ा ई वाला है जो खास करके जो ब्लू डस्टबिन का उपयोग कम होता है, लेकिन खास करके जो अपना जो ग्रीन कलर का जो डस्टबिन है गीला कचरा उसमें हम प्रबंधन करने के लिए लोगों करते हैं। और जो नालियां वगैरह है वहां से जो पानी जाता है उसके लिए भी हम उसके उसका वो प्रबंधन कर रहे हैं।
1: जी, लेकिन बहुत सुंदर, मतलब आपका एक कठिन काम है ये, लेकिन फिर भी आपके प्रयास रंग ला रहे हैं और स्वच्छता की ओर अग्रसर लोग हो रहे हैं। आखिरी में सर, मेरा एक ही सवाल यही है कि आप अपनी ओर से गांव के निवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं मेरी तरफ से गांव के लोगों को यही कहना चाहता हूं, आज एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज हर व्यक्ति के पास में एक एंड्रॉइड मोबाइल होता है
1: जी
0: और व्यक्ति सोते उठते जागते हर वक्त पहले अपने मोबाइल को टच करता है,
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को एक मोबाइल की मतलब 24 घंटे आदत सी हो गई है। तो
1: बिल्कुल
0: मैं ये चाहता हूँ मेरे गाँव वासियों को और भारतवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि आपको जिस प्रकार एक मोबाइल की लत लगी हुई है तो सेम वही उदाहरण मैं आपको आपके जीवन में स्वच्छता को लाने के लिए यही कहना चाहूंगा कि 24 घंटे आपके दिमाग में स्वच्छता होनी चाहिए, आपके व्यवहार में स्वच्छता होनी, आपके संस्कारों में स्वच्छता होनी चाहिए, सामुदायिक संस्थाओं में स्वच्छता होनी चाहिए। गांधी जी को जो सपना है स्वच्छता का उसको हमें आगे ले जाना है। मैं हर व्यक्ति से यही अपील करता हूँ कि स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए और उसको मोबाइल की तरह आदत में लाने का प्रयास हर व्यक्ति को अपने आप में करना चाहिए, ये प्रण लेना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ।
1: बहुत सुंदर संदेश सर आपने दिया है और यकीन मतलब ये संदेश आपका जन जन तक जाएगा। यकीन आज आपसे चर्चा करके सर बहुत ही अच्छा लगा आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गांव में स्वच्छता, शौचालय के उचित उपयोग, कचरा प्रबंधन और जन जागरूकता से जुड़े अपने अनुभव और सुझाव हमारे साथ साझा किए। आपके प्रयास निश्चित रूप से समुदाय को स्वच्छ, स्वस्थ और जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आपके अनुभवों से अन्य लोग भी प्रेरणा लेंगे और स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव के संकल्पों को आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत।
0: जी, आपका भी धन्यवाद।
1: जी सर जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो दोस्तों ये थे हमारे बीच स्वच्छताग्राही थॉमस जी भूरिया और इनके अनुभव को हमने आज जाना स्वच्छता को लेकर। यकीनन स्वच्छता जीवन में बहुत जरूरी है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को स्वच्छता की प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो टेंटे भी 90.8 FM झावा की आवाज पर।
0: जी धन्यवाद।
2: स्वच्छता चैंपियन सचमुच समुदाय में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने में बहुत मदद करते हैं। वो स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं। स्वच्छता चैंपियन बनकर आप अपने समुदाय में स्वच्छता की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।
3: मुझे ऐसा लगता है कि सुजल की स्वच्छता एक सोच है और ये सोच हर मन में विकसित हो सकती है। हम बच्चों को जब सिखाते हैं कि यहाँ पर कागज मत फेंको या यहाँ पर केले का छिलका मत फेंको, डस्टबिन में डालकर आओ, इस समय से ही बच्चों के मन में यह सोच विकसित होनी शुरू हो जाती है।
2: सही कह रही हो स्वच्छिका। जब मैं छोटा था ना, गांव के स्कूल में जाता था, तो वहां पर हमारे गुरुजी हमको स्वच्छता की बहुत छोटी छोटी बातें इसी तरह सिखाते थे और बाल मन में पड़े हुए प्रभाव के बाद आज भी मैं कहीं गंदगी देखता हूँ ना तो उसको साफ करने की कोशिश करने लगता हूँ।
3: तो क्या तुम गांव के स्कूल में ही पढ़े हो?
2: हाँ, मेरी सारी शुरुआती शिक्षा गांव में तो हुई और इसीलिए मैं एक स्वच्छता चैंपियन की तरह काम करता हूँ। स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई बनाए रखने में लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
3: हाँ।

0: सुजल ठीक बोले। और आजकल तो गांव में कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव बहुत अच्छे से काम कर रहा है।
1: अच्छा सोचिका, ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव क्या चीज है?
0: ये लो, सारी रामायण खत्म हो गई और अब तुम पूछ रहे हो कि राम का किरदार कौन है।
1: अरे बस पहली ही बुझाओगी या कुछ बताओगी भी कि ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव क्या है?
0: अरे भाई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि स्थानीय समुदाय द्वारा एक ऐसा प्रयास है जिसमें गांव के लोग खुद योजना बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, श्रम करते हैं और खुद ही निगरानी भी करते हैं।
1: ओहो, अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि हमारा समुदाय ही खुद आगे बढ़कर गंदगी को मिटाने लगता है?
0: हाँ भाई हाँ। अभी तक क्या मैं विदेशी भाषा में बोल रही थी? और इसमें हमारी सरकार समुदाय की मदद भी करती है। इसमें सरकार की भूमिका यहाँ सहायक की होती है, आदेश देने वालों की नहीं।
1: अच्छा, अब समझा। यानी कि तुम ये कह रही हो कि ये मॉडल सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी, इसी पर आधारित है।
0: ऐसे तो तुम बड़े इंटेलिजेंट बनते हो, लेकिन अब आई ना तुम्हें ठीक से अकल। अब तुम बिल्कुल ठीक समझे, इसमें सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी होती है।
1: लेकिन सोचिका, ये समुदाय आधारित पहले काम कैसे करती है? मतलब कुछ तो तरीका होगा ना?
0: ओहो, तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रह गए। देखो, ग्राम स्तर पर स्वच्छता समितियों का गठन किया जाता है और ये समितियां ग्राम पंचायत के अधीन कार्य करती हैं और उसमें महिलाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में या युवा शिक्षकों के रूप में या अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।
1: अच्छा, समझा, अब समझ गया। यानी कि तुम उसी समिति की बात कर रही हो जो गांव में शौचालय निर्माण की निगरानी करते हैं, ठीक है ना?
0: बिल्कुल ठीक पकड़े हो सुजल, अब जली है तुम्हारे दिमाग की बत्ती। ग्राम स्तर की स्वच्छता समिति, शौचालय निर्माण की निगरानी, व्यवहार परिवर्तन, अभियान स्वच्छता निधि का उपयोग और ऑडियो सत्यापन की तैयारी जैसे कई दायित्वों का निर्वहन करती है ये।
1: बस देवी जी, मैं समझ गया। तुमको बताऊं, वो किरण दीदी जो अभी आई थी ना हमारे नुक्कड़ नाटक में, वो भी ग्राम स्तर पर स्वच्छता समिति की सदस्य हैं।
0: हाँ, मैं समझ गई, तभी तो तुम्हें इतनी जानकारी है।
2: जिंदगी में हर चीज का विकल्प है, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। अब बातें नहीं होंगी, अब मुहिम चलेगी। बारिश का पानी बन सकता है आपकी जिंदगी, हर बूंद में मुस्कुराएगा आपका कल। सोच जो आपका समय बदल दे। आखिरी बूंद।
1: अब हम चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जहां पर श्रोता साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में, यानी कि एपिसोड नंबर 1 में, हमने स्वच्छ गांव के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन भेजने के लिए कहा था और साथ ही कहा था कि अच्छे स्लोगनों को इनाम भी दिया जाएगा।
0: अरे तो क्या कुछ अच्छे स्लोगन आए हैं?
1: बिल्कुल आए हैं स्वच्छिका जी, और उनमें हमने 3 अच्छे स्लोगन छांट भी लिए हैं। उन श्रोता साथियों को अब हम इनाम भी देंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं उन श्रोता साथियों के नाम और उनके भेजे गए स्लोगन्स। पुरुषोत्तम भाई लिखकर भेजते हैं, जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। भाई वाह, क्या स्लोगन दिया है। दूसरा स्लोगन है जिसे भेजा है सत्तार भाई ने, जिसे अब तक ना समझे वो कहानी हूं मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूं मैं। भाई वाह साहब, बहुत ही प्यारा लिखा। और लीजिए दोस्तों, तीसरा स्लोगन है जिसे लिखा है सुदर्शन भाई ने, जल है जीवन की धारा, हमें मिलकर है इसे बचाना, बिन जल धरती बेजान, ये बात है सबको समझाना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर स्लोगन लिखा दोस्त।
0: वाह, ये तो बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन लिखकर भेजे हैं हमारे श्रोता साथियों ने। अब हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे हमारे केंद्र में आकर अपने इनाम लेकर जाएं। आप सभी को बधाई और धन्यवाद।
1: और अब इस अंक का सवाल लीजिए। आरओ का इस्तेमाल करना आज बहुत से क्षेत्रों में मजबूरी बन चुका है। अधिकांश घरों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इससे बहुत सारा पानी बर्बाद भी होता है। दोस्तों, स्वच्छ पानी पीने के लिए आप आरओ का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप हमारे प्रश्न का जवाब दें कि आरओ से निकला हुआ पानी कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: श्रोता साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरओ के लिए एक ग्लास पानी के बदले 3 ग्लास पानी बस यूं ही बहता रहता है। स्वच्छ पानी पीने की चाहत में हम बहुत सारे मिनरल्स को अलग करके इस यंत्र का उपयोग तो करते हैं, लेकिन व्यर्थ बहते पानी को रिसाइकल नहीं करते और उसका पुनः इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि आरओ से निकले हुए व्यर्थ बहते हुए पानी का इस्तेमाल हम कहां कहां कर सकते हैं और कैसे।
1: चलिए दोस्तों, चलने का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और भी बता दें। और आप जानते हैं कि हम आपको क्या बताएंगे, है ना? आज आप सुन रहे हैं स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जबानी कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की कि हम अपने शौचालय का रख रखाव और उसकी साफ सफाई कैसे करें, स्वच्छता जरूरी क्यों है, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम और अब तक की हुई प्रगति की झलक।
0: और साथियों, अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के संदर्भ में जानकारी।
1: क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में जल उत्सव या जल अर्पण दिवस क्या होता है? इस जानकारी के साथ ही जल जीवन मिशन के जारी होने से पहले लॉन्च और अब तक के कवरेज सहित मिशन के बारे में, नल जल कनेक्शन की उपलब्धियां, जल परीक्षण में महिलाओं की भूमिका, मिशन के घटक आदि के बारे में अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।
0: अब आप अपने प्रश्न का जवाब हमको भेजिए, अपने गांव में शौचालय के रखरखाव पर उसके प्रति नजर रखिए, लोगों को बताइए, खुश रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वच्छता फैलाइए और अपने देश को स्वच्छ बनाइए, स्वच्छ भारत यानी सुंदर भारत।
1: कार्यक्रम के अगले एपिसोड में दोस्तों हम फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो, रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। फिलहाल स्वच्छता और सुजल को दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकार हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुड़ी तमिलनाडु में हुआ था। उनका जन्म एक तमिलियन परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम हेमा मालिनी आर चक्रवर्ती है। आइए सुनते हैं हेमा मालिनी जी की फिल्म का ये गीत।

हेमा मालिनी जी की शादी बॉलीवुड के मैचो मैन अभिनेता धर्मेंद्र से हुई है। उनकी दो बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल।

हेमा मालिनी जी ने चेन्नई के आंध्र महिला सभा से अपनी पढ़ाई पूरी की। रुपहले पर्दे पर हेमा ने पहली बार एक डांसर के रूप में एंट्री ली। एक तेलुगु फिल्म में हेमा ने एक डांस में पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी झलक दिखाई, लेकिन साउथ इंडिया फिल्म निर्माताओं को वो इम्प्रेस नहीं कर पाई। इस तरह 4 साल के संघर्ष के बाद हेमा साउथ इंडिया फिल्मों में हिट नहीं हो पाई। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

लगभग 4 दशक के फिल्मी करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की, लेकिन करियर की शुरुआत में उन्हें वो दिन भी देखना पड़ा जब एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें यहां तक कह दिया कि उनमें स्टार अपील है ही नहीं। चलिए दोस्तों, उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

हेमा ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से मना कर दिया और कहा कि आप में स्टार अपील है ही नहीं। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर 1973 में गहरी चाल नाम की फिल्म बनाई। आइए दोस्तों सुने उनकी फिल्म का ये गीत।

हिमा की खूबसूरती और डांस टैलेंट ने हिंदी फिल्मों के शोमैन राज कपूर को प्रभावित किया। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म सपनों का सौदागर में एंट्री दी। सपनों का सौदागर की नायिका के रूप में हिंदी फिल्मों को उसकी ड्रीम गर्ल की पहली झलक मिली। आइए दोस्तों सुने उन्हीं के ऊपर।

धीरे धीरे हेमा का अट्रैक्शन बढ़ता गया और हिंदी फिल्म दर्शकों के सर पर चढ़कर बोलने लगा। उनका नाम शीर्ष अभिनेत्री की सूचियों में सबसे ऊपर आ गया। लगभग 30 साल तक हेमा मालिनी के अभिनय और आकर्षण का जादू सभी बाकी अभिनेत्रियों पर हावी रहा। आइए सुने उनकी फिल्म का गीत।

हेमा जी ने लगभग 150 फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता और गीता, प्रेमनगर, अमीर गरीब, शोले, महबूबा, चरस, ड्रीम गर्ल, किनारा वगैरह वगैरह। पेश है उनकी फिल्म का एक खूबसूरत गीत।

हेमा मालिनी 1999 में राजनीति में उतर गईं, जब उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। वो अब भी राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी फिल्म का एक और

0: दोस्तों हिमा को वर्ष 1973 में सीता और गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा 1999 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। हिंदी सिनेमा और कला जगत में योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2000 में पद्मश्री की प्रतिष्ठित उपाधि भी दी। पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।
1: हाँ सब बोलो।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: तुझसे शिकायत नहीं ऐ दोस्त, खुद से खफा हूं मैं। तुझसे शिकायत नहीं ऐ दोस्त, खुद से खफा हूं मैं। बिछड़ते हैं लोग अक्सर जहां से, वो रास्ता हूं मैं। नमस्कार, आदाब और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 90.8 FM की लहरों पर। मैं हूँ SN रेडियो और रेडियो टांडिया भील पर आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय, और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, आज की महफिल बेहद नायाब है। अमूमन हम सोचते हैं कि जो लोग हिसाब किताब, नंबर्स और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की दुनिया में रहते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। शेर व शायरी तो उनको छू कर भी ना गुजरी होगी कभी। उनकी जिंदगी बड़ी खुश और रुखी होती होगी। लेकिन आज हमारी मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इकोनॉमिक्स यानी मैशत की उस संजीदा दुनिया और अदब यानी शायरी की खूबसूरत दुनिया के बीच एक बहुत प्यारा सा पुल बनाया है। जी हाँ, आज हमारे साथ इस महफिल की जीनत बनने जा रही हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुमन लूथरा जी। सुमन जी अंबाला सिटी के SA जैन कॉलेज में इकोनॉमिक्स की हेड और प्रोफेसर रही हैं, लेकिन उनकी असली पहचान उनके अंदर छुपा हुआ एक बहुत ही हसास संवेदनशील फनकार है। वो एक बेहतरीन पेंटर भी हैं, सिंगर भी हैं, जो वोकल म्यूजिक में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। और सोने पे सुहागा तो ये है दोस्तों कि सुमन जी एक बेहद उम्दा शायरा और लेखिका हैं। अभी जो मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में चंद सत्रें पढ़ी, ये उन्हीं की लिखी हुई थी। तो उनका पहला शायरी मजमुआ यानी कविता संग्रह धूप का चांद उनके इसी जज्बात का एक सूरत सबूत है। तो चलिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स यानी मैशत के चश्मे से जिंदगी के जज्बातों को देखने वाली बेहद खास हस्ती से बात करते हैं और इस सुरीले सफर की शुरुआत करते हैं। सुमन जी, अल्फाज से एहसास तक के मंच पर आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है।
2: बहुत शुक्रिया आरती जी। सबसे पहले मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी और SN रेडियो की मुझे ये मौका देने के लिए। अल्फाज से एहसास तक बहुत ही खूबसूरत नाम है आपके इस प्रोग्राम का। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: तो सुमन जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेहद आराम से बैठिए, पानी पीजिए और इसे अपनी ही महफिल जानिए। और यहाँ कोई बेगाना नहीं है, यहाँ सब अपने ही दोस्त हैं और अब तो ये आपके भी हैं। तो अब हम चाहेंगे कि बातचीत की शुरुआत आप अपनी जुबानी करें। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी तालीम कहाँ से हुई और इस पूरे सफर में आपके अंदर ये शायरी का शौक कब और कैसे जागा, और इस शुरुआती दौर की याद से जुड़ा अपना कोई खूबसूरत सा शेर या चंद सत्रें हमारे दोस्तों को जरूर सुनाएं।
2: जी आरती जी, मेरा जन्म आरती जी चंडीगढ़ में हुआ। मेरे पेरेंट्स पंजाब से सरोकार रखते थे और फादर अपनी नौकरी के चलते हरियाणा में रहे। तो मेरी सारी शिक्षा हरियाणा से ही है जी, स्कूल है, कॉलेज है, ये पानीपत में हुआ और उसके बाद मास्टर्स और मेरी जो डॉक्टरेट है वो सब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है मैंने।
1: ओके
2: जी, आपने पूछा कि ये शायरी का जो सफर है किस तरह से शुरू हुआ, तो ऐसा कुछ याद तो नहीं कि कब शुरू हुआ होगा, पर क्यों शुरू हुआ होगा वो शायद ऐसा था कि जब स्कूल में थी तो हमारे घर नंदन है, चंदा मामा, ध्रुपद, चाचा चौधरी, मोटू पतलू, अमर चित्र कथा, तेनाली राम, बीरबल के किस्से कहानियाँ, ये सब हमारी वो किताबें हैं जिनके नाम सुनते ही आप भी शायद अपने बचपन में लौट गए।
1: मुझे तो सब याद आ गया।
2: तो, जी जी, ये सब और साथ ही उस समय ना नई नई रशियन बाल साहित्य की मैगजीन आनी शुरू हुई थी भारत में, ये सब हमारे घर हुआ करती थी।
1: ओके,
2: तो उन्हें खूब पढ़ा, बड़ा मजा आता था। जी जी, और जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो एज अ स्टूडेंट मैं अलग अलग कॉम्पिटिशन में, चाहे वो यूथ फेस्टिवल्स हो या लिटरेरी इवेंट्स हो, उनमें मैं पार्टिसिपेट हमेशा करती थी और उसमें कविता पाठ के लिए भी जाती थी।
1: वेरी नाइस।
2: वो जी उस टाइम ना ज्यादातर मैं दूसरों की लिखी कविताएं सुनाया करती थी।
1: अच्छा,
2: तो अब शायद ये कह सकते हैं कि ये एक बीज जैसा था, मन की मिट्टी शायद प्रारब्ध से ही नम थी और संवेदनाओं की खाद कुदरत ने भरपूर बख्शी थी।
1: बहुत खूब,
2: तो कविताओं की कॉम्प्लेन फूट पड़ी।
1: अरे वाह,
2: तो ऐसा कुछ रहा जी। तो लिख तो बहुत सालों से रही थी,
1: जैसे एक फूल की तरह हो और वो खिल उठी और फूट पड़ी। वेरी नाइस।
2: जी जी, तो बहुत सालों से लिख रही थी स्टूडेंट लाइफ से, पर सब इधर उधर बिखरा पड़ा था। और जो लाइफ में बहुत बिजी है, जॉब जितना भी आपाधापी थी जीवन की, इसमें वक्त ही नहीं मिला इसको कमेटी। तभी पिछले साल कुछ दोस्तों के कहने पर अपना लिखा मैंने समेटा और मेरा एक पहला कविता संग्रह आया, धूप का चांद। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं उसी से, मैं आपको अपनी दो क्षणिकाएं सुनाती हूँ। दो दो
1: क्षणिकाएं मतलब दो लाइन की कविता,
2: ये दो तीन लाइनों की छोटी छोटी कविताएं होती है जिनको हम क्षणिकाएं कह देते हैं, क्योंकि विद इन मोमेंट से खत्म हो जाती है, क्षण भर में खत्म हो जाती है।
1: या क्षणिका यानी क्षण भर में खत्म हो जाने वाली,
2: क्षण भर में छोटी छोटी रचनाएं। जी जी, और ये जितनी छोटी है ना जी, ये एक तरह से मतलब गागर में सागर जैसी होती है कि एक लाइन एक पूरा उम्र का सफर हो सकती है।
1: वाह,
2: ऐसा है,
1: क्या बात है, तो सुनाइए
2: जी। तो जो मैंने कभी अपनी किताब लिखी शुरू की तो उसके साथ क्या एहसास था, उस एहसास को बयां करती
1: हूँ।
2: कुछ पुराने ख्वाब मोड़े हैं, कुछ पुराने ख्वाब मोड़े हैं, मैंने जंजीर में कुछ कुंडे जोड़े हैं।
1: ओके,
2: कुछ पुराने ख्वाब मोड़े हैं, मैंने जंजीर में कुछ कुंडे जोड़े हैं। तो यहाँ मुझे निदा फाजली साहब भी याद आ रहे हैं कि उन्होंने लिखा था कि जीवन खेल तमाशा, जंजीरों की लंबाई का सारा सैर सपाटा। तो मैंने थोड़ी सी अपनी जंजीर लंबी की है।
1: बहुत बहुत बहुत उम्दा।
2: और ऐसी छोटी सी क्षणिका और मैं आपके साथ साझा करती अपने सब सुनने वालों के साथ।
1: बिल्कुल,
2: वही फैलना चाहती थी मैं, वही फैलना चाहती थी मैं, सिमटने को भी मेरे यहाँ जगह न मिली।
1: बहुत बहुत बहुत सुना आपने दोस्तों। सुमन जी का शुरुआती दौर, उनकी तालीम और उनका बचपन से ही कविता के लिए झुकाव, सब कुछ बहुत नेचुरल और साफ था। उनको तो शायरा बनना ही था, वो शायरा बनने वाली ही थी, लेकिन बन गई आप इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर। तो इसी के चलते हमें ये बताइए सुमन जी, कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप कॉलेज में स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स जैसा सीरियस सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी, मुझे याद है कॉलेज डेज में मुझे तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सुनकर ही ऐसा लगता था कि इसे पढ़ने वाले सब रोबोट होते हैं। भला इकोनॉमिक्स भी कोई पढ़ने की चीज है? सुपर ब्रेनी और बेहद जहीन लोग होते हैं, और उन लड़कियों का ना भी अलग सा था। तो जैसा कि मैं कह रही थी, इकोनॉमिक्स तो सब आंकड़ों का यानी नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स का खेल है, और आप भी प्रोफेसर और उस संगीता माहौल में हर वक्त रहते हुए आपके अंदर की शायद कैसे उभरी और कैसे बची रही? मुद्दा तो ये है, क्या कभी कॉलेज के गलियारों में या क्लासरूम में भी दिल ही दिल में कोई शेर गुनगुनाया? तो हमें भी बताइए ना कुछ ऐसी चंद लाइनें जब आप मनी मन मुस्कुराती भी रही होंगी।
2: जी, तो सबसे पहले तो मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि काश आप इकोनॉमिक्स में से पढ़े होते। तो जो डर है इकोनॉमिक्स का वो मैं आपका निकाल जाती। तो जी, आपने पूछा ना कि ये कैसे बची रही एक संजीदा माहौल मेरी अंदर की शायरा, तो आरती जी ये कुछ ऐसा है कि शायरा कैसे बची रही इस संजीदा माहौल में, ये नहीं है प्रश्न, माजरा ये है बल्कि कि शायरा होने की वजह से मैं बची रही।
1: Oh, wow.
2: तो आपने कहा ना कि इकोनॉमिक्स एक ड्राई सब्जेक्ट है, तो और कविता कहानी शेरो शायरी से दूर, पर मैं संवेदनाओं के धरातल पर जीती हूँ। तो मैंने इकोनॉमिक्स को भी ना बड़ा संवेदनशीलता से हैंडल किया।
1: okay.
2: और हमेशा कोशिश की कि इसे पढ़ाते हुए और मैं जब या पढ़ते हुए स्टूडेंट्स उबे ना, वो बोर ना हो। वैसे भी देखिए ना, मैं आपको बताती हूँ कि इकोनॉमिक्स है क्या, धन का होना या ना होना, बस इन दोनों के बीच में झूलता है सारा अच्छा। और जी, और साहित्य में जितने भी रंग हैं, भक्ति विरह, वो सब सुख और दुख के पालने में झूलते हैं, ठीक है ना जी?
1: जी,
2: अब ये जो सारा सुख दुख है ये धन के होने या ना होने से जुड़ता है।
1: ठीक है,
2: तो मैं आपको देखो इकोनॉमिक्स से शायरी और शायरी से इकोनॉमिक्स फैलाती हूँ। अब पैसा हो तो प्रेमी अपनी प्रेमसी को 9 लाख देने का गीत लिखता है।
1: अरे वाह सुमन जी, क्या बात है।
2: और मुफलिस ने कितनों के दिल और घर तोड़ दिए और दर्द भरे नगमों को जन्म दे दिया।
1: तब तुलसी माला देता है क्या?
2: ठीक है जी। तो देखिए, बातों ही बातों में मैंने इकोनॉमिक्स को ड्राई से गीला कर दिया, थोड़ा भिगो दिया इसको मैंने।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब तो पब्लिक जरूर फूटेंगी कविता की, मुझे पूरा यकीन हो गया।
2: जी जी, अब एक चीज और आपसे साझा करी हूँ कि मैं थोड़ी सी ना ऐसी चीजों में बाकी अलग सी हूँ, तो मैंने 56 की एज में भी पीछे मास कॉम में एमए भी किया है। मुझे था कि जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन में बहुत क्रिएटिविटी होती है, मैं उसको पढ़ूं। तो आप देखिए कि इस उम्र में मैंने किया ये चीज।
1: ओके, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको।
2: शुक्रिया बहुत। और अब मैं, आपने कहा था कि कुछ आपसे अपना साझा करूं, तो मैं अपनी जो मेरा कविता संग्रह आया,
1: मुझे उम्मीद है हमारे दोस्त भी इस चीज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपके तो
2: एक अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले से एक छोटी सी रचना आपसे साझा करती हूँ अपने कविता संग्रह से। छू लेने भर से जिसके झटक देते हैं उंगलियाँ, छू लेने भर से जिसके झटक देते हैं उंगलियाँ, बिजलियों को ऐसी मैंने बाहों में भर लिया।
1: वाह,
2: शुक्रिया,
1: बहुत खुश।
2: अगला इसका देखिए, टूटा था तेरा अक्स, टूटा था तेरा अक्स जो दिन सरे बाजार, टूटा था तेरा अक्स जो दिन सरे बाजार, वो कांच सारा मैंने आंखों में भर लिया।
1: उफ, क्या बात है,
2: बहुत बहुत शुक्रिया जी,
1: बहुत सुंदर।
2: और आखिरी इसकी लाइन में सुनाती हूँ आपको, ना था दूर तलक जब कोई साथी मजार का,
1: ना था दूर तलक कोई साथी
2: जब कोई साथी मजार का,
1: ओके,
2: ना था दूर तलक जब कोई साथी मजार का, खुदी को खुद अपने कांधे पे धर लिया, खुद ही को खुद अपने कांधे पे लेते
1: क्या बात है सुमन जी, आप मेरे सामने होती मैं आपके हाथ चूम लेती, आपने इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे, बेहद
2: बहुत खूबसूरत, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और अब मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप एक गजल मेरी पसंद की सुना दें जो करीब करीब इन्हीं एहसासात के साथ जुड़ी हुई है, तो आज की इस रात में और चार चांद लग जाएंगे, तो ये मेरी पसंद की
1: चांद लगाएंगे आप कौन सी गजल जी
2: जी ये गजल है एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में।
1: अरे आपकी तरह आपकी चॉइस भी कितनी जबरदस्त है। तो दोस्तों आइए सुमन जी की पसंद पर इतना खूबसूरत ये नगमा सुनते हैं जो भूपेंद्र सिंह जी ने गाया है, एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में। आप भी शौक फरमाएं।

0: अमन जी, आपसे जब मेरी बातचीत हुई थी तो आपने बताया था कि शायरी के साथ साथ संगीत से भी आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है और आपने बाकायदा संगीत की तालीम भी ली है। हमें उस सफर के बारे में कुछ बताइए कि सुरों की दुनिया में आपकी क्या कामयाबियां रही और सिंगर होने पर शायरी पर उसका कुछ असर होता है क्या? इस सुरमई एहसास को बयां करती आप अपनी कोई रचना भी हमारे साथ साझा कर सकती हैं?
1: जी आंटी जी, गाना गाना और सुनना ये मुझे बहुत छोटे होते से ही बहुत अच्छा लगता है। पिक्चरें तब तो बहुत अच्छी आती थी, आपको याद होगा उनका संगीत बहुत खूबसूरत होता था, क्लासिकल भी, सेमी क्लासिकल भी, सुगम संगीत और गाने क्या खूबसूरत, उनकी लिरिक्स बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, लिरिक्स से बहुत जोर होता था, आपको याद होगा पहले से तो बस मैं उनके गाने गुनगुनाया करती थी और पता नहीं क्यों शुरू से ही थोड़े सैड सॉन्ग हमेशा अच्छे लगे
0: जी।
1: इकोनॉमिक्स में भी जब मैं एमए कर रही थी यूनिवर्सिटी में तो शाम के वक्त सर्टिफिकेट कोर्स का हमें तो हमें अवेलेबल था तो मैंने वो किया, कभी कभी हफ्ते में दो क्लासेस लगाया करते थे पर ऐसे फॉर्मल तो मैंने कहीं नहीं सीख पाई क्योंकि जिंदगी बहुत ऐसी रही, बिजी रही। बाकी संगीत तो आप भी जानती हैं कि जीवन को कई रंग देता है,
0: बिल्कुल
1: कब और कितना ये कहना बहुत मुश्किल है,
0: बिल्कुल
1: कभी सुकून देता है कभी उदास भी कर देता है। आजकल बारिश होती है तो ऐसे लगता है जैसे संगीत जब सुन रहे होते हैं वो भी ना बारिश की तरह पड़ता है आपके पत्ते मन पे,
0: बिल्कुल।
1: तो संगीत के तो बहुत रंग है जी, तो मैं आपको दो लाइनें तो गुनगुना के सुनाऊंगी क्योंकि बहुत शौक है मुझे गाने का।
0: हाँ, हाँ।
1: और फिर मैं आपके साथ अपनी ये कविता संग्रह से एक आपके साथ अपनी छोटी सी जो रचना है वो भी शेयर करूंगी,
0: बिल्कुल।
1: तो अगर इजाजत हो तो पहले मैं दो लाइनें आपको गा के सुना दूं, बहुत खूबसूरत गाना है ये।
0: हम आपकी आवाज सुनने को बेताब हैं, सुनाइए।
1: शुक्रिया।

0: ये कह सकते हैं कि ये
1: फूल की तरह हो और वो खिल उठे और फूट पड़े।
0: ख्वाब मोड़े हैं मैंने जंजीर में कुछ कुंदे जोड़े हैं। तो यहाँ मुझे निदा फाजली साहब भी याद आ रहे हैं कि उन्होंने लिखा था कि जीवन खेल तमाशा जंजीरों की लंबाई का सारा सैर सपाटा। तो मैंने थोड़ी सी अपनी जंजीर लंबी की है।
1: बहुत उम्दा।
0: और ऐसी छोटी सी क्षणिका और मैं आपके साथ साझा करती अपने सब सुनने वालों के साथ।
1: बिल्कुल
0: वही फैलना चाहती थी मैं वही फैलना चाहती थी मैं सिमटने को भी मेरे यहाँ जगह ना मिली।
1: बहुत सुना आपने दोस्तों सुमन जी का शुरुआती दौर, उनकी तालीम और उनका बचपन से ही कविता के लिए झुकाव, सब कुछ बहुत नेचुरल और साफ था। उनको तो शायरा बनना ही था, वो शायरा बनने वाली ही थी, लेकिन बन गई आप इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर। तो इसी के चलते हमें ये बताइए सुमन जी कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप कॉलेज में स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स जैसा सीरियस का सब्जेक्ट पढ़ाती थी, मुझे याद है कॉलेज डेज में मुझे तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट सुनकर ही ऐसा लगता था कि इसे पढ़ने वाले सब रोबोट होते हैं। भला इकोनॉमिक्स भी कोई पढ़ने की चीज है, सुपर ब्रेनी और बेहद जहीन लोग होते हैं और उन लड़कियों का ना भी अलग सा था। तो जैसा कि मैं कह रही थी इकोनॉमिक्स तो सब आंकड़ों का यानी नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स का खेल है और आप भी प्रोफेसर और उस संगीता माहौल में हर वक्त रहते हुए आपके अंदर की शायरी कैसे उभरी और कैसे बची रही? मुद्दा तो ये है, क्या कभी कॉलेज के गलियारों में या क्लासरूम में भी दिल ही दिल में कोई शेर गुनगुनाया? तो हमें भी बताइए ना कुछ ऐसी चंद लाइनें जब आप मनी मन मुस्कुराती भी रही होंगी।
0: जी, तो सबसे पहले तो मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि काश आप इकोनॉमिक्स में से पढ़े होते। तो जो डर है इकोनॉमिक्स का वो मैं आपका निकाल पाती। तो जी, आपने पूछा ना कि ये कैसे बची रही एक संजीदा माहौल मेरी अंदर की शायरा, तो आरती जी ये कुछ ऐसा है कि शायरा कैसे बची रही संजीदा माहौल में ये नहीं है प्रश्न, माजरा ये है बल्कि कि शायरा होने की वजह से मैं बची रही।
1: ओह वाह।
0: तो आपने कहा ना कि इकोनॉमिक्स से ड्राई सब्जेक्ट है तो और कविता कहानी शेर व शायरी से दूर, पर मैं संवेदनाओं के धरातल पर जीती हूँ। तो मैंने इकोनॉमिक्स को भी ना बड़ा संवेदनशीलता से हैंडल किया।
1: Okay.
0: और हमेशा कोशिश की कि इसे पढ़ाते हुए और मैं जब या पढ़ते हुए स्टूडेंट्स उबे ना, वो बोर ना हो। वैसे भी देखिए ना, मैं आपको बताती हूँ कि इकोनॉमिक्स है क्या, धन का होना या ना होना, बस इन दोनों के बीच में झूलता है सारा अच्छा। और जी, और साहित्य में जितने भी रंग हैं भक्ति विरह वो सब सुख और दुख के पालने में झूलते हैं, ठीक है ना जी?
1: हाँ जी।
0: अब ये जो सारा सुख दुख है ये धन के होने या ना होने से जुड़ता है।
1: ये भी बात सही है।
0: तो मैं आपको देखो इकोनॉमिक्स से शायरी और शायरी से इकोनॉमिक्स फैलाती हूँ। अब लेकिन अब पैसा हो तो प्रेमी अपनी प्रेमसी को 9 लक्खा देने का गीत लिखता है।
1: अरे वाह सुमन जी, क्या बात है।
0: और मुफलिस ने कितनों के दिल और घर तोड़ दिए और दर्द भरे नगमों को जन्म दे दिया।
1: तब तुलसी माला देता है क्या?
0: ठीक है जी। तो देखिए, बातों ही बातों में मैंने इकोनॉमिक्स को ड्राई से गीला कर दिया, थोड़ा भिगो दिया इसको मैंने।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो पब्लिश जरूर फूटेंगी कविता की, मुझे पूरा यकीन हो गया।
0: जी जी। अब एक चीज और आपसे साझा करूँ कि मैं थोड़ी सी ना ऐसी चीजों में बाकी अलग थी हूँ। तो मैंने 52 की एज में भी पीछे मास कॉम में एमए भी किया है। मुझे था कि जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन में बहुत क्रिएटिविटी होती है, मैं उसको पढ़ू। तो आप देखिए कि इस उम्र में मैंने किया ये चीज।
1: ओके। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको।
0: शुक्रिया बहुत। और अब मैं, आपने कहा था कि कुछ आपसे अपना साझा करूं, तो मैं अपनी जो मेरा कविता संग्रह आया है,
1: मुझे उम्मीद है हमारे दोस्त भी इस चीज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपके तो सासुराल
0: एक अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले से एक छोटी सी रचना आपसे साझा करती हूँ अपने कविता संग्रह से।
1: इच्छा

0: आखिरी इसकी लाइनें मैं सुनाती हूँ आपको। ना था दूर तलक जब कोई साथी मजार का,
1: ना था दूर तलक कोई साथी
0: जब कोई साथी मजार का,
1: ओके
0: ना था दूर तलक जब कोई साथी मजार का, खुदी को खुद अपने कांधे पे धर लिया, खुदी को खुद अपने कांधे पे धर लिया।
1: क्या बात है सुमन जी, आप मेरे सामने होती मैं आपके हाथ चूम लेती, आपने इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप एक गजल मेरी पसंद की सुना दें जो करीब करीब इन्हीं एहसासात के साथ जुड़ी हुई है, तो आज की इस रात में और चार चांद लग जाएंगे। तो ये मेरी पसंद की
1: चांद लगाएंगे आप कौन सी गजल जी जी
0: ये गजल है, एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में।
1: अरे आपकी तरह आपकी चॉइस भी कितनी जबरदस्त है। तो दोस्तों आइए सुमन जी की पसंद पर इतना खूबसूरत ये नगमा सुनते हैं जो भूपेंद्र सिंह जी ने गाया है, एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में। आपकी शौक फरमाए।

0: सुमन जी, आपसे जब मेरी बातचीत हुई थी तो आपने बताया था कि शायरी के साथ साथ संगीत से भी आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है और आपने बाकायदा संगीत की तालीम भी ली है। हमें उस सफर के बारे में कुछ बताइए कि सुरों की दुनिया में आपकी क्या कामयाबियां रही और सिंगर होने पर शायरी पर उसका कुछ असर होता है क्या? इस सुरमई एहसास को बयां करती आप अपनी कोई रचना भी हमारे साथ साझा कर सकती हैं?
1: जी आरती जी, गाना और सुनना ये मुझे बहुत छोटे होते से बहुत अच्छा लगता है। पिक्चरें तब तो बहुत अच्छी आती थी, आपको याद होगा उनका संगीत बहुत खूबसूरत होता था, क्लासिकल भी, सेमी क्लासिकल भी, सुगम संगीत और गाने क्या खूबसूरत, उनकी लिरिक्स बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, लिरिक्स से बहुत जोर होता था, आपको याद होगा पहले से
0: बहुत।
1: तो बस मैं उनके गाने गुनगुनाया करती थी और पता नहीं क्यों शुरू से ही थोड़े सैड सॉन्ग हमेशा अच्छे लगे
0: जी।
1: इकोनॉमिक्स में भी जब मैं एमए कर रही थी यूनिवर्सिटी में तो शाम के वक्त सर्टिफिकेट कोर्स का हमें एक तो हमें अवेलेबल था तो मैंने वो किया, कभी कभी हफ्ते में दो क्लासेस लगाया करते थे, पर ऐसे फॉर्मल तो मैंने कहीं नहीं सीख पाई क्योंकि जिंदगी बहुत ऐसी रही, बिजी रही। बाकी संगीत तो आप भी जानती हैं कि जीवन को कई रंग देता है,
0: बिल्कुल
1: कब और कितना ये कहना बहुत मुश्किल है,
0: बिल्कुल
1: कभी सुकून देता है कभी उदास भी कर देता है। आजकल बारिश होती है तो ऐसे लगता है कि जैसे संगीत जब सुन रहे होते हैं वो भी ना बारिश की तरह पड़ता है आपके पत्ते मन पे,
0: बिल्कुल।
1: तो संगीत के तो बहुत रंग हैं जी, तो मैं आपको दो लाइनें तो गुनगुना के सुनाऊंगी क्योंकि बहुत शौक है मुझे गाने का। और फिर मैं आपके साथ अपनी ये कविता संग्रह से एक आपके साथ अपनी छोटी सी जो रचना है वो भी शेयर करूंगी,
0: बिल्कुल।
1: तो अगर इजाजत हो तो पहले मैं दो लाइनें आपको गा के सुना दूं। बहुत खूबसूरत गाना है ये,
0: हम आपकी आवाज सुनने को बेताब हैं, सुनाइए।
1: जी।

0: लगने लगा तो जिंदगी से वही बस यही गुजारिश करती हूँ कि तेरे हर रंग को मैंने गले से लगाया है और कभी तुझे निराश नहीं किया तो कुछ तो तेरा भी बनता है कि मुझे गले से लगा के रख,
1: बनता है कि तू भी हमें गले से लगा ले। और अब आपकी कविता
0: ऐसी जी मैं कुछ लाइनें शेयर करती हूँ आपके साथ। ये भी एक छोटी सी पहले क्षणी का ही थी, फिर उसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया। एक बहुत छोटी सी रचना है। तेरी यादों से इस कद्र मोहब्बत है मुझे, तेरी यादों से इस कद्र मोहब्बत है मुझे कि तुझे भूलते जाती हूँ मैं।
1: वाह बहुत खूब, जरा फिर से बोलिए।
0: तेरी यादों से कद्र मोहब्बत है मुझे कि तुझे भूलती जाती हूँ मैं। उनको मालूम न था जुनून ए बेहद मेरा, उनको मालूम न था जुनून ए बेहद मेरा कि हवाओं में गिरह लगाती हूँ मैं। गिरह होती थी गांठ,
1: आई नो,
0: कि हवाओं में गांठ लगाती हूँ। और इसका आखिरी हिस्सा सुनिए। डूबे हैं जिनमें सबाह कैसे कैसे, कुशल तैराक जो होते हैं उनको सबाह कहते हैं। मैं अपने श्रोताओं के लिए बता रही हूँ क्योंकि आपको तो बहुत उर्दू आती है। डूबे हैं जिनमें सबाह कैसे कैसे, दरिया ऐसे पलकों पे उठाती हूँ मैं, दरिया ऐसे पलकों पे उठाती हूँ मैं। तेरी यादों से कद्र मोहब्बत है मुझे कि तुझे
1: भूलती जाती हूँ मैं। ये लाइन तो दिल को पकड़ के ले गई, क्या ही आपने बोल दिया। तेरी यादों से कद्र मोहब्बत है मुझे कि तुझे ही भूलती जाती हूँ मैं। बहुत खूब, मैं तो आपकी वो बड़ी वाली फैन होती है ना मेरे पर, मेरा वो होता है कि मैं फैन से कुछ ज्यादा एडवांस हूँ तो मैं एसी वर्ड का यूज करती हूँ। मैं तो आपकी बड़ी वाली एसी बन गई हूँ।
0: बहुत शुक्रिया आपकी,
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो अच्छा चलिए, अब आप हमें ये बताएं सुमन जी कि आपको जानने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि आपका हाल ही में एक कविता संग्रह यानी आपका शायरी मजमुआ पब्लिश हुआ है जिसका नाम धूप का चांद। आपकी शायरी का मियार मजमुए के नाम से ही पता चल जाता है कि आपने किस तरीके का नाम रखा है। ये नाम आपने आप में ही बहुत गहरा और खूबसूरत तजाद यानी विरोधाभास लिए हुए है। इस खास नाम के पीछे क्या सोच रही होगी आपकी, और ये कि जब ये किताब मुकम्मल होकर आपके हाथ में आई तो वो एहसास कैसा था? यकीनन मुनफरिद रहा होगा। हम चाहेंगे कि इस खास किताब में से आप कुछ चुनिंदा ख्याल हमसे शेयर कीजिए और उस एहसास को बताइए जब किताब आपके हाथ में आई।
0: जी आंटी जी, तो सबसे पहले तो आपने मेरी किताब की कविता संग्रह के नाम की बात की है धूप का चांद, तो इसके पीछे क्या वजह थी पहले तो वो आपको बताती हूँ। धूप और चांद ये दो अलग अलग विपरीत चीजें हैं।
1: बिल्कुल,
0: धूप हम सब जानते हैं तपिश, वास्तविकता, रियलिटी और संघर्ष को दर्शाती
1: है। यस यस यस।
0: दूसरी ओर चांद शीतलता, सुकून और कल्पना का प्रतीक है।
1: बिल्कुल।
0: अब जिंदगी मान लीजिए धूप की तरह है, पर मेरी संवेदनाएं उसमें किसी शीतल चांद की तरह चमकती रहती
1: जी।
0: तो मेरी जो कविताएं हैं आरती जी, वो मुश्किल से मुश्किल समय में सुकून की तलाश देती है।
1: ओके।
0: और धूप का चांद दुखों की तपिश में भी उम्मीद की ठंडक की तरह है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हम सब जानते हैं कि जीवन ना तो पूरी तरह काली रात है ना जी, तो ना ही केवल सबके दुपहरी। इन दोनों के बीच संघर्षों की धूप में झुलसते हुए हम सब सुकून के चांद की तलाश करते रहते हैं।
1: वाह वाकई।
0: जी, अब कभी अगर आप लोगों को, किसी भी कोई भी मेरे सुनने वालों को आपको मौका मिला, मेरा कविता संग्रह आप ये अमेजोन पे उपलब्ध है, अगर कभी पढ़ते हैं तो इन कविताओं के पन्ने जब आप पलटेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जिस टाइम दुनिया बहुत शोर कर रही होती है और उम्मीदें हमारी दम तोड़ने लगती हैं, तब भी हमारे भीतर एक कोना जो हमारा अपना है वो बचा रहता है
1: जी।
0: धूप का चांद उसी कोने की आवाज है।
1: वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर एहसास हैं आपके, बहुत सुंदर तासुरात हैं, मैं तो कायल हो गई आपकी।
0: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत ही खूबसूरत अंदाजे बयां है।
0: तो दूसरी चीज आपने पूछी ना कि जब ये कविता संग्रह छप के आया तो कैसा लगा, तो जैसा जब बच्चा होने पे नर्स आपकी गोद में आपके बच्चे को देती है
1: जी,
0: वो जो छुअन का एहसास होता है ना माँ को उस बच्चे की छू लेने भर से जो तरंगे आपके अंदर उत्पन्न होती है, तो जब ये किताब छपकर आई तो बस मैंने से पकड़ के हाथ से आंखें बंद करके बस छुआ, आई जस्ट ट्राई टू फील इट, तो वो एहसास था अपने कविता संग्रह का।
1: शायर लोग बहुत हसास होते हैं, आप इसका बिल्कुल खूबसूरत उसका उदाहरण है हमारे सामने, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
0: और आपने कहा था कि इस किताब का नाम जो है अपने आप एक तजाद है, विरोधाभास है, तो उसी रंग में रंगी, मैंने पहले भी जो आपको रचनाएं अभी शुरू में सुनाई है वो सब उस तजाद को आप जब ध्यान से दोबारा कोई सुने प्रोग्राम वो सारी उसी रंग में रंगी है, तो मैं एक और रचना आपको उसी ऑक्सीमरोन उसी तजाद में रंगी हुई सुनाती हूँ। तेरी तेरी तस्वीर का तिलस्म टूटता जाता है
1: जी,
0: तेरी तस्वीर का तिलस्म टूटता जाता है, आईना दिल का मेरे बिखरता जाता है।
1: वेरी नाइस, बहुत सुंदर।
0: कोई आवाज भी तूने नहीं दी मुझको,
1: कोई आवाज भी तूने नहीं दी मुझको,
0: रास्ता फिर भी तेरी और मुड़ता जाता है।
1: वाह बहुत
0: बहुत शुक्रिया जी,
1: बहुत खूबसूरत,
0: बहुत शुक्रिया। देखिए इस बार कुछ अलग होगा क्या, फिर कोई एकलव्य प्रतिमा बनाता है,
1: अरे वाह क्या ही अंदाज है आपके लिखने का, इस बार कोई कुछ अलग होगा क्या, फिर कोई एकलव्य प्रतिमा बनाता है। बहुत
0: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत
0: खुश। और आगे देखिए, ये आग मेरी खुद की है लगाई हुई, घर कोई यूं भी अपना जलाता है, घर कोई यूं भी अपना जलाता है।
1: क्या बात है सुमन जी, क्या ही बात है आपकी शायरी की, बहुत खूबसूरत
0: जी। और आखिरी इसका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ,
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: फिर ना होगा अब कभी किसी पर आखिरी ये यकीन टूटता जाता है।
1: वाह बहुत खूबसूरत, मुझे आपकी ये जो धूप का चांद में जो आपने बोला ना दिल का कोना जो होता है, वो बात बहुत बहुत दिल पे असर कर गई कि वाकई हम सब के अंदर एक कोना ऐसा होता है जहाँ घुस के हम थोड़ा सुकून हासिल करने की कोशिश करते हैं, और आपका पूरा जो एटीट्यूड है, जो आपका नजरिया है, वो कितना पॉजिटिव है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आपने उस पॉजिटिविटी को, उस रोशनी की लकीर का साथ नहीं छोड़ा, और आपने उसी को देखते देखते ही अपनी राह बना दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
0: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरती जी, और आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए हमें पॉजिटिविटी में तो रहना ही है, तो देवी तो एक उसी एहसास को बयान करती है, गजल सुना दीजिए तो मजा आ जाए।
1: अरे वाह,
0: गजल है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो।
1: क्या बहुत बहुत आला दर्जे की पसंद है आपकी, और ये गजल बहुत लोगों को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो आइए ज्यादा टाइम ना लगाते हुए दोस्तों सुमन जी की पसंद पर सुनते हैं ये बहुत खूबसूरत कलाम जो फिल्म अर्थ से है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जगजीत सिंह जी की आवाज में आप भी शौक फरमाएं।

अब आप ये बताइए कि जैसा आपने बताया कि लिखने और गाने के अलावा मंच यानी स्टेज से भी आपका बहुत मजबूत रिश्ता रहा है, चाहे वो एंकरिंग हो या परफॉर्मेंस हो, मेरे साथ हमारे सब दोस्त आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब कोई आर्टिस्ट स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देता है तो वो तजुर्बा कैसा होता है? लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का, क्या स्टेज की वो एनर्जी आपको एक शायर के तौर पर निखारती है? स्टेज के उस जोश और अदब को बयां करता अपना कोई कलाम भी हमें

0: जरूर आती हूँ। मंच पर जाना मेरे लिए हमेशा एक इबादत जैसा है
1: जी।
0: आई रियली लिव एंड लव दोज मोमेंट्स। वो एक शब्द हम सुनते ना, किक मिलना तो मुझे यस, मुझे स्टेज पर जाने से, स्टेज एंकरिंग करने से एक ऐसी किक मिलती है, मैं अपने आप को किसी और ही दुनिया में महसूस करती हूँ, कोई और दुनिया है। और ये शौक जो है ना, ये मुझे शुरू से था, जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट थी तब से कोई कॉलेज में फंक्शन होते थे, लिटरेरी इवेंट्स होती थी, तो टीचर्स को पता था कि एंकरिंग अच्छी करेगी, तो हर छोटे बड़े फंक्शन की मैं एंकरिंग, फेयरवेल पार्टीज भी, उनकी स्टेज भी, कभी छोटे छोटे फंक्शन मैंने बहुत किए और हर एक में आ गया, इधर पार्टी और पार्टिसिपेट भी बहुत किया, एंकरिंग भी की और खुद कविता पाठ है या कुछ और छोटे छोटे स्क्रिप्ट हैं, नाटक हैं, तो पार्टिसिपेट भी बहुत किया स्टेज। फिर जब मैं एज टीचर मैंने ज्वाइन कर लिया अपने कॉलेज में, हम प्रोफेशन में आ गए, तो फिर उसमें भी क्या होता था कि हमें बच्चों के बहुत सारे कार्यक्रम कराने हैं, कॉलेज में भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जानते हैं कि बाहर से टीम्स आ रही है, इवेंट्स हैं छोटी छोटी, कोई लिटरेरी इवेंट्स है, कोई स्पोर्ट्स मीट है, और फिर बड़े सारे कार्यक्रम जैसे यूथ फेस्टिवल्स आते हैं, लोकल नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है, ऐसी हमारे कॉलेज में जैसे मैथ की इंस्पेक्शन हुई, प्लैटिनम जुबली थी हमारे कॉलेज की, तो छोटी से लेकर बड़ी तक मैंने 35 साल मैंने कॉलेज में जॉब की है, और मैंने मतलब बहुत ज्यादा स्टेज कॉलेज की, हर बड़ी से बड़ी स्टेज मैंने की है और बहुत इंजॉय किया उसको, बहुत ज्यादा। तो ये तो बस मेरे लिए एक सचमुच एक इबादत जैसा है कि जैसे मंदिर में आप बैठ गए हो जोर से, तो स्टेज से मेरा बहुत लगाव रहा है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: तो स्टेज पर जब मैं करती हूँ, तो नॉर्मली जब मैं स्टेज एंकरिंग करती हूँ, तो मैं बीच बीच में अपनी लिखी कविताएं या कुछ गाने फिल्में हैं उनको बीच में हमेशा डालती रहती हूँ, जिससे कि ऑडियंस बोर ना, क्योंकि एंकरिंग एक बहुत डेलिकेट इश्यू है, आप जानते हैं, अगर आप ऑडियंस सुनने में मजा नहीं उसको आएगा तो बोर हो जाएंगे कि कोई इतना ज्यादा कैसे बोल रहा है। तो मैं बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन उनको अपने साथ जोड़ के रखती हूँ, ऐसी चीजें उनके साथ साझा करती हूँ ऑडियंस के साथ। तो मैं एक आपको अपनी लिखी हुई ही एक नज्म सुनाती हूँ, जो स्टेज पे भी मैंने एक दो जो मित्र हैं वो मुझे वो किए, मैं साझा उनके साथ कुछ।
1: बिल्कुल बिल्कुल इर्शाद,
0: तो ये मैं थोड़ा सा तरन्नुम में सुनाऊंगी आपको।
1: जी जी इर्शाद सुनाएंगे।
0: आज से मिले

0: देखते मुजरा हो गया। अब देखिए इसमें भी धूप का चांद वो तजाद आपको सारी इसमें नजर आएगा,
1: सही है।
0: मिलना है और मिलके भी मिलना नहीं है। आए उससे मिले और मिले भी नहीं,

0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: शुक्रिया जी,
0: बहुत खूब।
1: आगे
0: मेरा
1: देखिए।
0: कातिल भी वो, मेरा मुंसिफ भी वो, कहते चाहते वो खुदा हो गया, क्या बात है जी।
1: जी, बहुत शुक्रिया। और आगे देखिए। अब के आऊंगी जब कुछ न बोलूंगी मैं, अब के आऊंगी जब कुछ न बोलूंगी मैं, रोकते सब बया हो गया।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: शुक्रिया। और आगे, मुझको चाहोगे कब तुम भी मेरी तरह, मुझको चाहोगे कब तुम भी मेरी तरह, मांगते मांगते मैं कजा हो गया।
0: अरे वाह, क्या बात है। मुझको चाहोगे कब तुम भी मेरी तरह, मांगते मांगते मैं कजा हो गया। सुमन जी,
1: जी बहुत शुक्रिया,
0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बताइए
1: और देखिए आगे। आगे देखिए कि एक दूसरे से जो हम सोचते रहते हैं सारी उम्र, है ना, कि किन किन बातों में उलझे रहते हैं, तो इसको बयां करती हूँ। क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं,

0: मरहबा, क्या क्या क्या अल्फाज हैं, बहुत खूबसूरत,
1: बहुत ही। और आप खरीफ का बन।

0: बहुत बात कमाल के साथ सुनाते हैं। सुमन जी आपके, मेरा कातिल भी वो, मेरा मुंसिफ भी वो, चाहते चाहते वो मेरा खुदा हो गया। और फिर वो ना समझे हमें, कहते कहते सुनते यूं ही हक अदा हो गया। आई मीन क्या बहुत खूबसूरत, तुम भी मेरी तरह।
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत सुंदर, एक एक अल्फाज इतना सुंदर है कि मुझे अपनी किताब जरूर भेज दीजिएगा।
1: जी जरूर जरूर।
0: तो दोस्तों सुना आपने, हम सब में कभी ना कभी कहीं ना कहीं इन हालातों से गुजरते हैं, चाहे तस्लीम करें या नकारें, या फिर करना ही ना चाहें। तो सुमन जी अब हमारा आपसे इतनी दिलचस्प बात करते करते वक्त का तो पता ही नहीं चला कि बिल्कुल कैसे बीत गया। तो आप हमें ये बताइए कि, हमारे दोस्तों को ये बताइए कि वो कौन सा शायर या फनकार है जिनसे आप मुतासिर होती हैं, जिन्हें पढ़ना या सुनना आपको सुकून देता है। मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट अमृता प्रीतम है, और मैं, मुझे याद है कि जब मैं फोर्थ फिफ्थ में थी तभी मेरे बड़े भाई एक नॉवल लेके आए थे उनका, जिसका नाम था जेब कतरे। तो जब तब मुझे इतनी कुछ समझ भी नहीं थी अदब की, लेकिन मैंने तब से अमृता प्रीतम को पढ़ना शुरू किया है, और मेरे नन्हे से मन पे उसकी इतनी छाप बैठी कि मैं तब से पढ़ती ही आई हूँ। तो हमारे प्रोग्राम से विदा लेने से पहले आप अपनी पसंदीदा नज़्म या शायरी की चंद सतरें भी सुना दीजिए, और अपनी पसंद का शायर और आप किससे मुतासिर होती हैं वो भी बता दीजिए।
1: जी जी आरती जी, और एक बड़ा ही खूबसूरत इत्तेफाक हुआ, अभी आपने कहा ना कि आपकी पसंदीदा जो शायरा है वो अमृता प्रीतम है, तो मैं सोचती हूँ काश ये वीडियो प्रोग्राम होता तो मैं दिखाती आपको। इस वक्त मेरे टेबल पर अमृता जी की जो कविता संग्रह पड़ा है, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। और ये कितना जबरदस्त कोइंसिडेंस है, क्योंकि पंजाबी तो पढ़ नहीं सकती है, तो मैं हिंदी में उनको पढ़ती हूँ अमृता जी को। और बाकी जिन्हें मैंने पढ़ा, मैं जब स्टूडेंट थी तो उन दिनों मैंने जैसे बहुत सारी प्रतिनिधि कविताएं सुरेश सक्सेना जी की पढ़ी, इसके अलावा और प्रतिनिधि कविताओं की जो हमें छोटी छोटी किताबें मिल जाया करती थी, और निर्मल वर्मा जी को पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद जी, इन सबको तो हमने अपने सिलेबस में भी पढ़ा, इनकी कहानियां, इनकी नॉवल्स, रविंद्रनाथ टैगोर जी को, जी जी कोर्स में भी बहुत सारी चीजें, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा, धर्मवीर भारती जी को, सुमित्रानंदन पंत, माँ श्वेता देवी, रामधारी सिंह दिनकर, अभी बल्कि बच्चों ने मुझे गिफ्ट किया रामधारी सिंह दिनकर जी की, तो रश्मि रथी और गुलजार साहब की कुछ किताबें, ये सब शुरू में तो शौकिया पढ़ा, पर फिर शादी, नौकरी, जिम्मेदारियां, तो कभी टाइम लगा नहीं कुछ भी पढ़ने का। अब रिटायर हो गई तो अब मैंने खुद भी बहुत सारी किताबें खरीदी हैं अपनी जिंदगी की, बहुत सारे शायर, बहुत सारी कहानियां, किस्से, और बच्चों ने भी मुझे गिफ्ट की, मेरे बच्चों ने भी की, मम्मी भी शौक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जिंदगी मेहरबान रहेगी और मौका देगी मुझे अपनी पसंद का कि पढ़ लिख सकूं। तभी मैंने जिंदगी को थोड़ा सा रिश्वत देने के लिए वो सुना भी दिया कि यह जिंदगी गले से लगा ले।
0: अब तू भी हमें गले लगा ले, सही बात है।
1: जी जी, तो इस उम्मीद के साथ की जिंदगी मौका देगी एक खूबसूरत और सफर शुरू करने का, क्योंकि एक नई शुरुआत है अब रिटायरमेंट के बाद।
0: बिल्कुल,
1: जाते जाते जाते अपनी कविता संग्रह से एक छोटी सी क्षणिका मैं आपके साथ साझा करती हूँ।
0: अब क्षणिका का ही टाइम बचा है।
1: हाँ जी, बहुत दूर निकल आई थी, बहुत दूर निकल आई थी ढूंढते ढूंढते करीब कौन था। बहुत दूर निकल आई थी ढूंढते ढूंढते कि करीब कौन था। ये छोटी सी क्षणिका मेरी किताब में है, और इस प्रोग्राम का एक खूबसूरत अंजाम हो आज का, तो मजा आ जाए, सोने पे सुहागा हो जाए। मेरी एक बहुत पसंदीदा, मेरे मन के बहुत करीब ये गजल है, मैं सुनती हूँ, अगर आप वो बजा दें।
0: कौन सी?
1: ये है, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हमको इतराज,
0: ये
1: हम तेरे शहर में आए।
0: यस यस, ना जी, ये गुलाम अली साहब की गजल है
1: जी,
0: बहुत सुंदर है। आपके अंदाजे बयां, आपकी पसंद, आपके जज्बात, और उनको इतनी खूबसूरती से लफ्जों का जामा पहनाया आपने। हर किसी से नहीं हो, हर किसी में नहीं होता ये हुनर, और आपने कितनी शिद्दत से जैसे हर उन लम्हों को जिया है अपने तसव्वुर में, तभी तो ये भाव अपने आप अपने कागज पर उतार पाई हैं। ये जो बड़े बड़े आला दर्जे के कवियों और लेखकों की अभी जो आपने नाम गिनाए, स्कूल कॉलेज तक तो हम सब ने इनको पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, क्योंकि मेरे पास भी हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट था, लेकिन जिंदगी उसके बाद कुछ अलग रुख पर चल पड़ी, कुछ अलग मोड़ पर चल पड़ी, तो सब कुछ छूटता गया। तो सुना आपने दोस्तों, क्या खूबसूरत पसंद है सुमन जी की, और आज इनसे बातचीत करके ऐसा लगा कि जैसे हमने जिंदगी को एक नए नजरिए से देखा है। इकोनॉमिक्स की, संगीत की और अदब की ये खूबसूरती हमेशा आपके साथ रहे, हम यही दुआ करेंगे हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और अपने अनमोल अल्फाज और एहसास हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपकी पसंद पर हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह।
1: गुलाम से पहले क्या गजल बजाएं, हाँ। तो मैं भी शुक्रिया आपका अदा कर दूं और इजाजत लूं आपसे और अपने सुनने वालों से इस उम्मीद के साथ कि फिर किसी मोड़ पर हम मिलेंगे जरूर।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत, बाकायदा मिलेंगे, मेरा आपसे वादा है कि अब मिलते ही रहेंगे।
1: तो बहुत शुक्रिया,
0: हम सब मिलेंगे सुमन जी से, बहुत बहुत बहुत। और आइए अब सुनते हैं गजल।

तो दोस्तों इसी के साथ इस खूबसूरत गजल को सुनने के बाद जो सुमन जी की पसंद की थी, अब वक्त हो चला है आज के इस सफर को यहीं थामने का। उम्मीद है डॉक्टर सुमन लूथरा जी के साथ ये मुलाकात आपके दिल को छू गई होगी। फिर हाजिर होंगी कुछ नए अल्फाज और कुछ अनकहे एहसासों के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए अपना प्यारा रेडियो स्टेशन 90.8 FM पर SN रेडियो और रेडियो टांटिया भी। अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यही खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेडियो टांडिया भील 90.8 FM खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों के लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक साझा करते आया है। किसान साथियों, हमेशा रेडियो टांडिया भील 90.8 FM की यही कोशिश रही है कि हमारे किसान भाइयों तक वह उन्नत कृषि की नई पद्धतियों को, नई तकनीकों को आप तक पहुंचाए, जिससे हमारा जो किसान है वो अपनी आजीविका को सशक्त बनाए, साथ ही हमारी कृषि में हो रहे बदलावों को समझ पाए और अपनी कृषि में नई कृषि को कर सके। साथ ही अगर हम देखें, हमारा जो झाबुआ का किसान है वो अभी मुख्यतः खाद्य फसलों की ही फसल करता आ रहा है। तो किसान साथियों, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें जरूरत है कि हम यहाँ पर फलों की, फूलों की और भी अन्य प्रकार की जो खेती है उसको भी किया जा सकता है और यह संभव है। और यहाँ पर इसके लिए हमें जो किसान जो इनकी खेती करना नहीं जानते हैं उसके लिए केविकी जो संस्था है हमारे झाबुआ जिले में उपस्थित है, तो केविकी के मदद से भी हमारा जो किसान है वो प्रशिक्षण ले सकता है और प्रशिक्षण के साथ हमारा जो केविकी का जितने भी अधिकारी है वो हमें मदद करेंगे हमारी फसलों को देखने में, हमारी फसलों का निरीक्षण करने में और समय समय पर फसलों में हो रहे बदलावों को, फसलों में हो रहे कीटों और जो बीमारियां हमारी फसलों में आती है उसके निदान के लिए भी हमेशा हमारे लिए तत्पर रहेंगे। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमें अपना रुख करने की जरूरत है अलग अलग कृषि के ऊपर। तो किसान साथियों, आप में से जो भी किसान साथी अगर भिन्न भिन्न कृषि करना चाहता है तो केविकी में जाकर अपनी पसंद की कृषि को लेकर वहां जाकर चर्चा में शामिल हो सकता है और जो भी वहां से मदद मिलती है उसके द्वारा हम हमारे कृषि में एक नवीनता ला सकते हैं, कि बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि अभी तक जब हम जहां तक अभी हम जानते हैं कि हमारा जो झाबुआ का किसान है वो मुख्यतः दलहन और खाद्य फसलों में मक्का, गेहूं, कपास, सोयाबीन इन्हीं फसलों में ही अभी रह गया है। इसके अलावा बहुत ही कम फसलें हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमारे लिए अच्छा मौका है, हम यहाँ पर फलों की खेती कर सकते हैं, फूलों की खेती कर सकते हैं और भी अन्य प्रकार की खेती की जा सकती है और वो भी कम से कम लागत में। तो कैसे हो पाएगा ये संभव, जानेंगे हम रेडियो टांडिया भील के खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से। तो किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानेंगे आज भी कुछ नई कृषि के बारे में, कुछ और नई उन्नत कृषि को लेकर आज के इस दिन में हम चर्चा करेंगे और मिलेंगे कुछ और नए एक्सपर्ट से। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांडिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: पालन ग्रामीण समाज का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में भी गांव और खेतों में खुशहाली सबसे ऊपर है और ये खुशहाली तब आएगी जब हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे, किसान और पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोगों यानी FMD और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पशु नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की है। साथ ही देश में दुग्ध क्षेत्र के विस्तार के लिए भी स्टार्टअप ब्रांड की शुरुआत की है। तो क्या कुछ कहा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम को लेकर, आइए देखते हैं।
2: पशुधन को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार बनने के बाद 100 दिन में जो बड़े फैसले लिए गए उनमें से एक पशुओं के टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। इस अभियान को विस्तार देते हुए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। साथियों, हमारे पशु बार बार बीमार न हो, उनके इलाज पर किसानों को बेवजह खर्च न करना पड़े, पशुपालक को खर्च न करना पड़े, इसी सोच के साथ आज 13,000 करोड़ रुपए के एक बड़े अभियान की शुरुआत की गई है। एफएमडी यानी फूट एंड माउथ डिसीज, उससे मुक्ति। पूरा भारत इस बीमारी से पशुओं को मुक्त करें, इसका एक व्यापक अभियान हम आरंभ कर रहे हैं। एफएमडी यानी फुट टू माउथ डिसीज, यानी हमारे उत्तर प्रदेश के गांवों में कुछ इलाकों में उसके लिए शब्द प्रयोग रहता है, मुंह पका। ये मुंह पका जो बीमारी है उसके उपाय, बीमारी से मुक्ति का ही अभियान है। 51 करोड़ गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअरों को साल में 2 बार टीके लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, जिन पशुओं का टीकाकरण हो जाएगा उनको पशु आधार यानी यूनिक आईडी देकर कानों में टैग लगाया जाएगा। पशुओं को बाकायदा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किया जाएगा। भाई और बहनों, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, हमारा पशुधन स्वस्थ रहे, पोषित रहे और पशुओं की नई और उत्तम नस्लों का विकास हो। भाइयों और बहनों, भारत के डेयरी सेक्टर को विस्तार देने के लिए हमें इनोवेशन की जरूरत है, नई तकनीक की जरूरत है। ये इनोवेशन हमारे ग्रामीण समाज से भी आए, इसलिए आज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, मैं खास करके नौजवानों को कहता हूं, बेंगलोर हैदराबाद में स्टार्टअप की जाल पर काम करने वाले देश के होनहार नौजवानों को विशेष रूप से कहता हूं, आईआईटी में पढ़ने वाले होनहार छात्रों को विशेष रूप से कहता हूं, आइए स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के अंदर जिसकी आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, आप उससे जुड़िए और आप, हमें समाधान खोजना है कि हरे चारे की उचित व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो, उन्हें भी पोषक आहार कैसे मिले, प्लास्टिक की थैलियों का सस्ता और सुलभ विकल्प क्या हो सकता है, ऐसे अनेक विषयों का हल देने वाले स्टार्टअप शुरू होने चाहिए, शुरू किए जा सकते हैं और भारत सरकार आज उस चैलेंज को आपके सामने लॉन्च कर रही है।
1: आइए चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट।
3: हमारे देश में काफी संख्या में लोग पशुपालन से जुड़े हैं। पशु ग्रामीण समाज का आधार है। गांव के लगभग हर घर में पशु पाले जाते हैं, जो उनके घर का ही एक हिस्सा होते हैं। और हो भी क्यों नहीं, इन्हीं पशुओं से मिलने वाले दूध आदि के जरिए पशुपालक को न सिर्फ आमदनी होती है, बल्कि गांव से बाहर शहरों की भी दूध घी आदि की जरूरत को वो पूरा करता है। लेकिन पशुपालन से लाभ तभी ले पाएंगे जब हमारे पशु एकदम स्वस्थ रहेंगे। पशुओं को स्वस्थ और दुधारू बनाए रखने के लिए पशुपालन से जुड़ी कुछ जरूरी बातों का ध्यान पशुपालकों को रखना चाहिए। पशुओं में मुख्य रूप से होने वाले रोग हैं खुरपका और मुंहपका। इस रोग में पशुओं के मुंह और खुर में छाले हो जाते हैं। ये छाले धीरे धीरे घाव में तब्दील हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पशु ना ही चरने के लिए बाहर जा सकता है और ना ही कुछ खा पाता है। दुधारू पशुओं में इस बीमारी से दूध देने की क्षमता भी कम हो जाती है। छोटे पशुओं में रोग जल्दी फैलते हैं। इसके प्रकोप से बछड़े जल्दी मर जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में पशुओं के खुरपका और मुंहपका रोग यानी FMD और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी NACDP की शुरुआत की है। पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में कुल 12,652 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन बीमारियों में कमी लाने के प्रयास के तहत देश में 60 करोड़ से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए देश के सभी 687 जिलों के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में एक राष्ट्रव्यापी कार्यशाला की भी शुरुआत की गई है।
1: अभी आपने देखी है हमारी विशेष रिपोर्ट और अब आइए कार्यक्रम में विचार विमर्श में जो सवालों का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत करते हैं। डॉक्टर पाठक, सबसे पहले आपके पास आएंगे और आपसे जानेंगे ये जो रिपोर्ट अभी हमने यहाँ पर देखी है और जो एक स्कीम की जो एक बात की गई है, इसमें इससे पशुपालकों को कितना फायदा पहुंच सकता है और साथ ही साथ थोड़ा सा और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये योजना क्या है और कैसे पशुपालक इसका लाभ ले सकते हैं।
4: देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली दफे सरकार ने जो है पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 एक बहुत बड़ी स्कीम, दो तीन स्कीमों का उन्होंने घोषणा करी और उसका इनॉग्रेशन किया उस स्कीम्स का, जिनका सीधा फायदा हमारे पशुपालन व्यवसाय को और जो पशुपालक हैं हमारे देश के उनको बहुत ही मिलने वाला है। ये जो मुख्य थी कि जो हमारे पशु हैं, ये बात बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम है हमारा देश, और लेकिन अभी उनकी उत्पादकता कम है, तो उस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, पशु को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने जो मुख्य जो पशुओं की जो दो बीमारियां हैं खुरपका मुंहपका और ब्रुसेलोसिस, ये जो दो बीमारियां हैं जिनकी वजह से उत्पादन घट जाता है, जिनकी वजह से पशु में बांझपन आ जाता है ब्रुसेलोसिस से, इसके अलावा एबॉर्शन हो जाता है, तो इन बीमारियों से हमारे देश के पशुओं को बचाने के लिए साथ ही साथ इन दोनों

0: कि प्रथम बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना बड़ा बजट रखा है और इनका जो टीकाकरण के माध्यम से इन बीमारियों का नियंत्रण करा जाएगा और इनका कंट्रोल होगा 2025 और 2030 में। तो ये जो दो स्कीम्स हैं जिसका फायदा हमारे देश के सभी प्रांतों के, ऐसा नहीं है कि खाली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है या भारत सरकार की है, तो ये भारत सरकार की जो स्कीम जो उन्होंने लॉन्च करी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इससे सभी हमारे पशुपालक, चाहे वो मध्य भारत के हों, चाहे दक्षिण भारत के हों या उत्तर पूर्व भारत के हों, और सभी पशुओं में विशेष रूप से गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, तो इस इन व्यवसाय में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि हमें जो है 2022 तक जो है किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, और आमदनी दुगनी करने में जैसा हमारे पशुपालक भाई जो प्रोग्राम को देख रहे हैं वो जानते हैं कि उसमें पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है, तो दुगनी आमदनी करने में पशुपालन का जो महत्व है उसको समझते हुए मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी स्कीम जो है पहली दफे भारत सरकार ने लॉन्च करी है और इसका निश्चित रूप से लाभ हमारे देश के सभी पशुपालकों को मिलेगा।
1: बिल्कुल, वही बामल जी आपका क्या कहना रहेगा इस बारे में, आप क्या कुछ मुख्य बातें इसमें जोड़ना चाहेंगे, क्या है ये स्कीम और किस तरीके से ये काम करेगी और कैसे जो हमारे पशुपालक हैं वो इससे लाभ ले पाएंगे, खासकर अगर हम बात करें यहाँ पर कि उनकी आय को दोगुना किस तरह से किया जा सकता है इस स्कीम के जरिए, अगर उस नजरिए से देखें तो।
2: जी हाँ, जैसे कि आपने अभी सुना है कि जो भारत सरकार ने जो स्कीम को लॉन्च किया गया है, ये एक स्कीम टोटल 13,343 करोड़ की है, जिसमें से 12,652 करोड़ जो है सिर्फ एफएमडी के लिए निर्मूलन के लिए दिया गया है, जिसमें अभी ये 5 साल में सरकार का जो उद्देश्य है वो एफएमडी को या मुंह पका या खुरपका रोग को कंट्रोल करना है, उसी के साथ साथ जो ब्रुसेलोसिस, जो जैसे पाठक साहब ने बताया है कि जिसमें बांझपन और गर्भपात होता है पशुओं का, तो उसके कंट्रोल के लिए भी ये स्कीम 5 साल के लिए चालू की गई है, जिसमें सरकार का उद्देश्य है कि 2025 तक इस बीमारी के ऊपर नियंत्रण किया जाए और उसके बाद उसके निर्मूलन का कार्यक्रम भी किया जाएगा। तो अब जिसमें आप अगर देखेंगे कि मुंह पका खुरपका जो बीमारी है
1: जी।
2: ये अभी साहब ने बताया, पाठक साहब ने बताया कि इससे जो दूध में कमी आ जाती है, गाय भैंस जो पशु है वो बीमार रहने लगते हैं, इनके प्रजनन क्षमता में भी कमी आती है, तो जिसके जिसका मतलब है कि पशुओं की जो उत्पादकता है वो कम होती है, तो इनमें अगर हम उसके निर्मल नियंत्रण तो पशुओं में उसकी उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों को फायदा होगा। इसमें अगर आप अभी देखें तो भारत सरकार ने ये 100% धनराशि, केंद्रीय धनराशि के साथ स्कीम का स्कीम को लॉन्च किया गया है, और जिसमें 51 करोड़ पशुओं को साल में 2 बार टीकाकरण किया जाएगा
1: जी।
2: और इस टीकाकरण से ये फायदा होगा कि जो पशुओं है अगर इनके साथ एक साथ सबका वैक्सीनेशन किया गया तो इनमें जो प्रतिशक्ति है वो आएगी और इस बीमारी से उनका नियंत्रण किया जाएगा या बीमारी से दूर रखा जाएगा। तो वैसे ही ब्रुसेलोसिस में भी जो बछिया है, 4 से 8 महीने की जो बछिया है उनमें ये अराउंड 36 मिलियन जो बछिया है उसमें भी लसीकरण किया जाएगा, वो 5 साल तक चालू रहेगा, इससे जो बीमारी पशुओं से दूर रहेगी उनके बीमारी से बच जाएंगे और जो किसान भाइयों की जो है उत्पादकता, पशुओं की उत्पादकता में फायदा होगा।
1: बिल्कुल उमेश सिंह जी, आपसे मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि जैसे हम बात कर रहे हैं खुरपका मुंहपका की, तो अभी जो हमारे पशु हैं, जो हमारे दुधारू पशु हैं, उनकी क्या स्थिति है खुरपका मुंहपका को लेकर, क्या बहुत तेजी से ये फैल रहा है या फिर अभी तक इस पर कुछ नियंत्रण पा लिया गया?
3: मैं सब किसान भाइयों को इसके विषय में जानकारी देना चाहता हूं। आप देखें अगर जो भी एफएमडी है, ब्रुसेलोसिस है, इससे काफ़ी भारी नुकसान होता है। अगर एफएमडी हो जाए तो जानवरों में देखेंगे कि बुखार बहुत हो जाएगा और तुरंत ही उसका दुग्ध उत्पादन कम होने लगेगा और छोटे बच्चे हैं उनमें मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से इस बीमारी से काफ़ी नुकसान होता है और इरेडिकेट हो जाए, समाप्त हो जाए या रोक हो जाए पूरी तरह से कम आमदनी में नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा किसान भाइयों को। तो इसके ऊपर ये जो परियोजना या जो लॉन्च किया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, ये बहुत ही उपयोगी होगा, फायदेमंद होगा और जो उद्देश्य है डबलिंग इनकम का उसमें भारी इजाफा होगा। तो इन पे रोकथाम करना और उसको समय से इसका टीकाकरण करना और समाप्त करना ये बहुत ही आवश्यक है हमारे देश के लिए, जिससे

0: दुग्ध उत्पादन और आमदनी हमारे किसान भाइयों की बढ़ सके।
1: इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने ये योजना 100% जो है पोषित है, तो जो इसका टीकाकरण होगा किसानों को उसमें कोई पैसा नहीं देना है, उसमें उनको सिर्फ ये करना है कि जहां उनका पशु चिकित्सालय है वहां अपने पशु को ले जाना है और उसका टीकाकरण कराना है। तो ये हुआ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट लॉसेज में ये और हो जाता है कि जानवर हीट में नहीं आएगा या दूध घट गया तो इलाज भी कराना पड़ेगा, तो ये इनडायरेक्ट लॉसेज में चारा नहीं खाएगा, तो इस तरह से जो है पूरा नुकसान होता है पशुपालकों को।
2: जी दास जी, यहाँ पर आपकी भी मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे स्कीम के बारे में, आपको क्या लगता है एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कि कितनी कारगर हो सकती है ये स्कीम और कैसे फायदा?
3: ये पहले से स्कीम का नया नाम जो है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है इसको, बट पहले भी ये स्कीम चला था, बट क्या होता था कि पहले क्या होता था 60-40 का रेशियो में चलता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देती थी, 40% स्टेट से आता था। उसमें होता है कि ये जो टीकाकरण होता है कि अगर एक भी टीका आप मिस कर जाओगे तो उसको पूरा इराडिकेशन नहीं हो सकता है इसका। तो इसमें क्या 100% सेंट्रली फंडेड है, तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे राज्यों क्या करते थे अपना जो हिस्सा है वो दे नहीं पाते थे या लेट में देते थे, तो उसके वजह से टीकाकरण जो शेड्यूल था वो गड़बड़ हो जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा मैसिव बीमारी है, मतलब अगर FMD फ्री इंडिया हो जाता है तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हम लोग को देता है इन टर्म्स ऑफ मीट एक्सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो ये बहुत बड़ा चीज है क्योंकि जब तक डिजीज है आपका आपका यील्ड में इंपैक्ट करता है
2: जी।
3: और आपका जो ग्लोबल मार्केट और इवन डोमेस्टिक मार्केट इज ऑल्सो इम्पैक्टेड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द मीट और मिल्क।
2: बिल्कुल बिल्कुल। पाठक जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की लक्षण जो है वो उसमें दिखाई देते हैं, मुंह के अंदर आपने बताया छाले होते हैं, खुरों में किस तरीके के लक्षण होते हैं और क्या उपचार है, कितने समय में जो है वो इसका टीकाकरण करवाना चाहिए हमारे किसानों को?
1: देखिए, जब जैसे ही जो खुरपका मुंहपका का पहला लक्षण जो है हमारे पशुपालक देखेंगे कि अगर आपका गाय और भैंस में मुख्य रूप से बीमारी है और जो भेड़ बकरी है उनके अंदर इतने ज्यादा लक्षण नहीं आते हैं, तो आप पहला देखोगे कि आपका जो पशु है वो उसको बुखार हो जाएगा, सुस्त रह जाएगा और उसका दूध उत्पादन जो है वो घट जाएगा। तो जब वो सुस्त हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, तो आप देखोगे कि वो चारा कम खा रहा है या पानी नहीं पी रहा है। साथ ही साथ अगर उसके मुंह, जैसा मैंने बोला और इसके नाम में भी है कि इसके मुंह में छाले हो जाते हैं और उसके मुंह से जीभ आप देखोगे कि उसकी लार निकलती है, लार टपकती रहती है मुंह से, और खासकर जब हम मुंह का परीक्षण जब हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो मुंह खोल के उसको देखेगा तो लार टपकेगी, लगातार लार टपकती रहती है। साथ ही साथ उसके जब खुर देखें, क्योंकि जो खुर वाले जानवर होते हैं बीमारी उन्हीं की है
2: जी,
1: तो जो खुर में देखोगे तो खुर के बीच में भी आप देखोगे कि उसमें छाले हो जाएंगे उसके अंदर छोटे छोटे, और तो उससे देख के किसान पता कर लेता है। साथ ही साथ जो दूध दे रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि तुरंत दुग्ध उत्पादन घट जाएगा, चारा खाना बंद कर देगा, बुखार हो जाएगा, तो ये इसके मुख्य लक्षण है। अब हम करें क्या, तुरंत अपने पशुपालक जो जहां आपका वेटनरी हॉस्पिटल है वहां जरूर जाएं, किसी वैसे बिना वेटनरी डॉक्टर को न दिखाएं और अपना इलाज शुरू न करें। साथ ही साथ क्योंकि ये संक्रामक रोग है, गांव में अगर एक पशु को भी हो गया है तो जैसे
2: अभी
1: सब में फैल जाएगा, इसीलिए जैसे अभी संदीप जी भी कह रहे थे और इस स्कीम के अंदर ये बात है कि भारत सरकार ने इसको 100% फंडिंग इसलिए किया है कि ये जिस तरह से हमने पोलियो उन्मूलन का प्रोग्राम चलाया और आज हमारा देश पोलियो से वो है मुक्त है, तो वही सेम उस तरह की अप्रोच हमको जो है खुरपका मुंहपका के लिए, तो आप अपने पशु को पशुपालकों को उसके देखें, उसको अलग कर दें। अगर आपके पास 6 पशु हैं, 6 में से एक पशु को ये लक्षण आ रहा है तो उनको अलग कर दीजिए और इसका इलाज भी साथ में कराएं, जो लोकल जो जो जो लीजन्स बन गए जो वो आ गए हैं। साथ ही साथ टीकाकरण बहुत जरूरी है, तो इसका जो टीका है वो साल में 2 बार लगता है, खुरपका मुंहपका का जो टीकाकरण का कार्य सरकार का है वो 2 बार लगाया जाता है, तो एक जैसे बरसात के दिनों में जो है ना, और आजकल ही ये जो इस समय की जो मौसम चल रहा है इस समय में खुरपका मुंहपका रोग बहुत होता है
2: जी।
1: तो एक चीज ध्यान जरूर देनी है कि हमारा एक भी गांव का एक भी पशु इसके बिना टीकाकरण से न बचे, यानी अगर आपके पास 50 पशु हैं, आपके पास 2 पशु हैं, आपके पास 1 पशु है, उसका टीकाकरण निश्चित रूप से कराएं
2: जी। बिल्कुल बंबल जी, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे अभी हमने यहाँ पर खुरपका मुंहपका के संबंध में बहुत ही विस्तार से जो है पाठक जी से जानकारी यहाँ पर हमने प्राप्त की है, लेकिन इसके अंदर एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी, जैसे बच्चों में जब वो छोटे होते हैं तभी से जो है वो टीकाकरण शुरू करवा दिया जाता है, जाता है, तो क्या इस तरीके की कोई भी टीकाकरण क्या पशुओं के अंदर भी लागू होता है कि अगर जब कटरा कटनी हो तो उसी दौरान अगर उनको वैक्सीनेशन दे दी जाए तो क्या पता ये बीमारी आगे फैले ही ना, क्या बताएंगे इसमें आप?
4: जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। ये जो बीमारी है जैसे मुंह पका खुरपका जो बीमारी है, ये छोटे बच्चों से तीन बच्चा बछड़ा जो तीन या चार महीने की बच्चियाँ जो है वहाँ से हम दिया जाता है। और ये स्कीम की तो विशेषता ही ये है कि जैसे संदीप जी और पाठक जी ने बताया कि इसमें एक तो हम जो जानवर है पशुए हैं उनको इससे एक टैगिंग दिया जाएगा जो यूनिक आईडी जिसको पशु आधार बोलते हैं। जैसे बछड़े में अगर चार महीने के इसमें हम वैक्सीनेशन करें तो इनको टैगिंग से चिन्हित किया जाएगा और वो जो है उनकी सब पूरी इंफॉर्मेशन जानवर की छोटे बचपन से वैक्सीनेशन डेट से लेके ये सब उसमें एक हमारा सॉफ्टवेयर है इनाफ पशु उत्पादकता सॉफ्टवेयर जो है उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसका फायदा होगा कि जब दूसरी बार आपको वैक्सीनेशन करना है तो ये पता चल जाएगा कि इसका कब 6 महीने बाद ड्यू है। उसी तरह से जो उनको जो पशुओं के जो लसीकरण टीकाकरण करने के बाद इनको एक वैक्सीनेशन कार्ड भी दिया जाएगा, एनिमल हेल्थ कार्ड जिसका नाम है, ये भी दिया जाएगा जो पशुपालक अपने पास रखेंगे और इसमें उनकी सब पूरी जानवर की डिटेल रहेगी। तो उससे जो नेक्स्ट राउंड है, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन है ये कैंपेन मोड में किया जाएगा, जैसे 21 से 30 दिन के बीच में जो भी गांव है उसमें किया जाएगा सो दैट सब पूरे जो एनिमल है एक साथ उनका टीकाकरण किया जाए और पशुओं को दूसरा टीकाकरण करने के लिए, इसलिए जो डेट जो है वो पशुपालकों के साथ वैक्सीनेशन कार्ड में भी दिया जाएगा।
2: बिल्कुल।
5: किसान साथियों, अभी आपने पशु को लेकर बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, मुंह पका और खुरपका से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाटा फील्ड 90.8 के साथ।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं पशुओं से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: किसान भाइयों, ब्रुसेलोसिस बहुत ही गंभीर बीमारी है। आप देखेंगे अगर ब्रुसेलोसिस हो गया, चाहे वो कहीं भी बुल में ज़्यादातर, तो वो बुल अगर पॉजिटिव है, गाय भी है, तो बुल को पॉजिटिव है तो किसी भी तरह से आप उसको आइसोलेट कर दें, उसको कभी भी ब्रीडिंग के लिए उपयोग में ना लाएं, ना उसका सीमेन यूज़ करें, क्योंकि जब भी अगर इस तरह से ब्रीडिंग हो गई तो उसकी भी जो भी बच्चा होगा कुछ ही दिनों में जो वो एबॉर्शन हो जाएगा। और इस तरह की ये ब्रुसेलोसिस बीमारी कॉन्टेजियस बीमारी है, इससे बचाव करने के लिए आप इमीडिएट उसको अलग कर दें, उसको अपने हर्ड में ना रखें, और ये लगातार इसका टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि टीकाकरण ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप ब्रुसेलोसिस से बच सकते हैं। एक बार पॉजिटिव हो गया तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा हर्ड नहीं है, उसमें से उसको अलग रखना भी बहुत एक मुश्किल टास्क होगा, समस्या होगी। इसलिए हर जानवर का टीकाकरण होना चाहिए। ब्रुसेलोसिस एक गंभीर बीमारी है, टीकाकरण ही एक अच्छा उपाय है, माध्यम है जिसके द्वारा आप इसका बचाव कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, और कार्यक्रम में चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं एक और खास रिपोर्ट।
3: हमारे देश में आधी से ज्यादा आबादी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि और पशुपालन पर आश्रित है। ऐसे में कृषि और पशुपालन में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने से न केवल ये क्षेत्र सशक्त बनेंगे बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। देश में स्किल इंडिया के साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं। डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए गाँव के युवा अपने अपने आइडिया को लेकर आगे आए, इसके लिए सरकार की ओर से काफी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी देश में दुग्ध क्षेत्र के विस्तार के लिए नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को समय की जरूरत बताया। हमारे गांव से इस प्रकार की नई खोजें की जाएं, इसके लिए हाल ही में स्टार्टअप ब्रांड चैलेंज की शुरुआत भी की गई है। इसके जरिए युवाओं की अवधारणाओं को आगे ले जाने और उनके लिए समुचित निवेश जुटाने के लिए भी गंभीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर तो तैयार होंगे ही, साथ ही पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी। वहीं दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में भारत की पहचान भी बनी रहेगी।
2: तो अभी आपने देखी विशेष रिपोर्ट, और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। पाठक जी, अब मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि ब्रुसेलोसिस के क्या कोई लक्षण है जो जिसको दिखाई देने पर जो हमारे पशुपालक हैं वो जिससे पहचान कर सकें कि जो हमारा पशु है वो ब्रुसेलोसिस से ग्रसित है।
4: देखो, ब्रुसेलोसिस का जैसा अभी डॉक्टर उमेश ने बता रहे हैं कि विशेष रूप से इसके दो मुख्य लक्षण आते हैं कि एक तो अगर बार बार एबॉर्शन हो रहा है जो है पशु में, दूसरी बात यह है कि जो खासकर जो बुल है जिसको हम सीमन कलेक्शन के लिए प्रयोग में लाते हैं तो उस बुल के अंदर इनफर्टिलिटी आ गई है। और ये जो ब्रुसेलोसिस बीमारी है, सबसे बड़ी इसकी विविधता यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है। अगर एक बार ये बीमारी हो गई तो इसका कोई इलाज नहीं है। वो जो पशु है, चाहे वो मादा है चाहे वो नर है, वो संक्रमित रहेगा। और वो अगर संक्रमित है, अगर आपके पंचायत लेवल पे अगर कोई बुल है, सांड जैसे पहले लोग गांव में रखते हैं कि भाई एक सांड रखा और वो गांव में ब्रीडिंग के लिए प्रयोग करते थे, तो वो परमानेंट ही संक्रमित बना रहेगा। तो आप ये देखोगे कि इसका जब टेस्ट करेंगे तो जैसे ये निश्चित रूप से अब आवश्यक हो गया है कि आप जब भी जानवर चाहे मेले से खरीदें या आपने किसी साथी का से जानवर परचेज करते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस ये एक ऐसी बीमारी है जिसका भी कोई इलाज नहीं है। ऐसे ही ब्रुसेलोसिस का कोई इलाज नहीं है। और मुख्य रूप से जो मुख्य सिम्टम है इसके, या तो गर्भपात हो जाएगा या इनफर्टिलिटी हो जाएगी उसके अंदर, मेल के अंदर। अंदर, तो इनका टेस्ट जरूर करा के रखें। ये जो बीमारी है ब्रुसेलोसिस बीमारी सिर्फ आपके पशुओं की बीमारी नहीं है, इससे ये बीमारी हमारे पशुपालकों को भी हो सकती है। इनको हम जूनोटिक डिसीजेज बोलते हैं। तो ये जूनोटिक बीमारियां कौन सी हैं जो पशुओं से मनुष्यों में हो जाती हैं, और इसका इलाज सिर्फ जो है टीकाकरण है। तो टीकाकरण के लिए भारत सरकार ने जो ये स्कीम करी है इसका लाभ हमको उठाना है, हमारे पशुपालकों को उठाना है।
2: बिल्कुल बब्बल जी, यहाँ पर यही मैं जोड़ना पहले भी चाह रही थी, क्योंकि कई बार हम लोग भी गाँव में जाते हैं तो हमारे से कई जो पशुपालक हैं, जो किसान हैं, वो कहते हैं कि हमें तो इस योजना के बारे में कोई जानकारी जो है वो नहीं है, हम इस स्कीम का लाभ कैसे उठाएं, हमें तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हमारे किसान हैं चाहे पशुपालक हैं, सरकार की जो जिस तरीके की ये स्कीम आ रही है जिनका ये लाभ ले सकते हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनको इन तक जानकारी पहुंचे? क्या किसी तरीके की गोष्ठियां की जा रही हैं, किसान मेले में किसी तरीके की कोई अनाउंसमेंट की जाती है? किस तरह से किसानों तक ये ज्यादा से ज्यादा जो जानकारियां हैं वो पहुंच पाए योजनाओं की?
5: ये जो योजना पशु रोग राष्ट्रीय पशु रोग निदान का कार्यक्रम को जो मंजूरी दी गई है, ये इसमें 13,333 करोड़ की जो टोटल स्कीम है, इसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है जन जागृति प्रोग्राम के लिए खास विशेष रूप से महत्व दिया गया है। जैसे अभी ब्रुसेलोसिस की बात चल रही थी, इसमें भी एक जो हमारे स्कीम का जो विशेष भाग है वो है कि 4 से 8 महीने की बच्चियों को जो फीमेल बोवाइंस है, मतलब गोवंशीय जो कैटल और बफेलो की जो फीमेल है बच्चियां है, उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। जैसे अगर ये 5 साल तक वैक्सीनेशन उनको किया जाए, मतलब हर साल एक ही टीका देना है हर बच्चियों को, तो ऐसे 5 साल अगर ये ऐसे कार्यक्रम रहा जाए तो टीकाकरण किया जाएगा, तो एक पूरा हर्ड इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं वो डेवलप होगी और धीरे धीरे इस रोग से ये जो हमारे जानवर है इससे मुक्ति पाई जाएगी। और अवेयरनेस प्रोग्राम में अब हर गांव में, हर विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इसकी योजना की गई है। हर जगह पैम्पलेट हो, लीफलेट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन सभी के द्वारा इनको जो है जन जागृति की जाएगी।
2: बिल्कुल।
4: और इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब 11 तारीख को 11 सितंबर को जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, तो उसी समय जितने भी हमारे देश में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आपने कहा ना जानकारी कैसे किसानों, तो कृषि विज्ञान केंद्रों में भी संगोष्ठी की जा रही है, और उनको कृषि विज्ञान केंद्र क्योंकि सीधे किसानों से जुड़े होते हैं, वहां पर हमारे पशुपालन से जुड़े हुए हमारे विशेषज्ञ होते हैं, तो सारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर इसके बारे में सूचना दी जा रही है, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रोग्राम करे जा रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो, लोग ज्यादा से ज्यादा क्योंकि ये नई बीमारी जुड़ी है ब्रुसेलोसिस, बीमारी नई नहीं है लेकिन ये परियोजना पहली दफा जुड़ी है। डॉक्टर बम्बल बता रहे हैं कि ब्रुसेलोसिस पहले हमारे नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम में नहीं थी, तो इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को भी जोड़ा गया है।
2: डॉक्टर दास जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे
6: में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये दोनों प्रोग्राम में ये पूरा जो टारगेट है कि पूरा 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर छूट जाए उसका दिक्कत हो सकता है। बट प्रॉब्लम में अभी प्रॉब्लम मतलब चैलेंजेस जो फ्यूचर में देख रहा हूँ कि अभी जब आंकड़ा ये बता रहा है कि इसमें करीब 100 करोड़ डोजेस चाहिए, उसमें जो अवेलेबिलिटी है ओवर 50 करोड़ का है, तो उसका जो मेडिसिन है जो दिया जाएगा उसका प्रोडक्शन फैसिलिटी, उसको टाइमली प्रोडक्शन, टाइमली सप्लाई, वो बड़ा की होगा। अब कम्युनिकेशन के बात करें, कम्युनिकेशन सबसे बड़ा की है, बट आफ्टर दैट कम्युनिकेशन लेने के बाद भी अगर अवेलेबिलिटी इंश्योर करना पड़ेगा लोकल लेवल पे कि ये टाइमली दिया जाए, क्योंकि अभी देख रहा हूँ कि कुछ कंपनीज ये दोनों जो डिजीज के लिए 2-3 कंपनी इसको मैन्युफैक्चर मेजरली करते हैं इंडिया में, तो उसको सप्लाई कैसे किया, उसका टाइमली सप्लाई डिमांड, ये सब चीजों को देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, एक भी वैक्सीनेशन छूट जाए तो पूरा पूरा जो जो जो डिजीज कंट्रोल मैकेनिज्म वो खत्म हो जाता है। और सबसे बढ़िया चीज मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि अगर 2025 तक ये डिजीज फ्री हो जाता है, FMD फ्री हो जाता है इंडिया, हमारे एनिमल एक्सपोर्ट, एनिमल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे मार्केट ऐसे है जो हमारा FMD बिकॉज ऑफ FMD एग्जिस्टेंस वो लेते नहीं हमारा प्रोडक्ट, तो वो बड़ा एक बूस्ट देगा एक्सपोर्ट पोटेंशियल एनिमल इसके लिए। तो ये मैं दोनों चीज बोलना चाहता हूँ।
2: बिल्कुल।
5: इसे ही मैं जरा उनसे थोड़ा सपोर्ट ये करना चाहूँगा कि जो संदीप जी बोल रहे थे कि अभी क्योंकि ये जो दोनों भी प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, ये जैसे इन्होंने पहले बताया कि पहले हमारी स्कीम थी, बट क्योंकि अब सब पूरे जानवर को जैसे जो जो अफेक्ट गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर ये सबको मिला के 100% वैक्सीनेशन का जो टारगेट दिया गया है, तो ये इस प्रोग्राम की जो विशेषता है, तो इसलिए ये कैंपेन मोड में किया जाएगा और ये सरकार ने या जो राज्य सरकार है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ये हमारे स्कीम ने स्कीम में पूरी व्यवस्था की गई है कि वैक्सीन को कैसे रखा जाए, कोल्ड स्टोरेज कैसे कोल्ड चेन मेंटेन किया जाए और इसकी अवेलेबिलिटी जो है क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो सफिशेंटली हो और ये प्रोडक्शन अभी सफिशिएंट है और इसीलिए ये जैसे हम 3.6 करोड़ ब्रुसेला का वैक्सीनेशन होना है तो ये वैक्सीन जो है अभी अवेलेबल है।
2: तो बिल्कुल यहाँ पर बंबल जी आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि फिर जो हमारे किसान हैं कई बार उनको ये भी दिक्कत आती है कि अच्छी नस्ल के जो पशु हैं वो कहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में क्या जानकारी देंगे, कौन कौन सी अच्छी नस्लें हैं दुधारू पशुओं की और कहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं, इवन यहाँ तक कि ये सीमन की भी जो बात है वो भी की जाती है कि अगर अच्छा वीर्य जो है वो मिल जाए तो उससे भी जो नस्ल है उसको जो है वो बढ़ावा मिलता है, अच्छी नस्ल भी प्राप्त होती है, तो ये तमाम जो सवाल हैं ये कई बार हमारे जो पशुपालक हैं उनके ज़हन में आते हैं, क्या जवाब देंगे इनका?
1: तो डेयरी व्यवसाय है ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, इससे अच्छी आमदनी किसान भाइयों को होती है। कई बार देखें आप कि कृषि से आपको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पशुपालन से होती है। जब पशुपालन के अंतर्गत आप एक अच्छे गुणवत्ता वाले नस्ल का चुनाव जरूर करें, गाय में है हमारी देसी नस्लें हैं जैसे साहिवाल है, गिर है, थारपारकर है, राठी है, रेड सिंधी है लेकिन संख्या बहुत कम है, तो इन जो नस्लें हैं इनको आप चयनित करें, ले आएं और अपने यहाँ पालें। इसके अलावा आप देखें कुछ एचएफ संकर गाय भी हैं, वो भी अच्छी हैं, अच्छा दुग्ध उत्पादन है
2: जी।
1: लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारी देसी नस्लें हैं उनको अपने यहाँ ले आएं, पालें। कई बार किसान भाई देखेंगे कि आप साहिवाल लेना चाहते हैं लेकिन साहिवाल आपको अच्छी नस्ल की उपलब्ध नहीं हो पाती, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसी कोई गाय है जिसमें आपको लगता है कि इसको ग्रेडिंग एक ऐसा सिस्टम है क्रोमोनाति जिसमें आप साहिवाल का सीमन लगाएं, तो जो आपकी एक देसी गाय है जब सीमन लगाएंगे तो जब बछिया आएगी वो 50% साहिवाल की हो जाएगी। इसी तरह से 3-4 जनरेशन जब लगातार साहिवाल का सीमन लगाएंगे तो एक आपको साहिवाल नस्ल की गाय पैदा हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप बढ़ावा कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे जाएं, आप देखें जो हिसार के आसपास, सिरसा के आसपास राजस्थान से लगता हुआ बॉर्डर, वहां पे भी काफी मात्रा में इस समय साहिवाल गाय उपलब्ध है किसानों के पास, मैं गया भी था और देख के भी आया। आप देखें कि पुणे जैसा शहर और बारामती, मैं अभी अभी गया था वहां पे भी काफी इसी क्षेत्र से ले जाकर के लोग वहां पे साहिवाल पाल रहे हैं, तो साहिवाल सवाई माधोपुर जो राजस्थान का क्षेत्र है उधर भी जाएं तो वहां से भी आप चयनित करके साहिवाल ला सकते हैं। इसी तरह से गिर नस्ल है सौराष्ट्र गुजरात की, लेकिन अजमेर और उसके आसपास जो टोंग डिस्ट्रिक्ट है, अजमेर है, वहां पे भी बहुत संख्या में इस समय गिर उपलब्ध है। अच्छी नस्ल की अच्छी गाय जो है वो सौराष्ट्र गुजरात में उत्पन्न उपलब्ध है, वहां से भी ले आकर के आप पाल सकते हैं। रही बात ये थारपारकर आप राजस्थान से, राठी भी राजस्थान से ला सकते हैं। किसान लाने के बाद देखें कि अगर उनकी गाय गर्मी में आती है तो उनको उच्च गुणवत्ता का सीमन उपलब्ध होना चाहिए। हमारे यहाँ अपने संस्थान में केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत हम इस समय 3 देसी नस्लों गिर, साहिवाल और कानकरेस, तीनों के नस्लों का जो बुल का सीमन हमारे पास उपलब्ध है अच्छे गुणवत्ता का है, क्योंकि हमारे पूरे देश में हम लोग परियोजना ICR के माध्यम से चला रहे हैं और वो बुल टेस्टिंग के ऊपर ही है। अच्छे अच्छे बुल को हम उसको बछिया के ऊपर ही उसको टेस्ट करके हम उस बुल को सेलेक्ट करते हैं, तो उनका सीमन है और बहुत ही अच्छा सीमन है, वहां से भी उपलब्ध हो सकता है
2: जी।
1: इसी के साथ उत्तर प्रदेश में बाबूगढ़, आप बाबूगढ़ जो है वहां पर वहां से भी ला सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का सीमन स्टेशन है। इसी तरह से उत्तराखंड में ऋषिकेश का सीमन, ऋषिकेश में है सीमन स्टेशन, वहां से भी ला सकते हैं। आप देखें आजकल किसान भाई सेक्स ह्यूमन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और देने की आवश्यकता भी है। इन दोनों जगह मशीनें भी उपलब्ध हो गई हैं और यहाँ पर सेक्स ह्यूमन के ऊपर भी कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी ही आपको इन नस्लों के सेक्स ह्यूमन भी उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे करीब करीब 90% आपको बच्चे ही पैदा होगी और आप जिस तरह से समस्याओं से ग्रसित हैं वो समस्या नहीं हो, आप चाहते ही हैं बच्चियां हो तो आपको बच्चियां ही उपलब्ध होंगी। इन तरह से आप अच्छे नस्लों का चुनाव करें और सीमन लिया करके आप आगे ब्रीडिंग करें।
0: किसान साथियों, इस विषय से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण बातों को हम जानेंगे सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंट्या भील 90.8 FM छाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टंट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टंडिया भील 90.8 FM के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आप लगातार पशुपालन को लेकर, पशुओं की जो मुंह पका और खुरपका की बीमारी को लेकर, साथ ही अच्छे नस्ल के पशुओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियों को आप सुन रहे थे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: पर आपके पास आना चाहूंगी, डेयरी स्टार्टअप की भी जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की थी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना जो है ये अच्छा कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि जो हमारे युवा हैं उनको इससे जोड़ना काफी जरूरी है। धीरे धीरे हमारे जो युवा हैं उनका रुझान भी अब कृषि और पशुपालन की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें आपका क्या विचार रहेगा?
2: बिल्कुल, हमारे युवाओं को, विशेष रूप से जो हमारे युवा डेयरी को अपना व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं, और जब मैं युवा की बात करता हूं तो उसमें दोनों ही हैं, पुरुष और महिलाएं, और डेयरी तो एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। तो इनको प्रोत्साहित करने के लिए, इनको आगे बढ़ के आने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 11 तारीख को वहां ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम मथुरा में, तो उन्होंने स्टार्टअप की बात करी थी और उन्होंने ये कहा था कि एक उदाहरण दिया था कि जैसे पशुपालन के क्षेत्र में या डेयरी का जो व्यवसाय है, हमारे पास चारे की बड़ी भारी समस्या होती है। हम सब जानते हैं कि जो दुधारू पशु है, दुधारू पशु से पूरे वर्ष ज्यादा दूध मिले, लगातार दूध मिले, दूध कम न हो, तो आवश्यक है कि साल भर हर सीजन में उनको हरा चारा उपलब्ध हो, ये पहली आवश्यकता है। डॉक्टर उमेश जी जो कह रहे हैं वो तो है ही, फैला है कि आपकी जो ब्रीड है बढ़िया होनी चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से प्योर ब्रीड हो, साथ ही साथ चारा, और तीसरा बीमारी, डिसीज कंट्रोल। तो चारे के बारे में उन्होंने एक उदाहरण दिया छोटा सा कि एक ऐसा एक है जहां युवा अपना नया जो है कोई कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि चारा उत्पादन को बूस्ट करना है, या जैसे उन्होंने पॉलीथीन यूज ऑफ पॉलीथीन का मिसयूज ऑफ पॉलीथीन इन हमारे जानवरों में, उन्होंने बल्कि एक दिन उन्होंने ऑपरेशन भी होता हुआ मथुरा वेटनरी कॉलेज में देखा कि इस तरह से पॉलीथीन जो है पशुओं के पेट में जाके उनको नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो स्टार्टअप का जो उनका नारा है, एक तरह से मैं तो कहूंगा कि उसने जो आह्वान किया है युवाओं को, और एक अच्छी बात यह है, आप देखोगे कि हमारे देश में बहुत सारे युवा जो IIT से डिग्री लेकर, IIM से डिग्री लेकर, वो डेयरी के व्यवसाय में आ गए हैं
1: जी।
2: क्योंकि डेयरी में इतनी ज्यादा संभावना है इसमें, और वैज्ञानिक, लेकिन आवश्यकता यह है कि वैज्ञानिक तरीके से डेयरी
1: वैज्ञानिक विधि से
2: करा जाए, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि, और इसका हमें फायदा उठाना चाहिए युवाओं को, हमारा जो प्रधानमंत्री जी की जो ये स्कीम है इसका फायदा पशुपालकों को उठाना चाहिए, और जो डेयरी में ज्यादा से ज्यादा युवा है इसका फायदा भी हमको उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल बंबल जी, आप इसके बारे में क्या बताएंगे और इस योजना के बारे में और क्या हमें जो है बता सकते हैं, क्या रहेंगे आपके विचार?
3: जैसे अभी हमने बात कर रहे थे, ये जो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 सितंबर को ये राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया था, जिसमें जहां 50% के नीचे जहां AI का कवरेज है, ऐसे 6-6 जिले जो है उनमें ये कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, जिसमें इन अच्छे नस्ल की जो जानवरों से, मतलब सांड से, इनका कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। उस 600 जिलों में जो है 100 विलेजेस जो है, एक हर जिले में 100 विलेज का चयन किया गया है, और उसमें 200 जानवर को ये ऐसे कवर किया जाएगा। तो ये जो उनकी जो न्यूनतम जो स्टैंडर्ड है, जो सांड का जो वीर्य का यूज किया गया है, वो एकदम अच्छे नस्ल का है, 3000 के ऊपर ये है देसी गाय का। तो इसके वजह से जो है किसानों को, जो उनके जो गाय और भैंस को जो AI किया जाएगा, वो अच्छे नस्ल से होगा, और ये उत्पादकता, उसके जो बच्चे नस्ल तैयार होगी वो अच्छे उत्पादकता की तैयार होगी। इसी के साथ साथ जो अभी पाठक जी बोल रहे थे, स्टार्टअप चैलेंजेस को जो किया गया है, वो लॉन्च किया गया है, जिसमें कुछ चैलेंजेस जो डेयरी सेक्टर में, पशुपालन में है, वो चिन्हित किए गए हैं। जैसे दूध प्लास्टिक के जो बैग्स है उसका यूज, उसका अल्टरनेटिव क्या है, और कुछ ये जो मिल्क अडल्ट्रेशन है उसमें जो चैलेंजेस है उनके लिए स्टार्टअप चैलेंज, ग्रैंड चैलेंज किया, अनाउंस किया गया है। ये ट्रेसिबिलिटी है, देन नस्ल ब्रीड जो इम्प्रूवमेंट, और जो चारा का जो है पोषण पोषण आहार है, इसके ऊपर भी चैलेंज ग्रैंड चैलेंज को चिन्हित किया गया है। ई कॉमर्स है, यू जो वाणिज्य है, तो ये जो हमारे छह पॉइंट जो चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए गए उसके ऊपर काम किया जाएगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर उमेश, आपके भी विचार जानना चाहेंगे कि डेयरी व्यवसाय को लेकर आपका क्या कहना है, किस तरह से जो है वो हमारे किसानों की आय को दोगुना करने में मददगार साबित हो सकता है, और साथ ही साथ युवा जो है वो इससे किस तरीके से जुड़ सकते हैं।
2: किसान भाइयों, हमारे युवक, आप डेयरी व्यवसाय को बहुत आराम से अपना सकते हैं। इसके अंतर्गत आप देखें कि 10, 12, 15 जो भी गाय आप अगर चयनित करते हैं और व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमेशा ही फायदा होगा, नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। आप इसके लिए हमारे सरकार की तरफ से नबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर ऑफ एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट नबार्ड, वो इसके लिए सहायता करता है। हमारे जो युवा वर्ग है वो इनसे संपर्क स्थापित कर सकता है, उनसे आपको लोन भी प्राप्त होता है, और इस व्यवसाय के लिए आप जो है आगे बढ़कर के जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो आप स्वतः रोजगार अपना पैदा कर सकते हैं। आपको निसंदेह मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा फायदा है। अभी हमारे डॉक्टर पाठक साहब कह रहे थे कि कुछ इंजीनियर हैं, कुछ आईएम, मेरे पास कुछ लोग खुद आए, बोले कि सर हम डेयरी पालन व्यवसाय करना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं, आप अच्छे नस्लों का और अपनी जानकारी दें। मुझे बहुत खुशी हुई कि वो लोग भी इसमें आ रहे हैं, लेकिन उनको करना क्या है, तीन चार चीजों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी इस व्यवसाय में आए तो सबसे पहले ये देखें कि आप बाजार क्या है, क्योंकि जब भी मार्केट के आसपास आप व्यवसाय करेंगे तो आपका दूध का उत्पादन जो होगा उसका उचित मूल्य मिलना बहुत जरूरी है
1: जी।
2: अगर अच्छा मूल्य नहीं मिला आपको तो आपका व्यवसाय फायदेमंद नहीं रहेगा। इसी के साथ आप केवल यहीं पे दूध के लिए ही नहीं पाल रहे हैं, आप वर्मी कंपोस्ट है, गोबर वर्मी कंपोस्ट भी उपयोग में आएगा, आप इसी के साथ घी बनाए, मट्ठा आपका अतिरिक्त बिकेगा, 20-22-25 रुपए आजकल मट्ठा बिक जा रहा है दूध की, तो आप ये देखें कि 1000 छोड़ दीजिए 2000-2500 में भी इस समय देसी घी मार्केट के अंदर बिक रहा है, अगर अच्छा घी है तो। तो इस तरह से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, उन सब के ऊपर आपको विचार करना होगा, इसी के साथ आपको इस व्यवसाय में आना पड़ेगा
1: जी।
2: और आप क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, दूध स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करें, आप उसमें भी देखेंगे 1-2 रुपया आपको ज्यादा ही पैसा मिलेगा।
1: बिल्कुल,
2: तो मिल्किंग मशीन हो, अच्छा आपका सेटअप हो, उसी के अंदर वो दूध चिलिंग में चला जाए, चिलर्स में चला जाए, आप इस तरह से अगर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करते हैं, मार्केट के अंदर देते हैं, तो 60-70-80 रुपए में भी इस समय देसी गाय के दूध मार्केट में बिक रहे हैं, आपको बहुत फायदा होगा और डबल इनकम होने में निसंदेह कोई भी कमी नहीं रह जाएगी, डबल इनकम जरूर होगा।
1: बिल्कुल संदीप जी, आपसे भी एक टिप्पणी लेना चाहेंगे इसके बारे में, आपके क्या विचार हैं, डेयरी व्यवसाय किस तरह से जो है वो किसानों की आय को दोगुना करने में मददगार?
4: देखिए, डेयरी व्यवसाय एक ऐसा है कि उसमें इंस्टेंट इनकम मिलता है, अनलाइक अदर क्रॉप जैसे राइस व्हीट, उसको ग्रो करने के बाद फिर बेचने के बाद ही उनको मिलता है, एक इंस्टेंट देता है। और आपको आंकड़ा बता दूं कि मिल्क जो वैल्यू ऑफ मिल्क है सबसे ज्यादा, वो वैल्यू ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इज मोर देन राइस व्हीट का प्रोडक्शन जितना होता है, तो मिल्क एक बहुत इंस्टेंट देता है और बहुत बड़ा बाजार है अभी, क्योंकि अभी भी लार्ज चंक ऑफ मार्केट अनऑर्गेनिक सेक्टर के पास है, दूध वाला के पास है। तो सेफ मिल्क, पैक्ड मिल्क, फ्रेश मिल्क सप्लाई करने के लिए जो बहुत सारे स्कीम्स है, नाबार्ड भी स्कीम चला रहे हैं, नाबार्ड का स्कीम से, तो यंगर जनरेशन बहुत आ रहा है। आप देखोगे बहुत सारे स्टार्टअप्स पेयर अप्स हो रहा है, एनसीआर दिल्ली में देखोगे बहुत सारे न्यू मिल्क स्टार्टअप्स आ चुका है, बट बाजार को देखना पड़ेगा एंड बाजार इज ग्रोइंग स्टेडिली। आप देखो ये बड़े बड़े कॉर्पोरेटिव देखिए, अमूल देखिए, उनका स्टेडिली दे आर ग्रोइंग बेसिकली, तो द बेस द एक्सपेंशन काफी तेज भी हो रहा है। और मैं जैसे पहले ही कहा कि मिल्क इंस्टेंट इनकम देता है, तो मिल्क डेयरी और वो एलाइड सेक्टर वो जो हेल्प करेगा फार्मर्स इनकम को डबल करने में, मैं बोलता हूँ।
0: जी हाँ किसान साथियों, अगर हम देखें तो पशुपालन में जो दूध उत्पादन का जो बाजार है वो काफी फलफूल रहा है, यह दिन प्रतिदिन ऊपर ही इसका जो ग्राफ है वो हमेशा बढ़ोतरी की ओर आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। तो किसान साथियों, आने वाले समय में भी हमें दूध का उत्पादन की करने की आवश्यकता है। तो किसान साथियों, जो भी किसान भाई जो दूध पालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को लेना चाहता है, साथ ही दूध पालन के इस व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहता है, वह इस व्यवसाय में आ सकता है, जैसे कि आज के इस कार्यक्रम में और हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद इसको बढ़ावा देते हुए कहा है कि हमारा जो पशु है, पशुधन को हमें संभाल के रखना चाहिए, इसकी हमें रखवाली करने की ज़रूरत है, साथ ही इसका हम बीमा करवा सकते हैं, इसका समय समय पर टीका लगवा सकते हैं, और जो पशुओं की पहले जो पशु को भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते थे उससे कहीं ना कहीं किसान भाई का काफ़ी नुकसान हो जाता था, लेकिन अभी पशुओं के टीके उपलब्ध हैं, पास में हमारे जो पशुओं के लिए चिकित्सा अवेलेबल है, तो किसान साथियों कहीं ना कहीं हमें काफ़ी फायदा होने वाला है। तो इसी के साथ किसान साथियों यहां पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो चांटिया भील 90.8 FM के साथ छावा की आवाज़। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि वह खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक नवीनतम जानकारियों को, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नवीनतम जानकारियों को आप तक पहुँचाए, जिसकी सहायता से हमारा जो किसान है वह अपनी आजीविका में सुधार ला सके, साथ ही नवीन खेती पद्धति से हमारा जो किसान है वह उन्नत खेती की पद्धतियों को सीखकर न केवल अपना बल्कि अपने पड़ोसी किसानों का, अपने पड़ोसी किसान भाइयों को भी इस खेती की नवीन पद्धति में सहयोग कर पाएगा। किसान साथियों अगर हम अभी समय की मांग को देखें तो कहीं ना कहीं आप सभी इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि आज का जो हमारा उपभोक्ता है वह कहीं ना कहीं जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि से उपजाए हुए उत्पादों को लेना पसंद कर रहा है। किसान साथियों बदलते इस पर्यावरण में हमें कहीं ना कहीं हमारी कृषि में भी बदलाव की आवश्यकता है, जहाँ पर हम देख रहे हैं अभी प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि कहीं ना कहीं उभर कर बाहर आई है, तो किसान साथियों यहाँ पर जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि करके अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
6: हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, हमारे जीवन में फलों का अहम स्थान है, क्योंकि ये न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि हमारे पोषण का भी ख्याल रखते हैं। इसके अलावा फलों के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है, लिहाजा जो किसान है उनकी आमदनी का भी ये अहम स्रोत है। ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस की, इसका क्या उद्देश्य है, फलों के उत्पादन में भारत की क्या स्थिति है, इसके साथ ही फल उत्पादन के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम विषयों पर आज हम विचर्चा करेंगे।
0: किसान साथियों चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नजर फलों से जुड़ी हुई इस रिपोर्ट पर।

0: साल 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनाया जाता है। फलों और सब्जियों की अहमियत को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत फल उत्पादन में नंबर 2 पर आता है। विश्व में चीन के बाद फल उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व के कुल फल उत्पादन का 12.8% उत्पादन भारत में ही होता है। साल 2019-20 में 102.1 मिलियन टन फलों का उत्पादन हुआ था। फलों के उत्पादन के महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि खाद्यान्न की तुलना में फलदार फसलों से प्रति इकाई क्षेत्र कहीं ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। पपीता, केला और अंगूर फल इसके उदाहरण है, जिनकी पैदावार परंपरागत फसलों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र के हिसाब से कई गुना ज्यादा मिलती है। सरकार भी फलों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए समय समय पर बागवानी फसलों को प्रोत्साहित और आर्थिक मदद देने के लिए योजनाएं भी चलाई जाती हैं। भारत की मिट्टी और जलवायु की विविधता भी सभी तरह के फलों की खेती के लिए अनुकूल है। फलों की खेती मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। फलदार पेड़ शुष्क कृषि क्षेत्रों, वर्षा आधारित क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानी, बंजर और पड़ती भूमि पर भी रोपे जा सकते हैं। हमारे देश में कई तरह के फल वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर करीब 28 फल वृक्षों की खेती ही प्रचलित है। विश्व परिदृश्य में आज पोषण सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है। ताजे फलों जैसे आम, पपीता, सेब, केला, अंगूर, अनार, लीची, अमरूद, मौसमी और सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, अंजीर और किशमिश की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए सरकार फल उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाने में लगी है। इसके लिए सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की है और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को इसमें शामिल किया है। इससे लोगों की पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। बता दें कि विश्व के प्रमुख फल उत्पादक देशों में चीन, भारत, ब्राजील, अमेरिका, मेक्सिको, स्पेन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इटली और टर्की शामिल है।
1: तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राधा मोहन शर्मा, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। और जैसा कि हमने देखा है इस रिपोर्ट में भी कि अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जाहिर तौर पे फलों का एक अहम स्थान हमारे जीवन में है। क्या उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का?
2: देखिए, अगर हम इसका जो इतिहास है, अगर हम उस पर जाएं तो जो सोशल व्यवहारिक यूनिवर्सिटी जो बर्लिन में थी, वहां से इसकी शुरुआत हुई। जो कुछ बच्चे थे जो सोशल साइंसेस की स्टडी कर रहे थे, सामाजिक विज्ञान की स्टडी कर रहे थे, और उनके दिमाग में एक बात ये आई कि हम सब लोग कुछ ऐसा काम करें जिसको हम मिलकर कर सकें और जो समाज के लिए भले की बात हो। तो उन्होंने एक शब्द सोचा, शेयरिंग मील, कि जो हम खाते हैं उसको हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। और धीमे धीमे वहीं से उस चीज का जन्म हुआ और 1 जुलाई 2007 से इसकी शुरुआत हुई, और जिसमें सबसे पहले 400 लोगों को फल या फल से जुड़े हुए उत्पादों को बांटा गया और उन्हें यह सिखाया गया कि भाई हम इनको अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में इसको एक त्योहार की तरह मनाएं। और सबसे खास बात इसमें यह है कि इस त्योहार को हर संप्रदाय के लोग बनाएं। अगर हम उसको फलों को खाने को अगर हम त्योहार की तरह मनाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरी जो इसके पीछे फिलॉसफी थी वो ये थी कि एक तो हम खाएं ताकि जो हमारा स्वास्थ्य है वो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। साथ ही साथ यूएनओ ने पिछले वर्ष 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी दिवस इसलिए मनाया क्योंकि हम लोगों को यह भी बताएं कि जो हमारा नुकसान होता है 20-25%, हम उसको भी रोकें। तो हम लोग इतने कॉशियस हों क्योंकि हमारे देश में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनमें 20-25% जो है उत्पाद जो औद्यानिक फसलों का है उसका नुकसान होता है। और वो नुकसान कहां होता है कि फल खेत से लेके और बाजार तक आने में, जबकि विदेशों में भी वही हाल है। जो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित कंट्री हैं, वहां भी होता है, लेकिन वहां पे रिटेलर से और कंज्यूमर के बीच में नुकसान होता है। तो ये दो पर्पज रहे कि एक तो हम अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए फलों को खाएं और उसको त्योहार के रूप में खाएं ताकि सब लोग उसको मनाएं, और दूसरा हम
1: किस तरह उनको लेकर के एक जागरूकता लोगों में आए, ये बेहद जरूरी है। एक तो जो बर्बादी है उसे रोकना मकसद है, दूसरा लोग इसको खाएं एक उत्सव की तरह ताकि जो इसका पोषण है वो लोगों को मिले, इस लिहाज से भी इसे मनाया जा रहा है। तो डॉक्टर विनोद, यही आपसे समझना चाहेंगे कि पोषण सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें, खासतौर पर भारत जैसे देश में अगर देखें तो फलों की क्या अहमियत है?
3: सबसे पहले हम किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप बागवानी या फलों वाली फसल लेने जाते हैं तो उसको उगाने से पहले जो हमारी परंपरागत तरीके से जो बागान लगाते हैं उसकी जगह आप आधुनिक तरीके से अपने बागान को लगाएं और कोशिश करें कि बागान लगाते समय उससे संबंधित सारी जानकारियां संबंधित संभाग से जरूर ले लें, क्योंकि आज की पीरियड में इतनी अच्छी हमारे पास वैरायटियां हैं, चाहे हमारे मैंगो की हो गई, सिट्रस में हो, लेमन में हो, पपाया में हो, हर एक उसमें हमारे पास अच्छी वैरायटियां हैं। तो मैं अपने सब किसान भाइयों से सबसे पहले यही कहूंगा कि अपना बागवानी में जाने से पहले अपना जो परंपरागत बागवानी कर रहे हैं वो अपनी आधुनिक बागवानी की तरफ अग्रसित हो।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा ये बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर सचिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किसानों की बात कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर विनोद, तो हमें बताएं कि जो बागवानी का क्षेत्र है हमारे किसानों के लिए ये कितना फायदेमंद साबित हो रहा है? हम देख रहे हैं कि खाद्यान्न फसलों के मुकाबले जो बागवानी के क्षेत्र में उत्पादन है वो काफी ज्यादा हो रहा है, ऐसे में किसानों के लिए आमदनी के लिहाज से ये क्षेत्र कितनी संभावनाओं भरा है?
4: बहुत मैडम, बागवानी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में संभावनाएं हैं। जैसे अभी हमारे साहब ने बताया, शर्मा साहब ने विश्व जो फल दिवस है उसकी उन्होंने जैसे जो महत्व वो बताया, और हमारा जो उत्पादन इस बार 100 मिलियन टन के ऊपर पहुंच गया है और कई फलों में हम नंबर वन है, लेकिन ओवरऑल हमारी जो नंबर है हमारा नंबर दो पे है। और किसान जितने बागवानी की तरफ जितने भी राज्यों में काफी बढ़ चढ़ कर बढ़े हैं, जैसे महाराष्ट्र से मैं आता हूं, मुझे पता है अनार जहां हमारा जो क्षेत्र था पहले 90,000 हेक्टर था तो अभी 3,00,000 हेक्टर तक पहुंच गया है, क्योंकि उसको अनार को डॉलर क्रॉप के हिसाब से भी जाना जाता है। और जो किसान जो जिसके पास 3 एकड़ या 5 एकड़ जो जमीन थी उसने आराम से उसमें अनार लगाया और काफी किसानों को काफी उससे पैसा भी पाया गया है। तो इसी तर्ज पर, अनार के तर्ज पर काफी किसान दूसरे जो फल के बागवानी फसल है वो भी लगा रहे हैं और इसमें काफी संभावना है।
1: जी जी बिल्कुल, डॉक्टर राधामोहन, जैसे कि आपने बताया हमें शुरुआत में ही कि ये जो फल हैं वो खाए तमाम लोग और इसके लिए एक दूसरे को बांटे, इस तरह से एक परंपरा की शुरुआत की गई है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के बहाने। चाहूंगी आप हमें बताएं कि किस तरह से पोषण सुरक्षा जो है इससे हमारी जुड़ी हुई है।
2: देखिए, फलों को हम प्रोटेक्टेड फूड भी कहते हैं
1: जी,
2: क्योंकि मैं एक अभी हाल ही में एक मेडिकल साइंस का एक डाटा आया जिसमें कहा गया है कि लगभग 25 से 26 लाख लोग जो विश्व में मरते हैं वो कम सब्जी और फल खाने से मरते हैं। अच्छा। जिनमें खास करके 31% शेयर उन मरीजों का है जो दिल के मरीज होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोषण के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है
1: जी।
2: कि कम फल और सब्जी खाने से लगभग 25 से 26 लाख लोगों की मृत्यु होती है पूरे विश्व में, और वो ज्यादातर दिल के मरीज होते हैं, उसमें कुछ कैंसर के भी बहुत सारे मरीज होते हैं। तो एक तो जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं उनमें इनका बहुत बड़ा रोल है फलों का। दूसरा ये है कि तीन बातें आती हैं, एक तो हम बीमार जब पड़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप मौसमी लीजिए, आप लाइम का जूस लीजिए ताकि आपकी रिकवरी तेज हो। दूसरी बात आती है कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो मेंटेन कैसे रहे
1: जी।
2: उसके लिए भी हमें अलग से फल खाने की आवश्यकता है। और तीसरा, जैसा कि कोविड के दौरान आपने देखा कि विटामिन सी की बहुत ज्यादा कमी रही और विटामिन सी काफी सहायक सिद्ध हुआ कोरोना रिकवरी में, तो हम जो है जो इम्यूनिटी को अपनी को कैसे बढ़ाएं, तो इन तीन तरह से फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी रिकवरी, हमारा मेंटेनेंस और हमारी इम्यूनिटी, इन तीनों चीजों के लिए फलों का सेवन बहुत आवश्यक है। और अलग अलग तरह के फल अलग अलग तरह के पोषक तत्व देते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि अगर खाद्य सुरक्षा के लिहाज से कि आपकी थाली में जो है जो 7-8 तरह के फल हैं उनमें कम से कम जो आधी एनर्जी आपकी दिन की हो वो सब्जी, फल और हरी सब्जियों से होनी चाहिए और ट्यूबर क्रॉप की होनी चाहिए। बाकी आप सीरियल लें, ऑयल सीड, जैव जो कुछ भी आप लेते हैं, नट्स लें, लेकिन आधी एनर्जी जो आदमी की दिन में जरूरत होती है, 2700-2800 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है एक आदमी को, तो उनका मानना है कम से कम 1200-1300 किलो कैलोरी ऊर्जा जो आपको मिले वो ऑर्गेनिक फसलों से मिले, फलों से मिले, सब्जियों से मिले।
1: बिल्कुल, यानी कि जब बीमार पड़ते हैं उस समय तो फल खाने की जरूरत होती है, लेकिन ये हमारी दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए हमारे स्वास्थ्य के लिए। और इसके लिए अलग अलग तरह के फलों के अलग अलग गुण होते हैं, अलग तरह के पोषण

0: लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा है कि कुछ किसान भाई हमारे जो बागवानी की ओर जब जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जहाँ हमारी बंजर भूमि है या ऊसर मिट्टी है या हमारी इस तरह की मिट्टी है कि जिसमें हम अपना फसल वाली फसलें नहीं ले सकते, उसके लिए वो बागवानी के लिए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा, यदि आप ऐसी खेत मिट्टी में भी आप बागवानी के लिए जाते हैं तो उसमें ये हमेशा ध्यान रखें कि आपकी मिट्टी और जो आपका खेत है वो पूरा समतल होना चाहिए, पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और उसके बाद अपनी मिट्टी की जांच कराने के बाद उसमें अधिक से अधिक मात्रा में कार्बनिक खादों का प्रयोग करें, क्योंकि जब आप अधिक से अधिक कार्बनिक खादों का प्रयोग करेंगे उचित जल निकास की व्यवस्था होगी, सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था होगी, तो आप जो है जो बंजर भूमि है या ऊसर भूमि है उसमें भी आप बागवानी लगा सकते हैं और अच्छी से अच्छी फसल ले सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर राधामोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा जो देश है उसकी जो टोपोग्राफी है उसमें तमाम तरह की स्थितियां हमें नजर आती है, पहाड़ी क्षेत्र भी है तो बंजर भूमि भी है तो रेगिस्तानी इलाका भी है और जो मैदानी इलाका है हरा भरा वो भी मौजूद है, तो क्या ये चीजें जो है वो एक तरह से हमारे लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां बनाती है कि फलों के जो उपलब्धता है हम देखते हैं कि वो बहुत ही तरह तरह की हमें मिल पाती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास जलवायु विविधता बहुत है। हमारे पास बहुत सारी सब्जियां तो ऐसी हैं कि पूरे साल मिल जाती हैं कि जब हमारे यहाँ खत्म हुआ तो पहाड़ों से आ जाता है। तो हमारे यहाँ खास करके तीन तरह के फल लगते हैं, एक तो वो फल जिन्हें बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करते हैं, बहुत ज्यादा सर्दी बर्दाश्त करते हैं और एक मॉडरेट टेम्परेचर में होते हैं, साल भर जिनके लिए आवश्यक है, वो ट्रॉपिकल फल होते हैं जिनमें हमारा समुद्र के किनारे का एरिया तमिलनाडु केरला कर्नाटक, तो ये हमारी ट्रॉपिकल क्लाइमेट हम जिसको कहते हैं। सेकेंड जो आता है सब ट्रॉपिकल, जिसमें हम लोग दिल्ली के आसपास का एरिया सेंट्रल इंडिया है, उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, जिसमें हमारा आम लीची नींबू फल अमरूद और बहुत सारे फलों की विविधता है, बेल बेर, तो हम उनका आनंद लेते हैं
1: जी।
2: और तीसरे प्रकार के जो फल हैं वो पहाड़ी फल होते हैं जिनको हम टेम्परेट फ्रूट्स कहते हैं, जैसे सेब नाशपाती आलूचा और आड़ू अखरोट बादाम पिस्ता, तो ये जो फल हैं वो पहाड़ी फल हैं। तो हमारे क्षेत्र में तीनों तरह के ही फल सफलतापूर्वक उगाए जाते हैं, ट्रॉपिकल भी सब ट्रॉपिकल भी और टेम्परेट भी, इसलिए हमारे यहाँ ज्यादातर समय जो वर्ष में हमारे यहाँ ताजे फल उपलब्ध रहते हैं किसी न किसी स्वरूप में।
1: बिल्कुल डॉक्टर सचिन, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जो फल हैं जैसे कि डॉक्टर राधामोहन ने भी हमें बताया कि हम खाना हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पोषण के लिए बेहद ही जरूरी है, तो जाहिर तौर पर बाकी जो तमाम तरह की खेती होती हम देखते हैं कि रसायनों का खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन फल चूंकि हम पोषण के लिए ही खा रहे हैं तो जाहिर तौर पर इसमें अगर रसायनों का इस्तेमाल न हो तो ही बेहतर है, तो जैविक खेती जो फलों की है वो किस पैमाने पर यहाँ पर की जा रही है, आपसे जानना चाहेंगे।
3: सही बताया मैडम आपने, जैसा ये अभी कुछ दिनों पहले जो रिपोर्ट आई है, हमारा जो चाय जो निर्यात होता है तो बहुत से कंट्रियों ने हमारा जो कंसाइनमेंट है रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कीटनाशकों के जो अवशेष है उसमें ज्यादा पाए गए हैं। तो सबसे पहले हम को अगर कीटनाशकों के अवशेष अगर कम करना है
1: जी।
3: फल पौधों में या अन्य पौधों में भी, तो आपको कई प्रकार के जैविक आपके पास टूल्स है तो उसका इस्तेमाल आपको करना जरूरी है। जैसे आपके पास बहुत से फफूंदनाशी जीवाणु है, फिर आपके पास फेरोमोन ट्रैप्स है जो किसान लगा सकता है। मॉनिटरिंग में कई बार ऐसे पाया गया कि किसान अन्य से लिए छिड़काव करते हैं जहां जरूरत भी नहीं होती क्योंकि कैलेंडर ऑफ उसको ऑपरेशन उसके पास दिया जाता है
1: जी।
3: तो उसको पहले निगरानी करनी चाहिए कि किट आया है कि नहीं, अगर किट आया है तो फिर उसकी जो मात्रा है वो उसकी जो आर्थिक स्थिति की दर होती है उससे कम है ज्यादा है। तो मैंने जैसे बताया कि येलो ट्रैप्स है, ब्लू ट्रैप्स है, येलो ट्रैप्स से वो सफेद मक्खियों को पकड़ सकते हैं, फिर फेरोमोन ट्रैप्स है उसमें आप कई ट्रैप्स है जिसमें 10 या फिर 20 या 50 तक प्रति एकड़ में आप हेक्टर में लगा सकते हो, तो उससे काफी उसका कीटनाशकों का आप उपयोग कम कर सकते हैं। और जैसा ही आपने बताया कि इसके अवशेष काफी बढ़ रहे हैं, तो हम जब भी फल लेते हैं तो जब भी उपभोक्ता फल खरीदता है मार्केट से तो सबसे पहले उसको पानी में अच्छे से भिगो के रखे आधा एक घंटा, फिर अगर आप उसको टैप वाटर से अच्छे धो लेते हो तो अच्छा 60-70% जो भी अवशेष है उसके ऊपर कीटनाशकों के वो कम हो जाते हैं। और सब्जियों के बारे में तो कुछ बताने नहीं क्योंकि हम इंडिया में हम अच्छे से कुक करते हैं तो कई प्रकार के जो कीटनाशकों के जो अवशेष होते हैं वो वहीं उसका ये हो जाता है, खत्म हो जाता है
1: जी। बिल्कुल, तो इन उपायों को जरूर किसानों को अपनाना चाहिए।

0: जब वो फलों की खेती कर रहे हैं। डॉक्टर विनोद, फलों की खेती अगर शुरू करना चाहे कोई किसान, बाग लगाने की सोचे, तो उसके लिए जो मिट्टी की तैयारी है उन्हें किस तरह से करनी चाहिए?
1: मैं सबसे अपने किसान भाइयों को, जैसे मैंने अभी बताया कि बागवानी करने से पहले अपने खेती की तैयारी करते समय सबसे पहले आपको पता ध्यान रखना है कि आप बागवानी जिस खेत में करने जा रहे हैं उसकी तैयारी करते समय उसकी मृदा जांच अवश्य करा लें।
0: जी,
1: मृदा जांच से क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा। और मैं आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि मृदा जांच के साथ साथ अपने जो पानी का सोर्स है, चाहे आपका ट्यूबवेल का सोर्स है, चाहे अदर कोई सोर्स है, जो पानी आप उस बागवानी में लगाएंगे उसकी भी साथ साथ जांच करा लें। होता क्या है कि आप बिना मिट्टी की जांच कराए, बिना पानी की जांच कराए आप सीधे बागवानी के लिए चले जाते हैं। तो हमारे कुछ बागवानी वाली ऐसी फसलें हैं कि जिसमें जैसे डिफरेंट पीएच मान है या उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, जिसमें कहते हैं हमको सोलूबल साल्ट्स, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव जो ज़्यादा होते हैं तो उसमें आपकी फसल जो है सर्वाइव नहीं कर पाती। आप कोई भी पेड़ लगाएंगे और वो पूरे खत्म हो जाते हैं। तो मैं अभी आप सभी से कहूंगा कि पहले मिट्टी की जांच कराएं, और मिट्टी की जांच कराने के बाद जब आपको पोषक तत्वों के बारे में पता लग जाए कि हमारे पोषक तत्वों का स्तर क्या है, उसकी मिट्टी की पीएच क्या है और उसकी सोलूबल साल्ट उसमें लवण कितना है, उसके आधार पर जब आप अपनी उस रिपोर्ट को जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे आप उन रिपोर्ट को एक बार चेक करा लें। चेक कराने के बाद वो सिफारिश करेंगे कि आपका इतना पीएच है तो आप इस फसल को, ये फलों वाली फसल को आप लगा सकते हैं, आपका इतना साल्ट है, इस साल्ट के साथ आप इस फसल को लगा सकते हैं। और मैं इसके साथ साथ कहूंगा जब आपको पीएच और ईसी पता लग जाए तो उसके बाद में आपको पोषक तत्वों की भी निगरानी करनी है और देखना है कि उस जांच कराई है मिट्टी की उसमें पोषक तत्वों का स्तर क्या है, पोषक स्तर के हिसाब से अपने पोषक तत्वों को जो डिफरेंट हमारे सोर्स है, जहां चाहे अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, डीएपी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, बहुत से हमारे पोषक तत्व म्यूरेटा पोटास है, उनके द्वारा आप जो उचित मात्रा में जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो उनको आप वहां डाल सकते हैं। पर लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि मिट्टी की जांच कराने से पहले आप मिट्टी के नमूने को अच्छी तरह से वहां से लेना चाहिए, कम से कम 1 एकड़ से 2 या 3 सैंपल लें। और लेने के बाद जब स्पेशली बागवानी के लिए जाते हैं तो मिट्टी की गहराई का अवश्य ध्यान रखें। जनरली किसान हमारे क्या करते हैं कि जो सरफेस सॉइल होती है 0 से 15 सेंटीमीटर की, उसका नमूना लेके बागवानी के लिए चले जाते हैं।
0: अच्छा।
1: पर मैं सभी किसान भाइयों से कहूंगा जब भी आप बागवानी के लिए जाते हैं तो कम से कम आप मिट्टी के 3 नमूने एक गड्ढे से जरूर लें, जिसकी गहराई 0 से 30 सेंटीमीटर होगी, 30 से 45 सेंटीमीटर, 45 से 60 सेंटीमीटर। और जब 60 सेंटीमीटर गहराई का 3 नमूने एक गड्ढे से बन जाएंगे उनकी जांच कराएं, उसके आधार पर जो तुम्हारा स्पेशलिस्ट
0: है। जांच करना बेहद जरूरी है अगर आप बागवानी के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं। आइए कुछ अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार फलों की जो खेती होती है उसके बारे में यहां पर जानकारी हासिल करें। डॉक्टर राधामोहन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे देश के, वहां पर किन किन तरह के जो फल हैं वो अधिकतर उगाए जाते हैं?
2: देखिए, वहां पे अगर मुख्य हम श्रेणी देखें तो 3 तरह के फल हैं। एक फ्रूट जिनको हम गुठली वाले फल कहते हैं, स्टोन फ्रूट कहते हैं, एक पॉम फ्रूट कहते हैं, और तीसरा नट्स होते हैं। तो जो गुठली वाले फल हैं उसमें पीच, प्लम, एप्रिकोट, चेरी, ये जो फल हैं वो उगाए जाते हैं। और इन फलों की खास बात यह है कि इनकी जो भंडारण क्षमता है वो बहुत कम होती है।
0: अच्छा।
2: जैसे प्लम है, खुबानी है, इनको बहुत जल्दी तोड़ के बाजार में बेचा जाता है।
0: जी, जी, जी।
2: और दूसरे तरह के फल होते हैं जिनको हम पॉम फल कहते हैं, जिसमें आपका नाशपाती है और सेब है, ये थोड़े से ऊंचाई वाले स्थानों पर होते हैं और इनमें काफी विविधता है। सेब की बहुत सारी 1000 वेरायटी हैं जो सेब की हम लगाते हैं। और नाशपाती की जहां तक बात है वो ये है कि नाशपाती की जो विविधता है वो बहुत ज्यादा, वो पहाड़ों से लेके और पंजाब और दिल्ली तक भी हम उसको कर सकते हैं, प्रजातियां उसकी अलग अलग है। साथ ही क्योंकि पहाड़ों पर क्या होता है कि ज्यादातर रोड जो होते हैं वो नाले या नदी के किनारे होते हैं, तो ऐसे क्षेत्र जहां पे ट्रांसपोर्ट का उतना अच्छा साधन नहीं है तो वहां पे हमें प्लम, खुबानी जैसे फलों को उगाने से बचना चाहिए क्योंकि वो उनकी भंडारण क्षमता बहुत कम है। तो ऐसे खेत या ऐसे बाग जो रोड से थोड़ी ज्यादा दूरी पे है, वहां पे हम अखरोट, बादाम या पिस्ता जैसी फसलों को हमें प्रमोट करना चाहिए, ताकि क्योंकि उनकी भंडारण क्षमता बहुत होती है, अगर वो अपने घर पे भी 10 दिन 15 दिन रख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और चौथी जो कैटेगरी आती है वो बेरीज की होती है, जिसमें आपका कीवी फ्रूट है और स्ट्रॉबेरी है। तो स्ट्रॉबेरी की भी भंडारण क्षमता बहुत कम होती है। कीवी फ्रूट जो कि आजकल हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है और उत्तर भारत के कुछ राज्य प्रदेश में भी उसकी खेती जो है व्यवसायिक स्तर पर शुरू हो गई है, तो उसकी भी अपार संभावनाएं हैं। तो ये जो है पहाड़ी फल हैं।
3: फलों से फलता फूलता भविष्य। जी हाँ किसान साथियों, अगर हम देखें तो फलों की खेती में भी अपार संभावनाएं हैं। जहां तक हम जानते हैं, हमारा जो झाबुआ का किसान है अधिकतर खाद्यान्न फसलों में ही अपना रुख किया हुआ है। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमें रुख करने की आवश्यकता है। अगर हमारा जो किसान है, कहीं कहीं पर हमारे जो किसान है वो फलों की खेती कर रहे हैं, बात करें तो पपीता है, अमरूद है, केला है आदि, जो बेर है आदि, जो फल है हमारे जो अपने झाबुआ क्या जो क्षेत्र है इसमें काफी अच्छे से फलते फूलते हैं, और भी कई फल हैं जो हमारे झाबुआ में फलते फूलते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमें आवश्यकता है, हमारे जो भाई है जो हमें केविकी के माध्यम से, जो भी किसान भाई है जो फलों की खेती करना चाहता है, वो केविकी के माध्यम से भी इन फसलों की खेती कर सकता है। यहाँ से वह प्रशिक्षण ले सकता है और फलों की खेती में अपना रुझान कर सकता है। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो 90.8 FM को।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आप लगातार फलों की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुन रहे थे। किसान साथियों, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और फलों की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: तो विनोद, बताएं कि ये जो फल हैं जिनके बारे में बताया डॉक्टर राधामोहन ने कि किस तरह से बेरीज हैं, गुठली वाले फल हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं, तो इनकी जब खेती करते हैं बागवान, तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए?
2: मैं अपने सभी किसान भाइयों को बताऊंगा कि जैसे मैं अभी बता रहा था कि मिट्टी की जाँच करा लेने के बाद आपको अच्छे उत्पादन के लिए जो आपके मुख्य पोषक तत्व हैं, उन मुख्य पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में और इंटीग्रेशन के साथ एकीकृत रूप से तुम्हारी जो कार्बनिक खाद है उनका प्रयोग करते हुए आप अच्छी गुणवत्ता का अच्छी फसल उत्पादन ले सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, उसके साथ यदि FBM डाल सकते हैं, गोबर की खाद के साथ साथ आप बर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट की जगह कंपोस्ट भी मिलता है, कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। पर लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि उर्वरता और गुणवत्ता वाला दोनों ही तरह के आपको फ्रूट चाहिए, तो उसके लिए आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्वों के बगैर फ्रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। और अधिकतर हमारे जो भारत देश में जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिकतर मृदाओं में कमी पाई जाती है, इसीलिए मिट्टी की जांच कराते समय ये अवश्य ध्यान रखें कि उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी एनालिसिस, उसका विश्लेषण अवश्य करा लें, जिसके आधार पर आप पोषक तत्वों को देंगे, क्योंकि हर पोषक तत्व का अपना पूरा रोल होता है। तो इसीलिए आप जांच के बाद उन पोषक जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी उचित मात्रा, संतुलित मात्रा आप उसमें प्रयोग करें, और जिससे अच्छी से अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट आपको मिले।
1: तो अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का ध्यान रखना भी बेहद ही जरूरी है। डॉक्टर सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र के फल हैं, इन्हें किस तरह के कीटों का प्रकोप जो है उसकी आशंका रहती है और किसानों को क्या उपाय अपनाने चाहिए?
3: जैसे सर ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में तीन प्रकार के जो फल होते हैं, इसमें मैडम सबसे ज्यादा जो चूसक कीट है ना, जैसे भी ठंडा थोड़ा कम हो जाता है या फिर उसमें चूसक कीट का काफी प्रकोप होता है, उसमें व्हाइट फ्लाई है, फिर उसमें माउ एफिड्स है और कुछ फ्रूट बोरर्स भी है मैडम उसमें। तो इसका प्रकोप कम करने के लिए सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि आर्थिक जो सीमा स्तर है, सभी जैसे भी फल है सब फलों में अलग अलग होती है सब कीट के लिए, तो अगर सबसे पहले निगरानी करें कि कीट है या नहीं, अगर कीट है तो उसकी जो आर्थिक स्थिति दर कम है या ज्यादा है, अगर ज्यादा है तभी छिड़काव करे या तो ना करे। और जब किसान मार्केट में जाता है तो हमारे जैसे भारत देश में कीटनाशक के जो अन्य प्रकार है उसके 309 प्रोडक्ट भारत देश में पाए जाते हैं, तो उसमें जैविक नियंत्रण के लिए सिर्फ किसानों के पास बहुत कम उत्पाद है, उसमें सिर्फ 15 ही उत्पाद है जो जैविक नियंत्रण के लिए उत्पाद वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 309 में से हर स्टेट में हर उत्पाद उनको मिलेगा या ना मिलेगा ये हम बता नहीं सकते। तो जब वो दुकान में जाए तो सबसे पहले इंटरनेशनल जो मल्टी नेशनल कंपनीज है उसका ही उत्पाद ले, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि जब किसान मार्केट में जाता है कोई कीटनाशक खरीदने के लिए तो 40% जो उत्पाद है वो डुप्लीकेट है। तो सबसे पहले फिर वो देखे कि वो रसीद ले, ज्यादातर दुकानदार रसीद देते नहीं है, किसान रसीद मांगता भी नहीं है, और जो उत्पाद उसने लिया है तो उसमें देखना चाहिए कि उसके पास कम से कम 2 साल होने चाहिए एक्सपायरी के। तो कई बार ये देखा गया है कि जो दवा लेता है मैक्सिमम वो एक्सपायर्ड हो चुकी होती है या फिर 2-3 महीने में एक्सपायरी होने वाली है, तो ये करे। फिर उसपे ऊपर एक लेबल आता है जो भी कीटनाशक का जो भी किसान खरीदता है, तो लेबल में जो मात्रा दी है उसी मात्रा में वो छिड़काव करना चाहिए। ज्यादातर ये देखा है कि अगर आपको 0.5 ml प्रति लीटर छिड़काव करना है तो किसान ज्यादातर 1 ml 2 ml भी प्रति लीटर छिड़काव कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से किसान को ही उसका नुकसान हो सकता है। जो कीट मैंने बताया जैसे फ्रूट बोरर का आपने मैंने पहले बताया, फ्रूट बोरर के लिए जैसे जो रोगग्रस्त फल है या कीटग्रस्त फल है जो भी गिर जाते हैं उनको उसको नष्ट कर दे, और फिर
1: इस तरह से जो कीट प्रबंधन है वो पर्वतीय इलाकों में किया जा सकते हैं। डॉक्टर राधामोहन, अब आपसे जानना चाहूंगी मैं कि वो इलाके जहां पर पानी की समस्या है, पानी की उपलब्धता कम है, तो वहां पर कई तरह की ऐसी फसलें हैं जिन्हें उगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्या फलों के कुछ ऐसे पौधे हैं, पेड़ हैं जो इन इलाकों में भी लगाए जा सकते हैं?
4: बिल्कुल, देखिए फल जो है फल की बहुत तरह की जो विविधता है फलों में, जो और जो अलग अलग कंडीशन में सफलतापूर्वक उत्पादन दे सकते हैं। जैसा आपने कहा कि कम पानी की दशा में हमारा जो शुष्क वन की जो है अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में, वो इसी पे काम करता है, क्योंकि कुछ ऐसे विशिष्ट फल हैं जहां पानी बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, वहां पे जिन फलों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए जिसमें बेर उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेर के साथ साथ जामुन है, करौंदा है, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं, कटहल है, जिन फसलों को हम जहां पानी की उपलब्धता कम हो वहां पे हमें इन फलों को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वो जमीन आप किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह की जमीनों को जो अंडर यूटिलाइज है, जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ है, उन जगहों का भी इस्तेमाल हम फल उत्पादन में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ये एक मुख्य विशेषता है फल उत्पादन की।
1: बिल्कुल, यानी कि जो किसान हैं जो बाकी फसलें यहां से नहीं ले सकते हैं, वो वहां पर फल उगाकर भी आमदनी कमा सकते हैं। डॉक्टर विनोद, लेकिन चुनौती वहां पर ज्यादा होती है किसानों के सामने, तो ऐसे में बताएं कि अगर किसी ने बेर, जामुन या करौंदा ऐसे पौधे लगाए हैं, तो उन्हें किस तरह से पौधों का ध्यान रखना चाहिए, वहां पर जो पोषक तत्व प्रबंधन है या सिंचाई की व्यवस्था है वो किस प्रकार करनी चाहिए किसानों को?
2: मैं जैसे अभी मैं बता रहा था कि जहां आपकी सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है और आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी अच्छी है, उसके बाद उस जो वहां की मिट्टी की दशा, वहां का जो जहां आप बाग लगा रहे हैं वहां की क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए फसलों का आप जो फलों वाली बागवानी के लिए जा रहे हैं तो उनका चयन करना चाहिए। उस चयन के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी फसल में पोषक तत्व ले रहे हैं वो पोषक तत्वों की मात्रा उसकी उम्र के हिसाब से, जो फसल जो प्लांट लगाया है उसकी एज के हिसाब से बढ़ा देना चाहिए। अधिकतर किसान क्या करते हैं, बागवानी के समय बाग लगाने के बाद एक बार खाद लगाने के बाद उस उतनी मात्रा में खाद दोबारा आगे लगाते हैं, पर लेकिन उससे अच्छी क्वालिटी का फल और अच्छी उपज नहीं प्राप्त होती। इसीलिए मैं हर किसान भाई को कहूंगा कि सबसे पहले आप जिस बागवानी के लिए जा रहे हैं, जिस फसल की बागवानी करने जा रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आप ले लें, क्योंकि जिस खेत की उर्वरा शक्ति अच्छी होगी तो उसमें उतना ही अच्छा उत्पादन मिलेगा
1: जी।
2: और उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए आपको कंपोस्ट, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर हैं, इनका एकीकृत प्रबंधन कर सकते हैं और उन्हीं के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी डाल सकते हैं।
1: जी जी, आइए आगे बढ़ते हैं। और अब डॉक्टर सचिन आपसे जानना चाहेंगे कि बारानी क्षेत्र जहां पर पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर जैसे कि बताया कि बेर, जामुन आदि जो फल हैं उनके पेड़ लगाए जा सकते हैं, यहां पर भी क्या कीटों से जुड़ी हुई समस्याएं आती है किसानों के सामने, किस तरह की चुनौतियां यहां पर होती हैं?
3: जैसे सर ने बताया बारानी जो क्षेत्र है, जैसे अरिड जोन की जो बातें कर रहे हैं हम, जहाँ जैसे बेर का फल है या कटहल है या अनार है, तो जहाँ पानी की मात्रा कम हो जाती है मैडम, वहाँ पे जो माइट्स है, माइट्स की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है, क्योंकि माइट ऐसी पेस्ट है जहाँ भी आप अगर पानी कम दिया जाए तो उसका प्रकोप जैसे अप्रैल मार्च मई में ज्यादातर आता है। तो किसान ये देखे कि अगर उसके पास पानी अगर बहुत कम है सिंचाई के लिए, तो रिक्वायर्ड जो भी पानी की जो मात्रा है वो टाइम टाइम पे देते रहे, और माइट के प्रकोप के लिए फिर उसके पास अन्य जैविक नियंत्रण की भी पद्धतियां हैं, तो उसका इस्तेमाल वो कर सकता है। जैसे हम कुछ कीटनाशक है, जैसे नीम पेस्टिसाइड है हमारे पास जो पेड़ों से निकाला गया है, तो नीम ऑयल है 300 ppm से लेकर आपको 30,000 ppm तक का उसका कॉन्सेंट्रेशन वाले जो उत्पाद है मार्केट से मिल जाते हैं, तो इसका छिड़काव वो कर सकते हैं। जैसे 2 ml प्रति लीटर अगर 300 ppm है तो उसका छिड़काव वो कर सकता है। अगर 3,000 ppm का अगर उसके पास उत्पाद है तो 1 ml प्रति लीटर का भी छिड़काव कर सकता है। इसके साथ साथ फिर उसके पास जैसे मार्केटिंग कैटरपिलर है जो शुष्क क्षेत्रों में ज्यादातर आती है, ये कीट जैसे है, ये रात में आके जो भी जो फल के पौधे है उसका जो रीण होता है उसको रीण को खाता है, तो उसका किसान लोग क्या करे कि इसका जो भी डैमेज ट्री है या डैमेज ब्रांचेस है उसका वहां से वो क्लीन कल्टीवेशन आराम से उसका करके उसको कंट्रोल कर सकता है।
1: जी जी बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं। फलों के उत्पादन के बारे में तो हमने जाना, लेकिन उत्पादन के साथ साथ हमने देखा कि विश्व में दूसरे नंबर पर है भारत, ऐसे में जाहिर तौर पर बहुत तरह के फल हैं जो निर्यात भी होते हैं। डॉक्टर राधामोहन, हमें बताएं कि भारत के वो कौन कौन से फल हैं जो वैश्विक बाजार में अच्छी खासी मांग रखते हैं?
4: देखिए, जितनी भी उद्यानिकी फसलें हैं फलों को मिला के, इनका जो है निर्यात में बहुत बड़ा रोल है। जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की हम बात करें 35 से 40 हजार करोड़ का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो अगर हम फलों की बात करें तो उसमें जो मुख्य फल जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं उनमें अंगूर बहुत आवश्यक है, आम, प्रसंस्कृत और ताजे फल दोनों ही रूप में वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है
1: जी।
4: और अनार जैसा कि हमारे मित्र ने बताया, अखरोट बहुत बड़ी मात्रा में होता है, अखरोट लगभग हम 23 कंट्रीज को हम यहाँ से निर्यात करते हैं, लगभग 200 करोड़ का बिजनेस हमारा अखरोट का है। और अब तो ये समस्या आ गई है कि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो घर की डिमांड है, वो इतनी बढ़ गई है कि हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए फ्रूट नहीं कई बार अवेलेबल होता। तो ये बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनकी अपार संभावना है एक्सपोर्ट की, जिसमें अपना लीची भी है, थोड़ा सा अमरूद भी है, और अब तो कुछ दिन पहले हमने सुना है कि थोड़ी सी मात्रा में स्ट्रॉबेरी भी, खास करके महाबलेश्वर एरिया से उन्होंने उसका जीआई रजिस्टर कराया और थोड़ी मात्रा में वो उसको भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी को भी। और इसके अलावा सेब है जो हमारा हालांकि एशियन कंट्रीज में ही जाता है
1: जी।
4: तो अखरोट और जो हमारा आम है और अंगूर, ये हमारे लगभग विश्व में कई कॉन्टिनेंट में हमारे यहाँ से इनका निर्यात किया जा रहा है और एक अच्छी खासी आय हमें इनके निर्यात से होती है।
1: बिल्कुल। तो ऐसे में डॉक्टर सचिन, आप किसानों को क्या सुझाव देना चाहेंगे जो कि इन फलों की खेती से जुड़े हुए हैं, आम, अंगूर है या अखरोट है, जिनकी अच्छी खासी जो निर्यात मांग है वो इस वक्त बनी हुई है, उन्हें अपने इस जो संभावना है उसे तलाशने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सुझाव देंगे आप उन्हें?
5: जैसे ही मैडम हमारा जैसे उत्पादन फल उद्यान का बढ़ रहा है निरंतर, जैसे उत्पादकता बढ़ती जा रही है, उत्पादन बढ़ते जा रहा है
1: जी।
5: तो मैं यही सुझाव दूंगा कि जैसे ही अगर उत्पादन बढ़ गया तो निर्यात बढ़ेगा तो उसमें फिर जैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे अवशेष है कीटनाशकों के, अगर अवशेष पाए गए तो उत्पादन बढ़ने से भी फिर हम निर्यात नहीं कर पाएंगे। तो मेरा किसानों से यही सुझाव है कि जब भी वो मार्केट से कीटनाशक खरीदते हैं तो ग्रीन लेवल पेस्टिसाइड जरूर खरीदे और जो संस्तुति की जो मात्रा है उसी मात्रा में हमेशा छिड़काव करें, अगर जरूरी है तभी छिड़काव करें। कई बार ऐसा होता है कि कीट नहीं भी है तभी किसान छिड़काव करते हैं, तो जरूरी नहीं हर बार हम छिड़काव करें, तो ये करने से आपकी उत्पादन की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी और कीटनाशकों के औषध जो कम हुए हैं उसके साथ साथ आप जब निर्यात करोगे तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी
1: जी। बिल्कुल। डॉक्टर विनोद, आपको सुझाव देना चाहेंगे किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए?
2: मैं आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आप अच्छे उत्पादन और गुणवत्ता युक्त फलों की यदि उपज लेना चाहते हैं तो यदि आप पानी लगा रहे हैं तो वो पानी की क्वालिटी जो मैं बता रहा था कि चेक करा लेना चाहिए, जांच के बाद लगाएंगे। क्या होता है कि जैसे अपना राजस्थान एरिया है, बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ छारी वाटर है, उस पानी को जिप्सम के साथ ट्रीट कर लें, संतुलित मात्रा में जो मिट्टी जांच के बाद जो आपके पोषक तत्वों की मात्रा की जरूरत है उतना उसमें दें, उसके साथ साथ अपने जो सूक्ष्म और मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी आपूर्ति कोशिश करें कि कार्बनिक खादों के द्वारा दें, चाहे बायो फर्टिलाइजर हो या आपका गोबरी खाद हो चाहे कंपोस्ट हो। इसके बावजूद भी आपका अच्छा फसल उत्पादन नहीं हो रहा है तो उसके सिम्टम्स आपके फल और पौधे दिखाना शुरू कर देता है कि कौन से पोषक तत्व की आपकी कमी है, तो उसको आप स्प्रे करके भी उस पोषक तत्व की कमी को पूरा कर सकते हैं
1: जी। जी बिल्कुल। तो बेहतर उत्पादन के लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाना बेहद जरूरी है। निर्यात की स्थिति के बारे में तो हमने बात कर ली। डॉक्टर राधामोहन, आप जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने आम के बारे में बताया, इसके ताजे फलों की मांग तो है ही लेकिन प्रसंस्कृत जो फल है इसके उसके भी मांग है, तो प्रसंस्करण का जो क्षेत्र है वो कितना व्यापक है फलों के मामले में, इसमें कितनी संभावनाएं हैं किसानों के लिए?
4: देखिए हमारे यहाँ जो प्रसंस्करण है वो बहुत कम है, 1-2% ही होता है
1: जी,
4: जिसको बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि सीजन पे हमारे यहाँ फल इतने सस्ते हो जाते हैं, चाहे वो सब्जी हो फल हो, कि किसान को उसकी उतनी अच्छी आय नहीं मिलती। जैसे हम आपको स्ट्रॉबेरी के उदाहरण देते हैं कि जब हम स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई करते हैं तो सारे फल उसमें बाजार में बेचने लायक नहीं होते, कुछ फल इतने छोटे होते हैं। तो हमारे किसान भाई जो स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जो छोटे फल हैं उनका वो पल्प प्रिजर्व करके रखें
1: जी।
4: पल्प प्रिजर्व क्योंकि डेली आप उससे जैम जेली चटनी नहीं बना सकते, आप दसियों बार तुड़ाई करते हैं अपने खेत से, तो जो ऐसे फल हैं जिनको बाजार में नहीं बेचा जा सकता, छोटे फल हैं या उनका कलर उनपे उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ, तो उसका आप पल्प पूरा फल ही आप प्रिजर्व कर सकते हैं और जब आपके पास पर्याप्त मात्रा हो जाए तो फिर आप उससे कोई भी उत्पाद जो आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि कि स्ट्रॉबेरी के बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो प्रसंस्करण है उसकी अपार संभावनाएं हैं, हालांकि उसके लिए अच्छी प्रजातियों की भी आवश्यकता है, क्योंकि हर प्रजाति को का प्रसंस्करण नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको उदाहरण एक दूं आम का, कि आम में एक प्रजाति है तोतापरी, जो खास करके जो उसका पल्प होता है उसके प्रिजर्वेशन के लिए बहुतायत तरीके से इस्तेमाल उसको करते हैं। तो सारी प्रजातियों का हम उस तरह से उनको प्रिजर्व नहीं कर सकते या परिरक्षित नहीं कर सकते, तो अपार संभावनाएं हैं अगर हम सही तरीके से उनका कुछ प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं और बनाते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो निश्चय ही हमारी इनकम जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है किसान की आय दोगुनी करने का, उसमें ये निश्चय ही एक मील का पत्थर साबित होगा।
1: बिल्कुल, यानी कि आप अगर प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं, मूल्यवर्धन करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपको उस फल के कौन सी जो प्रजाति है उसका चुनाव करना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। बहरहाल, आम की जैसा कि उदाहरण के तौर पर लिया डॉक्टर राधा मोहन ने, मैं जानना चाहूंगी कि आम फलों का राजा भी कहलाता है और इसकी अच्छी खासी मांग घरेलू बाजार में तो है ही और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ रही है। डॉक्टर विनोद, हमें ये बताएं कि जो आम के किसान हैं उन्हें पोषक तत्व प्रबंधन को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर कोई कमी रह जाती है तो किस तरह के रोग या किस तरह की समस्या आ सकती है आम में खासतौर पर।
2: मैं जैसे अभी बता रहा था आपको कि जब किसान की जो भी समस्या है वो समस्या से संबंधित जानकारियां हमारे सभी संभाग, जितने भी उद्यान संभाग हैं, वहां सब मिलता है आपको, पर लेकिन कुछ जानकारियां किसानों के पास स्वतः ही होती हैं। जैसे कि आपको, जैसे मैं अभी बता रहा था कि खेत की उर्वरा शक्ति जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा उत्पादन मिलेगा। उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए मैंने बताया था कि आप गोबरी खाद, पर लेकिन आप गोबरी खाद इतनी मात्रा में आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो जिस पीरियड में आपके बगीचे में फल नहीं है, फल वाला जो पीरियड नहीं है, उस पीरियड में आप दलहनी फसलें लगा सकते हैं, और जो डोरमेंसी पीरियड में जितनी पत्तियां जमीन पर गिरती है उसको भी खेत में उसको दवा देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अधिकतर किसान करते हैं, पत्तियां गिरती हैं और बाहर निकाल देते हैं, वो अपने किसी दूसरे यूज में ले लेते हैं, पर लेकिन पत्तियों को भी उसी में डालना है, दलहनी फसल लगा के उसका अवशेष है उसको भी उसी में दबाना है। और सबसे मेन चीज जो है, नमी जब आपका फ्रूटिंग स्टेज चल रही हो, जब फल बनने जा रहा हो और पकने तक, उसकी नमी का हमेशा ध्यान रखें, उस देखते रहें कि हमारे प्लांटों के नीचे नमी की कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि वो नमी ही एक कारण ऐसा है कि जो पोषक तत्व जमीन से होते हैं वो उस नमी के द्वारा ही आपके पेड़ों को मिलते हैं। तो मैं सब किसान भाइयों से फिर आग्रह करूँगा कि आप बागान में जब फसल आती है तो उस जो फ्रूट आते हैं तो फ्रूट की देखभाल एक बच्चे की तरह करें, कि उसको कब पानी की जरूरत है, कब उसको खाद की जरूरत है, कोई कीड़ा बीमारी तो नहीं लगी हुई है, या कौन यदि हमारे पोषक तत्व की किसी की कमी है तो उसका कौन सा लक्षण आ रहा है, उस लक्षण के हिसाब से उसमें फर्टिलाइजर और पोषक तत्व दे देना चाहिए, जिससे आपको अच्छी गुणवत्ता अच्छी उत्पादन आपको मिलेगा।
1: जी बिल्कुल, और जानना चाहेंगे डॉक्टर सचिन, अगर आप हमें बता सके कि कई बार हम देखते हैं कि जो फलों के किसान हैं वो फलों को पकाने के लिए किसी न किसी रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, ये कितना उचित है, या फिर किस तरीके से पकाया जाए कि सेहत को नुकसान ना पहुंचे, क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए?
5: मैडम, जैसे साउथ इंडिया में जहां आम पहले निकलता है तो उसको पहले पका के डायरेक्ट दिल्ली भेजना होता है
1: जी।
5: तो मैं जैसे मेरे फैमिली के, मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ कि मैं जैसे ही मई या जून ना ही आए तब तक मैं आम खाता नहीं हूँ, तो ये बहुत खराब पद्धति है जो आर्टिफिशियली आम को पकाया जाता है, और ये पाया गया है कि इससे कैंसर भी होता है
1: जी।
5: तो जैसे 85% मैच्योरिटी पे जैसे आम या अन्य फल तोड़े जाते हैं, है ना, कई फल होते हैं जो आम पेड़ों पे पकते हैं, कई फल तोड़ने के बाद पकते हैं, जैसे मैंने अनार बताया था, अनार एक्चुअली जब पकता है तभी तोड़ा जाता है, आम आप जब कच्चा होता है तभी आप तोड़ के पकाते हो। तो जैसे जैसे फल है वैसे ऐसी पद्धतियां अनेक है, लेकिन जो केमिकल या रसायन का जो प्रयोग किया जाता है वो किसान ना करे, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है और उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छा नहीं है।
0: जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर अधिक उत्पादन और अधिक निर्यात की आशा से हम अधिकतर किसान भाई यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रासायनिकों का प्रयोग करते हैं, ताकि फलों में चमक रहे, फल हमारी जो उपज है वो अच्छी रहे, फल अच्छे रहें, तो कहीं ना कहीं यह हमारी भूमि को भी प्रभावित करता है और साथ ही हमारे जो मानव का स्वास्थ्य है इस पर काफी बुरे दुष्परिणाम आते हैं। तो किसान साथियों, हम कोशिश करें कि जितना हो सके हम रासायनिकों का कम प्रयोग करें और प्राकृतिक द्वारा इसे पकने दें। तो किसान साथियों, इससे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, परंतु यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंडियाबिल 90.8 एफएम के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टंडियाबिल रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भिलनो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम।
1: खेती और बागवानी से जुड़े किसानों के लिए यहाँ पर कई बातें हमने की है। डॉक्टर राधा मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है खास तौर पर बागवानी से जुड़े किसानों के लिए।
4: देखिए, 2003-04 से लगभग जो है बागवानी मिशन की शुरुआत हुई थी
1: जी।
4: और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि 2011-12 के अंत तक हमें अपने जो औद्यानिक की फसलें हैं उनको उनका उत्पादन डबल करना है। अब उत्पादन डबल करने के दो ही तरीके हैं कि या तो जो हमारे ऑर्चर्ड हैं, जो बाग हैं, उनकी उत्पादकता को हम बढ़ाएं, उसमें खाद डालें, उनकी कटाई छटाई ठीक करें, उनमें पानी ठीक तरह डालें। दूसरा, जो नए बाग हम लगाएं वो अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों के लगाएं। तो इस योजना में बहुत सारे चीजें इसमें रखी गई थी। अब बाद में उसको कृषि मंत्रालय में मर्ज कर दिया गया है उस स्कीम को, और अभी भी जो स्टेट डिपार्टमेंट जो हमारे काम कर रहे हैं वो हमारे जो भी किसान भाई अपने जिला उद्यान अधिकारी के पास जाके उनसे पता कर सकते हैं कि जैसे ड्रिप इरीगेशन के ऊपर भी सरकार कुछ उनको सब्सिडी दे रही है, पौधे आप खरीदते हैं उस पर भी सरकार कुछ देती है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि जब आप अच्छी गुणवत्ता वाला पौधा सही तरीके से लगाएंगे तो उसके लिए हम अपने किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि आप अपने जिला उद्यान अधिकारी के पास अवश्य जाएं और उनसे पूछें कि भाई किन किन तरह से वो जो है डिपार्टमेंट जो है उद्यान की विभाग है वो हमारी सहायता कर सकता है, कहां कहां हमें हेल्प कर सकता है। नर्सरी पे भी दे रहे हैं, स्टोरेज बनाने पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो भारत सरकार द्वारा दी जा रही है।
1: बिल्कुल, योजनाओं का लक्ष्य यही है जो किसान है वो बागवानी से जुड़े और जो उत्पाद, जो कृषि उत्पाद मिले वो गुणवत्ता युक्त हो। कीटों की वजह से गुणवत्ता को काफी असर पड़ जाता है। डॉक्टर सचिन, ऐसे में जानना चाहेंगे आपसे कि किसान कई बार कीटों से छुटकारा पाने के लिए कई कई बार छिड़काव करते हैं, तो ऐसा न करना पड़े इसके लिए क्या कर सकते हैं किसान?
5: मैडम, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ अनार का। जैसे अनार में पहले, जैसे अनार 6 महीने का क्रॉप है, जैसे जब से फूल निकलता है तब तुड़ाई तक, तो सब पहले 45 स्प्रे किसान करते थे, 45 स्प्रे, तो कई प्रकार के हार्मोन्स उसमें, फिर फफूंद नाशी है, जीवाणु नाशी है, फिर कीट नाशी है, तो इस पे फिर उस अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर ने उन्होंने रिसर्च करके वो 45 स्प्रे 15 तक रिड्यूस किया। तो जो किसान 45 स्प्रे कर रहा है उसको भी उतना ही उत्पादन मिल रहा था, जो 15 कर रहा था उसको भी उतना उत्पादन उतना ही मिल रहा था। तो किसान जो भी, जैसे कोई आम का किसान हो या कोई अनार का किसान हो या कोई सेब का किसान हो, तो जो आसपास जो कृषि विश्वविद्यालय है या फिर किसान कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से वो चर्चा करके या वहां से उनके जो भी टेक्निक्स है वो जानकारी लेके पता कर सकता है कि कब हमको छिड़काव करना चाहिए। और मैंने पहले जैसे बताया था आपको कि छिड़काव जस्ट कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन में अगर आपको छिड़काव करना है तो आप कई बार छिड़काव कर सकते हो, लेकिन कीट है तभी आपको छिड़काव करना चाहिए
1: जी।
5: और जैसे पहले मैंने बताया कि ग्रीन लेवल पेस्टिसाइड हमेशा यूज कीजिए, जैसे बहुत जैविक कीटनाशी बाजार में उपलब्ध है, जैसे मेटारेजियम ब्यूवेरिया है, ये फफूंद नाशी है, फफूंद है और कीटों को भी मारते हैं। ट्राइकोडर्मा नाम की एक फफूंद है, जो कई प्रकार के जो फफूंद है जैसे जड़ों में जो रोग आते हैं पौधों में तो उसको भी मारते हैं। तो उसके साथ साथ हमारे पास कीटों को मारने के लिए जीवाणु नाशी वायरसेस है, जैसे एनपीवी है, फिर बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिएंसिस है, और कई प्रकार के हमारे पास जो पेड़ों से लिए गए जो कीटनाशी है जैसे नीम है, करंजीन है, तो इसका भी इस्तेमाल अगर किसान करेगा तो उसकी उपज भी कम होगी, उपज की जो आय होती है उसमें भी कम होगी, और जो अन्यथा जो हमारा जो उत्पाद आता है वो उत्पादन में भी जो कीटनाशकों के अवशेष है वो भी कम होते जाएंगे
1: जी। बिल्कुल, आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर विनोद, अब आपसे जानना चाहेंगे, आपने हमें बताया कि किस तरह से अगर पोषक तत्वों की कमी रह जाए तो कई तरह की समस्याएं, कई तरह के रोग लग सकते हैं। ऐसे में एक किसान किस तरह से ये जाने, किस तरह से उन लक्षणों को पहचाने कि वो ये जान पाए कि पोषक तत्व की कमी हो रही है?
2: हाँ, ये बहुत आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैसे मैं अभी बोला था कि आप स्प्रे करके भी जो लक्षण आ रहे हैं उसकी कमी के लक्षणों को देखते हुए स्प्रे कर सकते हैं
1: जी।
2: तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन है, यदि आपके पौधों में नाइट्रोजन की कमी है तो उसके जो पत्ते हैं जो स्पेशली कुछ नई पत्तियां होती हैं, कुछ पुरानी पत्तियां होती हैं, जो पुरानी पत्तियां बीच में जो पत्तियां होंगी वो पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी
1: जी।
2: पर लेकिन वहीं नई पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाए तो वो आपकी सल्फर की कमी के लक्षण होते हैं। तो ये किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के द्वारा पुरानी पत्तियां और सल्फर की कमी के लक्षण के कारण नई पत्तियां पीली पड़ती हैं। अब फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस से क्या है कि जो पत्तियों का आकार है वो सिकुड़ जाता है, वो पूरी वृद्धि नहीं होती, और सबसे बड़ा जो पत्तियों का आकार जो है कुरूप टाइप का, जो नॉर्मल साइज होना चाहिए पत्तियों का वो हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। उसके अलावा भी यदि फास्फोरस की डेफिशिएंसी है तो पत्तों की पत्तियां कुछ बैंगनी और इस तरह कलर की हो जाती हैं, जैसे अमरूद है, अमरूद में बैंगनी और इस तरह की कलर की पत्तियां हो जाती हैं, तो समझ लेना चाहिए फास्फोरस की डेफिशिएंसी है। यदि पोटास की बात करते हैं तो पोटास की वजह से पत्तियां जलने लगेंगी, जो कि उसके किनारे वो जलने लगेंगे, और पत्तियों की टहनियां वो जो टिप्स होती है, टहनियों के टिप्स होते हैं वो सूखने लगी, तो ये आपको समझ जाना चाहिए पोटास की कमी है। ऐसे ही जिंक है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, इन सब के अपने लक्षण हैं। जैसे मैग्नीज की कमी है तो पत्तियां का जो सिकुड़ने के साथ साथ गुच्छे टाइप में बन जाएंगे, तो समझ लेना कि ये मैग्नीज डेफिशिएंसी है। आयरन होगा, आयरन की कहीं डेफिशिएंसी होगी और उसकी कमी कहीं जो पत्तों पर नजर आएगी तो पूरी पत्ती पीली तो होगी पर लेकिन उसकी जो सिराएं, जो भीतर जो सिराएं होती हैं वो हरी होंगी, जबकि नाइट्रोजन फास्फोरस में।
0: किसान साथियों, ये कुछ लक्षण है जिसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि हमारी जो फसल है, हमारे जो पौधे हैं, उसमें कौन सी बीमारी आ चुकी है। तो किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया बिल 90.8 FM के साथ चौवा की आवाज।
6: जिंदगी मिलके बिताएंगे, खाले दिल गाके सुनाएंगे।
7: गीत संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को। एक नए टैलेंट के साथ, एक नए सिंगर के साथ, एक नए गीतकार के साथ, एक नए संगीतकार के साथ, एक नए गायक के साथ हम हाजिर हैं आज के कलाकार प्रोग्राम में। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो कलाकार हमारे साथ हैं वो हैं सूर्यकांत दर्जी जी। बाकी की बातचीत हम सूर्यकांत जी से ही करेंगे, उनसे जानेंगे उनके बारे में, उनकी बातें उन्हीं के जबानी। सूर्यकांत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू अवर प्रोग्राम।
8: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके रेडियो स्टेशन पर गाने के लिए मौका देने के लिए, और सभी श्रोताओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
7: बहुत बढ़िया भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सुनने वालों के लिए, सभी के लिए अपना छोटा सा परिचय दें जिसे हम आपको जान सकें। यूं तो मैं आपके बारे में बता सकता हूं, लेकिन आपके खुद के जबान से, आपकी खुद की आवाज में हम जब सुनेंगे तो मजा कुछ और ही होगा।
8: जी, अपने परिचय में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में टीचर थे, तो मेरा जन्म भी वैसी जगह पर हुआ कि जहाँ पर बहुत छोटा गांव था, क्योंकि उनका जहाँ जहाँ पोस्टिंग होते रहता था उनको वहाँ वहाँ जाना पड़ता था। तो उसके बाद दो चार गांव में मैं रहा हूं, जहां जहां दो साल, चार साल, पांच साल, जहां जहां पिताजी ने सर्विस किया होगा। तो मुझे मतलब जब से याद कुछ आता है, तब हमारा वो तहसील का गांव था, वहां पर पिताजी का पोस्टिंग हुआ था। मेरी उम्र वहां तब कुछ 6 साल की रही होगी
7: जी।
8: तो बचपन से ही, उन जमाने में तो रेडियो के अलावा कुछ नहीं था, तो रेडियो में ही गाने सुनने मिलते थे। वो रेडियो भी हमारे घर में नहीं था, अड़ोस पड़ोस में कहीं रेडियो बजती थी और गाने सुनते थे। तो तब से कुछ गाने के प्रति लगाव या संगीत के प्रति लगाव कहिएगा उसे, तो वैसे कुछ संगीत से जुड़ाव हुआ हमारा। फिर गुनगुनाना शुरू हुआ। पढ़ाई में मैं कुछ उतना खास नहीं कर पाया हूँ, मैंने कोई कॉलेज की शिक्षा नहीं ली है। फिर अपना छोटा सा बिजनेस अभी चला रहा हूँ मैं
7: जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी बात। तो दोस्तों, आपने सुना सूर्यकांत जी के बारे में, तो शुरू करते हैं सूर्यकांत जी के गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत प्यारी गायकी, बेहद खूबसूरत गीत। चलिए सूर्यकांत जी, वैसे तो आपने अपने बचपन के बारे में हमें बताया, फिर भी बचपन की कोई प्यारी सी याद के बारे में हमें बताइए। अगर आपकी कोई प्यारी सी याद हो बचपन में, छोटे होते हैं, क्यूट होते हैं, मासूम होते हैं, वैसी कोई याद।
1: जी यादें तो वैसे और भी होंगी, मगर मैं एक आज आपको संगीत से जुड़ी याद के बारे में बताना चाहूंगा।
0: जी,
1: कि जब उन जिस साल हमारे पार्श्व गायक आदरणीय मुकेश जी का डेथ हो गया था
0: जी,
1: तो हमारे वहाँ वो तहसील के गांव में उनकी याद में, उनके जाने के बाद उनकी याद में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, ओपन फॉर ऑल था
0: जी।
1: तो उसमें जूनियर डिपार्टमेंट एंड सीनियर डिपार्टमेंट दो हिस्सों में बटा था वो कार्यक्रम, कंपटीशन था। तो उससे पहले मैंने कभी ऑडियंस के सामने गाया नहीं था, तो वो कार्यक्रम में मैंने हिस्सा लिया था बहुत छोटी उम्र में, और मैंने फर्स्ट टाइम माइक के ऊपर गाया था। तो वो मेरे लिए एक सुनहरी याद है कि मैंने फर्स्ट टाइम पब्लिक के सामने माइक में गाया हुआ वो कार्यक्रम में था। तो वो मैं आज, उसके बाद तो कई बार ऐसा मौका मिला है मुझे, बट वो मेरे लिए पहला मौका था तो मुझे बराबर से याद है। एक अच्छी याद या सुनहरी याद कहिएगा, तो ये मैं उसको याद करता हूँ आज भी।
0: बहुत प्यारी बात, बेहद खूब, बेहद खूब। जाहिर सी बात है, इस तरीके के मौके जब हमें पहली बार मिलते हैं तो वो कभी हमारे जहन से जाते नहीं हैं, और वो हमेशा हम अपने जहन में संजो के रखते हैं, क्योंकि जैसे ही हम उस याद के बारे में सोचते हैं हम वहीं पहुंच जाते हैं, वही माहौल, वही स्टेज की गर्माहट, वही एक्साइटमेंट, अमेजिंग। दोस्तों चलिए सुनते हैं सूर्यकांत भाई की आवाज में एक और प्यारा सा गीत।

0: सूर्यकांत भाई, बहुत बढ़िया गीत। आगे बढ़ते हुए, आपका सबसे पसंदीदा गायक कौन है और क्यों?
1: वैसे तो मेरे सबसे पसंदीदा गायक एक नहीं दो तीन हैं
0: जी,
1: पर फिर भी मैं जिनके गानों को ज्यादा गाता हूं वो आदरणीय किशोरदा है
0: जी।
1: वैसे मैं मन्नाडे साहब या महेंद्र कपूर साहब या रफी साहब, सबको मैं पसंद करता हूं
0: जी, लेकिन सबसे

0: पसंदीदा गायक आपके किशोर कुमार साहब हैं
1: जी, आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं उनके गाने ज्यादा गाता हूं।
0: जी बहुत बढ़िया। तो आइए दोस्तों एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं सूर्यकांत जी की आवाज में ही।
2: और भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए, अरे ऐसा झटका

गया हाय हाय हाय कहाँ जान फसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, हाँ हाँ कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया।

0: सूर्यकांत भाई, बचपन में जब आप पढ़ रहे थे, कॉलेज में थे या स्कूल में थे, तो क्या आपको आपके किसी फेवरेट टीचर की याद है? कौन थे आपके फेवरेट टीचर और क्यों?
1: जी, फेवरेट टीचर तो मेरे एक थे कि जो मुझे बहुत ही मोटिवेट करते थे, मुझे बहुत ही सपोर्ट करते थे। और उन दिनों एक बात खास थी कि मैं ड्राइंग बहुत अच्छा करता था, तो मेरे सब्जेक्ट के टीचर वो थे, तो उनकी भी ऐसी इच्छा थी कि मुझे तू इसी लाइन में कुछ आगे अपना करियर बनाए। तो मुझे सलाह मशवरा मेरा होता रहता था, मुझे कुछ अच्छी अच्छी बातें भी सिखाते थे, अच्छी अच्छी टिप्स भी देते थे, मेरा ड्राइंग कैसे अच्छा हो सकता है उसके बारे में कुछ मुझे ज्यादा दिलचस्पी मेरे अंदर ले करके मैं उनका फेवरेट भी था और मेरे तो फेवरेट वो है।
0: बहुत खूब। आपको उनका नाम याद है?
1: जी जी बिल्कुल याद है, हेमराज सर।
0: बहुत बढ़िया। तो चलिए अगला गीत आपकी आवाज में उन्हीं को डेडिकेट करते हैं।

0: सूर्यकांत भाई, आपकी हॉबीज क्या हैं? थोड़ा सा उनके बारे में बताइए।
1: जी, मेरी हॉबीज तो ड्राइंग,
0: क्रिकेट, जी
1: क्रिकेट खेलना भी, देखना
0: अच्छा।
1: तो खैर बाद में, जब से खेलना छूट गया तब से देखना शुरू हुआ, बट खेलना भी, और सिंगिंग सबसे ज्यादा, जिसको मैं कुछ हद तक कर भी पाया हूं।
0: जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो दोस्तों, आपने सुना सूर्यकांत जी की हॉबीज क्या क्या हैं। चलिए एक गीत भी सुनते हैं, प्यारा सा, सूर्यकांत जी की आवाज में।

0: सूर्यकांत भाई, आगे बढ़ते हुए मुझे बताइए ना, और हमारे सुनने वालों को बताइए कि आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गौरवपूर्ण, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा हो, ऐसी उपलब्धि कुछ क्या रही, या अकॉम्प्लिशमेंट कह लीजिए, या आपने कुछ पाया हो ऐसा कुछ?
1: जी, मैंने कुछ ऐसा ज्यादा कुछ बहुत कुछ जिसको अचीवमेंट कह सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी तो ना तो कोई डिग्री हासिल की है, ना कोई ऐसा कार्य किया है। बट मुझे एक बार ऐसा मौका मिला था, ये जो हमारे गांव में, मैं वैसे नॉर्थ गुजरात में वडनगर, जो अभी आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी का गांव
0: जी
1: है, इसलिए वो ऐसे इतना फेमस हो गया है। बट ये हमारा गांव वैसे पहले भी बहुत फेमस था, क्योंकि संगीत के फील्ड में ताना रीरी का नाम तो सबने सुना है
0: जी।
1: वो ताना रीरी का शहर है मेरा गांव जो है वो। तो वहां पर ताना रीरी महोत्सव होता है, हर साल होता है, बरसों से होता है। तो वो ताना रीरी महोत्सव के अंतर्गत एक बार मैं तब की बात बताऊं, जब मैं बिल्कुल यंग एज में था, तब मैं जयपुर घराना के पंडित बालकृष्ण जी के बेटे आदरणीय शरद नायक जी के पास में जाकर के हारमोनियम सीखने की कोशिश किया हुआ हूँ। तो वो कुछ वैसे मैं हारमोनियम बहुत अच्छे बजा तो नहीं सकता था, बजाना फिर मैं सीख भी नहीं पाया, क्योंकि छूट गया, माइग्रेट हो गए यहाँ पर हम। बट उन दिनों में एक बार ये ताना रीरी संगीत महोत्सव के अंतर्गत हमारे यहाँ, वहां पर आप देखें तो जब ताना रीरी महोत्सव होता है तो जो पंडित आप उनको हम आप अपने कोई समारोह में आमंत्रित करेंगे तो वो आएंगे, उसकी गारंटी नहीं है। बट वो वहां पर हर साल बड़े बड़े पंडित, हिंदुस्तान के कोई पंडित ऐसे नहीं है जो वहां पर जाके माथा नहीं टेकते हैं, उनकी जो समाधि है वहां पर। तो ये कार्यक्रम बहुत ही हाई लेवल का होता है
0: जी,
1: मगर वो समारोह में एक बार ये हमारे जो सर थे उनके क्लास का मैं स्टूडेंट था
0: जी।
1: तो मुझे उन सब बड़े बड़े पंडितों के सामने एक बार लाइट म्यूजिक, एक भजन गाने के लिए मौका मिला था मुझे।
0: अरे वाह।
1: तो मैं कोई उतनी संगीत की बड़ी हस्ती नहीं हूं, बट मेरे साथ ही ये बहुत ही सम्मानजनक बात हुई थी, तो वो मैं हमेशा याद करता हूं उसको।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही प्यारी बात है, बहुत बढ़िया अकॉम्प्लिशमेंट है ये, जिसका जवाब नहीं। बहुत खूब। चलिए दोस्तों, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं सूर्यकांत भाई की आवाज में।

0: दोस्तों, अगर आप भी आज के कलाकार प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, नए टैलेंट्स के इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट करें। नंबर है 9656517317। ये है 9656517317। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूर्यकांत भाई, बहुत हल्का सा, बहुत प्यारा सा, बड़ा आसान सा सवाल करता हूं आपसे कि आपका पसंदीदा रंग क्या है और क्यों?
1: वैसे मैं तो सभी रंग पसंद करता हूं, बट अगर ज्यादा पसंद की बात की जाए तो ब्लूइश कलर जो होगा वो मैं ज्यादा पसंद करता हूं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके पास ब्लू कलर की क्या क्या चीजें हैं आपके पास?
1: ब्लू कलर का वैसे तो कपड़े
0: जी, बिल्कुल ठीक।
1: मेरे पास एक मोटर बाइक है
0: जी, वो भी ब्लू कलर की है।
1: ब्लू कलर की है, ब्लूइश कलर की
0: है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे सुन के मजा आ गया, मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था।
1: मैंने शूज भी पहने हुए हैं वो कलर के।
0: अरे
1: वैसे कोई नहीं पहने ब्लू पर, हाँ जो स्पोर्ट्स शूज होते हैं उसमें ब्लू कलर की, वैसे लेदर में तो नहीं पॉसिबल होगा।
0: नहीं नहीं, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस। कितनी ही बार सूर्यकांत मैंने सुना है, कहीं कहीं देखा है, एडवर्टाइजमेंट में भी, विज्ञापन में भी, कि जस्ट डू योर ओन थिंग, यानी कि अपनी तरह से जिए, जो पसंद है वो करिए। आपको ब्लू कलर के शूज पहनना पसंद है, बिल्कुल पहनिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को हमें दिखाना नहीं है, हमें अपने अंदर खुश रहना है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों, आपने सुना वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, बहुत ही प्यारा आंसर कि सूर्यकांत जी को ब्लू पसंद है और उन्होंने ब्लू को बहुत प्यार से अपनाया है। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत सूर्यकांत भाई की आवाज में।

0: सूर्यकांत भाई, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि हर दिन अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, खुश रखने के लिए, उत्साहित बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, क्या राज है आपके पास?
1: मैं अपने आप को खुद ही मोटिवेट रखने की कोशिश करता हूं।
0: कैसे?
1: और हर रोज मैं अपना जो काम है
0: जी,
1: काम अच्छे से शिद्दत से करके, और जो हर रोज एक काम ऐसा मुझसे हो पाए कि जो काम मेरे बिजनेस के रिलेटेड ना हो, मगर मैं किसी का काम आ सकूं, कि उसको वो मुझसे वो चीज मिले जो उसको शायद पैसा खर्च करने से भी ना मिले, वो मैं उसको दे पाऊं। बस ये मेरी कोशिश रहती है, कई बार मैं करता भी हूं।
0: बहुत बढ़िया,
1: और मुझसे हो भी पाता है।
0: बहुत बहुत प्यारी बात, शानदार। चलिए दोस्तों, एक और शानदार गीत भी हो जाए सूर्यकांत जी की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया। और सूर्यकांत भाई, अब हम अपने प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए और जो नए संगीतकार, जो गीतकार, जो सिंगर्स आ रहे हैं, उनको कुछ मैसेज दीजिए आज।
1: वैसे मेरी उतनी तो हैसियत नहीं है कि किसी को मैं कुछ ज्यादा टिप्स दे पाऊं, बट मैं जो मैं खुद करता हूं वो आपको कहूंगा कि जो भी हम काम करेंगे वो काम सत्यनिष्ठा से, और जो काम किसी के काम आ सके और किसी हमसे गलती से भी किसी का कुछ बुरा ना हो, हम उनको हेल्प कर पाए तो वो बहुत अच्छी बात है। और जिंदगी में ऐसा काम करके या ऐसा नाम करके जाइएगा कि आपको सब लोग अच्छे से ही याद करें कि इनके ये काम से हमको ये लाभ हुआ था, हमको ये सीखने मिला था, या फिर हमको कुछ अनुकरण करने का कोई एक एग्जाम्पल मिला था। तो हम ये ही काम करें कि जो औरों के काम भी आए, लोगों का मनोरंजन भी करें, लोगों के प्रश्न हमें सुलझाने की जरूरत नहीं है। हर आदमी का अपना अपना हिसाब होता है, अपने अपने हिसाब से अपना अपना प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है। हमें कुछ उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, बस उनको हो सकता है उतना सपोर्ट कीजिए बस, और ऐसे दुनिया से जाइए कि लोग आपको एक अच्छे आदमी की तरह याद करें।
0: शानदार, बहुत खूबसूरत बात। दोस्तों, आपने सुना सूर्यकांत जी की मैसेज क्या है, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। बहुत खूब।

0: सूर्यकांत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपके गीत हमने सुने, आपकी बातें हमने सुनी, आपका भोलापन हमने देखा, थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच।
0: बेहद शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ। सुनना ना भूलिएगा।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। ये लीजिए दोस्तों, बिल्कुल ही अनप्लग्ड, कोई तैयारी नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बातचीत में हम लोगों ने म्यूजिक का, संगीत का, गायकी का तड़का लगा लिया है। मेरे साथ मेरे आज बहुत ही प्यारे मित्र गगनप्रीत जी मौजूद हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा बॉस, गगनप्रीत जी, जिनको मेलोडियस मुंडा भी कहा जाता है, हमारे पास पहले भी पधार चुके हैं। उन्होंने हमें मौका दिया था, वी वेर ऑनर्ड टू लिसन टू हिज सॉन्ग्स, टू लिसन टू हिज म्यूजिक, एंड वी एंजॉयड अ लॉट। उसके बाद बस कुछ व्यस्तता रही, मुलाकात ना हो सकी और गायकी की भी थोड़ा गैप हुआ, लेकिन आज हमें फिर मौका मिला है। तो गगनप्रीत, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। वेलकम टू अवर प्रोग्राम एंड बिलीव मी, दिस इज टोटली अनप्लग्ड। हम लोग मस्त बातें करेंगे, डोंट वरी, कोई नहीं सुन रहा ये समझ के चलना आज मैं कोई सुन ही नहीं रहा, बस आप मुझे गाने सुनाओ यार, काम खत्म हुआ। तो पहले तो फिर भी मुझे बता दो यार, मैं थोड़ा थोड़ा सा भूल रहा हूं, लेकिन चलो हमारे दोस्त लोग, यार लोग भी सुन रहे हैं, तो उनके लिए बता दो कहां आओ आप।
1: हाय समीर जी, थैंक यू सो मच, इतने समय बाद आपसे आज एक बार फिर से रूबरू होने का मौका मिला। मैं फिलहाल हमेशा की तरह चंडीगढ़ में ही हूँ और आपको बहुत याद करता हूँ। पहले भी आपसे मैंने कई बार कोशिश की आपसे बात करने की, बट कुछ आपकी व्यवस्था जो सॉरी कुछ आप व्यस्त रहे, कुछ मैं व्यस्त रहा, हमारा दोनों का जो टाइमिंग जो है वो मैच नहीं हो पा रहा था।
0: कोई नहीं, कोई नहीं,
1: आई एम ऑनर्ड कि आज जो है हम दोबारा आमने सामने बैठे हैं और आज हम फिर से बात कर पा रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस।
0: मी टू। बड़ी मजेदार बात है यार, मतलब बल्कि मुझे ठीक से याद पड़ता है गगनप्रीत जी, हम लोग ने ना एक म्यूजिकल ट्रीट भी वो किया था, प्लान किया था, जिसमें आपको इंक्लूड किया था और दो लोग और थे, पर समहाउ उसमें भी आप आ नहीं पाए थे, तो हम लोगों को दो ही लोगों के साथ उसे बनाना पड़ गया था।
1: हाँ जी,
0: बट चलो कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं, आपके लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम ही रिजर्व रखा था ऊपर वाले ने, इस वजह से आज फिर से बात हो रही है। अच्छा चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो गगनप्रीत मुझे ये बताओ कि ये मेलोडियस मुंडा आपको क्यों कहा जाता है?
1: सर, मेलोडियस मुंडा जो नाम है ये मुझे चंडीगढ़ से ही मिला है बेसिकली। मैं पहले भी गाता था म्यूजिक, आपको भी पता है कि मैं म्यूजिक से बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। स्कूल टाइम से ही मैं म्यूजिक के साथ कनेक्टेड हूँ, मैंने स्कूल में ही अपने म्यूजिक सीखा, गायकी सीखी, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने सीखे, और उसके बाद फिर मैं जब जॉब्स में रहा तो म्यूजिक से नाता थोड़ा सा टूट गया था, क्योंकि जॉब्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज में व्यस्त हो गया था मैं। चंडीगढ़ आके जब मुझे दोबारा मौका मिला गाने का और जब मैंने गाया तो लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार मिला, मैंने फिर इस अपने जो ये सफर है इसको फिर दोबारा से चंडीगढ़ आने के बाद ही दोबारा शुरू किया। तो पंजाब में जो मुंडा जो एक वर्ड है, ये लड़के को पंजाबी में कहा जाता है मुंडा, तो फिर मुझे जो जो ये प्यार करने वाले हैं श्रोता जो मेरे सारे, तो इन्होंने मुझे मेरा नाम रखा कि आप बड़े मेलोडियस हो, आपकी आवाज बड़ी प्यारी है, तो दे कॉल मी मेलोडियस मुंडा। तो वो दो शब्द जो है मिलके ये मेरा नाम पड़ा, मेलोडियस मुंडा। और अब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, हर जगह आप कहीं भी, इनफैक्ट गूगल पे भी सर्च करेंगे मेलोडियस मुंडा तो आप सीधे मेरे घर तक भी पहुंच सकते हो।
0: बहुत बढ़िया। सो जाहिर सी बात है, पिछली प्रोग्राम में मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने इस बारे में बात की थी या नहीं की थी, तो इसलिए ये सवाल बस उछल के आ गया।
1: तो इस बारे में हमारी बात नहीं हुई थी।
0: तो दोस्तों, इस वजह से गगनप्रीत को मेलोडियस मुंडा कहा जाता है। चलो ज्यादा बातचीत क्या, अभी पहले गीत सुनते हैं, उसके बाद गगनप्रीत जी से और बातचीत करते हैं। अब की बार बिल्कुल अनप्लग्ड। लीजिए, पेश करता हूं ये गीत।

0: बहुत खूब, अमेजिंग सिंगिंग एज बिफोर, हमेशा की तरह। तो चलो आगे बढ़ते हैं गगनप्रीत भाई। और मुझे ठीक से याद है कि आपने मुझे बताया था कि आपका जन्म जो हुआ था वो रुद्रपुर में हुआ था, एम आई राइट?
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: तो आपके रुद्रपुर के ही निवासी थे, फिर उसके बाद आप प्रोफेशन के चक्कर में शिफ्ट हो गए, जो भी है। तो चलो थोड़े से आपकी बचपन के बारे में बात करते हैं। यूं तो मुझे मेरे दोस्तों को सुन के लगेगा कि मैं पूछना चाहूंगा कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे, लेकिन उसको जाने दीजिए। मुझे तो ये बताओ, बचपन में सबसे मजेदार शरारत कोई याद है जो आपने की हो?
1: सर ऐसे तो बहुत सारी यादें हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, पर कई ऐसी बातें हैं जो जिंदगी में हमेशा हमारे साथ जुड़ी रह जाती है, हम कभी भी भूल नहीं पाते उन बातों को। तो ऐसे कई सारे किस्से मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, पर अगर आप जानना ही जाएंगे कि मैं कोई एक किस्सा उनमें से आपके साथ शेयर करूं, तो वो एक है कि मेरे जो मदर है उनको डॉग्स और कैट्स ये पेट्स वगैरह का ज्यादा शौक नहीं है, नहीं था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे को बहुत ज्यादा, अभी भी है, मुझे अभी भी पेट, आई एम अ बिग पेट लवर। तो मैं अपनी गली से एक छोटा पपी उठा के घर ले आया था, और जितना मैं उससे प्यार नहीं कर रहा था उतने उससे ज्यादा मुझे मार पड़ी थी। जब मैं उसे ले आया और मैंने उसे छुपा के रख दिया एक, मैंने उसके लिए एक डब्बे कार्टन का, मेरे को याद है मैंने गत्ते का एक बॉक्स जो था वो रखा, और मैंने उसके अंदर उसका पूरा सेटअप क्रिएट किया सब। और मैंने मार इसलिए पड़ी थी कि मैंने जो मेरा ही जो ब्लैंकेट था, मैंने वही ब्लैंकेट उसके उसके अंदर रख दिया था, उसको उसको पीको उसके ऊपर बिठा दिया था। मुझे बहुत मार पड़ी थी उस वक्त मेरी मम्मी से कि व्हाई आई डिड दैट। मुझे अच्छी तरह वो किस्सा कभी नहीं भूलता।
0: वाओ, ये छोटी छोटी शरारतें होती हैं दोस्तों जो हम बचपन में करते हैं, और खास करके जो गगन जी ने बताई पेट को घर के एक छोटे से पिल्ले को घर पे ले आने वाली, तो ये हरकत ना बहुत बच्चे करते हैं और बेचारे सबकी बहुत पिटाई होती है। कोई एक आधी बच्चा होता होगा जो शायद उनके पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट कर ले,
1: हाँ बिल्कुल,
0: और जिसने ये ना किया हो। ये बिल्कुल सही बात है यार, बच्चों का दिल वैसे ही होता है, मतलब वो पप्पी में भी उनको बच्चा ही दिखता है तो उनके साथ वो खेलना चाहते हैं, सिंपल
1: जी,
0: ब्यूटीफुल। तो चलो दोस्तों आप अपने बचपन की कोई शरारत याद करो, क्या थी वो, संभव हो इम्पॉसिबल हो तो हमारे साथ शेयर करो, बड़ा मजा आएगा। चलिए तब तक हम लोग गगन जी के ही गाए हुए ये गीत सुने और फिर आगे बढ़े।

0: बहुत खूब। चलो
1: थैंक यू सर।
0: अब क्या हुआ गगन जी, छोटे से शरारते करते करते करते करते हम बड़े हो गए। ओके
1: जी हाँ जी।
0: प्रोफेशन में आ गए, कुछ मैच्योर भी हो गए, जिंदगी को समझने लगे।
1: बिल्कुल।
0: कोई ऐसा मोमेंट जिम्मेदारियों में आ गए, ठीक है ना
1: जी।
0: मे बी EMIs चालू हो गई होंगी, लोन चालू हो गए होंगे बस उलझ गए होंगे उसमें तो
1: हाँ।
0: लेकिन कोई ऐसा पल अभी या कुछ समय पहले कभी भी आया होगा, तो ऐसा कौन सा पल था जब आपको ये लगा कि यार मैं तो बदल गया हूं? कौन सा ऐसा पल था, कुछ याद है आपको, जब आपको रियलाइज हुआ हो अरे यार मैं क्या था, क्या हो गया?
1: बिल्कुल होता है सर। जब मैं अपने कॉलेज पास आउट होके और नई नई जॉब में स्टार्ट हुआ, उस वक्त मेरी उम्र शायद 25-26 साल रही होगी जब मैंने जॉब में आया था मैं, और उस अब मैं और जब आज मैं इस मुकाम पर बैठा हुआ हूँ, मैं एक अच्छे बड़े रियल एस्टेट कंपनी में बैठा हुआ हूँ एज अ सीनियर सेल्स मैनेजर, तो अब और तब के स्वभाव में बहुत ज्यादा फर्क है। जो मैं खुद ये बात अपने लिए ऑब्जर्व करता हूँ कि पहले अग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर्ड और बहुत क्विक डिसीजन मेकर उस उम्र में शायद मैं था, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, अब मैं बहुत सहजता से और स्वभाव से बहुत ज्यादा विनम्रता से बात करने लगा हूँ और चीजों को बहुत अलग वे में देखने लगा हूँ। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्टेन एज के साथ साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके अंदर ये बदलाव आ ही जाता है। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि दिस इज एक्चुअल मी, यही होना चाहिए एक व्यक्ति को। आप अग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, क्विक डिसीजन, ये हमारी हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं होता। उस स्वभाव के चलते हम कई फैसले ऐसे अपनी जिंदगी में बहुत गलत ले लेते हैं जिसका जो रिजल्ट है हमें बहुत बाद में समझ आता है। तो अपने सारे लिसनर्स को मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि बोलने से पहले, कोई फैसला लेने से पहले एक बार जरूर उसे दोबारा विचार कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए।
0: That's right. That's very right. बिल्कुल। Moreover, गगन मैं आपको सच बताऊं, अभी पिछले कुछ दिनों से, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, शायद हफ्ता भर हुआ हुआ या 10 दिन हुआ होगा मे बी, आई हैव रियलाइज्ड एट दिस एज नाउ कि यार कोई मैसेज आता है या कोई फोन कॉल आती है कि जी ऐसा हो गया। मतलब जैसे मैं कॉलेज में जाता हूँ तो वहां पर ये हुआ कि साहब बच्चों की जॉब नहीं लगी है, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक सेकेंड में बहुत तेज गुस्सा आता है कि अरे यार ये क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने ठेका लिया हुआ है क्या यार, एक बात कह रहा हूं। लेकिन फिर पिछले 10 दिनों में, समझो 15 दिन हो गए होंगे, ये रियलाइज किया कि ऐसी कोई भी बात आ जाए ना, चुप हो जाओ, रिएक्ट ही मत।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: वेट फॉर सम टाइम, जस्ट लाई लो, स्लीप ऑन इट।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। मैं मानता हूं बहुत परेशानी हो जाती है, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी, पिछले 10-12 दिनों का एक्सपीरियंस है मेरा, जस्ट लीव इट अलोन। किसी मैसेज का जवाब भी मत दो, कोई फोन का कॉल भी मत जवाब दो, भाई उन्होंने बोल दिया चुप करके, आपने सुन लिया, काम खत्म, ओके आलसी खत्म।
1: बिल्कुल।
0: कुछ समय बाद ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपके दिमाग में आ जाएगा।
1: कई बार सर चुप रहना ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, हर बात का जवाब देना सोल्यूशन नहीं है।
0: कोई जरूरी
1: प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी, मेरा अब ये मानना है कि चुप रहने से भी बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है, जरूरी नहीं कि बात को बढ़ाया ही जाए।
0: दैट्स वेरी राइट। तो थोड़ी सी फिलोसफिकल जरूर लगती है बॉस ये बातें दोस्तों, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप भी इसको फील कर रहे होंगे और हम भी फील कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट लेट्स एक्सेप्ट इट, स्वीकार कर लेते हैं ना कि यार ये सच्चाई है।
1: बिल्कुल।
0: चलिए इन्हीं विचारों को जरा सा और गहरा सोचते रहिए, लेकिन रुकिए गगन जी के इन गीतों का आनंद भी उठाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

0: बखूब, अमेजिंगली ब्यूटिफुल।
1: थैंक यू सर।
0: गगन जी, चलो आपने कहा कि कई बार चीजों पर शांत रह जाना, चुप रह जाना ही ठीक है, चाहे फिर वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो जाता
1: जी।
0: आपने भी सीख लिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सभी लोगों ने सीख लिया, हमने भी सीख लिया। लेकिन यार फिर भी कभी कभी तो पांव फिसल ही जाता है ना, तो आप बताओ किस बात पर आपको बहुत जल्दी सबसे ज्यादा गुस्सा आ जाता है?
1: सर ये शो बहुत लोगों ने सुनना है और उन्हें मैं ये जाहिर कर दूं कि मुझे इस बात पे गुस्सा, ये तो मेरी कमजोरी पकड़ने वाली बात है।
0: नहीं तो हम केयरफुल रहेंगे ना यार कि हम ऐसी हरकत ना करें।
1: सबसे अहम बात जो है सर, जो मुझे बहुत बुरी लगती है, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा एकदम से बहुत गुस्सा आ जाता है, वो दो ऐसी बातें हैं। एक ये कि जहां मुझे लगता है कि मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मेरा नाम जोड़ा गया या मुझे उसमें इन्वॉल्व किया गया, तो मैं चुप रहना फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: और दूसरा ये कि अगर मैं आपके साथ सच्चा हूं, तो अगर आप आगे से मुझे झूठ बोलते हैं, तब भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं हमेशा अपने दोस्तों को भी, अपने चाहने वालों को भी, सबको यही बोलता हूँ कि यार आप कुछ भी करना, बस मुझसे झूठ नहीं बोलना।
0: ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट।
1: क्योंकि वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे कई लोग कहते हैं, मेरे रोज के जो मुझसे मिलने वाले लोग हैं, कई एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो दे ऑल्सो से कि गगन तेरा जो मूलांक है ना, वो 8 है। यू आर रियली मतलब ब्लेस्ड विद दैट ऑरा एंड

0: दैट एनर्जी जो मूलांक आठ जो है वो शनि देव से प्रभावित रहते हैं. तो वो मुझे बोलते हैं कि यू आर एग्जैक्टली दैट व्हाट नंबर एट इज. तुम बिल्कुल वही हो. तो अपने काम को इतनी ज्यादा अहमियत देते हो कि फैमिली दोस्त यार सबसे पहले अपने काम को प्रेफरेंस देते हो, उसके बाद तुम्हारे लिए सब लोग आते हैं. तो मूलांक आठ जो है तो वो इसी पे ही डिपेंडेंट रहते हैं. और यू आर एग्जैक्टली दैट. मैं सुबह अपने टाइम से पहले ऑफिस पहुंचता हूँ, टाइम कंप्लीट करने के बाद ही ऑफिस से जाता हूँ. और मेरे लिए आज भी मुझे पता है कि मेरा काम सबसे पहले है, काम के बाद ही मैं आगे उसके बाद सबको रखता हूँ.
1: आई अंडरस्टैंड, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड. और ये एक पर्सनल ट्रेट होता है दोस्तों, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक पर्सनालिटी है जो हर व्यक्ति अपने साथ कैरी करता है, वो अलग अलग होती है. तो आज हमें मौका मिल गया गगन जी की पर्सनालिटी को और गहरे समझने के लिए. सो दैट्स वेरी वेरी नाइस. आइए दोस्तों फिर हो जाएं ये गीत गगन जी के, और फिर इसके बाद विल टॉक मोर अबाउट गगन जी.

0: सिलेक्शन में दिक्कतें, कभी जब वाक्य की संरचना लिखनी हो तो सेंटेंस के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि ये
1: सारेगामा कारवा 2.0